0: सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और पांचों में जीत हासिल की। 2024 टी20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को टी20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: टी20 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल उसी अंदाज में, छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
7: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जैसे पतन दफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
7: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण। पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ,
10: सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर
5: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम

हनुमान जी महाराज कथा के रसिक हैं, किसी ने पूछा अच्छा कथा सुनने से होता क्या? ठीक है आप कह रहे हैं कथा सुननी चाहिए, पर कथा सुनने से होता क्या? हमने एक व्यक्ति से पूछा तुम बताओ घाटा क्या, कथा सुनने से होता क्या? अरे तुम ही बताओ घाटा क्या। भैया कथा जीवन की वृथा मिटा देती है। हाँ। जो कथा में बैठता उसकी वृथा मिट जाती। एक बात और, एक होता चरणामृत, एक होता रसामृत, एक होता दुग्धामृत, लेकिन कथा है कथामृत। चरणामृत को तो मुख से पिया जाता, भगवान की कथा को तो कानों से पिया जाता है। अच्छा महाराज कथा सुनने से क्या होता? विचारों की शुद्धि। और किसी के विचार सुधर जाए वो आदमी सुधर जाए। खेल तो पूरा विचारों का ही है, और विचार दिमाग में आते हैं, और दिमाग के से ही जुड़े हुए तार हैं कान, और कानों से ही कथा सुनी जाती। जो जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके दिमाग के विचार बदल जाते हैं, जिनके विचार बदल जाते उनकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों सुधर जाती है। इसलिए परवणी के पागलों, हमें जिंदगी में

जो भी माता पिता अपने बच्चों को कथा सुनाने की आदत डलवाते हैं, उनके बालक बड़े होकर के अधिकारी तो बनते ही है, जो जैसी पढ़ाई करता वो बनता ही है, लेकिन सबसे बढ़िया इंसान बनता है। और मेरे भारत के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने बच्चे को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, डीएम बनाओ, तहसीलदार बनाओ, एसडीएम बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, आप जो मन करे, भगवान करे तुम्हारा बेटा और बेटी इतना नाम रोशन करे कि तुम्हारी छाती हमेशा चौड़ी रहे। लेकिन एक प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब स्कूल भेजो, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को मनुष्य जरूर बनाना, इंसानियत जरूर सिखाना, संस्कार जरूर देना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई तो स्कूलों में मिल जाएगी, संस्कार की पढ़ाई तो आपको देनी पड़ेगी। और जो माता पिता अपने बेटा और बेटी की हाथ पकड़कर मंगलवार को मंदिर ले जाते, जो माता पिता अपने बेटा और बेटी का हाथ पकड़कर कथा में ले आते, उनके बेटा और बेटी बुढ़ापे में उन्हें भी भगवान के दर ले जाते। तो देखो भैया, ये कर्मों की खेती है, जैसा करोगे सो वैसा पाओगे, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करोगे। माई बाप, इसलिए कथा में बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कि प्रभु के हो जाओ। एक पति पत्नी रहते थे, पत्नी बड़ी चतुर, पति बड़ा विचित्र, कभी भगवान की कथा नहीं सुने। पत्नी ने कहा, हमेशा तुम लेना देना की बातें करते हो, कभी कथा सुन लिया करो। अरे कौन सुने, 3 घंटा बर्बाद करे। अरे ठीक है, फिर भी सुनाओ, बागेश्वर वाले महाराज आए, कथा सुना। पत्नी ने बार बार कहा, अच्छा पत्नी का डर तो सबको होता है, पत्नी का डर सबको होता है, होना भी चाहिए, जरूरी भी है। पत्नी के डर के मारे बेचारा कथा सुनने गया, अमीर आदमी नगर सेठ, कथा में जाके जैसे ही बैठा, लोगों ने देखा, आइए आइए आइए, तब तक दूसरे बोले बैठिए, अजय तो हमेशा पाप ही करते रहे, पैसा का ही काम करते रहे। कथा में इन्होंने एक कोना सोफा पाया और कूलर की हवा, ऐसी नींद आई कि पूरी कथा कब हो गई पता ही नहीं चला। बगल वाले ने धक्का दिया, उठो, क्या बात है, हो गई कथा। तब तक लोग बोले जाइए। घर आए, पत्नी ने पूछा, कथा सुनी? बोले सुनी। बोले क्या सुना? तो इन्होंने जो सुना था वही बता दिया, आइए बैठिए जाइए। हमने तो 3 ही चीजें सुनी कथा में, आइए सेठ जी बैठिए, सेठ जी जाइए। पत्नी ने कहा, भाड़ में गया, इनसे कुछ बोलेंगे तो ये कल से जाना ही बंद कर देंगे। पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात सुनी आपने, अब एक काम करो, माला ले लो, इसी का जाप करो, आइए बैठिए जाइए। ये भी इतना खतरनाक, इसने ली माला, इसे लगा यही मंत्र है, कभी सुनी थी नहीं कथा, धर्म जानता नहीं था, मंत्र जानता नहीं था, यही जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात का अंधेरा, नींद से आए ना, नींद नहीं आई उस दिन, रात को बैठ गया बिस्तर पर, अब रहा होगा परभणी का, रहा होगा, अब क्या ठिकाना है, वैसे हमें नाम तो पता चल गया, चंगीलाल। बैठा बिस्तर पर, नींद आ नहीं रही थी, माला ली इसने, वही मंत्र जपने लगा, आइए सेठ जी बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए। अब बीच बीच में थक जाए, आइए बैठिए जाइए। उसी दिन किस्मत की बात, घर पे चोर आए, अंधेरा अंधा खुक अंधेरा, चोर भीतर घुसे, तब तक ये आंखें बंद करके बोला, आइए। चोरों को लगा पकड़ गए, पहचान लिया, चोर भागने लगा, तब तक ये दूसरा बोले, बैठिए। चोर को लगा, हे भगवान, अब तो ये सुबह राजा से कह देगा, हमारी गर्दन कट जाएगी, फांसी लग जाएगी, कहां से बिजुली में इस घर में घुस गए, ये तो जाग रहा है, इसने तो पहचान भी लिया, अब तो भाग जाना चाहिए, लेकिन भागे कहां, सुबह ये बताई देगा। तब तक सेठ जी बोले, जाइए। चोर रोता हुआ चरणों में आ पड़ा, ये डर गए, कौन है कौन है कौन है, इन्हें लगा मंत्र सिद्ध हो गया।
किसी ने चरण रात को पकड़ लिए तो इनका दिमाग खराब लगता है, मंत्र सिद्ध हो गया, जल्दी से दिया सलाई ली, पुराना जमाना, लालटेन को जलाया, मुंह को देखा, कौन हो? हुजूर हम चोर हैं। अब आप ऐसा मत कहो कि हम कौन है, आप तो सब जानते हो, अब एक एक कृपा करो, किसी को ना बताना, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, आज धोखे से अब लौट के नहीं आएंगे, हमें क्षमा कर दो। शेठ जी बोले जाओ, चला गया। पत्नी जागी, क्या बात है, शोर शराबा हो रहा। अरे बोले क्या बताएं, तुमने जो मंत्र दिया था वो हम मंत्र जाप कर रहे थे, चोर पकड़ा गया, पूरी घटना बताई। पत्नी ने मुस्कुराकर बड़ी अद्भुत बात की, बोले देखो साधारण सी बात, झूठी बात तुम कथा की लेकर आए, और तुम्हारी झूठी बात को पकड़ लेने से, कथा के तीन शब्द पकड़ लेने से दुनिया का चोर चला गया और चोरी बच गई। अगर तुम वास्तविक बात कथा की पकड़ लोगे तो तुम्हारा मन का चोर भी भाग जाएगा। ये जो मन में चोर है ये भी भाग जाएगा। लेकिन हम लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा में अपने अपने मतलब की बात निकालते हैं। अभी हम कहने लगे जितने घुटना दर्द होते हैं खड़े हो जाएं, उनको हम मंत्र बताएंगे तुरंत, चुप हो जा गुरु जी मंत्र बता रहे, बगल में घुटना दर्द, हमारे तो बहुत दर्द होते हैं, तुरंत कहेंगे। हम अपने अपने मतलब की बात निकालते, कथा में मतलब की कुछ बात होती ही नहीं, कथा तो संपूर्ण मतलब की होती है। तो धन्य है वीर बजरंग बली, वो कथा सुनते, और कथा सुनने का लाभ क्या, विचार शुद्धि। विचार क्या है, विचार का संबंध है सिर से, और सिर में ही लगे दो कान, कान कितने हैं, बोलो दो। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, भगवान ब्रह्मा जी कितने चतुर हैं, कान दो हैं, मुंह एक है। मानो भगवान कह रहे ज्यादा सुनो बोलो कम, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं सुनते कम, उल्टे ही हैं। भगवान कितने चतुर हैं, उन्होंने दो कान दिए, ज्यादा सुनो बोलो कम, सुनो क्या,

विचार मन में आते, अच्छा विचार बदलते रहते हैं। जब तक तुम कथा में बैठे रहोगे विचार विचार एकदम शुद्ध होंगे। हमें एक, एक किसी के मुंह से हमने बात सुनी थी, एक आदमी जून के महीना में, गर्मी के महीना में चला जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे टिक गया, रुक गया। सामने में एक मकान था, मकान वाले मालिक ने दरवाजा खोला, अरे अरे कौन हो? भैया हम बगल के गांव के हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, पुराना जमाना। अच्छा ठीक है, पानी पियोगे? मकान मालिक ने पूछा, इसने इशारा किया, हाँ पियेंगे, ठीक रुको अभी लाते हैं पानी। वो पानी लेने गया, अंदर ये खड़ा हो गया, इसने कहा कितना अच्छा आदमी, देखो विचार आया इसके मन में, कितना अच्छा आदमी, हमने कहा नहीं, ये स्वतः ही उपत करके पूछ रहा क्या पानी पियोगे, बड़ा सज्जन आदमी है, मन में विचार आया। लेकिन 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, वो आया ही नहीं। तो इनका जो विचार अच्छा था वो बदल गया, यार कितना बेकार आदमी है, कह रहा था हम पानी ला रहे हैं, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, इससे अच्छा मना कर देता। देखो विचार बदल गया। लेकिन तब तक दरवाजा खुला, हाथ में जग लेकर गिलास लेकर वो सज्जन आया, मकान मालिक, क्षमा करना हमें देरी हो गई पानी लाने में, हमने सोचा आप खड़े हो धूप में, पानी क्या पिलाना, हमारे मन में आया आपको शरबत पिला दिया जाए। अब लो हम कुछ और सोच रहे थे, ये व्यक्ति कुछ और करके आया, तो जिस आदमी के मन में ये गलत विचार आया था उसका मन तुरंत बदल गया, अरे यार बताओ हम गलत सोच रहे थे, कितना अच्छा आदमी, हम पानी की सोच रहे, ये तो शरबत ले आया। उसने गिलास में डाला, गिलास पीने को दिया, जैसे ही पिया तो जैसे ही पिया सो उसमें शक्कर नहीं, तो पीने वाले को लगा कि मूर्ख ही मिल गया, कह रहा था शरबत पिलाएंगे शक्कर तो है ही नहीं, काय का शरबत। लेकिन कहा विचार बदला, तब तक वो व्यक्ति बोला हाँ हाँ अरे अरे सॉरी शक्कर रह गई, हम पुड़िया लेकर आए, हमने सोचा कहीं आपको शुगर ना हो तो अपने मतलब की डाल लो। अब इसका फिर विचार बदल गया, कितना अच्छा आदमी, कितने सोच समझ करके चलता है। तो हम लोगों का विचार एक एक मिनट में बदलता है, यही विचार परमात्मा के चरणों में सदा बनाए रखने के लिए ही भगवान की कथा सुनना जरूरी है। तो विचार की शुद्धि दिमाग से, और भगवान ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग, क्या क्या दिया भगवान ने, दो चीजें हर इंसान को दी, एक दिल दिया एक दिमाग, और भगवान ने दोनों का काम बता दिया, दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ परमात्मा में, और हम लोगों ने उल्टा कर दिया। जितने भी आदमी हमें मिलते हैं हमारा तो दिल ही टूट गया, दिल ही टूट गया। अरे भाई तुम एक बात बताओ, ठटरी के भरे तुम्हें दिल लगाने को कहा किसने था? कई लोग मिलते हमारा तो दिल ही टूट गया, हमारा तो दिल ही टूट गया। अरे भाई तुम्हें दिल लगाने को कहा किसने था? भगवान ने दिल लगाने को कहा था क्या? एक व्यक्ति का पेट खराब हो गया, पेट एकदम रेसिंग चले, पेट खराब, आंखें भी डिस्टर्ब, वैद्य के पास डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट खराब आंखें भी खराब, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करो ये दो पुड़िया लो, ये पेट का चूरन है खा लेना ठीक हो जाएगा, ये आंखों का काजल है अंजन है इसे लगा लेना आंखें ठीक हो जाएंगी। वो पुड़िया लेकर आया, दवाई तो ठीक थी लेकिन एक गड़बड़ हो गई, क्या पुड़िया बदल गई, पेट का चूरन आंखों में लगा लिया, आंखों का अंजन पेट में खा लिया, परिणाम ये निकला कि जो पेट ठीक था वो पूरा खुल गया, आंखें जो थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रही थी पूरी तप गई। अब तो दिमाग टेंशन में डॉक्टर के पास गया कि ये क्या दवाई दे दी तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से, पहले तो कुछ ठीक ही था अब तो पानी भी नहीं टिकरा, पानी इधर से पियो पीछे से, आंखों से दिखना बंद हो गया, तुम्हारी दवाई डिस्टर्ब है। डॉक्टर बोला ऐसा हो नहीं सकता, दवाई तो हमने ठीक दी, पुड़िया दिखाओ कौन सी खाई, उसने निकाली ये हमने खाई है ये लगाई, अरे बोले मूर्ख उल्टा कर दिया, खाने वाली लगा ली लगाने वाली खा ली, जिले उल्टा हो गया। वही हम लोगों के साथ परमात्मा ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग, दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए, हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग लगाते भगवान में है के नहीं, अब दिल लगा रहे दुनिया वालों में, सो टूट रहा, अब टूटे नहीं तो क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों
इसलिए हमारे प्रियजनों, भगवान की कथा से लाभ क्या? भगवान की कथा से विचार की शुद्धि होती है। अच्छा, लेकिन कथा भी

जो भगवान की कथा सुनते उनका दिल परमात्मा के चरणों में लग जाता, फिर जब भगवान के चरणों में दिल लग जाता मेरे प्रिय जनों, फिर उन्हें दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती। एक बात और, आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी, ट्रेन, अरे बोलो तो, देखी, बैठे हो। अच्छा, कभी टिकट कटा करके ट्रेन पर बैठ जाओ सीट पर और अपना मन ना लगे तो क्या ट्रेन चलना बंद हो जाती है? बोलो, मन लगे या ना लगे, ट्रेन तो मंजिल तक पहुंचाती ही है। बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, आके केवल बैठ जाओ, कथा राम तक पहुंचा करके ही मानेगी। हाँ, जिस प्रकार ट्रेन में बैठने के बाद मन लगने ना लगने का कोई मतलब नहीं, वो मंजिल तक पहुंचाती, वैसे ही कथा भी एक यात्रा की ट्रेन है। जो कथा में हनुमान जी की बैठ जाता, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, कुछ लोगों का मन तो पड़ोसी में लगा रहता, कुछ लोगों का मन चप्पलों में लगा रहता, और तो सब ठीक है, आज भीड़ ज्यादा है, कहीं चप्पल हमारी नहीं हती, गुम ना जाए। अरे भाई ठीक है, तुम चप्पल का ध्यान करने आए हो, अरे हनुमान जी को पाना है।

0: हम लोगों को भी संकट से बचना हो।
1: आहाहा, तो मन क्रम बचन ध्यान जो।
0: क्या ध्यान की बात कर रहे? ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञानियों को भगवान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर ध्यानियों को भगवान मिलना बड़ा सरल है। और जो हनुमान कथा में आकर हनुमान जी का ध्यान करता है, वो हनुमान के साथ साथ राम जी को भी पा जाता है। अरे रुको, पाना नहीं, मेरे पागलो, हनुमान जी का ध्यान करने वाला संकट से भी

संकट से काटने, संकट से बचाने वाले वीर बजरंगबली साधारण थोड़ी है। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा तब मिलेगी जो हनुमान जी को प्रिय है वो तुम करोगे। हनुमान जी को प्रिय क्या है?

0: एक तो हनुमान जी को ये प्रिय है, दूसरा क्या प्रिय है?
1: हनुमान जी को प्रभु की कथा प्रिय। एक बात, हम कल जगन्नाथ जी में जब थे, वहां हमने एक हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी का नाम तो
2: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: से सुनने को मिल जाए।
1: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: आज वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। आज आयरलैंड की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, दो T20 मैचेस की सीरीज में करना पड़ा था हार का सामना, वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। जापानी खिलाड़ी को हराकर US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, भारत को लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उम्मीदें। भुवनेश्वर में चल रही इंटरस्टेट एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने रचा इतिहास, संजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, सरकार ने किया ऐलान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: खबरें।
1: पुरी जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। भक्तों के सुरक्षित और सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन इंतजाम पूरे, 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती। स्नान पूर्णिमा से पहले ही पुरी में देश और दुनिया से भक्तों का आना जारी, तो वहीं शहर भर में भक्तिमय हुआ माहौल। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान मंडप पर लाया जाता है। 108 घड़ों के सुगंधित और पवित्र जल से कराया जाता है स्नान। स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं भगवान। इस दौरान उन्हें बुखार आता है और भक्त अलारनाथ मंदिर में करते हैं दर्शन। महाकाल की नगरी उज्जैन से बाबा के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, जोरों पर उज्जैन भव्य और दिव्य सिंहस्थ 2028 की तैयारियां। सिंहस्थ 2028 का संकल्प कार्यशाला का शानदार शुभारंभ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे बड़े धार्मिक मेले पर किया मंथन। सड़क रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से चल रहा है काम, सिंहस्थ 2028 में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के अनुमान। सभी मार्गों का चौड़ीकरण, नए पुल घाटों का निर्माण कार्य जारी, सिंहस्थ 2028 को भव्य सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का लक्ष्य। दिव्य मेले से पहले शहर के सभी मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार, तो वहीं भक्तों की सभी सुविधाओं का ध्यान में रखा जाएगा और आयोजन की तैयारी की जाएगी। चार धाम यात्रा में बना हुआ है यात्रियों का उत्साह, 40,50,000 से ज्यादा भक्त आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या 13,40,000 के पार, एक दिन में पहुंच रहे 21,000 से ज्यादा भक्त। श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा, अब तक 1,51,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने की मॉक ड्रिल, अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी, 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा, सुरक्षा बल लगातार परख रहे हैं तैयारियां। हरिद्वार में दधीची अंगदान संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजन, हजारों लोगों ने एक साथ अंगदान का संकल्प लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरे गायत्री परिवार को बधाई का पात्र। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का होगा आयोजन, भगवान राम और रावण के बीच के कई संवाद और ऐसी घटनाएं और दृश्य दिखाए जाएंगे जो शायद लोगों को कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में आयोजित भजन संध्या, एक शाम भगवान शिव के नाम में शामिल हुए, सीएम तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार का किया ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पटियाला में चल रहा है माता काली के मंदिर का निर्माण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हरित लोकसभा अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा। हरित लोकसभा पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख जन भागीदारी अभियान। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रतियोगियों के लिए आई गुड न्यूज, 28 जून से चलेंगी 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। समस्तीपुर मंडल करेगा मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, पूर्णिया, कोट और सुपौल से पाटलिपुत्र के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन, 65,000 से ज्यादा पदों के लिए होनी है परीक्षा। भुवनेश्वर में चल रही इंटरस्टेट एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में एनसीसी सोजन ने रचा इतिहास, तो वहीं अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। सर्वेश कोश्यारी ने पुरुष हाई जंप में जीता गोल्ड, 2.31 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर रचा इतिहास, बने नए राष्ट्रीय चैंपियन। 400 मीटर हर्डल रेस में तमिलनाडु की विथ्या रामराम ने बाजी मारी, 56.07 सेकेंड्स में पूरा किया रेस, तो वहीं एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में बनाया नया इतिहास, डिस्क थ्रो में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदकों पर हरियाणा की बेटियों ने कब्जा किया। बैतूल के कुकरू हिल स्टेशन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गांव वालों के साथ किया भोजन, समस्या पर बात की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नोएडा अथॉरिटी के लिए नया मुख्यालय का उद्घाटन, तो वहीं करीब 6 एकड़ में फैला है ये परिसर। पर्याप्त पार्किंग, आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है दफ्तर, निर्माण कार्य में करीब 390 करोड़ रुपए की आई है लागत। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। ग्रेटर नोएडा को मिली सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सौगात, स्टील अथॉरिटी के सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं हाथरस, हाथरस की जनता को देंगे 486 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। तीन दिनों के सेशल्स के दौरे पर राजधानी विक्टोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी ने पीएम मोदी की आगवानी की। सेशल्स पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम के दौरे पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों ने किया स्वागत। सेशल्स में पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से वेलकम किया गया, कलाकारों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। सेशल्स में होटल पहुंचने पर भी भारतीय संस्कृति में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, उतारी गई भव्य आरती, तो वहीं कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य। सेशल्स में पीएम ने नेशनल बॉटनिकल गार्डन का भी दौरा किया, दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए से भी मुलाकात की। 194 साल है जोनाथन नाम के इस कछुए की उम्र, 1832 में हुआ था जन्म, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ पिया नारियल पानी, एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल, तो वहीं हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। पीएम मोदी के सेशल्स की ये दूसरी यात्रा, इससे पहले 2015 में किया था सेशल्स का दौरा। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के बड़े रिहायशी मकानों में बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा चलाने को दी हरी झंडी, 500 वर्ग गज या उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले मकानों में कुछ तय शर्तों के साथ शुरू की जा सकेगी सुविधा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, इसके तहत मकान मालिक अपने घर के कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए किराए पर दे सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को शहर में एक आरामदायक और पारिवारिक माहौल का अनुभव देना है और साथ ही उससे मकान मालिकों को आय का अतिरिक्त साधन भी प्राप्त होगा। अगले साल की शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया, बोले भारत और अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Sir, Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: TalkSport presents The S-Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
5: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
6: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
5: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
6: Remember, around here, we use the F-Word.
5: Never the S-Word.
4: The S-Word, available now on TuneIn,
7: wherever you get your podcasts,
4: and on the S-Word YouTube channel.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि 9 अलग अलग ग्रहों के लिए आप कौन सी चीज का दान करें और कब दान करें। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से संबंधित अगर आपके जीवन में समस्या है तो अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का और कब दान किया जाए। सबसे पहले ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में समस्या दे रहे हों तो उनका दान करना उत्तम माना जाता है। आप जब ग्रहों का नाम लेकर के ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। और जब आप किसी ग्रह के लिए उस ग्रह के नाम से दान करते हैं तो उस ग्रह का असर जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कोई ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह है, आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम दे रहा है, आप उसी ग्रह के लिए दान करने लगेंगे तो उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जिस ग्रह का दान करना है सोच समझ कर करिए, उसी ग्रह के लिए सोच करके दान करिएगा जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण बन रहा है। अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लिए किस चीज का और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव के लिए अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो रविवार दिन में दान करना चाहिए। और सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं के आटे का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है उनको एक बार कुंडली दिखा करके सूर्य का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा का दान, चंद्रमा के लिए सोमवार की शाम को या सोमवार की रात को चंद्र ग्रह का नाम लेकर के दान करना चाहिए। और चंद्र देव के लिए, चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, चांदी का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारी रहती है, उनको एक बार सलाह लेकर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का दान, मंगल के लिए मंगलवार के दिन में अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और मंगल के लिए गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, तंदूर में पकाई गई चीजें जैसे बेकरी के बिस्किट वगैरह आते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। जिनको डर बहुत लगता हो, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो या जिनको बार बार चोट चपेट लगती हो, ऐसे लोग सलाह लेकर के नियमित रूप से मंगल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ या लाल फल भी मंगलवार को खिला सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए क्या दान करेंगे। बुध ग्रह के लिए अगर आपको दान करना है, उसको शांत करना है, तो बुधवार को दिन के समय में दान करिएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार दिन में दान करें और बुध के लिए हरा फल या हरी सब्जियों का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हरी मूंग का दान भी करते हैं। आप चाहें तो बुध के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, तो ऐसी दशा में आपको सलाह लेकर बुध संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान, बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पतिवार दिन में दान करिएगा और बृहस्पति के लिए केला, हल्दी, चने की दाल या गोल्ड, सोना या पीतल, इसके बने हुए चीजों का दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अगर अनुकूल करना चाहते हैं और बृहस्पति को शांत करना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या कैंसर जैसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है तो इलाज चलने दीजिए, साथ में बृहस्पति ग्रह का दान नियमित रूप से करते रहिए। शुक्र का दान, शुक्र के लिए शुक्रवार की शाम को दान करना चाहिए शुक्र की वस्तुओं का। इसके लिए सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, सुगंध, दही, इसका दान आप कर सकते हैं। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे लोग शुक्रवार को अगर दही का नियमित रूप से दान करें तो उनकी ये मुश्किल समाप्त होगी, शुक्र के कष्ट जीवन से कम होंगे। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि देव के लिए अगर आपको दान करना है तो शनिवार की शाम को शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनि देव के क्रोध को शांत करने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए काला चना, काली उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें। आप चाहें तो शनि देव को शांत करने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके रोजगार में, खास तौर से नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव आता है, आपकी नौकरी में बार बार समस्या आती है, तो आप सलाह लेकर के शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु का दान, राहु के लिए शनिवार को मिश्रित अनाज का, चार पांच तरह की दालें मिला लें, उसका दान करें। पक्षियों को अगर आप दाना भी डालें, राहु से संबंधित पीड़ा कम होगी, राहु से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। केतु का दान, केतु के लिए मंगलवार को धर्म स्थान में जाकर सेवा करिएगा। कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, सुबह जाके सफाई कराइए, रात में मंदिर बंद होते समय सफाई कर लें, वहां से गंदगी हटा दें, झाड़ू बहारू कर लें। अगर ऐसा आप हर मंगलवार के मंगलवार करें, केतु की पीड़ा कम होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध ये देना भी, खिलाना भी केतु की पीड़ा को कम कर देता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, सेहत में कोई गंभीर दिक्कत आ गई है, तो दोनों समय चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। अगर चंद्रशेखराष्टक पढ़ पाना कठिन लगता हो तो आप मोबाइल पर लगाकर सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चीजें भूल जाती हैं, पढ़ाई में चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए एक ही स्थान रखिए। पढ़ने के स्थान के आसपास पढ़ाई के समय एक गिलास में या किसी पात्र में जल भरकर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: चौबीस में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: आज वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। आज आयरलैंड की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, 2 T20 मैचों की सीरीज में करना पड़ा था हार का सामना, वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। जापानी खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, भारत को लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उम्मीदें। भुवनेश्वर में चल रही इंटरस्टेट एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने रचा इतिहास, अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, सरकार ने किया ऐलान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: नमस्कार।
6: तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें ग्रहों के लिए क्या और कब दान करना चाहिए और हमें किसे दान करना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, सेहत में कोई गंभीर दिक्कत आ गई है, तो दोनों समय चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। अगर चंद्रशेखराष्टक पढ़ पाना कठिन लगता हो तो आप मोबाइल पर लगाकर सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
6: और चलिए अब जान लेते हैं 28 जून 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
6: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है।
0: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से संबंधित अगर आपके जीवन में समस्या है तो अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का और कब दान किया जाए। सबसे पहले ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में समस्या दे रहे हों तो उनका दान करना उत्तम माना जाता है। आप जब ग्रहों का नाम लेकर के ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। और जब आप किसी ग्रह के लिए उस ग्रह के नाम से दान करते हैं तो उस ग्रह का असर जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कोई ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह है, आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम दे रहा है, आप उसी ग्रह के लिए दान करने लगेंगे तो उसका शुभ प्रभाव समाप्त तो हो जाएगा। इसीलिए जिस ग्रह का दान करना है सोच समझ कर करिए, उसी ग्रह के लिए सोच करके दान करिएगा जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण बन रहा है।
6: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
6: और आइए अब जानते हैं सूर्य चंद्रमा और मंगल के लिए क्या और कब दान करें।
0: अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लिए किस चीज का और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव के लिए अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो रविवार दिन में दान करना चाहिए। और सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं के आटे का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है उनको एक बार कुंडली दिखा करके सूर्य का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा का दान, चंद्रमा के लिए सोमवार की शाम को या सोमवार की रात को चंद्र ग्रह का नाम लेकर के दान करना चाहिए। और चंद्र देव के लिए, चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, चांदी का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारी रहती है, उनको एक बार सलाह लेकर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का दान, मंगल के लिए मंगलवार के दिन में अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और मंगल के लिए गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, तंदूर में पकाई गई चीजें जैसे बेकरी के बिस्किट वगैरह आते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। जिनको डर बहुत लगता हो, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो, या जिनको बार बार चोट चपेट लगती हो, ऐसे लोग सलाह लेकर के नियमित रूप से मंगल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ या लाल फल भी मंगलवार को खिला सकते हैं।
6: और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
6: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें आरती जी ने लिखा है, और आरती जी हमें मेल लिखती हैं फरीदाबाद हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1999, जन्म का समय शाम के 6:40, जन्म स्थान है फरीदाबाद। आरती जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आरती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का सही समय साल 2027 के सेकेंड हाफ में है। जून 27 से दिसंबर 27 का जो समय है वो समय आपके विवाह की स्थिति दिखा रहा है। चूंकि आपके मंगल की पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा, सोच समझ के ठंडे दिमाग से कुंडली मिला के शादी करिएगा। अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज, लगभग 5 से 6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
6: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मेल लिखती हैं अमेरिका से, यूएसए से। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1980। जन्म का समय सुबह के 9:40। जन्म का स्थान है देहरादून। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत समस्याएं चल रही हैं, हो सकता है कि मुझे नौकरी से हटा दिया जाए तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हैं और ये नौकरी आपकी जरूर बदलेगी, तो आप अभी से नौकरी बदलने का प्रयास शुरू कर दें, तब जाकर साल 2026 के अंत तक आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा पाएंगी। करियर में थोड़ी सी रुकावट है इस समय, इसलिए बड़े बुद्धिमानी के साथ नौकरी का प्रयास करें और वर्तमान नौकरी में शांति बनाए रखें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
6: और चलिए अब जानते हैं बुध, बृहस्पति और शुक्र के लिए हमें क्या चीजें हैं जो दान करनी चाहिए।
0: अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए क्या दान करेंगे। बुध ग्रह के लिए अगर आपको दान करना है, उसको शांत करना है, तो बुधवार को दिन के समय में दान करिएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार दिन में दान करें और बुध के लिए हरा फल या हरी सब्जियों का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हरी मूंग का दान भी करते हैं। आप चाहें तो बुध के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है तो ऐसी दशा में आपको सलाह लेकर बुध संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान, बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पतिवार दिन में दान करिएगा और बृहस्पति के लिए केला, हल्दी, चने की दाल या गोल्ड, सोना या पीतल, इसके बने हुए चीजों का दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अगर अनुकूल करना चाहते हैं और बृहस्पति को शांत करना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर मंदिर में जाकर अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या कैंसर जैसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है तो इलाज चलने दीजिए, साथ में बृहस्पति ग्रह का दान नियमित रूप से करते रहिए। शुक्र का दान, शुक्र के लिए शुक्रवार की शाम को दान करना चाहिए शुक्र की वस्तुओं का। इसके लिए सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, सुगंध, दही, इसका दान आप कर सकते हैं। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे लोग शुक्रवार को अगर दही का नियमित रूप से दान करें तो उनकी ये मुश्किल समाप्त होगी, शुक्र के कष्ट जीवन से कम होंगे।
6: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
6: और आइए अब जानते हैं शनि, राहु और केतु के लिए क्या और कब हमें दान करना चाहिए।

0: आती है तो आप सलाह लेकर के शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु का दान, राहु के लिए शनिवार को मिश्रित अनाज का 4-5 तरह की दालें मिला लें, उसका दान करें। पक्षियों को अगर आप दाना भी डालें, राहु से संबंधित पीड़ा कम होगी, राहु से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। केतु का दान, केतु के लिए मंगलवार को धर्म स्थान में जाकर सेवा करिएगा। कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, सुबह जाके सफाई कराइए, रात में मंदिर बंद होते समय सफाई कर लें, वहां से गंदगी हटा दें, झाड़ू बहारू कर लें। अगर ऐसा आप हर मंगलवार के मंगलवार करें, केतु की पीड़ा कम होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध ये देना भी, खिलाना भी केतु की पीड़ा को कम कर देता है।
1: और गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी,

अगला प्रश्न कपिल गुप्ता ने हमें लिखा है और कपिल गुप्ता जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 2012, जन्म का समय शाम के 5:55, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता।

0: है, परेशान बहुत करता है, बार बार उसको चोट लगती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा पुत्र ठीक हो जाए। देखिए कपिल जी, सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में शिक्षा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा 2027 के मार्च तक। 2027 के मार्च के बाद से इनकी स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। साइकिल चलाते समय, खेलते कूदते समय चोट की संभावनाएं बनती हैं और ये संभावनाएं ज्यादातर दिसंबर 2026 तक दिखाई दे रही हैं। तो आप ऐसा करें, एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को सवेरे इनके गले में पहना दें और इनकी माता या पिता में से कोई भी इनके कल्याण के लिए, इनकी उन्नति के लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका लेने वाले हैं। तो पंडित जी, आज का अंतिम और चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न टीना जी ने हमें लिखा है और टीना हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1990। जन्म का समय रात के 8:40। जन्म का स्थान है कोलकाता। टीना कह रही हैं कि मैं काफी समय से बेंगलोर में रहती हूं, नौकरी मेरी अच्छी चल रही है, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, क्या मेरे लिए विवाह करना अपनी इच्छा से उचित होगा क्योंकि माता पिता की सहमति नहीं है। टीना, आपकी कुंडली के हिसाब से और जो लड़के की कुंडली आपने भेजी है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है और आपका भी कोई इतना ज्यादा अटैचमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कह दूं कि आप शादी कर ही लीजिए। ज्योतिष के हिसाब से ये विवाह बहुत अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अगर बेहतर है इसको छोड़कर आगे बढ़ सकें जिस चक्कर में पिछले 3 साल से आप लगी हुई हैं। इस विवाह को करने के परिणाम अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने माता पिता की सहमति से लड़का अच्छा देखकर कुंडली मिला करके तब विवाह करिए और आपके विवाह का समय इस साल के आखिरी में शुरू हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि अगले साल आपकी शादी हो जाएगी। आप विवाह का सही निर्णय ले सकें, भावनात्मक गलतियां न करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, अधिक से अधिक माता दुर्गा की पूजा करें, ज्यादा ना भी कर पाए तो सुबह शाम दुर्गा चालीसा का ही अगर केवल पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा।
1: जिनका जन्मदिन 28 जून 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 28 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि पूजा स्थान पर मूर्तियां और चित्र कितने बड़े होने चाहिए। देखिए, पूजा स्थान पर अगर आप मूर्ति रखते हैं तो नियम ये कहता है कि 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। चित्र आप जितना भी बड़ा चाहें, 6 फीट का चाहें, चित्र आप कितना भी बड़ा देवी देवता का लगा सकते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 28 जून 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी कर्ज और स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं कितनी होती हैं, कैसी होती हैं। आज की गुडलक राशि है मेष। इनको हमेशा दुर्घटनाओं और चोट चपेट से बचना चाहिए। वाहन चलाने और खेल कूद में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हम एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चीजें भूल जाती हैं, पढ़ाई में चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए एक ही स्थान रखिए। पढ़ने के स्थान के आसपास पढ़ाई के समय एक गिलास में या किसी पात्र में जल भरकर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
1: फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक फॉर द 90s, Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्य अभिषेक दिवस की 353वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। यशवंत स्टेडियम और महल क्षेत्र में हजारों शिव भक्त जुटे, ढोल नगाड़ों की गूंज, भव्य शोभा यात्रा, जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक और पारंपरिक लाठी खेल ने पूरे शहर को शिवमय बना दिया। इस अवसर पर लोगों ने शिवाजी महाराज के शौर्य, स्वराज और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए

स्वराज का सपना, साहस की मिसाल और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी पहचान, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पराक्रम, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। आज उसी महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ पर नागपुर में आस्था, परंपरा और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। ढोल ताशों की गूंज, पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन और हजारों मराठियों का जोश, हर नजारे मानो शिवाजी महाराज के स्वराज के संकल्प को फिर से जीवंत कर रहा था। फूलों की मालाओं से सजी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, भगवा ध्वजों से सजी सड़कें, रंग बिरंगे पारंपरिक वेशभूषा में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ये नजारा केवल एक आयोजन का नहीं बल्कि उस विरासत का है जिसने स्वराज की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया था। महाराष्ट्र के नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक दिवस शिव राज्याभिषेक सोहला की 353वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह, अनुशासन और भव्यता के साथ मनाई गयी। शहर के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही मराठाओं का जुटना शुरू हो गया। हर उम्र के लोग इस गौरवशाली अवसर के साक्षी बनने पहुंचे। यशवंत स्टेडियम और महल क्षेत्र सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने। यहां सैकड़ों मराठी एक साथ एकत्र हुए। 100 से अधिक ढोल पथकों ने अपनी लयबद्ध प्रस्तुति से पूरे वातावरण को जोश से भर दिया। ताल की हर गूंज मानो शिवाजी महाराज के अदम्य साहस की कहानी सुना रही थी। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथों में भगवा ध्वज, पारंपरिक पोशाक और शिवाजी महाराज के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आरती, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया।

0: समारोह के दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं और स्मारकों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवाओं ने पारंपरिक लाठी खेल, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाओं का प्रदर्शन भी किया। इन प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि वीरता केवल इतिहास की कहानी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनमें राष्ट्रप्रेम, न्याय और धर्म के संस्कार डाले। इन्हीं मूल्यों के बल पर शिवाजी ने कठिन परिस्थितियों में स्वराज का सपना देखा और उसे साकार भी किया। कम उम्र में ही उन्होंने मुगलों और बीजापुर सल्तनत को चुनौती दी। अपने अद्भुत सैन्य रणनीति, कुशल प्रशासन और दूरदर्शी नेतृत्व के दम पर उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत आधार दिया। यही वजह है कि आज भी उन्हें भारत के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि 3 हफ्ते पहले 6 जून को भी महाराष्ट्र के रायगढ़ सहित तमाम जगहों पर शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह धूमधाम से मनाया गया था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शिवाजी के ऐतिहासिक राज्याभिषेक की तारीख 6 जून 1674 बताई जाती है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि को उनके राज्यारोहण के उत्सव की परंपरा है, जिसे आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। आज भी शिवाजी महाराज केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, उनका जीवन साहस, सुशासन, संगठन, समानता और राष्ट्रहित के मूल्यों की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि उनकी जयंती हो या राज्याभिषेक दिवस, हर अवसर पर लाखों लोग पूरे सम्मान और गर्व के साथ उन्हें याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जुबान पर हैं, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आम तौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशंस की सैर कराएंगे और साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान, जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, जैसे पतन दफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
8: somebody save me,
7: to timeless favorites,
8: and life is like a song,
7: and new discoveries,
8: so much more than a history. Wake up!
7: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: आज वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की होगी भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। आज आयरलैंड की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, दो T20 मैचेस की सीरीज में करना पड़ा था हार का सामना, वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। जापानी खिलाड़ी को हराकर

0: सेशेल्स के दौरे पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति दिवस समारोह में शिरकत की। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर। सरकार ने किया ऐलान।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम
0: पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। भक्तों के सुरक्षित और सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन इंतजाम पूरे। 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती। स्नान पूर्णिमा से पहले ही पूरी में देश और दुनिया से भक्तों का आना जारी। तो वहीं शहर भर में भक्तिमय हुआ माहौल। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान मंडप पर लाया जाता है। 108 घड़ों के सुगंधित और पवित्र जल से कराया जाता है स्नान। स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं भगवान। इस दौरान उन्हें बुखार आता है और भक्त अलारनाथ मंदिर में करते हैं दर्शन। महाकाल की नगरी उज्जैन से बाबा के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। जोरों पर उज्जैन में भव्य और दिव्य सिंहस्थ 2028 की तैयारियां। सिंहस्थ 2028 का संकल्प कार्यशाला का शानदार शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे बड़े धार्मिक मेले पर किया मंथन। सड़क रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से चल रहा है काम। सिंहस्थ 2028 में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के अनुमान। सभी मार्गों का चौड़ीकरण, नए पुल घाटों का निर्माण कार्य जारी। सिंहस्थ 2028 को भव्य सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का लक्ष्य। दिव्य मेले से पहले शहर के सभी मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। तो वहीं भक्तों की सभी सुविधाओं का ध्यान में रखा जाएगा और आयोजन की तैयारी की जाएगी। चार धाम यात्रा में बना हुआ है यात्रियों का उत्साह। 40,50,000 से ज्यादा भक्त आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या 13,40,000 के पार। एक दिन में पहुंच रहे 21,000 से ज्यादा भक्त। श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा। अब तक 1,51,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा। सुरक्षा बल लगातार पर रख रहे हैं तैयारियां। हरिद्वार में दधीची अंगदान संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजन। हजारों लोगों ने एक साथ अंगदान का संकल्प लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरे गायत्री परिवार को बधाई का पात्र। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का होगा आयोजन। भगवान राम और रावण के बीच के कई संवाद और ऐसी घटनाएं और दृश्य दिखाए जाएंगे जो शायद लोगों को कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में आयोजित भजन संध्या एक शाम भगवान शिव के नाम में शामिल हुए। सीएम तीर्थयात्रा योजना के विस्तार का किया ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पटियाला में चल रहा है माता काली के मंदिर का निर्माण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हरित लोकसभा अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा। हरित लोकसभा पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख जन भागीदारी अभियान। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रतियोगियों के लिए आई गुड न्यूज। 28 जून से चलेंगी 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। समस्तीपुर मंडल करेगा मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, पूर्णिया, कोट और सुपौल से पाटलिपुत्र के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन। 65,000 से ज्यादा पदों के लिए होनी है परीक्षा। भुवनेश्वर में चल रही इंटरस्टेट एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में एनसीसी सोजन ने रचा इतिहास, तो वहीं अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में जीता गोल्ड, 2.31 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर रचा इतिहास, बने नए राष्ट्रीय चैंपियन। 400 मीटर हर्डल रेस में तमिलनाडु की विथ्या रामराम ने बाजी मारी, 56.07 सेकेंड में पूरा किया रेस, तो वहीं एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में बनाया नया इतिहास, डिस्क थ्रो में स्वर्ण, रजत और कांस्य के तीनों पदकों पर हरियाणा की बेटियों ने कब्जा किया। बैतूल के कुकरू हिल स्टेशन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गांव वालों के साथ किया भोजन, समस्या पर बात की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नोएडा अथॉरिटी के लिए नया मुख्यालय का उद्घाटन, तो वहीं करीब 6 एकड़ में फैला है ये परिसर। पर्याप्त पार्किंग, आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है दफ्तर, निर्माण कार्य में करीब 390 करोड़ रुपए की आई है लागत। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। ग्रेटर नोएडा को मिली सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सौगात, स्टील अथॉरिटी के सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं हाथरस, हाथरस की जनता को देंगे 486 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। तीन दिनों के सेशल्स के दौरे पर राजधानी विक्टोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी ने पीएम मोदी की आगवानी की। सेशल्स पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम के दौरे पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों ने किया स्वागत। सेशल्स में पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से वेलकम किया गया, कलाकारों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। सेशल्स में होटल पहुंचने पर भी भारतीय संस्कृति में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, उतारी गई भव्य आरती, तो वहीं कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य। सेशल्स में पीएम ने नेशनल बॉटनिकल गार्डन का भी दौरा किया, दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए से भी मुलाकात की। 194 साल है जोनाथन नाम के इस कछुए की उम्र, 1832 में हुआ था जन्म, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ पिया नारियल पानी, एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल, तो वहीं हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। पीएम मोदी के सेशल्स की यह दूसरी यात्रा, इससे पहले 2015 में किया था सेशल्स का दौरा। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के बड़े रिहायशी मकानों में बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा चलाने को दी हरी झंडी, 500 वर्ग गज या उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले मकानों में कुछ तय शर्तों के साथ शुरू की जा सकेगी सुविधा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, इसके तहत मकान मालिक अपने घर के कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए किराए पर दे सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को शहर में एक आरामदायक और पारिवारिक माहौल का अनुभव देना है और साथ ही उससे मकान मालिकों को आय का अतिरिक्त साधन भी प्राप्त होगा। अगले साल की शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया, बोले भारत और अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, नॉन एसी लोकल ट्रेन्स का एसी लोकल सेवाओं में बदला जाएगा। 29 जून सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल बनेंगी एसी ट्रेन। एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी 120। मेन लाइन पर एसी लोकल सेवाएं 80 से बढ़कर हो जाएंगी 92। हार्बर लाइन पर 28 एसी लोकल ट्रेन का संचालन रहेगा जारी। टिटवाला कल्याण ठाणे घाटकोपर कुरला सीएसएमटी रूट को लाभ। सेंट्रल रेलवे की शानदार पहल से लाखों पैसेंजर्स को होगा फायदा। सुबह शाम पीक आवर्स में भी कई नई एसी सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। लोकल यात्रियों को मिलेगी और ज्यादा सुगम आरामदायक यात्रा। आर्थिक मोर्चे प्रदेश के लिए आई गुड न्यूज। 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार 96.30 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद 672 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले सप्ताह सोने के भंडार के मूल्य में 411 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड को मिली बागवानी से जुड़ी गई कई परियोजनाओं की सौगात। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 46 करोड़ 32 लाख में तैयार 9 योजनाओं का उद्घाटन किया। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। 323.34 करोड़ के 32 विकास कार्यों की रखी आधारशिला। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई बिना गुना रुतिनाई पैसेंजर मेमू को हरी झंडी। तो वहीं स्थानीय लोगों और आने जाने में होगी सहूलियत। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का मौका। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए मंगाए आवेदन। ओडिशा में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने वाली गुड न्यूज आई सामने। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गोईज प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया। दिल्ली में आज से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का होगा आयोजन। ग्रामीण विकास योजनाओं की होगी समीक्षा। भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा रोडमैप। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने भारत में तेज की गतिविधियां। प्रभजीत सिंह को बनाया गया भारत में कंपनी का प्रबंध निदेशक। ओपनएआई के लिए कंज्यूमर ग्रोथ एंटरप्राइज अडॉप्शन पार्टनरशिप रेगुलेटरी मामलों और ऑपरेशंस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभजीत सिंह। गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज हवाओं का जताया अनुमान। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद। शाम तक गरज के साथ बारिश की संभावना। तेज सतही हवाएं चलने के आसार। अगले 2 से 3 दिनों में तेज होंगी मानसूनी गतिविधियां। मौसम वैज्ञानिकों का दावा 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा मानसून का असर। बढ़ेगा बारिश का दायरा। तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट की संभावना। असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल। इस साल जापान में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। एएफआई की ओर से की गई पुष्टि। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में किया जाएगा एशियाई गेम्स का आयोजन। गोल्ड मेडल बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला। लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा रोमांचक मैच। सेमीफाइनल में एंट्री के लिए भारत का ये मैच जीतना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिलने पर मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट, लेकिन हार तोड़ सकती है सेमीफाइनल का सपना। ये करो या मरो के इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का जोश हाई है। 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरे उत्साह में दिखा भारत। एफआईएच प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी मात दी। हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार हराया। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक, राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने किए गोल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसकर ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को बताया अविश्वसनीय। आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन की जताई उम्मीद। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा मिस्र। ईरान के साथ साथ 1-1 के ड्रॉ के साथ 5 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज में दूसरे नंबर पर रहा। दो महीने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू। पोरबंदर एयरपोर्ट पर गुजरात के मंत्री अर्जुन मोडवडिया ने स्वागत किया। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा श्रीनगर का सुहाना मौसम। छुट्टियां मनाने श्रीनगर पहुंच रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेते हुए दिखे सैलानी। श्रीनगर के सुहाने मौसम में खुश नजर आए पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ने से कई जगहों के एक्सप्लोर होने की जगी आस। मनमोहक नजारों वाली शोपियां की पीर की गली को पर्यटकों का इंतजार। लद्दाख के नेमू इलाके को मिली नवीनीकृत महिला सशक्तिकरण केंद्र की सौगात। भारतीय सेना की ओर से कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। स्थानीय महिलाओं को मिला कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का बेहतर मंच। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार। फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के पहले दिन कमाए 15 करोड़। फिल्म ने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में कमाए थे 3 करोड़ 75 लाख। अहमद खान ने किया है वेलकम टू द जंगल का निर्देशन। फिल्म में दिखेंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल समेत 30 से ज्यादा मशहूर एक्टर्स। फिल्म कॉकटेल 2 ने 8वें दिन की 4 करोड़ की कमाई, तो वहीं 74 करोड़ से ज्यादा हुई होमी अजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई। 41 साल के हुए अभिनेता अर्जुन कपूर ने कल 26 जून को धूमधाम से मनाया अपना 41वां जन्मदिन। अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर बहन अंशुला ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। अंशुला ने पोस्ट में अर्जुन कपूर के बचपन की कई तस्वीरें साझा की। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर जारी किया गया। 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी फिल्म। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद मिर्जापुर द मूवी का टीजर जारी किया गया। 4 सितंबर को फिल्म रिलीज करने की तैयारी। फिल्म मिर्जापुर में बबलू पंडित के किरदार में दिखेंगे वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु समेत दिखेंगे कई कलाकार। गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट में हुई एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर की शादी। चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश समेत कई सितारे हुए शामिल। अवंतिका सुंदर की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में एक साथ लंच करते हुए दिखे अनिल कपूर, वेंकटेश और जैकी श्रॉफ। अमेरिका में अगले महीने आयोजित होगी विशाल ऑक्शन। नीलामी में हॉलीवुड और म्यूजिक से जुड़ी कई खास चीजें शामिल होंगी। ऑक्शन में कई यूनिक चीजें भी होंगी जिनमें विकेड विच की टोपी और जॉन लेनन के हाथ से लिखे हुए गाने के बोल भी शामिल। सबसे खास चीजों में से एक है एक्टर मार्क हैमिल का स्टार वॉर्स एपिसोड 5 में इस्तेमाल किया गया ल्यूक स्काईवॉकर का लाइटसेबर। द विज़ार्ड ऑफ ओज़ फिल्म ने मार्गरेट हैमिल्टन द्वारा पहनी गई विकेट विच ऑफ द वेस्ट की टोपी की शुरुआती बोली करीब 95 लाख है। हेरिटेज ऑक्शंस न्यूयॉर्क में दिखाई गई हॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट सिग्नेचर ऑक्शन की खास चीजों की झलक 13 से 17 जुलाई के बीच होगी नीलामी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब खबर चाइना से है। चाइना की राजधानी बीजिंग में अब कमल का दुर्लभ फूल देखने को मिला है। आपको बता दें कमल का फूल वैसे तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन बीजिंग में खिला ये फूल दुर्लभ क्यों माना जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: आपने देश दुनिया में बहुत सी जगहों पर नदी, तालाबों और झीलों में कमल खिले देखे होंगे, लेकिन कमल के इस फूल की तो बात ही निराली है। दावा किया गया है कि इस कमल की पैदाइश 800 साल पुराने बीज से हुई है और इसीलिए ये कमल का फूल बेहद खास है। यहाँ पर वनस्पति वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक दल ने लंबे समय से संरक्षित किए गए बीज से इस अनोखे फूल को उगाने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्हें 2 साल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जो अब इस फूल के रूप में रंग लाई है। ये तस्वीरें बीजिंग के लियान हॉश पार्क में चल रहे लोटस कल्चरल फेस्टिवल की है। कमल के फूलों के इस उत्सव में 380 किस्मों के 7000 से ज्यादा कमल के फूलों की नुमाइश की जा रही है। इतना ही नहीं, यह

0: पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
2: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
3: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
2: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
3: Remember, around here, we use the F Word.
2: Never the S Word.
1: The S Word, available now on TuneIn,
4: wherever you get your podcasts,
1: and on the S Word YouTube channel.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: सूर्य के लिए किस समय दान करना उत्तम होता है? क्या शनि के लिए रात में दान किया जाता है? क्या मंगल के लिए दोपहर में दान करने से फायदा होता है? ग्रहों

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: आज विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। आज आयरलैंड की हार का बदला लेने के लिए उतरेगी टीम इंडिया, दो T20 मैचों की सीरीज में करना पड़ा था हार का सामना, वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। जापानीज खिलाड़ी को हराकर US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, भारत को लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उम्मीदें। सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत की, तो वहीं द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, सरकार ने किया ऐलान।

का सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था। इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल उसी अंदाज में, छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी यानी डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: और अब खबर उन खास कुत्तों की जिन पर अमेरिका की पुलिस भी भरोसा करती है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप और आजादी के 250वें साल के जश्न की सुरक्षा के लिए कुत्तों के खास दस्ते को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने पर वर्जीनिया में उन्हें सम्मानित भी किया गया है, देखिए रिपोर्ट।
7: ये कुत्ते कमाल के हैं, ये कुत्ते बड़े काम के हैं, ये विस्फोटकों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं, हर खतरे को भांप लेने में माहिर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में अब ऐसे 6 कुत्तों की K9 टीम को खास प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, ताकि खास मौकों पर सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें अमेरिका की नेशनल K9 अकेडमी की हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को कामकाज के लिए सर्टिफिकेट दिए गए।
8: So today was a graduation for both the K9 and myself. We went through a 3-month process, 7 days a week, 24 hours on, and we did a lot of training. And today we graduated.
7: इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की ओर से विस्फोटकों और दूसरी खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस सिलसिले में इन्हें खास गंध को पहचानने की तकनीक सिखाई गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया है, ताकि बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित हो सके।
9: I think one of the really important things is These dogs are part of a larger security apparatus. So for these types of events, the dogs are there as kind of that initial detection phase, but they're also partnered up with, like I said, bomb technicians and explosive specialists. So once the dog alerts, that now becomes a bomb technician problem because it's a suspicious package. And so then we're going to have to back the dog out and everybody else out, and then the bomb techs can come in and do that work. But it, to me, it's just important to recognize that this is just one piece of a larger security apparatus that goes to secure these events that we often don't know.
7: फिलहाल इन कुत्तों में से पांच को अलग अलग शहरों में फीफा वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जबकि एक को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर माउंट रशमोर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले जांच पड़ताल में मदद के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: आज वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की होगी भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। आज आयरलैंड की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, दो T20 मैचेस की सीरीज में करना पड़ा था हार का सामना, वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। जापानीज खिलाड़ी को हराकर US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, भारत को लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उम्मीद। सेशेल्स के दौरे पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया, राष्ट्र दिवस समारोह में शिरकत की, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लव कुश का भव्य मंदिर, सरकार ने किया ऐलान।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि 9 अलग अलग ग्रहों के लिए आप कौन सी चीज का दान करें और कब दान करें। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से संबंधित अगर आपके जीवन में समस्या है तो अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का और कब दान किया जाए। सबसे पहले ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में समस्या दे रहे हों तो उनका दान करना उत्तम माना जाता है। आप जब ग्रहों का नाम लेकर के ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। और जब आप किसी ग्रह के लिए उस ग्रह के नाम से दान करते हैं तो उस ग्रह का असर जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कोई ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह है, आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम दे रहा है, आप उसी ग्रह के लिए दान करने लगेंगे तो उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जिस ग्रह का दान करना है सोच समझ कर करिए, उसी ग्रह के लिए सोच करके दान करिएगा जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण बन रहा है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लिए किस चीज का और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव के लिए अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो रविवार दिन में दान करना चाहिए, और सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं के आटे का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है उनको एक बार कुंडली दिखा करके सूर्य का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा का दान, चंद्रमा के लिए सोमवार की शाम को या सोमवार की रात को चंद्र ग्रह का नाम लेकर के दान करना चाहिए, और चंद्र देव के लिए चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, चांदी का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारी रहती है, उनको एक बार सलाह लेकर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का दान, मंगल के लिए मंगलवार के दिन में अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा, और मंगल के लिए गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, तंदूर में पकाई गई चीजें जैसे बेकरी के बिस्किट वगैरह आते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। जिनको डर बहुत लगता हो, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो, या जिनको बार बार चोट चपेट लगती हो, ऐसे लोग सलाह लेकर के नियमित रूप से मंगल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ या लाल फल भी मंगलवार को खिला सकते हैं। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए क्या दान करेंगे। बुध ग्रह के लिए अगर आपको दान करना है, उसको शांत करना है, तो बुधवार को दिन के समय में दान करिएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार दिन में दान करें और बुध के लिए हरा फल या हरी सब्जियों का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हरी मूंग का दान भी करते हैं। आप चाहें तो बुध के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, तो ऐसी दशा में आपको सलाह लेकर बुध संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान, बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पतिवार दिन में दान करिएगा और बृहस्पति के लिए केला, हल्दी, चने की दाल या गोल्ड, सोना या पीतल, इसके बने हुए चीजों का दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अगर अनुकूल करना चाहते हैं और बृहस्पति को शांत करना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या कैंसर जैसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है तो इलाज चलने दीजिए, साथ में बृहस्पति ग्रह का दान नियमित रूप से करते रहिए। शुक्र का दान, शुक्र के लिए शुक्रवार की शाम को दान करना चाहिए शुक्र की वस्तुओं का। इसके लिए सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, सुगंध, दही, इसका दान आप कर सकते हैं। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे लोग शुक्रवार को अगर दही का नियमित रूप से दान करें तो उनकी ये मुश्किल समाप्त होगी, शुक्र के कष्ट जीवन से कम होंगे। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं शनि की। देखिए शनि देव के लिए अगर आपको दान करना है तो शनिवार की शाम को शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनि देव के क्रोध को शांत करने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए काला चना, काली उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें। आप चाहें तो शनि देव को शांत करने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके रोजगार में, खास तौर से नौकरी में, बार बार उतार चढ़ाव आता है, आपकी नौकरी में बार बार समस्या आती है, तो आप सलाह लेकर के शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु का दान, राहु के लिए शनिवार को मिश्रित अनाज का, 4-5 तरह की दालें मिला लें, उसका दान करें। पक्षियों को अगर आप दाना भी डालें, राहु से संबंधित पीड़ा कम होगी, राहु से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। केतु का दान, केतु के लिए मंगलवार को धर्म स्थान में जाकर सेवा करिएगा। कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, सुबह जाके सफाई कराइए, रात में मंदिर बंद होते समय सफाई कर लें, वहां से गंदगी हटा दें, झाड़ू बहारू कर लें। अगर ऐसा आप हर मंगलवार के मंगलवार करें, केतु की पीड़ा कम होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध ये देना भी, खिलाना भी केतु की पीड़ा को कम कर देता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, सेहत में कोई गंभीर दिक्कत आ गई है, तो दोनों समय चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। अगर चंद्रशेखराष्टक पढ़ पाना कठिन लगता हो तो आप मोबाइल पर लगाकर सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा, गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चीजें भूल जाती हैं, पढ़ाई में चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए एक ही स्थान रखिए। पढ़ने के स्थान के आसपास पढ़ाई के समय एक गिलास में या किसी पात्र में जल भरकर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

हनुमान जी महाराज कथा के रसिक हैं, किसी ने पूछा अच्छा कथा सुनने से होता क्या? ठीक है आप कह रहे हैं कथा सुननी चाहिए, पर कथा सुनने से होता क्या? हमने एक व्यक्ति से पूछा तुम बताओ घाटा क्या, कथा सुनने से होता क्या? अरे तुम ही बताओ घाटा क्या। भैया कथा जीवन की वृथा मिटा देती है। हाँ, जो कथा में बैठता उसकी वृथा मिट जाती। एक बात और, एक होता चरणामृत, एक होता रसामृत, एक होता दुग्धामृत, लेकिन कथा है कथामृत। चरणामृत को तो मुख से पिया जाता, भगवान की कथा को तो कानों से पिया जाता है। अच्छा महाराज कथा सुनने से क्या होता? विचारों की शुद्धि। और किसी के विचार सुधर जाए वो आदमी सुधर जाए। खेल तो पूरा विचारों का ही है, और विचार दिमाग में आते हैं, और दिमाग के से ही जुड़े हुए तार हैं कान, और कानों से ही कथा सुनी जाती। जो जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके दिमाग के विचार बदल जाते हैं, जिनके विचार बदल जाते उनकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों सुधर जाती है। इसलिए परवणी के पागलों, हमें जिंदगी में एक एक घड़ी

इंसानियत जरूर सिखाना, संस्कार जरूर देना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई तो स्कूलों में मिल जाएगी, संस्कार की पढ़ाई तो आपको देनी पड़ेगी। और जो माता पिता अपने बेटा और बेटी की हाथ पकड़कर मंगलवार को मंदिर ले जाते, जो माता पिता अपने बेटा और बेटी का हाथ पकड़कर कथा में ले आते, उनके बेटा और बेटी बुढ़ापे में उन्हें भी भगवान के दर ले जाते। और देखो भैया, ये कर्मों की खेती है, जैसा करोगे सो वैसा पाओगे, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसा कर्म करोगे। माई बाप, इसलिए कथा में बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कि प्रभु के हो जाओ। एक पति पत्नी रहते थे, पत्नी बड़ी चतुर, पति बड़ा विचित्र, कभी भगवान की कथा नहीं सुने। पत्नी ने कहा, हमेशा तुम लेना देना की बातें करते हो, कभी कथा सुन लिया करो। कथा सुना? पत्नी ने बार बार कहा। अच्छा, पत्नी का डर तो सबको होता है, पत्नी का डर सबको होता है, होना भी चाहिए, जरूरी भी है। पत्नी के डर के मारे बेचारा कथा सुनने गया। अमीर आदमी, नगर सेठ, कथा में जाके जैसे ही बैठा, लोगों ने देखा, आइए आइए आइए, तब तक दूसरे बोले बैठिए, अजय तो हमेशा पाप ही करते रहे, पैसा का ही काम करते रहे। कथा में इन्होंने एक कोना सोफा पाया और कूलर की हवा, ऐसी नींद आई कि पूरी कथा कब हो गई पता ही नहीं चला। बगल वाले ने धक्का दिया, उठो, क्या बात है, हो गई कथा। तब तक लोग बोले जाइए। घर आए, पत्नी ने पूछा, कथा सुनी? बोले सुनी। बोले क्या सुना? तो इन्होंने जो सुना था वही बता दिया, आइए बैठिए जाइए। हमने तो तीन ही चीजें सुनी कथा में, आइए सेठ जी बैठिए, सेठ जी जाइए। पत्नी ने कहा, भाड़ में गया, इनसे कुछ बोलेंगे तो ये कल से जाना ही बंद कर देंगे। पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात सुनी आपने, अब एक काम करो, माला ले लो, इसी का जाप करो, आइए बैठिए जाइए। और ये भी इतना खतरनाक, इसने ली माला, इसे लगा यही मंत्र है, कभी सुनी थी नहीं कथा, धर्म जानता नहीं था, मंत्र जानता नहीं था, यही जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात का अंधेरा, नींद से आए ना, नींद नहीं आई उस दिन, रात को बैठ गया बिस्तर पर, अब रहा होगा परभणी का, रहा होगा, अब क्या ठिकाना। वैसे हमें नाम तो पता चल गया, चंगीलाल। बैठा बिस्तर पर, नींद आ नहीं रही थी, माला ली इसने, वही मंत्र जपने लगा, आइए सेठ जी बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए। अब बीच बीच में थक जाए, आइए बैठिए जाइए। उसी दिन किस्मत की बात, घर पे चोर आए, अंधेरा, अंधा खुक अंधेरा, चोर भीतर घुसे, तब तक ये आंखें बंद करके बोला, आइए। चोरों को लगा पकड़ गए, पहचान लिया, चोर भागने लगा, तब तक ये दूसरा बोले, बैठिए। चोर को लगा, हे भगवान, अब तो ये सुबह राजा से कह देगा, हमारी गर्दन कट जाएगी, फांसी लग जाएगी, कहां से बिजुली में इस घर में घुस गए, ये तो जाग रहा है, इसने तो पहचान भी लिया, अब तो भाग जाना चाहिए, लेकिन भागे कहां, सुबह ये बताई देगा। तब तक सेठ जी बोले, जाइए। चोर रोता हुआ चरणों में आ पड़ा, ये डर गए, कौन है कौन है कौन है, इन्हें लगा मंत्र सिद्ध हो गया, किसी ने चरण रात को पकड़ लिए तो इनका दिमाग खराब, लगता है मंत्र सिद्ध हो गया। जल्दी से दिया सलाई ली, पुराना जमाना, लालटेन को जलाया, मुंह को देखा, कौन हो? हुजूर हम चोर हैं। अब आप ऐसा मत कहो कि हम कौन हैं, आप तो सब जानते हो, अब एक एक कृपा करो, किसी को ना बताना, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, आज धोखे से अब लौट के नहीं आएंगे, हमें क्षमा कर दो। शेठ जी बोले, जाओ। चला गया। पत्नी जागी, क्या बात है, शोर शराबा हो रहा। अरे बोले, क्या बताएं, तुमने जो मंत्र दिया था वो हम मंत्र जाप कर रहे थे, चोर पकड़ा गया, पूरी घटना बताई। पत्नी ने मुस्कुराकर बड़ी अद्भुत बात की, बोले देखो, साधारण सी बात, झूठी बात तुम कथा की लेकर आए, और तुम्हारी झूठी बात को पकड़ लेने से, कथा के तीन शब्द पकड़ लेने से, दुनिया का चोर चला गया और चोरी बच गई। अगर तुम वास्तविक बात कथा की पकड़ लोगे तो तुम्हारा मन का चोर भी भाग जाएगा। ये जो मन में चोर है ये भी भाग जाएगा, लेकिन

हम लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा में अपने अपने मतलब की बात निकालते हैं। अभी हम कहने लगे जितने घुटना दर्द होते हैं खड़े हो जाएं, उनको हम मंत्र बताएंगे तुरंत। चुप हो जाओ, गुरु जी मंत्र बता रहे हैं। बगल में घुटना दर्द, हमारे तो बहुत दर्द होते हैं, तुरंत कहेंगे। हम अपने अपने मतलब की बात निकालते, कथा में मतलब की कुछ बात होती ही नहीं, कथा तो संपूर्ण मतलब की होती है। तो धन्य है वीर बजरंग बली, वो कथा सुनते। और कथा सुनने का लाभ क्या? विचार शुद्धि। विचार क्या है? विचार का संबंध है सिर से, और सिर में ही लगे दो कान। कान कितने हैं? बोलो बोलो बोलो, दो। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, भगवान ब्रह्मा जी कितने चतुर हैं, कान दो हैं, मुंह एक है। मानो भगवान कह रहे ज्यादा सुनो बोलो कम, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं सुनते कम, उल्टे ही हैं। भगवान कितने चतुर हैं, उन्होंने दो कान दिए, ज्यादा सुनो बोलो कम। सुनो क्या?

विचार मन में आते, अच्छा विचार बदलते रहते हैं। जब तक तुम कथा में बैठे रहोगे विचार विचार एकदम शुद्ध होंगे। हमें एक किसी के मुंह से हमने बात सुनी थी, एक आदमी जून के महीना में, गर्मी के महीना में चला जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे टिक गया, रुक गया। सामने में एक मकान था, मकान ने वाले मालिक ने दरवाजा खोला, अरे अरे कौन हो भैया, हम बगल के गांव के हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, पुराना जमाना, अच्छा ठीक है, पानी पियोगे? मकान मालिक ने पूछा, इसने इशारा किया, हाँ पियेंगे, ठीक रुको अभी लाते हैं पानी। वो पानी लेने गया अंदर, ये खड़ा हो गया, इसने कहा कितना अच्छा आदमी, देखो विचार आया इसके मन में, कितना अच्छा आदमी, हमने कहा नहीं, ये स्वतः ही उपत करके पूछ रहा क्या पानी पियोगे, बड़ा सज्जन आदमी है, मन में विचार आया। लेकिन 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, वो आया ही नहीं। तो इनका जो विचार अच्छा था वो बदल गया, यार कितना बेकार आदमी है, कह रहा था हम पानी ला रहे, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, इससे अच्छा मना कर देता। देखो विचार बदल गया। लेकिन तब तक दरवाजा खुला, हाथ में जग लेकर गिलास लेकर वो सज्जन आया, मकान मालिक, है क्षमा करना हमें देरी हो गई पानी लाने में, हमने सोचा आप खड़े हो धूप में, पानी क्या पिलाना, हमारे मन में आया आपको शरबत पिला दिया जाए। अब लो हम कुछ और सोच रहे थे, ये व्यक्ति कुछ और करके आया, तो जिस आदमी के मन में ये गलत विचार आया था उसका मन तुरंत बदल गया, अरे यार बताओ हम गलत सोच रहे थे, कितना अच्छा आदमी, हम पानी की सोच रहे, ये तो शरबत ले आया। उसने गिलास में डाला, गिलास पीने को दिया, जैसे ही पिया तो जैसे ही पिया सो उसमें शक्कर नहीं, तो पीने वाले को लगा कि मूर्ख ही मिल गया, कह रहा था शरबत पिलाएंगे शक्कर तो है ही नहीं, काहे का शरबत। लेकिन कहा विचार बदला, तब तक वो व्यक्ति बोला हाँ हाँ अरे अरे सॉरी शक्कर रह गई, हम पुड़िया लेकर आए, हमने सोचा कहीं आपको शुगर ना हो तो अपने मतलब की डाल लो। अब इसका फिर विचार बदल गया, कितना अच्छा आदमी, कितने सोच समझ करके चलता है। तो हम लोगों का विचार एक एक मिनट में बदलता है, यही विचार परमात्मा के चरणों में सदा बनाए रखने के लिए ही भगवान की कथा सुनना जरूरी है। तो विचार की शुद्धि दिमाग से, और भगवान ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग, क्या क्या दिया भगवान ने, दो चीजें हर इंसान को दी, एक दिल दिया एक दिमाग, और भगवान ने दोनों का काम बता दिया, दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ परमात्मा में, और हम लोगों ने उल्टा कर दिया। जितने भी आदमी हमें मिलते हैं हमारा तो दिल ही टूट गया, दिल ही टूट गया। अरे भाई तुम एक बात बताओ, ठटरी के भरे तुम्हें दिल लगाने को कहा किसने था? कई लोग मिलते हमारा तो दिल ही टूट गया, हमारा तो दिल ही टूट गया। अरे भाई तुम्हें दिल लगाने को कहा किसने था? भगवान ने दिल लगाने को कहा था क्या? एक व्यक्ति का पेट खराब हो गया, पेट एकदम रेसिंग चले, पेट खराब, आंखें भी डिस्टर्ब, वैद्य के पास डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट खराब आंखें भी खराब, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करो ये दो पुड़िया लो, ये पेट का चूरन है खा लेना ठीक हो जाएगा, ये आंखों का काजल है अंजन है इसे लगा लेना आंखें ठीक हो जाएंगी। वो पुड़िया लेकर आया, दवाई तो ठीक थी लेकिन एक गड़बड़ हो गई, क्या पुड़िया बदल गई, पेट का चूरन आंखों में लगा लिया, आंखों का अंजन पेट में खा लिया, परिणाम ये निकला कि जो पेट ठीक था वो पूरा खुल गया, आंखें जो थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रही थी पूरी तप गई, अब तो दिमाग टेंशन में डॉक्टर के पास गया कि ये क्या दवाई दे दी तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से, पहले तो कुछ ठीक ही था अब तो पानी भी नहीं टिकरा, पानी इधर से पियो पीछे से, आंखों से दिखना बंद हो गया, तुम्हारी दवाई डिस्टर्ब है। डॉक्टर बोला ऐसा हो नहीं सकता, दवाई तो हमने ठीक दी, पुड़िया दिखाओ कौन सी खाई, उसने निकाली ये हमने खाई है ये लगा, यारे बोले मूर्ख उल्टा कर दिया, खाने वाली लगा ली, लगाने वाली खा ली, जिले उल्टा हो गया। वही हम लोगों के साथ, परमात्मा ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग, दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए, हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग लगाते भगवान में है के नहीं, और दिल लगा रहे दुनिया वालों में, सो टूट रहा, अब टूटे नहीं तो क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों,
इसलिए हमारे प्रियजनों, भगवान की कथा से लाभ क्या? भगवान की कथा से विचार की शुद्धि होती है। अच्छा, लेकिन कथा भी सब

जो भगवान की कथा सुनते उनका दिल परमात्मा के चरणों में लग जाता, फिर जब भगवान के चरणों में दिल लग जाता मेरे प्रिय जनों, फिर उन्हें दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती। एक बात और, आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी, ट्रेन, अरे बोलो तो, देखी, बैठे हो। अच्छा, कभी टिकट कटा करके ट्रेन पर बैठ जाओ सीट पर और अपना मन ना लगे तो क्या ट्रेन चलना बंद हो जाती है? बोलो, मन लगे या ना लगे, ट्रेन तो मंजिल तक पहुंचाती ही है। बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, आके केवल बैठ जाओ, कथा राम तक पहुंचा करके ही मानेगी।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
3: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
19: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
20: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: पोरबंदर में दो महीने बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा फिर शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का किया स्वागत। आज वेमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है डेब्यू। भारत और आयरलैंड के बीच आज से शुरू हो रही है टी20 सीरीज।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा। जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
1: युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीनगन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया, और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है, और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंक को से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबाइलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धंसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है।

0: इंदौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
1: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
2: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाती है। Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी टैंक पर लगी तोप का साइज। कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागेगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा, साथ ही उसे नुकसान भी काफी ज्यादा उठाना पड़ेगा।
2: दुनिया के अंदर जो पावरफुल टैंक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो चैलेंजर 2 है, जर्मनी का है जो लेपर्ड 2, और इसी प्रकार अमेरिका इब्राहिम M1, और भारत का जो है वो T-90 टैंक है, और हमारे पास T-72 भी है, और अब विजेंद्रा बनाया है हमने। मगर टैंक की पहचान है कि वो किस प्रकार से गोले दाग सके जल्दी से जल्दी और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर पाए, तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में जो कैनन है उसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि कितनी दूर तक उसके गोले जा सकते हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि वो स्मूथ बोर है उसकी कैनन या नहीं है। मगर सच्चाई यह है कि टैंक की जो फायर पावर है वो दर्शाती है कि टैंक की ताकत कितनी है। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे अच्छे टैंक हैं, इब्राहिम M1 अमेरिका का, लेपर्ड 2 जर्मनी का, और चैलेंजर 2 UK का, और भारत का T-90, T-72 और विजेंद्रा।

0: टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चल सकता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है और कितने तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं, इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर करने में सक्षम हैं। अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। टैंक के दो हिस्से होते हैं, टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टरेट कहते हैं। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टरेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगी होती है, जिससे दुश्मनों से मुकाबला किया जाता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दुश्मन के रडार में आए बगैर मिशन को अंजाम तक पहुंचाए। खुला इलाका या रेगिस्तान में ये चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
1: जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास, वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पज होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नज़र को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रे से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजिशन ट्रेस करना चाहे तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिस गाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए।
0: युद्ध के मैदान में टैंक्स के लिए एंटी टैंक माइंस का एक बड़ा खतरा माना गया है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंक्स को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइंस से बचने के लिए माइंस प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
2: सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटी टैंक वेपन से भी खतरा होता है टैंक को, और दूसरा टैंक से एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है जो दुश्मन लगाता है बैटलफील्ड में, और उसको बचने के लिए क्या किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो कई तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रॉल्स लगती हैं टैंक के सामने, वो जो ट्रॉल्स हैं वो जब चलती हैं तो आगे अगर एंटी टैंक माइन लगी है उसको उखाड़ देती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मॉडर्न आधुनिक चीजें आ गई हैं, केमिकल रिएक्टिव केमिकल भी एक प्रकार छिड़का जाता है, जिसके कारण जो भी एंटी टैंक माइन आगे लगी हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। मॉडर्न तरीके काफी आ रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि जो माइंस हैं एंटी टैंक माइंस वो टैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटलफील्ड में। इसीलिए नए नए तरीके टैंक निकाले जाने हैं, जैसे कि ट्रॉल्स है वो कि एक प्रकार जो टैंक के आगे लगता है, जो अगर टैंक के आगे कोई माइन आती है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, रास्ते में से दूर कर दिया जाता है टैंक के। और इसी प्रकार कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होने से जो एंटी टैंक माइंस हैं वो पहले ही बस्ट हो जाती हैं टैंक के आने से पहले।
0: टैंक के क्रू मेंबर की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है, साथ ही इस पर एक्सप्लोजिव भी लगाया जाता है जो दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराते हैं। टैंक्स के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है, इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो।
1: टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है, और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता ये है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युद्ध में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
0: टैंक के मेन गन से एम्यूनेशन यानी गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर दाखिल न हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। ताकतवर टैंक्स की बेहतरीन खूबियों को समेटे है भारत का माउंटेन टैंक जोरावर। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल तो भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक चाहती है। जोरावर टैंक का वजन करीब 25 टन है। इसमें 105 मिलीमीटर कैलिबर की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो इसे हमलों से सुरक्षित रखता है। बेहतर मोबिलिटी के लिए इसमें कम से कम 30 HP टन का पावर टू वेट रखा गया है, यानी हर एक टन पर 30 horsepower की ताकत। जोरावर टैंक -10 degree से लेकर 42 degree की चढ़ान या ढलान पर चढ़ उतर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा।
3: तो ये एक बहुत ही आधुनिक मशीन है। इसके जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है इसमें, हम कहते हैं सी थ्रू आर्मर, जहां जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको बाहर का पूरा 360 डिग्री अवेयरनेस होगा। इसमें ड्रोन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं। इसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है ये हाई एंगल में भी फायर कर सकता है। तो इसमें बहुत से आधुनिक कैपेबिलिटीज इसमें बिल्ड की गई है। आप जो इसकी मोबिलिटी देखते हो, ये पावर पैक है, ये इसकी पावर टू वेट रेशो 30 से ज़्यादा है। इसमें रबर के ट्रैक्स हैं ताकि इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ हो। इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सैंड ड्यून भी चढ़ पाएगा, ये माउंटेन्स में भी हम इसको ले पाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में LNT प्लांट में जोरावर टैंक का जायजा लिया। ये भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है। साल 2024 में जोरावर का प्रोटो वर्जन दुनिया के सामने आया था और जोरावर का फिलहाल ट्रायल जारी है। डीआरडीओ के अनुसार अगले साल यानी 2027 तक भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए ये टैंक मिल जाएगा।
4: ये देखिए, यूजर ट्रायल्स यूजुअली समर ट्रायल्स रहते हैं, फिर विंटर ट्रायल्स रहते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी रहेंगे, फिर मेंटेनेंस ट्रायल्स रहते हैं, डीजीक्यूए ट्रायल्स रहते हैं। तो ये एक डेढ़ साल तो चलेंगे, उसके बाद फिर एक्विजिशन प्रोसेस शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-2.5 साल में ये फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल रेडी रहेगा इंडक्शन के लिए। सो 2027 में पहला टैंक इंडक्ट हो सकता है।
0: भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं, यहाँ सेना के लिए चुनौतियाँ काफी बड़ी हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना के पास भी अब लाइट वेट टैंक आने वाला है, जिससे माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल होगी। शुरुआत में सेना को 59 टैंक दिए जाएंगे, जिनकी संख्या 354 तक ले जाने की प्लानिंग है।
2: हैवी टैंक हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं चल सकते, और जिस प्रकार से आपके लद्दाख का एरिया है भारत के अंदर, वहां पर हम T-72 और T-90 जिसको हैवी टैंक बोलते हैं उनको लेके गए हैं, मगर वो इतनी जोरों से वहां नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ी इलाका है, उसके लिए लाइट टैंक चाहिए। तो लाइट टैंक का होना बहुत जरूरी है। लाइट टैंक है जो 25 टन और उससे कम हो, और वो एक प्रकार स्पीड ज्यादा हो, और जिस प्रकार से अभी भारत ने जोरावर टैंक बनाया है, जोरावर टैंक है उसकी खसूसियत ये है कि लाइट टैंक है, उसकी मोबिलिटी बहुत है और उसको हाई एल्टीट्यूड में ले जाना बड़ा आसान है। कि C-17 ग्लोब मास्टर से 2 टैंक एट अ टाइम जा सकते हैं, और इसकी एक खसूसियत ये भी है जो जोरावर टैंक है, जो लाइट टैंक होते हैं, कि उसकी जो बैरल है और उसकी जो गन है वो हाई एंगल फायर कर सकती है। इसका मतलब वो जो आर्टिलरी फायर करती है वैसा ही फायर टैंक से भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके पास जो लॉटरिंग म्यूनिशन होता है, जो फायर होता है, वो म्यूनिशन इस टाइप का होता है कि दुश्मन के टैंक को 100% हिट करता है या दुश्मन के टारगेट को 100% हिट करता है। और ये जो जोरावर टैंक अभी भारत खुद बना रहा है, ये DRDO एंड LNT जो है मुल्क के बनाए हैं। अभी एक टैंक प्रोटोटाइप बना दिया है, उसकी अभी जो फील्ड ट्रायल के लिए जा रहा है टैंक, ऐसा लगता है कि 2028 तक जो जरावर टैंक है भारत की फौज के अंदर इंडक्ट होंगे।
0: हल्के टैंक्स में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगा ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होंगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से आसानी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे।
5: अर्जुन टैंक में रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। इसमें लगा लेजर वार्निंग सिस्टम पता लगा लेता है कि कहां से और किस तरह की वार्निंग यानी कि चेतावनी आ रही है, कहां से हमला हो सकता है, लिहाजा दुश्मन से संभलने का मौका मिल जाता है।
0: अर्जुन टैंक में फिन स्टेबलाइज्ड पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबर्ड गोला बारूद है। ये तकनीक दुश्मन के टैंक पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होती है। वैसे तो भारत में युद्धक टैंकों का इस्तेमाल ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में ही होता है, लेकिन चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध के बीच जब से चीन ने सीमा पर अपने टैंक्स का बेड़ा तैनात किया है, तब से भारत ने भी अपने विध्वंसक टैंक्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर दिया है, जिसके बाद से दुश्मन की बोलती बंद है।
5: तो इसी के साथ रण क्षेत्र में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
7: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
8: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
9: La Que Buena.
8: ESPN Radio.
10: We know LeBron has to be the best player on the planet to
8: get The Daily.
11: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
8: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
13: पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात का आज 135वां कार्यक्रम, तो वहीं जन भागीदारी की ताकत, सामाजिक जागरूकता और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। पोरबंदर में 2 महीने के बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा फिर शुरू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मोरवाड़िया ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया। आज वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है डेब्यू, भारत और आयरलैंड के बीच रात से शुरू हो रही है T20 सीरीज। जापान के खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, भारत को लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उम्मीदें।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख कितनी महत्वपूर्ण है और आपके करियर में आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जन्म की तारीख का कितना महत्व है, यानी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका करियर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। अगर जीवन में कोई आशंका हो कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा हुआ है और आगे और भी बुरा होगा, ऐसी अगर कोई भी संभावना है तो ये मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा। किसी भी तरह के होने वाले अनिष्ट से, किसी भी तरह की दुर्घटना से ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा और आपको बचाएगा। राहु की अगर महादशा चल रही है या राहु की अगर अंतर दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र का नियमित रूप से जप कर सकते हैं। रोज शाम को अगर इस मंत्र का जप करें और भैरव देव से कृपा की प्रार्थना करें तो राहु की बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, कुंडली जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें बड़े सारे तरीके होते हैं कि दशम भाव, नवांश की स्थिति, दशमांश की स्थिति, ये सब आपके करियर के बारे में बताती है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से संबंध होता है। क्या संबंध है? देखिए, आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेष ग्रह से होता है। सूर्य से, चंद्र से, मंगल से, राहु से, किसी न किसी ग्रह से आपके जन्म की तारीख का संबंध होता है और उसी ग्रह पर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है। जो आपकी जन्म की तारीख है ये आपके व्यक्तित्व पर, आपके सोचने समझने पर और आपके काम करने पर असर डालेगा। उसी ग्रह से संबंधित रखता हुआ करियर, संबंध रखता हुआ करियर व्यक्ति अपने जीवन में चुन लेता है या उसके जीवन में आ जाता है। हालांकि इसके बड़े सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो नंबर आपके जीवन में जन्म की तारीख से जुड़ा हुआ है उससे संबंधित करियर आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप अपने अंक से मिलता जुलता करियर नहीं चुनते या एकदम अपोजिट करियर में चले जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है, व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केवल जन्म की तारीख का ही नहीं, अलग अलग वर्षों के और अलग अलग महीनों के अंक भी होते हैं।
जिनका प्रभाव आपके करियर पर पड़ता है। जन्म की तारीख तो असर डालेगी ही डालेगी, सबसे ज्यादा डालेगी, लेकिन किस साल में आपका जन्म हुआ है, किस महीने में आपका जन्म हुआ है, उसका जो अंक है, उसका जो नंबर है, ये भी आपके जीवन पर, आपके करियर पर असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक की। अगर आपका जन्मदिन, जन्म की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो आपके करियर का हाल क्या है? इसका अंक हो गया एक, और आपके अंक का संबंध है सूर्य के साथ। इनकी शिक्षा में सामान्य रूप से बाधाएं आती हैं, बार बार कॉलेज बदलना या जगह परिवर्तन करके नई जगह पर जाना, ये एक अंक वालों में आपको दिखाई देगा। जो एक अंक वाले हैं, इनको शासन का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, चिकित्सा और राजनीति का क्षेत्र फायदा पहुंचाता है। अगर किसी की जन्म तारीख 10 होती है या 19 होती है, तो उसके प्रशासन में जाने के या पुलिस में जाने के, मेडिकल में जाने के योग ज्यादा होते हैं। और अगर आपके जन्म की जो पूरी तारीख है, अगर उसमें कहीं पर 1-3 आ गया या 3-1 आ गया, तो आप शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाई तक जाएंगे। यानी एक अंक के साथ जिस अंक का कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे संबंधित करियर भी आपका हो सकता है। केवल एक अंक नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ नंबर भी आपका करियर बना सकता है। एक अंक वालों की बड़ी खास बात है कि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं, नेतृत्व करते हैं, जो सूर्य का गुण है लीड करना, अगर छोटे क्षेत्र में हैं, तो वहां भी नेतृत्व करेंगे, वहां भी लीड करेंगे, ये संभावना इनके जीवन में रहती है। और बहुत जल्दी अपना करियर शुरू करते हैं। आम तौर पर एक अंक वाले 19 साल की उम्र में, या ज्यादातर देखा गया है 24 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर लेते हैं। इस समय के आसपास इनका करियर शुरू हो जाता है। अगर आपका अंक एक है, तो ये बात पक्की है कि आप करियर के जिस क्षेत्र में रहेंगे, वहां पर उच्चाधिकारी के साथ तालमेल में दिक्कत होगी, क्योंकि आप हैं एक अंक वाले, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी की बात मानेंगे नहीं, तो मुश्किल होगी। और एक अंक वालों की मुश्किल ये है कि वो अपने हिसाब से अपना करियर चलाना चाहते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, इस वजह से उनके करियर में मुश्किलें हमेशा थोड़ी या ज्यादा बनी रहती हैं। ये बात अलग है कि वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका अंक एक है, नंबर एक है, तो सूर्य की उपासना से आपको करियर में ज्यादा सफलता मिलेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करिए,
सूर्य आपका प्रबल होगा और आप करियर में सफलता पा सकेंगे। अब बात करते हैं नंबर दो वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 तारीख है तो क्या होगा? देखिए, आपके अंक का संबंध है चंद्र के साथ। वैसे तो देखिए 4 नंबर हो गए ना कुल मिला के, 2, 11, 20 और 29। इसमें जो 29 का अंक है और जो 20 का अंक है, इस पर चंद्रमा का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। ये अंक चंद्रमा के अंक हैं, बहुत मेहनती होते हैं आम तौर पर और काफी परिश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। 2 अंक वालों को आप देखेंगे कि बचपन से ही थोड़ा सा कला के क्षेत्र में, लिखावट के क्षेत्र में, मेडिकल में, यात्राओं के क्षेत्र में ये काम करना चाहते हैं। ये थोड़ा सजना संवरना, थोड़ा मेंटेन होना, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, ये इनको अच्छा लगता है। 2 अंक वाले फिल्म में भी दिखेंगे, चिकित्सा में भी दिखेंगे, नेवी, शिक्षा, खान पान के क्षेत्र में ये ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन 2 अंक वालों में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है, उनके कलात्मक होने के, आर्टिस्टिकल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो 2 का ये ग्रुप है, 2, 11, 20 और 29, उसमें सबसे ज्यादा सफल 29 अंक वाले होते हैं। 29 वालों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्म तारीख 29 है वो दिखाई भी बड़े अच्छे देते हैं, कैरी अपने आप को बहुत अच्छा करते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं अपने सद्व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से बड़ी सफलता पाते हैं। 2 अंक वाले बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं और वैसे तो देखिए इमोशनल नंबर है 2 का, चंद्रमा का नंबर है, लेकिन ये अपने दर्द को, अपनी मुश्किलों को अंदर दबाए रखते हैं, कठिनाइयों को सरलता से सुलझा लेते हैं। ये अपना कष्ट गिने चुने लोगों को बताएंगे, ज्यादातर लोग इनकी भावनाओं को, इनके कष्टों को नहीं जान पाते और ये बड़ी कुशलता से अपने आंसू पोंछते हुए कठिनाइयों को सुलझा लेते हैं। आम तौर पर जिनका 2 का नंबर होता है, उनके करियर की शुरुआत में विलंब होता है। होता क्या है कि ये शुरू में किसी और करियर की तरफ जाना चाहते हैं, जब वहां पे दिक्कत होती है तब अचानक से करियर ये 22-24 साल में बदलते हैं और लगभग ऐसा देखा गया है कि 27-28 साल की उम्र में 2 अंक वालों का करियर शुरू होता है। देखिए, 2 अंक वाले कला के क्षेत्र में जाएं, फिल्म में जाएं, एक्टिंग में जाएं, मीडिया में जाएं, फूड में जाएं, जहां पे केयर और नॉरिशमेंट होता हो, बच्चों से संबंधित क्षेत्र में जाएं, तो बड़े सफल होते हैं। करियर में सफलता के लिए इनको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अपने मन को मजबूत बनाना है, करियर में आगे बढ़ना है, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का कम से कम रोज सुबह 108 बार अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3 तारीख है, 11 है, 21 है या 30 है, तो आपका जो मुख्य नंबर है वो 3 का नंबर है। 3 अंक का संबंध होता है बृहस्पति के साथ, जुपिटर, ज्ञान के देवता। इसीलिए 3 नंबर वाले पढ़ने में बड़ा मन लगाते हैं। इनकी शिक्षा और बुद्धि की स्थिति आम तौर पर अच्छी रहती है, एजुकेशन में, ब्रेन में ये सफल होते हैं। जो
तीन अंक वाले हैं उनकी जो सारी काबिलियत है वो 30 के नंबर में आती है। 30 नंबर जो है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 30 तारीख है उसमें 3 का अंक एब्सोल्यूट होता है। जिनकी 21 तारीख है वो बड़े मेंटली ऊपर नीचे होते हैं, या तो मेंटली बड़े खुश होंगे या तो बड़े एग्रेसिव होंगे। और आम तौर पर 21 वालों की मुश्किल ये है कि वो अपने मन पर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, तुनक मिजाज होते हैं। लेकिन अगर आपकी तारीख का संबंध 3 नंबर से आ गया तो शिक्षा में जाएंगे, धर्म में जाएंगे, कानून में, मीडिया में, समझाने और सलाह देने के क्षेत्र में 3 अंक वाले ज्यादा पाए जाते हैं। अगर कहीं पर भी आपकी जन्म की तारीख में 3 के साथ 2 का नंबर आगे पीछे आता है, आप पक्का मान के चलिए कि आप अपने क्षेत्र में धीरे धीरे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, बशर्ते कि आप बार बार अपना सेक्टर चेंज ना करें। जिनकी भी तारीख 3 है और उसके साथ 2 का अटैचमेंट होता है उनकी सफलता बड़ी प्रबल होती है और वो अपने क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबरदस्त ज्ञानी होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। 3 अंक वालों के साथ आप देखेंगे कि शुरुआत के जो 7-8 साल होते हैं ना उसमें इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। योग्य बहुत होते हैं, काबिल बहुत होते हैं, लेकिन मौका इनको शुरुआत में नहीं मिल पाता, इसलिए करियर में आरंभ में बहुत संघर्ष करते हैं। आम तौर पर उम्र के मध्य पार्ट से 35-36 साल के बाद इनके करियर में बड़ी सफलता की शुरुआत होती है और 35-36 के बाद ये तेजी से तरक्की कर पाते हैं। अगर आपका नंबर 3 है और आप करियर में सफलता चाहते हैं तो भगवान विष्णु की उपासना, श्री हरि की उपासना आपको करनी चाहिए। खास तौर से रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं 4 के अंक की। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है तो क्या मतलब है इसका? ये जो 4 का अंक है ये राहु का अंक है। 4 अंक का जो ग्रुप है 4, 13, 22, 31, उसमें 22 जो नंबर है 22 जो है वो मैजिकल नंबर है, मास्टर नंबर है। जब किसी का नंबर 22 होता है तो भाग्य की विशिष्ट कृपा होती है उसके ऊपर, और अगर किसी का नंबर 13 होता है तो भयंकर बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होने के बावजूद ये कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। यानी 4 का अंक जबरदस्त खेल दिखाता है। आम तौर पर जिनका 4 का अंक होता है उनकी शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहता है, पढ़ाई ठीक करते हैं लेकिन बार बार पढ़ाई के लाइन में बदलाव करते हैं। ये पढ़ते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पढ़ रहे हैं मेडिकल और काम करेंगे टीचिंग का, पढ़ रहे हैं कुछ और बन जाते हैं प्लेयर, तो ये बेसिकली पढ़ेंगे कुछ और करेंगे कुछ। 4 अंक वालों के लिए कंप्यूटर का क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र, ज्योतिष का क्षेत्र, रहस्यमयी विद्याओं का क्षेत्र और मार्केटिंग का क्षेत्र इनके लिए उत्तम रहता है।
अगर आपकी जन्म तारीख में कहीं भी चार के साथ एक आ गया तो आप मान करके चलिए कि आपको करियर में अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। चार के आगे पीछे कहीं भी एक लग गया आपके जन्म तारीख में, आपको अपने करियर में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और बिना सपोर्ट के अकेले दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जन्म तारीख में चार के साथ कहीं भी दो का अंक आ गया आगे पीछे, तो आप संघर्ष करेंगे शुरुआत में, बाद में मौज करेंगे, आराम करेंगे। चार अंक वालों का करियर कम उम्र में शुरू होता है, उम्र के 22 साल से या 24 साल से इनका करियर शुरू हो जाता है। चार के अंक वालों की मुश्किल ये है कि ये बार बार करियर में बदलाव करते हैं, रुकते नहीं, टिकते नहीं। ऐसा मत करिए, आप सोच समझ के करियर का चुनाव करिए, लेकिन एक बार जिस करियर में चले गए वहां पर लंबे समय तक टिकने का प्रयास करिए। बार बार नहीं बदलेंगे तो बेहतर होगा। और चार अंक वालों को हमेशा एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है करियर में आगे बढ़ने के लिए, उसका सहारा लेते रहिए। करियर में अगर सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करें, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं पांच के अंक की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5 तारीख है, 14 है, 23 है, तो आपका अंक है 5। 5 अंक के जो स्वामी हैं उन्हें कहते हैं बुध, मरकरी। आम तौर पर शिक्षा इनकी मध्यम रहती है, ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हैं। हालांकि पढ़ाई भले ही कम करें, बुद्धिमान बहुत होते हैं। 5 अंक वालों के लिए बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग और कॉमर्स का क्षेत्र हमेशा उत्तम रहता है, इन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता पाते हैं। और 5 अंक वालों की पढ़ाई भले ही कम हो, भले ही थोड़ी हो, लेकिन बड़ी तेजी से ऊंचाई पर जाते हैं अपनी बुद्धि के दम पर। हर तरह की स्थिति करियर में, प्लस हो माइनस हो, उसको बड़ी बुद्धिमानी से मैनेज कर लेते हैं, बड़ी बुद्धिमानी से हल कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख में 5 के साथ कहीं भी 1 का अंक आता हो, या 5 का अंक लगातार 2 बार अगल बगल में आ जाता हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन में अपनी बुद्धि के दम पर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं होगा तो भी आप अपने परिवार को, जीवन को बेहतर तरीके से चला सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। 5 अंक वालों का करियर शुरुआत में कुछ और रहता है। शुरू करेंगे मान लिया एक क्लर्क की पोस्ट से, बाद में परीक्षा देकर ऑफिसर बन जाएंगे। शुरुआत करेंगे नौकरी के साथ, बाद में नौकरी छोड़कर बिजनेस में आ जाएंगे। यानी शुरुआत में कुछ और करियर रहता है और बाद में करियर बदलकर अच्छी जगह जाते हैं। 5 अंक वालों के साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 का अंक आता है, तो आप ये मान कर चलिए कि वो आदमी बुद्धिमान है और सामान्य जगह पर होने के बावजूद भी वो अपने करियर को अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। करियर में सफलता के लिए 5 अंक वालों को गणेश जी की उपासना करनी

मैं डॉक्टर बनूंगा, बाद में कहते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, जब दोनों नहीं मिलती है नौकरी तो जो मिल जाती है वहां पहुंच जाते हैं। यानी ये बड़ा एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जो मिल रहा है वही ठीक है। ये बहुत प्रेशर नहीं पालते, जो मिल गया वो बेहतर है। और बहुत परिवर्तन करने के बाद किसी एक क्षेत्र में अपना रास्ता बना पाते हैं। जिनका अंक 6 का होता है उनके लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानी केमिकल, आभूषण, सौंदर्य और शिक्षा के क्षेत्र हमेशा इनके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपकी कुंडली में 6 का नंबर आता है, आपकी कुंडली में 6 के नंबर के साथ 1 का अंक आता है, आपकी आंख खराब होगी। 6 के अंक के साथ अगर 2 का नंबर आ जाता है, आपकी कला की समझ तो बहुत होगी लेकिन जीवन में बड़ी उम्र के बाद सफल होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि 24 नंबर जो है वो 6 के ग्रुप का सबसे ताकतवर नंबर है, हाथ पे 24 लिख के रखो, 24 लिख के टेबल पे लगा लो। देखिए 24 का जो अंक है वो मैजिकल है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, वो बहुत सारी नकारात्मकताओं को, बहुत सारी निगेटिविटी को सोख लेता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर 24 का अंक प्रयोग करेंगे तो ये नंबर कंफ्यूजन भी पैदा करता है, निर्णय की क्षमता को घटा देता है। इसीलिए जहां गड़बड़ी है वहां 24 के नंबर का प्रयोग करिए, लेकिन हाथ में 24 का नंबर लिख लें, 24 का नंबर लिख करके गले में पहन लें, ये सब करने से हो सकता है आपको मेंटल कंफ्यूजन पैदा हो। जो 6 के अंक वाले लोग हैं इनका करियर जल्दी शुरू होता है, आम तौर पर उम्र के 20-22 साल से ये काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सफलता थोड़ी लेट से मिलती है, सफलता 35-36 साल के बाद मिलती है। देखिए 6 के अंक वालों के साथ आराम का करियर होना चाहिए, ये बहुत प्रेशर वाले करियर में काम नहीं करेंगे। जहां आराम से बैठें, आराम से काम कर सकें, वहीं 6 के अंक वाले रहेंगे। अगर आपने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो ये धौंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ करके चल देंगे। बिजनेस भी वही करेंगे जहां सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक काम हो, बहुत प्रेशर ना हो, आराम से बैठे रहें, पैसा आता रहे। लेकिन 6 अंक वालों के साथ एक भगवान का वरदान भी ये है कि ये ज़्यादा कुछ ना करने के बावजूद बढ़िया घर पा जाते हैं, बढ़िया गाड़ी पा जाते हैं, जीवन में चैन से रहते हैं, और जीवन में आराम से रहना इनका स्वभाव होता है, और परमात्मा की कृपा से आराम वाला करियर इनको मिल भी जाता है। करियर में सफलता के लिए इनको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। मेरी सलाह ये है कि रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करिए या श्री सूक्तम सुनिए, और अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार की शाम को श्री सूक्तम का पाठ करने से लाभ होगा। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आपका नंबर 7 है। अब 7 तारीख का 7 अंक का स्वामी है केतु, और 7 नंबर का जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक नंबर है 25 यानी 25। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 25 का हुआ या 25 आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में, ऐसे लोग मेंटली इमोशनली हमेशा परेशान रहेंगे। सब कुछ सही होने के बावजूद उनका मन हमेशा चिंता करता रहेगा, हमेशा तनाव पालता रहेगा। 7 अंक वाले शिक्षा के मामले में मध्यम रहते हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता नहीं, ज्यादा कोशिश करते भी नहीं, उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ के पास हो जाएं, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं।

नए आइडिया निकालना, नई नई चीजों पे सोचना, पढ़ते बहुत हैं, साहित्य बहुत पढ़ेंगे, फिक्शन बहुत पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई कम करेंगे, पढ़ाई उतनी करेंगे जितना पढ़ के पास हो जाएं। 7 अंक वालों के लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, फिलॉसफी या यात्राओं का क्षेत्र टूरिंग ट्रेवल भी इनको सूट करता है। 7 अंक वाले लिखते बड़ा अच्छा है, ऐसा देखा गया है कि बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे फिलोसोफर अमूमन 7 वाले होते हैं। 7 का अंक क्रिएटिविटी और रहस्य पैदा करता है। अगर आपकी जन्म तारीख में 7 के साथ कहीं भी 1 का अंक आ गया, एक समय अर्श पर एक समय फर्श पर आएंगे, इसलिए 1771 अगर आपकी जन्म की तारीख में आ रहा है तो आप ऐसा कोई काम मत करिएगा कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद धरती पर आपको गिरना पड़े। और 1716 ये नंबर अगर जीवन में आपके है तो ये आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। करियर में आप बार बार उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। अगर आपको ये भूत बार बार पकड़ेगा कि मैं अपना काम करूं, ये 7 वाले बार बार सोचते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि नौकरी में गड़बड़ियां होती हैं, करियर में उतार चढ़ाव होता है, तो ऐसा लगता है कि 7 अंक वालों को एक समय तक शांति से अपनी नौकरी करनी चाहिए। जब नौकरी से आराम कर लें, नौकरी सेट हो जाए, तब आप अपना काम करिएगा, और एक ही समय पे एक ही काम करिएगा तो बेहतर होगा। करियर में सफलता के लिए शिव जी की उपासना करिए, क्योंकि मूडी आदमी है आप, आपका मन नहीं बैलेंस होगा तो चाहे लाखों रुपए मिलते हो आप तो नौकरी चुटकियों में छोड़ देंगे। तो भैया शिव जी की उपासना करिए, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए, नमः शिवाय पढ़िए, बुद्धि स्थिर रहेगी तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, तो आपका नंबर हो गया 8। 8 अंक को ज्यादातर लोग नकारात्मक कहते हैं, बुरा कहते हैं, इनका करियर कैसा होता है वो समझते हैं। देखिए, आपके जन्म की तारीख का संबंध है शनि के साथ, 8 अंक के स्वामी हैं शनि। शिक्षा की स्थिति 8 अंक वालों की आम तौर पर अच्छी होती है, लेकिन रुक रुक कर टूट टूट कर आगे बढ़ती है। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी करे कुछ दिन, 1 साल 2 साल, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पढ़ाई की, फिर नौकरी किया, इस तरह से थोड़ा रुक रुक के काम कर करके ये पढ़ाई करते हैं। अक्सर देर ही होती है शिक्षा में, लेकिन मनचाही शिक्षा पा जाते हैं। अगर इन्होंने बचपन से सोचा है कि हमें मैनेजमेंट में जाना है तो देर सवेर ये वहां पहुंचेंगे ही, मनचाही शिक्षा पाएंगे ही। 8 अंक वालों के लिए फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, शिक्षा, कानून, राजनीति, यूनियन के अध्यक्ष, इस तरह की चीजें इनके जीवन में होती हैं। अब 8 के ग्रुप के 3 नंबर है ना, 8, 17 और 26, उसमें जो 26 का नंबर है वो नंबर आदमी को जबरदस्त क्रिएटिव बनाता है। 26 का जो अंक है, इनके जीवन में संघर्ष तुलनात्मक रूप से कम होता है, और 8 के ग्रुप में 26 का नंबर करियर के मामले में और जीवन के मामले में जल्दी सफलता पा जाता है। अगर आपकी जन्म की तारीख में 8 के अंक के साथ कहीं भी 1 का अंक आ गया, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। 18 आ गया, 81 आ गया, तो दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। अपने मन से तेज गाड़ी चलाना, बिजली का काम करना, ये सब करने से 1881 वालों को बचना चाहिए। करियर की शुरुआत 8 अंक वालों की जल्दी होती है, लेकिन सफलता इनको मिलती है आम तौर पर 40 के बाद,
40 के बाद ही ये ज्यादा सफल हो पाते हैं। अगर आपका अंक 8 का अंक है तो करियर में सफलता के लिए शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अंक 9 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9 तारीख है, 18 है या 27 है तो आपका नंबर है 9 और 9 अंक के स्वामी हैं मंगल। यानी आपके जन्म की तारीख का संबंध है मंगल के साथ। शिक्षा की स्थिति 9 अंक वालों की मध्यम यानी एवरेज होती है और अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में चले गए, खाना बनाने की शिक्षा ले रहे हैं, कपड़े सिलने की शिक्षा ले रहे हैं, कुछ अलग तरह की एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन से हट करके लेते हैं। 9 अंक का स्वामी मंगल है ना, तो ये कहीं भी रहेंगे वहां फोर्स बहुत होगा, वहां ताकत बहुत होगी। इनके लिए सेना, पुलिस, प्रशासन, फैक्ट्री, जमीन और मेहनत वाले क्षेत्र उत्तम होंगे। ये कहीं भी काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, अपना आदेश थोपते हैं और दूसरों को अपनी बात मनवाते हैं। अगर 9 अंक वाले टीचर भी होंगे ना तो बिना डंडे के बात नहीं करेंगे, चीखना चिल्लाना डांटना फटकारना उनकी आदत में होगा। और 9 अंक वाले अगर मंत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा तेज आवाज में पढ़ेंगे। मंगल का जो फोर्स है वो इनके करियर में, इनके जीवन में दिखता है। जब किसी की जन्म की तारीख में 9 के साथ 1 आ जाता है आगे पीछे, तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी के अंदर एनर्जी भयंकर है और अगर उसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो जीवन में दुर्घटनाओं का, चोट चपेट का शिकार हो सकता है। 9 अंक वालों का करियर काफी जल्दी शुरू होता है, अमूमन 18-19 साल के बाद ये काम शुरू करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। बस इनका ये है कि जो इनके अंडर के लोग हैं कोई इनका विरोध ना करे, कोई इनके खिलाफ ना बोले तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन जहां इनके विरुद्ध बोला तो या तो ये झंझट पैदा कर देंगे या इनके लिए झंझट पैदा हो जाएगा। अगर आपका अंक 9 का अंक है और आप करियर में सफलता चाहते हैं, बिल्कुल आसान काम है, थोड़ा सा टेम्परामेंट को बैलेंस रखिए। हर जगह क्रोध और टेम्परामेंट से काम नहीं चलता। करियर में सफलता के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, ज्यादा कुछ ना करें, सुबह शाम हनुमान चालीसा ही पढ़ लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
11: श्री गंगानगर सूरतगढ़ से लंगर की सेवा करने वाले भक्त पहुंचे बालटाल, अमरनाथ लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार। नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। पीएम के कार्यक्रम मन की बात का आज 135वां कार्यक्रम। जन भागीदारी की ताकत, सामाजिक जागरूकता और अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। पोरबंदर में 2 महीने के बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा फिर शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया। आज वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत, तो वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी।

0: आज से शुरू हो रही है T20 सीरीज।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड का प्रसारण, तो वहीं गिनाई स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले समुद्र से लेकर आसमान तक भारत तेजी से बन रहा है सुरक्षित और आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने की देशवासियों की कई कामयाबियों पर बात, कहा हर भारतवासी को उपलब्धियों पर गर्व है। एविएशन सेक्टर को लेकर भी बोले पीएम मोदी, C-295 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया है, C-295 एयरक्राफ्ट का किया जिक्र। उत्सवों में पर्यावरण को दिए जा रहे बढ़ावे की भी पीएम मोदी ने तारीफ की, वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाने की कही बात। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना का मार्चिंग दल लेगा हिस्सा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। भारतीय सेना के असम रेजिमेंट का 32 सदस्यीय दल समारोह में होगा शामिल, कैप्टन आर्यन एच देओलकर करेंगे दल की अगुवाई। समारोह में भारतीय नौसेना का मार्चिंग दल और सैन्य बैंड भी होगा शामिल, तो वहीं समारोह में दिखेगी भारत और सेशल्स की मजबूत रक्षा साझेदारी। सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत, आज राष्ट्र दिवस समारोह में शिरकत, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। सेशल्स में पीएम मोदी के स्वागत के दौरान दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, लोगों ने उत्साह के साथ किया अभिनंदन। 1 जुलाई से बदलेंगे कई वित्तीय कामों के नियम, आम लोगों का मंथली बजट हो सकता है प्रभावित। अब 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करने के लिए नहीं देनी होगी फीस, पहले इसके लिए चुकानी पड़ती थी ₹75 की फीस। 1 जुलाई से बिना टिकट सफर करने पर लगेगा डबल जुर्माना, रेलवे ने कुछ नियमों को लेकर सख्त किया फाइन का तरीका। 90 दिनों तक एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने की डेडलाइन 30 जून को हो रही है समाप्त, ई केवाईसी ना करने पर बंद हो सकती है एलपीजी की सब्सिडी। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2,500 और तत्काल 5,000 में बनेगा, खोने या डैमेज होने पर 8,500 तक फीस। पोरबंदर में 2 महीने बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा पूरी तरह से शुरू, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया ने यात्रियों का स्वागत किया। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो से गुलजार हुआ, पक्षी प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। वडोदरा के पिता और बेटे ने साइंस सेक्टर में किया कमाल, सूर्य की हानिकारक किरणों से धरती को बचाने वाले सैटेलाइट का बनाया मॉडल। अमृतसर में एक शाम शिव भोलेनाथ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। बैतूल में योग शिविर का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां हुई पूरी, कल देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। यात्रा को लेकर रथ निर्माण का काम लगभग हुआ पूरा, अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ निर्माण। देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना। दिल्ली एनसीआर में भी बनी रहेगी गर्मी और उमस, जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून के पहुंचने की संभावना। दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। केरला के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया, तो वहीं कन्नूर जिले के लिए येलो अलर्ट। मुंबई में बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हुआ, पानी के बीच से निकलने को लोग मजबूर। मानसून के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव पर खूबसूरत नजारा देखने को मिला, सुबह वॉक करते हुए नजर आए लोग। सिक्किम में जोरदार बारिश से उफान पर कई नदियां, फिडांग के पास फी खोला ब्रिज ढहा। बेली ब्रिज मूसलाधार बारिश और उफनते, नदी के बहाव में पूरी तरह से बहा, तो वही फिडांग और सांकलांग के बीच पूरी तरह संपर्क कटा। अरुणाचल प्रदेश के पोसा गांव के पास अचानक आई बाढ़, घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी। महिला विश्व कप में भारत की बेटियों के लिए आज बड़ी चुनौती, हरमन ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगी मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से ही खुलेंगी भारतीय टीम की उम्मीदें, सेमीफाइनल का मिल सकता है टिकट। विमेन वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले पर बारिश का भी खतरा, मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को मिलेंगे एक एक अंक। आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला आज शाम 6 बजे से बेलफास्ट में खेला जाएगा मैच। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आज रहेगी सभी की निगाहें, सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया का जीतना जरूरी। भुवनेश्वर में चल रही इंटरस्टेट एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने रचा इतिहास, अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। एनसी सोजन ने 6.88 मीटर की लगाई कूद, 6.83 मीटर का था अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड। ऊंची कूद में सर्वेश कोश्यारी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड, ऊंची कूद में 2.31 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कोश्यारी ने तेजस्विन शंकर का 2018 में बनाया 2.29 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड सेशन रैंकिंग में स्वयं तीसरे और एशिया में शीर्ष पर पहुंचे। जापानीज खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, भारत को लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उम्मीदें। रोम में वेस्पा के 80 साल का जश्न शुरू, 4 दिनों तक प्रदर्शनी और रैली के होंगे आयोजन। ১৯৪৬ में लॉन्च हुई वेस्पा बनी इटली की पहचान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्कूटर ने लोगों की जिंदगी को दी नई रफ्तार। फिल्म रोमन हॉलिडे से वेस्पा को मिली दुनिया भर में पहचान, पेक और हेपबर्न की सवारी ने इसे बनाया था आइकन। 80 साल में बिक चुकी वेस्पा की करीब 2 करोड़ स्कूटर, इस साल में ही दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री। करीब 100 देशों में बेची जाती है वेस्पा, भारत इटली और वियतनाम के प्लांट्स में किया जाता है इनका निर्माण।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now. Today.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, Sasriyakal, Ram Ram.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
3: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: आज वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की भिड़ंत, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है डेब्यू, भारत और आयरलैंड के बीच आज से शुरू हो रही है T20 सीरीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: संडे, इस दिन का तो नाम ही सुनकर हम सब हो जाते हैं हैप्पी, क्योंकि ये तो होता है छुट्टी का दिन। वैसे ये जो हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया है, इसमें नहीं होती है एक भी दिन की छुट्टी। तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। यहाँ तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रहे हैं आप सबका इंतजार, खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी हो जाइए हमारे साथ इस एंटरटेनमेंट के सफर पर सवार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये संडे स्पेशल हेडलाइंस के साथ।
3: मैं ये शादी नहीं कर सकती।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए राधिका और वीर की शादी में लगेगा ट्विस्ट का ब्रेक।

0: सीरियल तू ही रे में वृंदा की शादी में शुरू होगा नया बवाल। सीरियल सरू में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा, क्या करेगी सरू? ईशान को पता चलेगा कि नयनिका को कैंसर है, कहानी में आएगा नया ट्विस्ट।
1: मैं पांडुपुत्र भी हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो चुका।
0: और हस्तिनापुर के वीर के भीम यानी कि सुभाष संग करेंगे डे आउट, देखेंगे कैसे होता है उनका मेकओवर, साथ ही करेंगे सेट की सैर सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अब देखिए, संडे की छुट्टी की तरह स्पेशल होता है हमारा संडे लंच। या तो हम बाहर जाते हैं या घर पर ही करते हैं कुछ स्पेशल फरमाइश। वैसे स्पेशल तो है हमारा ये अगला सेगमेंट भी, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग। यानी यहाँ है एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा, सब कुछ एक साथ। अब मैं जानती हूँ हो गया है आपके पेट में दर्द, नहीं हो रहा है आपसे इंतजार, तो फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: खुशी से झूम उठी वृंदा।

नरेंद्र की वृंदा पर नजर। वृंदा और संजय की शादी पर नरेंद्र का हंगामा। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में धनकोर ने ऐसी चाल चली है कि वृंदा और उसके घर वाले गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। ऐसे में वृंदा और उसके घर वालों को लगता है कि वृंदा और संजय की शादी होने वाली है, इसीलिए तो देखिए कैसे शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वृंदा के घर में ढोलक बजने लगी है। ऐसे में वृंदा मेहमानों को पानी लाकर देती है, लेकिन दादी वृंदा के हाथ से पानी हटाकर वृंदा को नाचने के लिए ले आती है और वृंदा पहले शर्माती है और फिर खुशी से झूमने लगती है।

वो तो झूम झूम कर गरबा कर रही है, लेकिन उसे झूमता देख नरेंद्र पागल हो रहा है, वो भी खुशी के मारे, क्योंकि वृंदा की शादी संजय से नहीं बल्कि उसी से होने वाली है। ऐसे में देखिए कैसे वो भी सभी के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है और नाचते नाचते वृंदा के करीब जा रहा है।

0: जी एक्चुअली बिकॉज इट इज़ सम लाइक इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ यू नो टीन एज लव. ये वृंदा ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 19-20 साल की लड़की है और लाइक शी इज़ जस्ट लाइक यू नो गेटिंग मैरिड टू हर क्रश, हर फॉर एवर लव, क्योंकि उसने कभी ना संजय से पहले किसी को देखा था ना संजय के बाद किसी को देखा है. तो उस लड़की से शादी हो रही है इसलिए वो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड तो है. आपको पता है ना बच्ची कैसी होती है, बस बिल्कुल वैसी, उसका दिल बहुत बच्चों जैसा है, बहुत साफ है, तो इसलिए वो बहुत एक्साइटेड होती है और वो अपने अलग ही वर्ल्ड में है कि उसकी शादी होने वाली है अपने सपनों के राजकुमार से.
1: अब झूठ बोलकर वृंदा की शादी नरेंद्र से करवाई जाएगी, लेकिन इस ट्विस्ट का खुलासा लगता है जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र अपने गुस्से पर कंट्रोल जो नहीं कर पाता. जरा देखिए कैसे नाचते वक्त जब घर में वृंदा और संजय की शादी का कार्ड छप कर आता है तो शादी के कार्ड में होती है वृंदा और संजय की तस्वीर. बस फिर क्या, ये देख कर नरेंद्र अपने आप को रोक नहीं पाता.
2: शादी का कार्ड छपाने को बोला था तुझे, ये क्या, ये पोस्टर छपा क्या इलेक्शन का तू?
3: अरे नरेंद्र भाई, आप तेरे पुराने जमाने के, अब जमाना बदल रहा है. अब ये देखो आज कार्ड में दूल्हा दुल्हन की फोटो छपती है, पता है फैशन है, फैशन है.
2: ये क्या है, कोई क्या है, क्या है? इसमें उसकी फोटो कैसे छप गई?
4: इसकी फोटो छप गई तो तुझे क्या परेशानी है ने?
0: जी एक्चुअली नरेंद्र आते हैं और मेरी शादी का जो निमंत्रण पत्र होता है उसे फाड़ देते हैं मेरी आंखों के सामने, क्योंकि उन्होंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था. उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी और संजय जी की फ़ोटो साथ में होगी शादी के कार्ड में. तो फोटो मेरी आंखों के सामने फाड़ देते हैं और मुझे बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि शादी का कार्ड था और उन्होंने फाड़ दिया.
1: वे अपनी शादी का कार्ड देखकर वृंदा तो बहुत खुश थी, लेकिन नरेंद्र उससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई. उसने जिस जिसके हाथ में वो शादी का कार्ड था वो कार्ड लेकर फाड़ना शुरू कर दिया. ऐसे में ये देखकर वृंदा रो रही है, उसके आंसू बह रहे हैं और दादी उसे भी नरेंद्र पर गुस्सा आ रहा है. वो तो रोकने की कोशिश भी करती है, इससे पहले कि नरेंद्र सच बक देता धनकोर उसे रोक लेती है.
5: शांत हो, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी करेगा. शर्म नहीं आती नरेंद्र, क्या कर रहा है तू? तेरी उम्र क्या है? गांव का प्रधान है तू, शोभा देता है तुझे? अरे सब शादी की तैयारी चल रही है, बाहर के लोग आए, तू चल यहाँ से चल. वो बाप आप जरा आगे का जो भी है वो करना है नहीं करना है आपके हाथ में है. वो क्या है ने? इसने कुछ डिजाइन दिया था शादी का, वो उसने अतुल ने नहीं किया तो गुस्सा आ गया.
2: ए, तुझे समझ में नहीं आता क्या?
5: तुझे समझ में नहीं आता
2: क्या हो रहा है?
0: तो ये सब मेरी फैमिली प्लान कर रही है, प्लॉट कर रही है, जिसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बाहर वाले आपके बारे में गलत सोच सकते हैं, वो गलत सोच सकते हैं, लेकिन अपने परिवार वाले कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते. और ऐसा इस हद तक तो ऑब्वियसली कोई सोच ही नहीं सकता, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, और तब ऐसा होगा तो फिर तो बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन.
6: दरअसल एक प्लानिंग चल रही है जो मेरी फुई ने बनाई है सीरियल के अंदर है, वृंदा को और मुझको लेकर, क्योंकि वृंदा सौभाग्यशाली है और अभी मैं चुनाव जीता हूँ उसी की वजह से, उसके भाग्य की वजह से. तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं चाहता हूँ पूरी करूँ. तो वो जब मैं संजय की फ़ोटो देखता हूँ मुझे लगता काश मेरी इसके ऊपर फ़ोटो होती तो वो मेरे साथ जीवन में बन जाती, तो मेरा सौभाग्य हो जाता, भाग्य बढ़ जाता मेरा. जैसे कहती नहीं मेरी फुई की, तो दिल्ली दूर नहीं है तो मैं शायद दिल्ली तक पहुँच जाता.
1: भाई नरेंद्र वृंदा से शादी सिर्फ मतलब के लिए करना चाहता है, और तो और उसकी वृंदा पर बुरी नजर भी है, लेकिन वृंदा जो सच्चे अनजान है वो तो अपने फटे हुए शादी के कार्ड को देखकर इमोशनल हो रही है, उन्हें इकट्ठा कर रो रही है. अब देखना होगा क्या शादी से पहले वृंदा को सच पता चल पाएगा.
7: वहीं दूसरी तरफ संजय और स्वाति भी इसी मंदिर में पहुंचे हैं जहां वृंदा है. ऐसे में देखिए कैसे यहां खास पूजा रखी गई है और इस हवन में बैठा है संजय जो कर रहा है पूजा की विधि. तो भाई रिश्ते तो कई जुड़ रहे हैं, लेकिन अब रिश्तों में कौन सा ट्विस्ट आएगा ये देखना होगा.
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
8: क्या यहाँ पर संडे को भी है इश्क का जुनून? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है गुरु और रूहानी की कहानी में आज। वेल, क्या ही हो रहा होगा, फिर से कहानी का लेखक लेकर आया होगा, इसमें एक नया ट्विस्ट जो लेकर आ रहा होगा कहानी में, एक नया ड्रामा जो लेकर आएगा हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। वैसे देखिए कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि हमें भी बेसब्री से रहता है इस शो के हर नए एपिसोड का इंतजार, लेकिन तभी तो कहानी में हो रहा है कमाल। लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौनी के सेट पर।
9: बेताब सा महाबत का तो कलाब है मेरा।
7: शुरू हुई डांस पार्टी, बदल गए पार्टनर्स, रूहानी को किसी और के साथ देख गुरु की जलन। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर तेजू ने रखी है ये खास पार्टी शादी से पहले वाली, और ऐसे में यहां पर रूहानी को भी इनवाइट किया है, लेकिन रूहानी लेकर आई है अपने साथ अपने नए साथी को जिसका नाम है सुशील। तो वहीं गुरु है तेजू के साथ, यानी कि जोड़ियां तो बदल गई हैं, लेकिन इनकी फीलिंग सही, क्योंकि गुरु को हो रही है जलन रूहानी को किसी और के साथ देखकर। भाई असली जलन तो तब शुरू हुई जब रूहानी सुशील के साथ डांस करने लगी। खैर, गुरु भी तेजू के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें रूहानी पर ही थी। देखिए कैसे अंदर ही अंदर गुरु गुस्सा हो रहा है। ऐसे में शुरू हो गई है इन जोड़ियों की डांस जुगलबंदी। भाई इस डांस में रोमांस भी है और टशन भी। तेजू गुरु को अपनी ओर खींच रही है, तो वहीं रूहानी को किसी और के साथ डांस करता देख गुरु का तो ध्यान ही कहीं नहीं है, उसका ध्यान तो बस रूहानी पर है। और रूहानी भी सुशील के साथ रोमांटिक डांस कर रही है ताकि गुरु को और भी ज्यादा जलन हो।

0: ही फिर एक मौका ऐसा भी आता है जब गुरु और रूहानी आमने सामने आ जाते हैं और देखिए कैसे इनके डांस में हिचक है। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन गलत फहमियाँ काफी हैं। तो वहीं तेजू भी डांस करने में बिजी है।
1: वैसे

भाई कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब रूहानी पार्टी से गायब हो जाती है और देखिए कैसे गुरु बेहोश रूहानी को गोद में उठाकर लेकर आ रहा है। तो भाई क्या ये तेजू की नई चाल है या फिर रूहानी की तबीयत बिगड़ गई है?

0: वही गुरु तो रूहानी को संभालने में बिजी है, तो वहीं तेजू सुशील का पता लगा रही है और उसे मौका मिल भी गया। उसे पता है कि रूहानी प्यार का नाटक कर रही है सुशील के साथ, ताकि वो गुरु को जला सके और अपने प्यार का एहसास करा सके। ऐसे में तेजू ने दे दिया है सुशील को 50,000 का ऑफर कि वो उसके इशारों पर चले और रूहानी से सच में प्यार करने लगे। यानी कि अब रूहानी के खिलाफ ही तेजू ने चाल चल दी है।
1: गलती से आया है, घर इतना बड़ा है, घूम चलते हैं।
2: अरे सर, हम लोग तो बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो क्या है ना कि एक बार शादी हो जाए, कोई मुझे शराब नहीं पीने।
1: वैसे बहुत खूंखार परिवार है, बच के रहना।
2: मैं सब जानती हूँ सुशील कुमार, लेकिन रूहानी के प्यार में साजिश है। उसने मुझे 5,000 रुपए दिया, मैं तुम्हें 50,000। बस तुम्हें रूहानी के साथ जो छोटा मोटा का प्यार का नाटक कर रहे हो, उसे सच में पता था। फिर मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारे एक्टिंग में दम है।
3: सो बैचलरेट पार्टी चल रही थी एंड अचानक से कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है, जो कि मामी से तेजस्वी को, कि जो रूहानी ने जो मंगेतर लाया है इस घर पे, वो एक पेड एक्टर है। तो क्योंकि उसको इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब तेजस्वी चुप रहने वालों में से है नहीं, वो उसका पूरा बाजी ही पलट देती है। वो उसे 50,000 ऑफर करती है और बोलती है दूसरा ट्विस्ट जो अपने प्लानिंग के साथ आती है। अब वो क्या प्लानिंग है, क्या है, वो तो आगे चल के पता चल जाएगा।
0: अब देखना होगा कि क्या तेजू की ये चाल कामयाब होती है या फिर एक हो जाएंगे गुरु और रूहानी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आज तो हम आपके संडे को बना देंगे फंडे। लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको सास बहू और बेटियां के कुछ हैप्पी मोमेंट्स। जी हाँ, यहाँ तो हमारी सास बहू और बेटियां की एयरलाइन है एब्सोल्युटली तैयार, खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। तो आप भी हो जाएं हमारी इस एयरलाइन पर सवार, लेकर चलेंगे हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर, क्योंकि यहाँ तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रही है आप सबका इंतजार।
0: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में मन्नत ने हाथ मिला लिया है सम्राजी के साथ और अब दोबारा शुरू हो रही है मेजबानी, जिसके लिए मन्नत काफी एक्साइटेड है।
5: हेलो एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम किसी को दान कर देना तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अनाथ बच्चों की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आशा करती हूँ कि आगे चलकर भी मेजबानी के साथ मिलकर हम इन जरूरतमंद बच्चों की हेल्प करते रहें। दुआ है, उम्मीद है कि दुआ कबूल हो जाए। मेजबानी मेरे पति का सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत भाग है। ये वो जगह है जहाँ आया हुआ हर इंसान अपनापन महसूस करे, वो जगह जहाँ सिर्फ खाने के साथ साथ अपने पन की गर्माहट भी हो, जहाँ टूटे हुए दिल, थके हुए दिल, उन्हें सुकून मिले और बिछड़ी हुई रूहें फिर से मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ये सपना कभी ना टूटे।
0: भाई एक्साइटेड तो धैर्य भी है, तभी तो वो ले आया है ये पोस्टर जिस पर विक्रांत है। ऐसे में मन्नत इन पोस्टर्स को सभी जगह लगाने से मना कर देती है। इसके पीछे भी मन्नत का कोई प्लान जरूर है, क्योंकि वो सच जो जानना चाहती है।
6: अपनी दोस्ती निभाने में चूक गया था मन्नत जी, लेकिन अब ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
7: अपने दोस्त को पाकर वापस अच्छा लगा।
6: और अब ये दोस्त आपका कभी आपको छोड़ के नहीं जाए।
7: आप बस मुझे ये बताइए कि ये लगाने कहाँ पर है। मैं पता क्या सोच रहा था माना जी, एक हम लोग एंट्रेंस पे लगाते हैं, एक हम लोग वहां लगाते हैं और एक हम लोग ना बड़ा यहाँ पर लगाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लुक वेरी ब्यूटीफुल।
8: नहीं
7: तो फिर कहाँ लगाना है आप बताइए। कुमार मैडम जहाँ कहती है वहां लगा दो।
8: नहीं कहीं नहीं लगेगी।
7: क्यों?
8: क्योंकि देरी जी आज बच्चों का दिन है।
7: हाँ।
8: तो हमें फोकस सारा बच्चों पर करना चाहिए। हाँ विक्रांत होते तो वो भी यही चाहते।
7: मन्ना जी तो ये सब हम लोग विक्रांत के लिए ही कर रहे हैं, उसकी याद में कर रहे हैं।
8: कुमार आप ये सारे बैनर्स पोस्टर अंदर जाके रख दीजिए। मेरी जी आज का दिन उन बच्चों का है जिनके लिए हम उनकी उम्मीद है, उनकी जरूरत है।
0: इसी के साथ कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब मन्नत और विक्रांत का आमना सामना होगा।
9: बताओ
10: कौन सा सीक्रेट?
9: आज मैंने अपने ड्रीम में पापा को देखा और नानी माँ कहती थी मॉर्निंग के सपने हमेशा सच होते हैं, इसका मतलब पापा जल्दी हमारे पास वापस आ जाएंगे।
0: जी टीवी के सीरियल तुम से तुम तक में आज अनु अपने मायके आई है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए और देखिए अनु को देखकर दोनों कितने खुश हैं। ऐसे में अनु की मम्मी पुष्पा अनु के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आई है, महंगी वाली ड्रेसेस, और जब अनु पूछती है कि वो ये कहाँ से लाई है तो पुष्पा कुछ भी नहीं कहती है। वही अनु को शक जरूर हो रहा है कि उसकी माँ उससे जरूर कुछ छुपा रही है, लेकिन वो पापा के सामने भी पुष्पा से कुछ पूछना नहीं चाहती।
11: अनु ये देख नए कपड़े लेके आए, कपड़े तो बहुत प्यारे। पर आप कैसे मेरा मतलब, अरे तुम बस इन्हें रख और इन्हें पहनना ठीक है।
12: पुष्पा जी आपने ये ड्रेसेस कहाँ से लाए?
11: मैं लेके आई हूँ कहीं से, आप छोड़िए ना।
13: मुझे एक बात बताइए, मुझे फोन पर थैंक यू क्यों बोल रही थी, किस चीज के लिए?
11: थैंक यू तो मैं तो भूल ही गई, याद नहीं आ रहा, बोला होगा किसी काम से मैंने, याद आएगा तो मैं बोलती हूँ। मैं टिफिन पैक कर देती हूँ दामाद जी के लिए।
0: ऐसे में जब माँ बेटी को अकेले में बात करने का मौका मिलता है तो ये मौका भी चला जाता है क्योंकि मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं जो अनु के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं और अनु को देखकर काफी खुश है। ऐसे में गिफ्ट्स लेकर और सबसे मिलकर अनु काफी खुश है, लेकिन फिर वो निकल भी जाती है क्योंकि उसे टाइम पर जो पहुँचता है।
9: कर रहे हैं आपको, आप लोग हमेशा मेरे लिए मेरे अपने थे, हैं और रहेंगे, और मैं भी आप ही की हूँ। बस वो आज ना मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मुझे इससे जाना पड़ेगा, आने से ना पहुँचने के पहले मुझे नच के पहुँचना। मम्मी मैं से मुँह से मिलने लगूँगा।
11: तू नहीं समझ ले, ये सब मैं गाड़ी में रखवा दूँ।
0: तो भाई क्या है पुष्पा का राज, ये तो अनु पता कर कर ही रहेगी। अब देखना होगा कहानी में इसके बाद कौन सा ट्विस्ट आता है। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में एक खास कॉन्सर्ट के लिए ईशान अस्पताल पहुंचा था, वहां उसे मीडिया ने घेर लिया, लेकिन फिर भी ईशान की नजर नयनिका पर पड़ गई। भाई असल में नयनिका भी उसी अस्पताल में आई है जहां पर ईशान कॉन्सर्ट करने आया था कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए, और ऐसे में कहीं न कहीं ईशान को पता चल गया है कि नयनिका को कैंसर है जिसकी ट्रीटमेंट वो करवाने मुंबई आई है। नयनिका ईशान को देख तो लेती है लेकिन वो नहीं चाहती कि उसका सच ईशान को पता चले, इसलिए वहाँ से चली जाती है।
14: अभी ये तो है कि अगर सेलिब्रिटी आते हैं कहीं पर तो मीडिया आ ही जाती है, तो ईशान आया हुआ है यहाँ पर उसके काम के लिए, जो वो फंड रेज करने के लिए शो करने वाला है उसकी मीटिंग के लिए आया हुआ है, और नयनिका पहुँच गई है मुंबई। मुंबई में जैसे कि आपने ऑलरेडी एपिसोड्स देखे हुए हैं कि जो उसकी कलीग है डॉक्टर, वो उसको सजेस्ट करती है कि आप एक बार मुंबई जा ही रहे हो सेमिनार के लिए, तो एक बार कैंसर हॉस्पिटल में एक बार अपनी रिपोर्ट्स दिखाकर आ जाओ। तो वहाँ पर वो दोनों टकराते हैं, तो अभी जो आपने सीन शूट किया ये वो सीन है, और नयनिका देख लेती है उसे पर वो इग्नोर कर देती है की यहाँ पर अभी उसको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी घर के बहुत ताने सुनकर आ रही है. सी नौनिका की लाइफ में उसकी बेटी के अलावा और कोई है नहीं, तो वो हॉस्पिटल में भी यही कहती है कि मेरे लिए कोई इस समय खड़े रहने वाला है नहीं, तो मुझे अकेले ही अपनी ट्रीटमेंट खुद करवानी पड़ेगी. तो जब उसको ईशान का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो ना चाहते हुए भी, बोलते ना आपके अंदर जिस चीज़ की कमी होती है आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते ही हो.
0: ईशान भी कहां हार मानने वाला है, देखिए कैसे वो अस्पताल के अंदर चला गया है सच जानने के लिए, और कहीं ना कहीं उसे पता चल ही जाएगा कि नौनिका को कैंसर है. अब ऐसे में ईशान ही बनेगा उसका सहारा.
10: यहाँ पे नौनिका, एक्चुअली मैं तो मुंबई में रहता हूँ और मैंने फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ बच्चों से मिलने, उनके साथ लंच करने के लिए. तो अचानक से देखता हूँ कि मतलब नौनिका भी वहाँ पर है. सो दिस इज हिट एंड मिस वाला जो होता है जनरली वो है. और इतने एक हफ्ते के बाद जनरली जब हमारी फ़ोन पर बातें हो रही थी तो नौनिका अचानक से मुंबई में दिखती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है ईशान के लिए और वो खुश भी है. पर अंदर जाके पता चलता है कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हो गया.
4: अब संडे के ब्रंच प्लान में भी आ जाता है ट्विस्ट, जब ना मिले आपको रिजर्वेशन आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में. ओ माय गॉड, अब आप क्या करेंगे? खैर देखिए, ऑप्शंस बहुत हैं आजकल कैफेज और रेस्टोरेंट्स में, तो कहीं ना कहीं आपको बुकिंग जरूर मिल जाएगी. अब वो अलग बात है कि यहाँ पर वेटिंग टाइम हो, लेकिन हम नहीं करवाएंगे आपको बिल्कुल भी इंतजार. लेकर हाजिर हैं आपके लिए सीरियल्स की ये कहानियों के सारे ट्विस्ट, वो भी एक साथ. लेट्स ट्विस्ट.
15: पैसे अलग नहीं रह सकता चाचा, मैं नहीं रह सकता पैसे.
0: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में कोर्ट रूम में शुरू हो चुका है ड्रामा, जहां पर अपराजिता और ललित के रिश्ते पर बातें चल रही हैं.
16: मैं मांगता हूं, परंतु ये मेरा परम कर्तव्य है ना ललित जी, कि मैं न्यायाधीश महोदय के सामने सत्य ही प्रस्तुत करूँ, और सत्य कड़वा होता है आप जानते हैं. धैर्य रखिए, संयम रखिए.
0: ऐसे में देखिए कैसे अपराजिता पर ही लगाए जा रहे हैं इल्जाम, उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसे में अपराजिता सब कुछ सह रही है.
17: मैं वो पार्टी उनके घर पे थी, मैं ऑफिस गई थी.
16: जब उत्सव घर पे मनाया जा रहा था तो आप कार्यालय क्यों पहुंच गई अपराजिता जी?
17: जानती थी वो ऑफिस में मेरा इंतजार कर.
16: माननीय न्यायाधीश महोदय, अमूमन कर्मचारी जो है वो बॉस का इंतजार कर रहा होता है, पर यहाँ बॉस कर्मचारी का इंतजार कर रहा था. रात में ऑफिस में एक अमीर अविवाहित व्यक्ति और एक महिला पूरी दुनिया को छोड़कर चोरी चोरी चुपके चुपके जन्मदिवस मना रहे थे.
0: भाई कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोर्ट के बाहर भी देखिए कैसे ललित और उसकी माँ अपराजिता पर इल्जाम लगा रहे हैं. ऐसे में अपराजिता के भी मम्मी पापा आ जाते हैं और बातें इतनी बढ़ जाती है कि अपराजिता ललित को थप्पड़ जड़ देती है.
18: देखिए
15: नहीं अम्मा, बस बस इसे मत बोलो.
18: मुझे बीवी जी पे पूरा भरोसा है, वो कोई ऐसी नहीं है.
15: वो मेरे लिए सीता माता की तरह पवित्र हैं.

0: इसी के साथ कहानी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अपराजिता को पता चलेगा कि रक्षित उससे प्यार करता है।
1: आप प्यार करते हैं मुझसे? कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपराजिता, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। आई लव यू अपराजिता, लव यू अपराजिता, लव यू अपराजिता, लव यू अपराजिता।
2: हाँ करता हूँ मैं तुमसे प्यार। मेरे दिल की बात तो जान ली, पर तुम्हारा जवाब क्या है? तुम्हारा जवाब क्या है? तुम्हारा जवाब क्या है?
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में हो रही है अंश और प्रेरणा की शादी, और शुरू हो चुकी है शादी की रस्में। लेकिन रस्मों में तमाशा ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पर घर आए मेहमान दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में शुरू हो गया बवाल, और अनुपमा ने भी चुप्पी नहीं साधी, वो भी इन सभी को पलट जवाब दे रही है।
3: 100 बार वही बात आप लोगों से कह चुकी हूँ, फिर से कहूंगी, जब जब आप पूछेंगी तब तब यही कहूंगी कि ये मिस्टर दिग्विजय सूद हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरे दोस्त। वो दोस्त जिन्होंने मेरा साथ तब दिया जब सर के ऊपर से छत ने भी साथ छोड़ दिया था।
4: तो फिर चलिए आपके संडे को भी बना देते हैं हम फंडे। बताइए कैसे, क्योंकि अब लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट सितारे के पास, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू अर्पित या नहीं ये प्यारी सी मुलाकात। कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आपको इनके पास।
5: मैं पांडुपुत्र भी हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो चुका।

0: सुभाष सिंह का होगा मेकओवर। दिखेगा हस्तिनापुर के वीर के भीम का अंदाज। सुभाष संग करेंगे सेट की सैर। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं सुभाष सिंह, जो सोनी सब के सीरियल हस्तिनापुर के वीर में निभा रहे हैं भीम का किरदार।
1: रस्सी पकड़ के चलो, अरे सामने देखो।
2: बस भीम भैया बस, हम आपकी बातों पे ध्यान दें, हाथी को बचाने पे।
1: मैं तो इन दोनों की एकाग्रता की परीक्षा ले रहा था।
3: भीम भैया वो देखिए फल।
1: तुम्हें क्या लगता है हर समय मैं भोजन के बारे में सोचता रहूंगा, जो इस संकट की घड़ी में मुझे फल खाने के लिए बोल रहे हो?
0: वैसे इससे पहले वो नजर आ चुके हैं सीरियल अनुपमा और दो दुनिया एक दिल में, और अब वो माइथोलॉजिकल शो में निभा रहे हैं भीम का किरदार। आज हम सुभाष संग करेंगे खास मुलाकात, जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें, देखेंगे कैसे होता है उनका मेकओवर, कैसे वो सुभाष से भीम के किरदार में ढलते हैं, भीम के लुक में क्या कुछ खास है, साथ ही करेंगे इनके सेट की सैर, मिलेंगे इनके रियल परिवार से और होंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस डे आउट की, सीधा चलकर सुभाष के सेट पर। तो भाई सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले सुभाष ने करवाई अपने सेट की छोटी सी सैर और बताया कि इनके सेट पर क्या कुछ खास है।
4: नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं भीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है हस्तिनापुर के वीर के सेट पे। सो बेसिकली आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैं कैसे रेडी होता हूँ और पूरा सेट घुमाऊंगा। सो रेडी रहिए और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा भी ये सेट देख रहे हैं आप, ये मेले का सेट है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा मेले का सीन होता है और बहुत से सीन होते हैं इसके अंदर, और इसी के साथ में हमारा एक अंदर सेट है, राज्यसभा लगती है जहाँ पे, उसके उधर है जहाँ पे मेरा भी नागलोक लगा था, अब गुरुकुल लगने वाला है। तो बेसिकली ये जो सेट है पूरा यूज़ किया जाता है और आप देख सकते हैं ये सब रियल नहीं होता, ठीक है? ये बस सेट किया, रेडी किया जाता है, और जो आर्ट टीम है, प्रोडक्शन है, बिल्कुल मेंटेन के साथ इन्होंने बिल्कुल रेडी के साथ कर रखा है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी तरह पत्थर से और मतलब बहुत अच्छी तरह डेकोरेशन का सामान भी बना रखा है, और मैंने तो इनको बोल भी रखा है कि मैं लेके भी जाऊँगा आपके सामान। फॉर एग्जाम्पल दिस हाथी, हाथी मेरा सबसे फेवरेट एनिमल है, बिकॉज भीम का भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसके अंदर 8000 शक्ति आने वाली है, आप देखना, ठीक है? सो ये जो हाथी है मेरा फेवरेट है, मैंने इनको पहले ही बोल रखा है कि ये मैं अपने घर लेके जाने वाला हूँ, तुम जो का हाँ करो या ना करो, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा ये रेडी कर रखा है मटका लगा के, ये देखिए ये पूरा यूज़ होता है हमारे सेट पे पूरा, और ये देखिए ये सब मेले के सामान है हमारे।

0: कभी कभी हम सेट में भी यूज करते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने मेकअप रूम में। ये हमारे विदुर जी का रूम है, अभी आए नहीं है। ये हमारे दुर्योधन का रूम है, वो आ चुका है। हाय भाई, सो ही इज माय ब्रदर। हम दिखते हैं सामने आप सभी को टीवी में राइवल, बट इन रियल लाइफ वी आर ब्रदर। इसके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना ये नहीं है, ऐसा हो जाता है। और ये मेरा सबसे प्यारा भाई दुशासन, बहुत क्यूट भाई है मेरा, ठीक है। इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज हम दोनों की ज़्यादा अनबन बहुत होती है, लेकिन जब ये बात नहीं करता ना, मेरे दिल में ऐसा हो जाता है कि बात क्यों नहीं कर रहा, इससे मुझे बात करनी है। ये बहुत क्यूट बंदा है, ये दोनों ही बहुत क्यूट है। इवन मतलब हम दोनों लगते हैं ना हम तीनों की हम राइवल है, बट नहीं, रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे हैं। चलो भाई मैं रेडी होता हूँ, आइए हम मेकअप रूम में चलते हैं। सो दिस इज माई मेकअप रूम, जो प्रोडक्शन है मुझे प्रोवाइड की है, आइए।
1: तो भाई सेट की सैर करते हुए और अपने दोस्तों से मिलते हुए सुभाष पहुंच गए हैं अपने मेकअप रूम में, जहां अब शुरू होगा इनका मेकअप और सुभाष भीम के किरदार में ढलेंगे। लेकिन उससे पहले सुभाष मिलवा रहे हैं अपने कुछ खास दोस्तों से।
0: सो बेसिकली ये मेरा मेकअप रूम है और ये मेरे टेडीज हैं, बिकॉज मैं अपनी मम्मा के पास नहीं रहता, मम्मा पापा और भाई रोहतक रहते हैं। सो मैं ये सब यहाँ लेके आता हूँ सेट पे कि मुझे अकेला फील ना हो। सो ये है मेरा भाई, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, सुनील ने, तो इसका नाम सुनील है। ये क्रिएटिव मैम ने दिया था मुझे आते कि भीम तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो भीम का, तो मेरी तरफ से तुम्हें ये। और ये मम्मा, क्योंकि मैं इसको हक करके सोता हूँ और मम्मा की याद ये नहीं आने देता, ठीक है। और ये मेरी प्यारी अज्जू दी, जो हमारा हेयर करती है, ठीक है। और ये मेरे को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करती है, डांटती है, प्यार करती है बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। और ये रौनक दादा, हमारे मेकअप आर्टिस्ट। सो आज ये हमें रेडी करने वाले हैं, सो गेट रेडी विद मी।
1: तो मेकअप की शुरुआत हो चुकी है भाई। वैसे तो इस किरदार में ज्यादा मेकअप नहीं है, लेकिन लुक पर खासा ध्यान दिया गया है, चाहे फिर वो हेयर स्टाइलिंग हो या फिर हो भीम के किरदार के लिए सारी ज्वेलरीज, टीका और छोटी छोटी चीजें। भाई माइथोलॉजिकल शो है, भीम का किरदार है, ऐसे में हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है ताकि भीम के किरदार के लुक में कोई भी चूक ना हो जाए। इसीलिए विग लगाने से हो गई है शुरुआत।
0: जो मैं मेडिटेशन कर रहा था, ये इसीलिए कर रहा था बिकॉज जब हम सेट पे रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कहीं और भी होता है, ठीक है। और अभी जब मैं भीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्टर सर ने ही रिकमेंड किया है कि सुभाष तू जितना हो सके म्यूज़िक को सुन, जैसे शांत म्यूज़िक और थोड़े एनर्जेटिक म्यूज़िक, बिकॉज उससे क्या होता है कि एक अंदर का कैरेक्टर जग जाता है अलग सा ही। अभी मैं सुभाष हूँ, नॉर्मल हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं भीम आता हूँ, भीम आते समय थोड़ा शरारतीपन, रूखापन और थोड़ा एनर्जेटिक सब चाहिए होता है। सो बेसिकली मैं आता हूँ, सबसे पहले ये सब मेकअप और हेयर दीदी को पता है कि मैं आता हूँ, बैठता हूँ, अपना स्पीकर लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर गाने चला के अपना लगा रहता हूँ। और आते हैं सभी, रेडी करते हैं, स्क्रिप्ट आती है अपनी, उस पर पहले प्रिपरेशन करके फिर शीशे में एक बार परफॉर्म करके देन हम वहाँ जाते हैं। मेकअप वाले जो है ना, वो हमें बिल्कुल अलग ही रेडी करते हैं। जैसे अभी मैं सुभाष हूँ, आपको दिख रहा हूँ ना, मैं रेडी होने के बाद लगूंगा ही नहीं मैं सुभाष हूँ। मैं मतलब ड्रेसअप होता है, जब मेकअप होता है तो मुझे तब भी वाइब आ जाती है कि हाँ चल मैं भीम हूँ, अब मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे वो करना है। और जब मैं सेट पर रहता हूँ तो मैं बड़ों से भी थोड़ा सीखता हूँ, जैसे भीष्म पितामह, कुंती माँ की माँ, मैं इसको कैसे करूँ, पितामह मैं इसको ऐसे, मैं कभी भी उनको सर मैम करके नहीं बुलाता, बेसिकली उनको पिता माँ, माँ ये सब करके, ज्येष्ठ पिताजी, बड़ी माँ। सो इससे क्या होता है ना, मुझे उनके साथ रिलेशन मिल जाता है कि मैं उनके साथ कैसे रहूँ, उनके साथ कैसे बैठूँ। क्योंकि जब हम किसी को सर मैम बोलते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा और रिस्पेक्ट हो जाता है कि इनसे कैसे बात कर सकता हूँ मैं, सर हैं, मैम हैं। लेकिन जब मैं माँ करता तो माँ वाली फील आती है, पिता माँ बात करता तो थोड़ा वो दादाजी वाली फील आती है। तो जब भी मैं अभी नागलोक का सीन कर रहा था, नागलोक का सीन करते समय 10 दिन में वहाँ शूट कर रहा था, तो वहाँ पे शूट करने की वजह से मैं 5 दिन इन लोगों को इतना मिस किया, वहाँ शूट खत्म हुआ मैं इधर आके बैठ जाता, भाई लोग क्या कर रहे हो, मम्मी क्या कर रहे हो, दादाजी क्या कर रहे हो, तो ये लगा रहता है सेट पे पूरा। मतलब सबसे ज़्यादा मस्ती मैं करता हूँ सेट पे, डांट भी मैं ही खाता हूँ और प्यार भी मुझे मिलता है, ये रियल बात है। बेसिकली ये नया लुक है, हमने अब तक रिवील नहीं किया था बट आज तक में रिवील हो रहा है। सो अभी यहाँ पे हेडगियर आएगा, अभी यहाँ पे जूड़ा बनेगा, उसके ऊपर भी एक हेडगियर आएगा, तो यही है जो मुझे सुंदर बनाती है। और ये
1: भीम के किरदार के लिए अब लगेगा ये खास टीका, हल्का मेकअप होगा और हेयर स्टाइलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा

0: ये भी जब टीका लगता है ना, इसके लगने के बाद भी एक अलग सी एनर्जी आती है जो बहुत मज़ा आता है इसको लगने के बाद, क्योंकि इसके अंदर ये दो हाथी के दांत हैं, आप ढंग से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ही है भीम की, ये भीम का टीका है, दो दांत, फिर बीच में एक चांद, और आप देख सकते हैं ये अलग से इन्होंने दे रखा है। बिकॉज रेड कलर इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी है, सो वो शो करता है कि जो रेड टीका है वो एग्रेशन है, ठीक है। और ये हमारे कुलदीप भैया हैं जो हमारे को स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन सभी मेरी मदद जब मैं यहाँ आया था, जब मेरा मॉकशूट हुआ था, तो इन्होंने ही मुझे रेडी किया था। और इवन मेरे सामने बहुत से लोग आए थे कि बहुत भीम का ऑडिशन देने आए थे, तो यही एक पर्सन है जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि तू अच्छा करेगा, और अच्छा किया भी मैंने। और इन्होंने ही बोला था कि मैं गारंटी देता हूँ हो जाएगा, और हुआ भी। सो आधा पार्ट इनका भी है, सपोर्ट बहुत किया मेकअप ने, प्रोडक्शन में आशुतोष भैया, राजन सर, जितने भी प्रोडक्शंस के मेंबर्स हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेकअप ने, हेयर दीदी ने, सब ने मुझे कहा कि तू भीम कर सकता है, सुभाष तू कर सकता है, तू ट्राई कर। तो मतलब जितने भी मेकअप है, जितने भी प्रोडक्शन है, सब ने मेरे को भीम बनने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो ड्रेसेज है ना, आप ड्रेसेज हो गए, इतनी अच्छी फिनिशिंग है ना जो केतकी मैम ने बना के दे रखा है।
1: तो जब तक सुभाष का मेकअप चल रहा है, तब तक वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायलॉग्स याद करने भी तो जरूरी है ना।

से बात करें हेयर स्टाइलिंग की तो यहाँ पर भीम के किरदार के लिए सुभाष को दिया गया है ये मुकुट या यूं कहें हेड गियर। बांधी जा रही है चोटी और हेयर एक्सेसरीज भी लगाई जा रही है

0: मेकअप और हेयर स्टाइलिंग तो हो गई, अब बारी चेंज कर बाकी की ज्वेलरी पहनने की।
1: सो गाइस, अभी मेरा मेकअप डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये पूरा गेटअप रेडी किया है मेरा अज्जुदी और रौनक दादा ने। सो अभी मैं आप सभी को मिलता हूँ ड्रेसअप होने के बाद, ठीक है। सो ये मेरा ड्रेस है, ये मेरे ड्रेस दादा हैं, ठीक है, रोहित दादा बहुत अच्छे हैं। और ये नया कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने, नया कलर। सो इसको मैं रेडी होके दिखाता हूँ आपको,
2: चलिए।

0: कॉस्ट्यूम पहन ली गई है। अब बारी ये सारी एक्सेसरीज पहनने की, जिसमें है भारी भरकम मालाएं, बाजू बंद और बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं आखिरकार भीम के किरदार में सुभाष किस तरह से तैयार हो रहे हैं।
1: सो बेसिकली अब मैं पहनने वाला हूँ ज्वेलरी। तो देखिए, ये है मेरी कमर बेल्ट जो कमर में आती है। ये मेरे जो ज्वेलरी अभी चेंज हुई है, सो बेसिकली ये मुझे कब मिलती है, 8000 शक्तियों के बाद। ठीक है, तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेंगे अभी, आप देखना। ये मेरा गले का है, ये मेरे पैर के कड़े हैं, ये रिंग्स हैं मेरी हाथों की, ये बाजू बंद, और ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है बिकॉज आप देख सकते हैं कितने बड़े भी हैं। और इसको पहनने के बाद ना ऐसा लगता है कि शक्ति सच्ची में आ गई है, ये इतने अच्छे क्रिएट करे गए हैं, मतलब बहुत अच्छे ड्रेस हैं। केतकी मैम को तो मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और बाकी इन लोगों को भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो यही करते हैं ना, संभाल के रखते हैं। और कान पे झूरेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। मेरे हिसाब से ना भीम की ज्वेलरी हैवी होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर वो हैवी नहीं होगी ना तो उससे वो फील नहीं आएगा कि एनर्जेटिक है और भारी है वो। ठीक है, और मतलब ये ज्वेलरी अगर मैंने पहले लुक टेस्ट हुआ था उसमें बिल्कुल हल्की हल्की ज्वेलरी थी, तो चैनल ने ही बोला कि नहीं भीम दिखना चाहिए, बल्क दिखना चाहिए, तो उन्होंने मेरी ज्वेलरी बढ़ाई है। तो मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है मेरी। बाकी आप देख सकते हैं ये बाजू बंद लग रहा है अभी, मेरे को कड़े लगेंगे, उसके बाद जो ज्वेलरी के साथ एक अलग सा ही लुक क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उसके साथ ना एक ही टाइट होता है तो ये बाइसेप दिखाने में मजा आता है। ठीक है, हाथ में कड़े आते हैं तो शक्ति आ गई, गले में आता है मतलब बस सबका प्रेम है इसके अंदर, ये कमर में आता है मतलब मेरी माँ मेरे साथ है और मेरे चारों भाई मेरे साथ है, तो मुझे ये फील होता है, और हाथ में जब अंगूठियाँ आ रही है तो ऐसा लगता है शकुनी मामा अंदर आ गया है। सो बेसिकली मैं सबको महसूस करता हूँ जब मैं ज्वेलरी पहनता हूँ कि हाँ ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ हैं, इनको महसूस करते करते मैं ज्वेलरीज पहनता हूँ। बस यही है, आप बस हमारे हस्तिनापुर को प्यार दीजिए, जितना हो सके शो देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, और बिकॉज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाभारत का बचपन दिखाया जाए, और जो दिखाया जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है। मैं खुद देखता हूँ तो खुद रो देता हूँ, बिकॉज जब मैं टीवी पे अपने आप को देखता हूँ या अपने भाइयों की एक्टिंग देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जुन का अभी एक एपिसोड में सीन आया था, अर्जुन युधिष्ठिर भैया, बहुत अच्छा एपिसोड थे, मैं रोया उनको देख के, जो उन्होंने मेरे को रियलनेस दिखाई ना। तो बेसिकली जो एपिसोड अभी आपने देखा था जब मैं घूम हुआ था एपिसोड में, तो उसमें आपने खुद देखा होगा कि मैं रो रहा था, मैं नहीं, मेरे भाई रो रहे थे, सॉरी। तो मेरे भाई रो रहे थे, तो ना जब वो रो रहे थे और जब वो दुर्योधन को बोल रहे थे ना, मैं उस टाइम रो रहा था एपिसोड देखते टाइम, बिकॉज उनकी क्या रियलनेस थी, और वो मेरे भाई नहीं है, रियल भाई नहीं है, लेकिन जब वो परफॉर्म ऐसे कर रहे हैं ना, मेरे को रोना आ जाता है कि ये मेरे रियल भाई से भी बढ़कर है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप यही कॉम्बिनेशन को देखें, हमारी यही यूनिटी को प्यार दीजिए, और हस्तिनापुर के वीर को देखना बिल्कुल भी मत भूले, रात 9 बजे ओनली ऑन सोनी सब। सो अब मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी, दैट्स माई फाइनल लुक, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक वॉक करके दिखाता हूँ।
0: तो भाई देखा आपने, अब सुभाष सुभाष नहीं रहे हैं, बल्कि इनका तो किरदार ही बदल चुका है, ये बन गए हैं भीम।

0: पर आकर गिद बैठे और पर नालों से खून बहे।
1: सो लेट्स गो, अब मिलते हैं सभी से, उसके बाद में कर लेंगे।
0: कौन गिरा है, कौन कटा है, किस मातम है, कौन कहे।
1: सो अभी हम चल रहे हैं सेट पे, ठीक है, तो अभी वापस चलते दुर्योधन और दुशासन के पास। तो दुशासन, देखिए दुशासन अभी रेडी हो रहा है और दुर्योधन यहाँ पे अपने बाल कर्ली करा रहा है। और ये है हमारी पूजा दी, ये भी मुझे बहुत सुंदर बनाती है, ठीक है। और ये दुशासन की मम्मा, मेरी फ्रेंड भी है और मम्मा की तरह डांटती भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सेट पे। तो अब चलते हैं हमारी राज्यसभा में। सो अभी हम जा रहे हैं राजभवन, जहाँ हमारी राज्यसभा लगती है। ये सेट है मेरा पूरा,

0: सो मेरा रूल है, सबसे आके मिलो, कैमरा को आके प्रणाम करो, बिकॉज़ यही है जो हमें टीवी पे बहुत सुंदर दिखाता है, ठीक है। तो अभी ये कक्ष रेडी किया जा रहा है दुर्योधन और दुशासन का, क्योंकि हमारा अभी एक सीन है उसमें, इसलिए। और ये है मेरे प्यारे यार सर, आलम सर, ठीक है, ये मेरे को बहुत प्यार करता है और मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। ये है हमारे डायरेक्टर सर, रोहित सर, तो ये भी मुझे बहुत डांटते हैं लेकिन मुझे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। ये है हमारे सैंडी सर, तो ये कैमरामैन है हमारे, जो हमें बहुत सुंदर दिखाते, ये वही है, ठीक है। और ये मेरी मीता दी, क्रिएटिव टीम में है, बहुत प्यारी है, मुझे खाने के लिए कम देती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज मुझे खाने के लिए नहीं देती कभी भी, बोलती है बस दिलाऊंगी दिलाऊंगी दिलाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरे हस्तिनापुर का ये बेडरूम। तो ये देखो, ये हमारा लैम्प है जिससे दिया जलता है और बहुत अच्छा, मतलब ये जलने के बाद बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। और अब चलते हैं हम फलों के पास। देखिए रोज आते हैं हमारे लिए फल, रोज देख सकते हो, खा के दिखाऊं, नकली है ऐसी एक भी चीज नहीं जो हमारे पास असली आई हो, सारी नकली है। मतलब फील आता है राजा वाला कब, जब हम ऐसी चीज में बैठे हो, या सिंहासन में या बेड में, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल राजा वाला बेड बना रखा है, सिंहासन भी उधर है, अभी उधर लाइटिंग नहीं बना, मैं दिखाता, ठीक है। ये भी हमारा अलग से लैंप है, ठीक है। और मतलब ये दुर्योधन और दुशासन का रूम है, आप देख सकते हैं हमारा रूम छोटे छोटे हैं। और ये हमारी बैठक है, ठीक है। और ये हमारा संदूक जिसपे हम अभी कुछ छुपाने वाले हैं, ठीक है, सीन में है ये सब। सो बेसिकली ये सब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तकिए, बेड वोड के सबके सामान बने जाते हैं, ठीक है। ये सब पूरे आठ दादा का सा एरिया है, पूरा आठ दादा का। मैं देखूँ यार देखूँ, लेकिन ये मेरा नागलोक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी शूट हुआ है क्रोमा में शूट हुआ है हमारा नागलोक। तो गाइज यहाँ पे हमारा नागलोक बना था, तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा शूटिंग किया, और जो मुझे शक्तियाँ प्रदान हुई है यहाँ से प्रदान हुई थी वासुकी नाग जी से, तक्षक नाग जी से। तो जब इन लोगों का पैकअप हुआ था ना, मैं बहुत रहा, क्योंकि इनके साथ जब मैं आठ दिन तक रहा वो फील ही अलग था, बिल्कुल नाना जी वाला, बिल्कुल तो मैं सबके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ।
1: सुभाष अभी छोटे हैं, फिर भी उन्होंने कई सारे एड्स किए हैं, दो सीरियल्स किए हैं, और अब वो भीम के किरदार में नजर आ रहे हैं हस्तिनापुर के वीर में। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस करियर की कहानी।
0: जो मेरी जर्नी है बहुत डिफिकल्ट से रही है, लेकिन मैंने खूब मेहनत करी अपनी इस जर्नी में, मैंने 25 प्लस एड्स कर ली, उसके बाद मैंने बहुत से शोज करे हैं, जैसे अनुपमा, आपका दो दिल एक दुनिया करके भी एक शो था, उसमें भी एमएलए का बेटा बना था मैं, ठीक है। सो बेसिकली जो मेरा कंटिन्यूटी ट्रैक किसी में नहीं था लीड एज अ, बट अभी मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं अभी करेक्टर प्ले कर रहा हूँ भीम का, वो आप सभी पसंद करें, उसे देखें जितना हो सके, और समझें कि कहानी क्या है, और मेरे से रिलेट कर पाए कि मैं अपने भाइयों को लेके कितना प्रोटेक्टिव हूँ, माई माँ को लेके अपना मैं कितना ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। मतलब मैं भाई अपने रियल पेरेंट्स से भी अलग हूँ, ठीक है, तो मैं उन्हीं को फील करके रोता हूँ कि मेरी माँ है ये। जब भी मेरी कुंती माँ मुझे टच करती हैं तो मुझे अपनी रियल माँ की याद आती है, जब भी भाई लोगों के साथ मैं मस्ती करता हूँ तो मुझे अपने सगे भाई की याद आती है कि मेरा भाई भी ऐसा करता था, मेरी माँ भी ऐसी करती हैं। सो बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि आप हस्तिनापुर के वीर को देखिए, उसे प्रेम दीजिए, जितना हो सके सबको बताइए, बस यही कहना चाहता हूँ, और सास बहू और बेटिया को देखना बिल्कुल ना भूले।
1: तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार कहानी हस्तिनापुर के वीर की देखने के लिए। अब वक्त हो चला है सुभाष को बाय बाय कहने का, क्योंकि शूटिंग भी तो शुरू करनी है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: संडे की ये छुट्टी जो होती है कंप्लीटली रॉकिंग, लेकिन अगर संडे की छुट्टी पर भी करना पड़े आपको वर्क फ्रॉम होम, ओ माय गॉड, डेफिनेटली हो जाएगा शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास, ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ ओनली फॉर यू। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। भाई आ गया है लॉकअप सीजन 2 और बीती शाम हुआ इसका ग्रैंड लॉन्च। ऐसे में कई सारे कंटेस्टेंट्स आए और सभी ने किए कई खुलासे। सबसे बड़ा खुलासा किया आकांक्षा चमोला ने, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर ये कंफर्म किया कि गौरव खन्ना से उनका डिवोर्स होने वाला है और एक साल से वो लोग अलग रह रहे हैं, जिसे सुनकर सभी काफी शॉक हो गए और फैंस को भी जोर का झटका लगा है।
3: So me and Gaurav are getting a divorce.
4: What?
3: Yeah, we've been separated, living separately for the last 1 year.
1: इसी के साथ हर्षा चोपड़ा ने भी एक खुलासा किया है, जहां उन्होंने बताया है क्यों वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया और साथ ही उनका बेस्ट फ्रेंड भी उनसे अलग हो गया। भाई कंट्रोवर्सी अभी से ही शुरू हो चुकी है।
5: I lost my friend and my girlfriend at the same time. My girlfriend cheated on me with my best friend. And from that time onwards, I'm a little wary. I'm a little. That's it. Yeah, that is my secret. That's my secret.
6: मिलेगा क्या?
1: नजर डाल लीजिए जूही मूवी के इस नए प्रोमो पर, जहां पर संयम भड़क गया है। जूही पर दिखेगा इनका अनोखा अंदाज।
6: पानी मिलेगा क्या?
7: गाड़ी धोने के लिए कि पीने के लिए?
6: अपने सर पे मारने के लिए, गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
7: आपको टेम्परेचर चेक करना चाहिए, हो सकता है कि बुखार आ रहा हो या हीट स्ट्रोक। अगर हीट स्ट्रोक हुआ तो फिर
6: वर्ड लिमिट क्या है तुम्हारी? 50, 100, 500, 1000, दिमाग की नसें डिस्को कर रही है मेरी।
8: सर जी कौन से जन्म का बदला है ये?
7: आप भी पेड़ों से बात करते हो?
1: देख लीजिए सोनाक्षी और जहीर का ये वीडियो, जहां दोनों मस्ती करते नजर आ रहे हैं शूटिंग के बीच। अर्जुन और रश्मिका मंदाना की बन गई है जोड़ी। ये दोनों फिर एक बार बड़े पर्दे पर साथ साथ नजर आएंगे। एटली लेकर आ रहे हैं नई स्काई फाई फैंटेसी एक्शन फिल्म, जिसका नाम होगा ड्राका।

0: होगा बवाल।
1: मेरे घर में ये सब नहीं होगा। जिसको जिसकी अंगूठी जिसे पहनानी इस घर से बाहर जाके पहनाए, यहाँ ये सब नहीं होगा। चलो बाहर।
2: ये क्या तरीका है हा?
1: ये दोनों बाहर वाले जिनका हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इनकी शादी हमारे घर में नहीं हो सकती।
3: क्यों आए यज्ञात्री, वापस आओ।
4: तो क्या कुछ हो रहा है रीत और राघव की जिंदगी में आज? क्या ये दोनों भी सेलिब्रेट कर रहे हैं संडे वाली छुट्टी, या फिर से आ रहा है इनकी कहानी में कोई नया ड्रामा? वैसे मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों को भी मिले एक ब्रेक, क्योंकि इन्हें कहाँ मिलती है चैन की सांस। इनकी कहानी में है ड्रामा, नई नई सिचुएशंस, कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब तो हम चाहते हैं कि इनके चेहरे पर हो बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट, लेकिन जैसे ही हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही कहानी में आ जाता है एक नया ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
0: रीत और राघव के घर आई खुशियाँ।

0: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में राघव ने रीत की खुशी के लिए एक बच्चे को गोद ले लिया है और आज निभाई जा रही है उस बच्चे के नामकरण की रस्म, जहां पर पूरा परिवार बहुत खुश है और रीत तो और भी ज्यादा खुश है। तभी तो देखिए कैसे अपने बच्चे को गोद मिलाकर वो पंडित के सामने बैठ जाती है और बच्चे का नाम सुझाती है। पंडित उस बच्चे का नाम भी रख देते हैं। ये सुनकर रीत और राघव बहुत खुश है। इससे पहले कि पंडित जी रस्मों के आगे का काम करते, खुशियों को लग जाता है ग्रहण, क्योंकि आ जाती है बिंदिया बनकर उस बच्चे की माँ और देखिए कैसे दौड़कर जाकर वो रीत की गोद से अपने बच्चे को ले लेती है। भाई बिंदिया के आने से तो सभी घर वाले हैरान हैं, लेकिन बुआ जी वो हो रही हैं बेहद खुश, क्योंकि ये तो उन्हीं की चाल है। और तो और वो मौके का फायदा उठाकर सभी के सामने रीत को कोसती भी है कि रीत किसी और के बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर रीत के दिल को और भी धक्का लगता है, लेकिन रीत हार नहीं मानती क्योंकि उसे शक हो जाता है। इसलिए देखिए कैसे वो जाते हुए बिंदिया और उसके पति को रोक लेती है और सच जानने की कोशिश में जुट जाती है।
1: आपने कहा था बच्चा चोरी हुआ, तो सबूत तो देना पड़ेगा ना। आपको कैसे पता कि ये बच्चा यहाँ है और सीमा ने इसे चोरी किया?
2: रिश्तेदार ने हमें बताया कि वो यहाँ रह रही है, हम लोग यहाँ आ गए।
1: देखिए हमें हमारा बच्चा मिल गया, अब हम यहाँ से चल रहे। अच्छा भैया रुकिए, अगर आपका बच्चा चोरी हुआ तो आपने पुलिस में कंप्लेन की होगी, रिपोर्ट लिखवाई होगी, राइट? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वही डिसाइड करेगी कि ये बच्चा आपका है या नहीं। और सीमा ने इसे चुराया था या आप लोग झूठ बोल रहे हैं?
3: एक्चुअली पूनम को तो कुछ नहीं पता है, जो हमारे घर में जो नई मेहमान आई है मिस बिंदिया आई है रियांश की नकली माँ बनके, और बिंदिया डेफिनेटली बुआ का ही बोया हुआ बीज है फॉर श्योर। जहाँ तक हम सबको लगता है वो डेफिनेटली बुआ ने ही किया है, और बिंदिया बस यहाँ पे पैसों की वजह से है। बाकी वो आगे क्या साजिशें करती है, बुआ के साथ मिलती है, बुआ के अगेंस्ट जाती है, ये सब तो आगे पता पड़ पाएगा।
0: भाई रीत के सवालों ने तो न सिर्फ बिंदिया और उसके पति को डरा दिया, बल्कि बुआ जी भी हक्की बक्की रह

0: गई। इससे पहले कि रीत पुलिस को फोन करती, तभी आ जाता है मीना का कॉल और रीत उसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसने बिंदिया के बच्चे को क्यों चुराया। ऐसे में तभी सभी घर वालों को सारा माजरा पता चलता है कि मीना ये सारा काम पैसे के लिए करती है। इससे पहले कि रीत मीना से और कोई सवाल कर पाती, मीना का फोन कट जाता है और रीत हैरान हो जाती है। भाई मीना का सच जानने के बाद रीत और राघव दोनों ही हैरान हैं और बिंदिया वो तो अपने बच्चे को लेकर जाने लगती है, लेकिन रीत उसे रोक लेगी और वही लाएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि असल में तो बिंदिया उस बच्चे की माँ है ही नहीं, वो तो इस घर की शान और शौकत देखकर ललचा रही है और अब बैठकर प्लान बना रही है कि कैसे इस घर को लूटा जाए। तो वहीं दूसरी ओर रीत अपने बच्चे के कमरे में बैठकर इमोशनल हो रही है और राघव को ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो चीकू से कनेक्ट हो रही है और उसे चीकू के साथ अपनेपन का एहसास होता है।
1: एक्चुअली अभी ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। एक्चुअली रीत के ऊपर, रीत के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं अभी, वो काफ़ी ओवरवेम्ड है, काफ़ी इमोशंस हैं उसके अंदर, बिकॉज पहले उससे उसका बच्चा छिन गया, देन पीहू और मेरे और रीत के बीच में जो रिफ्ट आया पीहू की वजह से, राघव और रीत के बीच में ऑलरेडी रिफ्ट चल रहा है, एंड रियांश का वापस उसकी ज़िंदगी में आना किसी और ज़रिए से, वापस उससे दूर जाना, तो रीत एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट आगे जाके आई थिंक दैट कुछ अच्छा ही होगा। डेफिनेटली राघव एंड रीत विल फाइंड देयर वेज टू ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे का साथ देने के लिए वो एक दूसरे का साथ ढूंढ ही लेंगे।
0: अब कोई और समझे न समझे, लेकिन राघव रीत को बखूबी समझ रहा है और वो रीत का हौसला बढ़ाते हुए उसे दिलासा भी देता है कि वो एक अच्छी माँ है। इतना ही नहीं, राघव तो रीत से प्यार भी जता रहा है और उसके मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रीत उसके मन में हलचल हो रही है क्योंकि रियांश के साथ उसे अपनेपन का एहसास होने लगा है। अब उसे क्या पता कि रियांश उसका असली बेटा है। देखना होगा कि ये सच कैसे रीत के सामने आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: लक्ष्मी और श्रीनिवास, वैसे देखिए एक संडे डेट तो बनती है, एक संडे का दिन जहां आपको देना चाहिए वक्त एक दूसरे को, ताकि हमारे लिए भी आए ढेर सारा एंटरटेनमेंट और देखिए थोड़ा रोमांस वोमांस तो बनता है, ये तो है जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सीधा लक्ष्मी निवास के अंदर और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में आज, क्योंकि लक्ष्मी निवास में भी होता ही रहता है कुछ ना कुछ रोजाना। जी हाँ, ये जो इनकी नोकझोंक है ना, यही लेकर आती है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेट्स चेक इट आउट।
3: मैं ये शादी नहीं कर सकती।
0: राधिका ने लगाया शादी पर ब्रेक। शगुन में हुआ अपशगुन। निया के गायब होने पर लगा शादी को ग्रहण। सीटीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में लग गया है राधिका और वीर की शादी पर ब्रेक, क्योंकि निया गायब है। ऐसे में राधिका अपनी बेटी के बगैर शादी करना नहीं चाहती, इसीलिए उसने सभी के सामने ऐलान कर दिया है। और तो और राधिका का साथ वीर भी दे रहा है, वो भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर।
3: मैं ये शादी नहीं कर सकती। इस समय मेरे लिए निया को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि अगर वो नहीं है तो मेरे लिए किसी चीज के कोई मायने नहीं, ना इस शादी के और ना इन रस्मों के।
4: तुम होश में हो, क्या बोले जा रही हो?
5: मम्मी सही तो कह रही है राधिका जी, अरे ये शादी से ज्यादा जरूरी है निया, हमें तुरंत निया को ढूंढे जाना होगा और जब तक निया नहीं आती ये शादी नहीं होगी।
6: पर निया के आने के बाद आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, बच्ची से बढ़कर राधिका के लिए कभी कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट उसकी शादी की शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि मेरी प्रायोरिटी निया रहेगी। तो उसके लिए तो पूरी दुनिया रुक जाएगी ना, जब अगर निया उसके आसपास नहीं है। बट वीर बीइंग वीर, वो हमेशा से इतने सपोर्टिव रहे हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग रहे हैं कि वो भी, और उनको खुद को बहुत प्यार रहा है निया से। तो इसलिए दोनों ही शादी रोक के बैठे हैं कि पहले निया नजरों के सामने आ जाए, उसके बाद जो होगा वो होगा। तो निया के लिए डर लग रहा है राधिका को, एक माँ की ममता।
7: भाई राधिका जी इज ऑल पिंक टुडे एंड शी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस। कलर बहुत अच्छा लग रहा है इन पे। और जितनी भी वीर ने ड्रीम्स देखी है, जो भी कलर्स उसने इमेजिन किए हैं, उससे बिल्कुल अलग ही कलर में राधिका जी आई हैं। एंड शी इज लुकिंग कम्प्लीटली गॉर्जियस। आप देख सकते हैं भाई, मेरे बोलने पे गया, देखिए। ऑल गोज फॉर द विजुअल। सो या
6: ये एक्चुअली वी कॉल इट साफा ओनली ना, साफे में। ओह, मैं तारीफ करने वाली हूँ, उन्होंने एटीट्यूड में ऐसे देखा है।
7: नहीं नहीं, साफा,
6: ही ऑलवेज लुक्स हैंडसम। अभी साफे में और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये, और ये हमेशा अच्छे लगते हैं। मतलब मैं आज फिर भी इतनी रेडी हुई हूँ तो शायद अच्छी लग रही हूँ, हमेशा ही अच्छे लगते हैं। तो आज स्पेशल क्या ही तारीफ करूँ।
7: She's being too modest.
0: अब वीर ने तो ऐलान कर दिया है कि शादी में कुछ देर के लिए ब्रेक लगा है, फुल स्टॉप नहीं। ऐसे में तभी राधिका वीर के आगे हाथ जोड़ती है और अपनी बेटी निया को वापस लाने का आग्रह करती है। वीर राधिका से वादा करता है कि कुछ भी हो वो निया को ढूंढकर जरूर लाएगा। ऐसे में वो अपने दोस्तों को बुलाकर साथ में निकल जाता है। यहाँ शादी के मंडप के पास सभी मेहमान बैठे हुए हैं और माही इस बात का शुक्रिया अदा कर रही है कि निया का किडनैप हो गया है। ऐसे में ये बातें सुन लेती है देविका भी, लेकिन देविका ने पहले ही देख लिया था कि क्या कारनामा हो रहा है, इसलिए देविका ने माही के प्लान पर पानी फेर दिया। तभी तो अगले ही पल सभी मेहमानों के बीच वीर पहुंच जाता है और राधिका भी वीर के पास आकर ये जानने की कोशिश करती है क्या उसकी बेटी निया के बारे में कुछ पता चला। ऐसे में वीर ने बता दिया है कि निया आ रही है, बस फिर क्या। वीर की माँ ने शादी के मंडप में आने के लिए कहा, लेकिन वीर ने अपनी माँ को समझाया और उसी वक्त निया को ढूंढ लाने का कंफर्मेशन वीर को मिल गया। ऐसे में ये गुड न्यूज वीर ने सभी के सामने सुना दी।
5: निया मिल गई। निया मिल गई। रात को भी पापा लेके आए हैं। निया बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल स्वस्थ है, सब ठीक है। बधाई
8: तुम्हें।
5: ए सोनू, निया मिल गई है, तुम वापस आ जाओ।
9: प्लान की दी।
8: शुक्र है भगवान।
7: भाई निया गायब हो गई है, निया को ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ राधिका जी ने बोल दिया है कि जब तक निया नहीं आएगी मैं मंडप में नहीं बैठूंगी, और यहाँ वीर उस प्रक्रिया में लगा है कि कैसे भी करके निया को लाना है। नॉट जस्ट बिकॉज कि राधिका जी से शादी नहीं हो पाएगी, दूसरा वो निया से प्यार भी बहुत करता है, और कहीं ना कहीं उसके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निया तो मुसीबत में है। सो उसने राज और भूमिका को भेजा है, क्योंकि ऑब्वियसली वीर जा नहीं सकता मंडप छोड़ के, एक्स वाई जेड रीजन है, आपको एपिसोड में पता चलेगा। तो राज और भूमिका दे सेव द डे, निया को वापस ले आते हैं। तो दैट्स द होल ड्रामा।
0: भाई निया की इस गुड न्यूज ने सभी के चेहरे पर खुशियां ला दी और वीर भी अपनी माँ के कहने पर शादी के मंडप में जाकर बैठ गया। और अब तो राधिका भी वीर से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन दूर बैठी माही चिढ़ रही है और साथ ही उसे हो रही है जलन भी, क्योंकि उसके प्लान में पानी जो फिर गया है। और देविका वो तो बहुत खुश है। अब देखना होगा क्या राधिका के दिल में धीरे धीरे वीर के लिए प्यार पनपेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: तो जल्दी से मुझे बताइए क्या है आपका संडे प्लान। वेल, हमारा संडे प्लान तो सिर्फ एक ही होता है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तभी तो संभाल कर रखी है हमने आप सबके लिए ये अगली कहानी, जिसमें है आपके लिए ढेर सारा ड्रामा। अब देखिए, जैसे ही कहानी में आता है ड्रामा, वैसे ही आता है ना हमारे लिए एंटरटेनमेंट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस कहानी के सेट पर और दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स। जी हाँ, कहानी में फिर से आया है एक बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट।
0: अनिका का बंदूक ड्रामा। सरु पर साधा निशाना। वेद ने दिखाया टशन। देवा, देवा, देवा, देवा, देवा, देवा, देवा, देवा, देवा, राधिका का खेल हुआ खत्म। जी टीवी के सीरियल सरू में आज सरू की माँ को हो रहा है पछतावा, इसीलिए रो रो कर उनका हो गया है बुरा हाल। असल में आज सरू की दादी ने सभी घर वालों के सामने सरू का सच बताया है, जिसे सुनकर सरू की माँ हैरान है और रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा जो नहीं किया था।

0: मैं ना सिर्फ माँ बेटी का मिलन हुआ है बल्कि पूरा परिवार आज सरू के साथ है। सरू को उसका पूरा परिवार भी मिल गया है। ऐसे में सभी इमोशनल हो ही रहे थे इस बात को लेकर कि अब खुशियाँ आएंगी, कि तभी आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि खुशी तो नहीं बल्कि अनिका आ गई बंदूक लेकर। और देखिए कैसे वो घर में कर रही है बंदूक ड्रामा। वेद के प्यार में पागल अनिका ने तो सभी घर वालों के ऊपर बंदूक तान दी।
1: बस और अगर आज तुमने मुझसे शादी की तो मैं सबको मार दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं।
2: मानी बेटा तेरी मैं
0: भाई। अनिका तो आज किसी की नहीं सुनेगी, वो तो बस वेद को अपना बनाना चाहती है, वो भी बंदूक की नोक पर। इसलिए देखिए कैसे उसने हाथ पकड़कर वेद को अपनी ओर खींच लिया और उसे शादी की जिद करने लगी। ऐसे में दादी और सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: आज मैं वेद को अपना बना दूं। अभी क्या अभी मंदिर चल के मुझसे शादी करो, वरना सरू को मारूंगी, मैं सबको मार दूंगी।
2: अनिका ये गलत है, तुम अनिका होश में आओ, कुछ गलत हो जाएगा।
1: आपकी मोती की शादी
0: वेद ने तो अनिका को रोका ही, साथ ही पुलिस ने भी सभी को ये बता दिया कि अनिका ने ही चंद्रकांत को मारने की कोशिश की थी। ऐसे में पुलिस अनिका को पकड़ती कि इससे पहले अनिका ने बाजी मार ली, वेद को धक्का देकर जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली और सरू को अपना निशाना बना लिया। भाई अनिका का ये पागलपन देखकर वेद कहीं ना कहीं डगमगा गया और अनिका की बात मानते हुए अनिका के करीब जाने लगा। इतना ही नहीं, उसने तो जो बंदूक अनिका ने सरू के ऊपर तानी है वो बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी और अनिका को चलाने के लिए कह दिया। ये देख अनिका हैरान है और उसे इस बात का गम हो रहा है कि वेद उसके प्यार को समझ नहीं पाया। ऐसे में अनिका को ये भी पता चल गया है कि आज उसकी पूरी तरह से हार हो चुकी है। इसलिए देखिए ना सिर्फ उसने सभी के सामने वेद के हाथ को चूमा बल्कि वेद को धक्का देकर अपने आप को ही बंदूक का निशाना बना दिया और चला दी गोली।

0: प्यार के पागलपन में अनिका ने अपना खेल तो खत्म कर लिया, लेकिन सभी घर वाले अनिका के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ सीरियल का दी एंड भी हो रहा है और ऐसे में आज आखिरी दिन की शूट पर सभी आराम से बैठकर इत्मीनान फरमा रहे हैं और तो और अलग अलग फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और इन्हीं वीडियो में नजर आ रही है वेद की मस्ती भी।
1: कोई मुझसे भी तो पूछो, क्यों मिल पाओगे जब मैं मिलने ही चाहता।

0: अब सीरियल भले ही बंद हो रहा हो लेकिन सबके चेहरे की मुस्कान अब भी कायम है क्योंकि इस सीरियल में बुराई का अंत और अच्छाई की जीत हुई है। इसी के साथ सभी कलाकारों ने अपने फैंस को भी अलविदा कह दिया है। अब बस इंतजार करना होगा कि कब और कैसे ये कलाकार किस अंदाज में नजर आएंगे, वो भी किस सीरियल में। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब पूरे हफ्ते काम करने के बाद आपने भी सोचा कि संडे की छुट्टी में आप तो करने वाले हैं टोटली रिलैक्स, होगा ये बहुत ही रॉकिंग। लेकिन संडे की छुट्टी में तो आ गया ढेर सारा काम, आपको तो रन कर रहे हैं ढेर सारे एरेंड्स और नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी फुर्सत के पल, हो गया ना शॉकिंग। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे ही सेगमेंट की ओर जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: इतने सालों में तेरा एक शौक भी पूरा नहीं किया उस शिव प्रसाद देशमुख ने, तुम उसे कहती जरूर है।
3: परशुराम का ये प्रोमो देख लीजिए जहां शालिनी का अपना ही परिवार उस पर इल्जाम लगा रहा है और शालिनी टूट गई है।
2: तू बहक गई थी, बेशक तूने अपने पति पे गोली चलाई है लेकिन बेटा हत्या करना न्याय नहीं है, तू उसे डिवोर्स भी तो दे सकती थी ना, और कितनी बार मैंने तुझसे कहा था और अब भी कह रहा हूँ बेटा, अगर तू रिहा हो गई, तुझे जेल नहीं हुई, तुझे फांसी की सजा नहीं हुई, तो मैं खुद खड़े होकर उस विक्की शर्मा से तेरी शादी करवा दूंगा।
3: लाफ्टर शेफ में हो रही है मस्ती अनलिमिटेड जहां कृष्णा एक भी मौका नहीं छोड़ते रोस्टिंग का।
4: मैं राम प्रिंस से भाई सपोर्ट करने आया हूँ एलविश भाई को।
5: प्रिंस होके एलविश को सपोर्ट कर रहे हैं।

बीती शाम हुआ धमाल 4 के नए गाने सारी सॉन्ग का लॉन्च, जिसमें रितेश देशमुख और अंजलि आनंद डांस करते नजर आए और साथ ही साथ फैंस का जमावड़ा लग गया।

कई खबरों की माने तो कलर्स लेकर आ रहा था उनका शो मुक्केबाज, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये शो स्क्रैप हो चुका है कई सारे कारणों की वजह से।

बीती शाम शंकर महादेवन ने रखा भक्ति कॉन्सर्ट, जिसमें शामिल हुए कई सारे सितारे जैसे कि उर्मिला मातोंडकर, अनिल कपूर, रमेश तौरानी, कीकू शारदा, साक्षी तनवर, अनुराधा पौडवाल, उषा उत्तप, राकेश बेदी, राहुल वैद्य, दिव्या दत्ता, हरभजन सिंह, रवि दुबे, आशा पारेख, शंकर महादेवन जो यहाँ अपने परिवार संग पहुँचे, साथ ही बोमन ईरानी अपनी वाइफ संग यहाँ पहुँचे हैं, तो वहीं पंकज कपूर भी अपने परिवार संग इस भक्ति कॉन्सर्ट में हुए शामिल। आहना कुबरा, हंसिका मोटवानी, अभय वर्मा और कई और सितारे इस भक्ति कॉन्सर्ट का हिस्सा बने और सभी ने अपनाया देसी लुक।

0: देख लीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये नया प्रोमो, जहाँ तुलसी को मिला घर निकाला और उसका ही परिवार हो गया है तुलसी के खिलाफ।
1: तो बंद कर लो अपने कान, बंद कर लो अपने कान।
2: आप, अब किसको गोली मारने आई है, किसको गोली मारने आई है? हर दिन मैंने यही दुआ मांगी कि आप जैसी माँ कभी किसी को नहीं, कभी किसी को नहीं।
3: ये बात
2: रुक जाइए, शांति निकेतन में अब आपके लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं।
4: अब संडे के रिलैक्सेशन रूटीन में एक लाफ्टर की डोज तो बनती है ना। सही समझा आपने, लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट लाफ्टर शेफ्स के पास। चलिए फटाफट पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है लाफ्टर शेफ की इस रसोई में। वेल, यहां तो पक रही है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। यहां है हमारे लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड ड्रामा, सब कुछ एक साथ। तो क्या आप हैं तैयार? क्योंकि हमारे लाफ्टर शेफ्स हैं एब्सोल्युटली रेडी।
5: मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई।
6: क्या? अरे एक मिनट, हंस रही है, जब हंसती है तो कुछ ना कुछ कांड करती है।
5: ये आपकी हेल्प करने नहीं आए, ये आपकी हेल्प करने नहीं आए।
7: तो हमारी गोदी में बैठने आए
5: पलकी,
7: ए विकी,
5: ये दोनों करेंगे आज
7: कान खोल के सुन
5: आपका बनाया हुआ खाना टेस्ट।
6: ये लोग हमारा खाना टेस्ट करेंगे, कर लेना हमारा।
8: राहुल मला जिंको छिला, मला जिंको।
5: आज ये दोनों तय करेंगे कि किसका खाना थूकना है और किसके खाने पे बोलना है। हो गई सुबह की पल्ले पल्ले।
9: अली का खाना ये टेस्ट करेगा, ये शक्ल देखिए अपनी।
7: रोती रहे, रोती रहे, हेल्प मत करना, ऐसी हाँ करती रहे।
10: कोई हिलाया क्यों नहीं है? हिलाया है ना, हाँ तो फिर बस ना।
7: अच्छा है ये मियाँ बीवी साथ है।
10: देखा तूने, देखा तूने मेरा टेबल पे क्या हो रहा है, देखा? बताना मेरे को, न्यूज़ देना।
7: क्रीम ना दिखाई, क्रीम ना दिखाई, मेरे साथ
10: तो
7: मैं क्रीम तो दिखा दे, कर रहा हूं मैं, को दिखाऊं क्रीम?
11: टेस्ट।
12: अरे बनाओ, तुम्हारे तो 12 स्टार है ना।
11: नहीं
12: नहीं नहीं, मैं क्यों चखूंगा, ये तो बनाने वाला चखेगा।
7: ये कैसे बन गया तेरा इतना ठीक? तूने कोकोनट इसमें डाला क्या?
11: कोकोनट मिल्क में?
7: ये कोकोनट मिल्क में बनाया तूने?
11: कोकोनट मिल्क में हाँ।
7: पानी के बाद कोकोनट मिल्क भी डालना है?
11: मैंने पानी डाला ही नहीं, हल्का हल्का सा।
7: यार खा लो अपनी क्रीम, मैं तो चखने भी आया था।
10: संकीत शाबास,
11: मकसद नहीं है,
10: मम्मी समोर बस लिया है, जरा लास्ट कर।
12: ऐसे नहीं,
10: सूरी खेड़ी, सूरी के साल कार्ड
8: काला जी बोलती रही, सूरी साली ने मेरे
10: तुझे नातेवाईक पण आले आहेत सगळे, ते लहान लहान पोरं पण आली आपल्या घरातली, काय विचार करतील?
8: आजी जाय करणार
10: शिकतीने, कर
8: चकित करू नको, जा लुंगी घालून निघितलं ना।
13: ब्यूटिफुल लेडी ऑन आर काउंटर।
7: अरे हरपाल जी, ये तेजा तो कुछ काम ही नहीं करी अपने काउंटर पे, घूम ही रही है यहाँ वहाँ।
12: सर भेजो इधर वापस।
10: तो ये अंकिता क्या कर रही है?
12: वो अर्जुन अकेले बना रहा है सब कुछ।
10: तो क्या
12: अर्जुन, वो बिचारा लड़का, उसकी स्लीव्स गिर गई खाना बनाते बनाते।
10: विक्की भी तो अकेले कर रहा है, तुम लोग मुझे क्यों बोलते रहते हो?
7: बाप रे,
12: एक मिनट, आप क्या विक्की के लॉयर
10: हैं? नाची है वो, नाची है वो, नाची है वो, नाची है वो। मैं चाहती हूँ अंकिता विक्की की डिश बनाए और उसकी डिश बर्बाद करे।
8: आज कंपैरिजन कर रुको, मैं अंबे क्यों फिर
12: मराठी पर मला तो लेते मराठी बोलायला।
8: मैं अपने आम
10: ही पर अंबे क्यों फिर,
8: मैं अपने आम संभाल रही थी इतनी देर से,
10: मैं भी आम लेके घूमूंगी।
12: विक्की अकेला इसीलिए करता है क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है कि टेंशन से दूर रहो, अकेले काम करो।
7: बस हो गया, अभी एंड है, फिनाले है सर,
12: एंड
7: है। कोई भी नमक नहीं डाल रहा, ये खा लेंगे इनको नमक पता चल जाए। बहुत शाने लोग है भाई, बस हो गया भाई, बड़ी हेल्प कर ली, साला मेरा ही चोरी कर गए।
5: अली के चावल बहुत अच्छे।
7: कटिंग करना स्टार्ट कर। अरे यार मत,
5: अरे
7: यार मत कराओ यार, प्लीज यार मत कराओ यार, मुझे नहीं देना आप किसी को टेस्ट करने यार।
3: अली भाई का बहुत अलग है, वो ठीक है लेकिन बहुत अलग है, मैंने चक्के देख लिया है, उसमें ना थोड़ा कोकोनट भी ही मिक्स है इसमें,
6: ठीक है ना?
11: हाँ ये चाहिए भाजी, ये
5: सुदेश जी अगर एक पीस दे दोगे मैंने तो ये जज जोगे। आए बेचारे एक बार नहीं मना कर दे, दे देते
6: मेरा बच्चा है।
14: हैं पाजी हम भी खा सके, हम आपके पोते हैं पाजी।
6: बिल्कुल बिल्कुल
14: खिला दो, हमें भी खिला दो।
6: तुम पोते नहीं, तुम मेरे होने वाले पोते हो, इतने छोटे हो।
4: तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
2: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान. पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए दिया गया ऑनर. प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर बातचीत की. देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे. श्रीगंगानगर सूरतगढ़ से लंगर की सेवा करने वाले भक्त पहुंचे बालटाल अमरनाथ. लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार. नदी पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का आज 135वां कार्यक्रम. जनभागीदारी की ताकत, सामाजिक जागरूकता और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा. दिल्ली में सोमवार को हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट. फिलहाल उमस भरी गर्मी से हाल हुआ बेहाल. तापमान 41 डिग्री के पार.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
11: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी. श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू. श्रीगंगानगर सूत्रतगढ़ से लंगर की सेवा करने वाले पहुंचे बालटाल. बेस कैंप बनकर तैयार. नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्ध दही शहद और पंचामृत से अभिषेक. अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. साफ कहा गया है कि बिना पंजीकरण और RFID कार्ड के किसी भी यात्रा को आगे नहीं जाने दिया जाएगा. श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा सकुशल जारी है. बद्रीनाथ में अब तक 13 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए. पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी. कल देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन. पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां. जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान. स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार. 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान. एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा. 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान. यात्रा को लेकर रथ निर्माण का काम लगभग पूरा. अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाएगा निर्माण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड का प्रसारण. गिनाई स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां. प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई उपलब्धियां. बोले समुद्र से लेकर आसमान तक भारत तेजी से बन रहा है सुरक्षित और आत्मनिर्भर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों की कामयाबी पर उन्होंने बातचीत की. कहा हर भारतवासी को उपलब्धियों पर गर्व. एविएशन सेक्टर को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. C-295 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया है. C-295 एयरक्राफ्ट का जिक्र किया. उत्सवों में पर्यावरण को दिए जा रहे हैं बढ़ावे की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की. वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाने की कही बात. सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया. द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान. वैश्विक नेतृत्व के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपलब्धि. सेशल्स के प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के दौरान दिखी भारतीय संस्कृति के शानदार झलक का. लोगों ने उत्साह के साथ अभिनंदन किया. सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना का मार्चिंग दल होगा शामिल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे समारोह में मुख्य अतिथि. भारतीय सेना के असम रेजिमेंट का 32 सदस्यीय दल समारोह में होगा शामिल. कैप्टन RNH देओलकर करेंगे दल की अगुवाई. 1 जुलाई से बदलेंगे कई वित्तीय कामों के नियम. आम लोगों का मंथली बजट हो सकता है प्रभावित. अब 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करने के लिए नहीं देनी होगी फी. पहले इसके लिए चुकानी पड़ती थी 75 रुपए फीस. एक जुलाई से बिना टिकट सफर करने पर लगेगा डबल जुर्माना। रेलवे ने कुछ नियमों को लेकर सख्त कर दिया है। 90 दिन तक एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने की डेडलाइन 30 जून को हो रही है समाप्त। ई केवाईसी ना करने पर बंद हो सकती है एलपीजी सब्सिडी। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा महंगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2,500 और तत्काल 5,000। पोरबंदर में 2 महीने बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा पूरी तरीके से शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन ने यात्रियों को स्वागत किया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो से ये गुलजार हुआ, पंछी प्रेमियों के लिए बना आकर्षण। वडोदरा के पिता और बेटे ने साइंस सेक्टर में किया कमाल। सूर्य की हानिकारक किरणों से धरती को बचाने के लिए सैटेलाइट का बनाया मॉडल। अमृतसर में एक शाम शिव भोलेनाथ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। बैतूल में योग शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शामिल। देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर में बारिश बहुत तेज आएगी, महाराष्ट्र कुंकड़ और गोवा में मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अभी बनी रहेगी गर्मी और उमस, जुलाई के पहले हफ्ते तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद। दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। केरल के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, कन्नूर जिले के लिए येलो अलर्ट। मुंबई में बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव, पानी के बीच चलते नजर आए लोग। मॉनसून के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव पर खूबसूरत नजारा, सुबह वॉक करते हुए नजर आए लोग। सिक्किम में जोरदार बारिश से उफान पर कई नदियां, फिडांग के पास फी खोला ब्रिज टहा। वैली ब्रिज मूसलाधार बारिश और फंती नदी के बहाव में पूरी तरीके से बह गया। अरुणाचल प्रदेश के पोसा गांव के पास अचानक आई बाढ़, घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। हरिद्वार में तदीक्षी अंगदान संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम को हजारों लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लव कुश का भव्य मंदिर, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का होगा आयोजन, भगवान राम और रावण के बीच होगा संवाद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
1: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
2: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
3: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
4: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया

0: कंट्रोल करता है, और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत

0: आती है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: सेशंस में प्रधानमंत्री मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए दिया गया ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशंस के राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर दी बातचीत, देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। श्री गंगानगर सूरतगढ़ से लंगर की सेवा करने वाले भक्त पहुंचे बालटाल, अमरनाथ लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार, नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात, आज 135वां कार्यक्रम, जनभागीदारी की ताकत, सामाजिक जागरूकता और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा। दिल्ली में सोमवार को हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट, फिलहाल उमस भरी गर्मी से हाल हुआ बेहाल, तापमान 41 डिग्री के पार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। कल ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर बरगद का पूजन करने से समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन स्नान और दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की महिमा के बारे में।

0: परम फलकारी है ज्येष्ठ की पूर्णिमा, मन वांछित फल देगी भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना। मंगलकारी और सौभाग्यशाली है बरगद की भक्ति। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मिलेगी चंद्रदोष से मुक्ति। यूं तो ईश्वर की कृपा सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही मिल जाती है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस तिथि पर किया गया गंगा स्नान और दान आपके सौभाग्य को जगा सकता है। माना जाता है कि जिस भी साधक ने ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर ईश्वर का ध्यान, गंगा स्नान और श्रद्धा से दान कर लिया, उसके जीवन के सारे दुख हर लेते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ज्येष्ठ माह के अधिपति माने गए हैं श्रीमन नारायण। तो आइए जानते हैं कि इस बार ज्येष्ठ की पूर्णिमा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्यदेव की उपासना से विशेष लाभ होता है।
1: पूर्णिमा हमारे यहाँ दो होती है, एक पूर्णिमा स्नान की होती है, एक व्रती होती है। तो जिस दिन रात्रि में पूर्णिमा होती है उस दिन हमारे यहाँ पूर्णिमा व्रत की जाती है, और जिस दिन प्रातः काल से पूर्णिमा होती है उस दिन स्नान का महत्व होता है। और लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन करना, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और भी बहुत से उपाय, भगवान के विष्णु के 1000 नामों से तुलसी पत्र भगवान को समर्पण करना, यह सब जो उपाय हैं, खीर बना करके चंद्रमा को भोग लगाना, चंद्रमा की को रात में पूजन करना, अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करना, यह सब महा उपाय हैं, जिन उपायों करके मानव जाति बहुत लाभ पा सकती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये तिथि विशेष कामनाओं की पूर्ति और महाप्रयोगों के लिए भी जानी जाती है। माना जाता है कि स्थिति पर की गई पूजा, उपासना और अनुष्ठान से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो अगर आप भी किसी शारीरिक या मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर ये महा उपाय करके देखिए। स्नान के पहले पूजा का संकल्प लें, संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद साफ और सफेद कपड़े पहनें, फिर सूर्य को अर्घ्य दें और मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं।
1: वट सावित्री का जो व्रत होता है उस व्रत को रखना सौभाग्यवती महिलाओं के लिए, और उसके बाद परिक्रमा करना वट वृक्ष की, और उसके बाद सौभाग्य की वस्तुएं जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, श्रृंगार का सामान, मिष्ठान्न फल रख करके, और सौभाग्यवती स्त्री को जो आपका पूज्य हो उनको दान करें, परिक्रमा करें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पति के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि वैवाहिक जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए अचूक मानी गई है ज्येष्ठ पूर्णिमा की उपासना। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस तिथि पर कुछ ज्योतिषी उपायों में दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। स्नान करके बरगद के पेड़ की जड़ में जल डालें। बरगद के पेड़ के चारों ओर पीला सूत लपेटें। इसके बाद बरगद के नीचे बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। फिर सुखद और लंबे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का पौधा लगाना और भी अच्छा होगा। आगे हम आपको ज्योतिष में बताया एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ आपकी संतान का विवाह हो सकता है बल्कि निसंतान दंपति के चेहरे पर भी मुस्कान आ सकती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देवी कृपा का बेहद खास दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। फिर चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर घर के वास्तु दोष से आप परेशान हो, हर समस्या का समाधान इस दिन संभव है। ज्योतिषी मानते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान और ईश्वर का ध्यान आपकी हर परेशानी का समाधान दे सकता है।

0: अखंड सौभाग्य को लेने वाली है ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए महा उपाय से आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहार आ सकती है। साथ ही संतान की पीड़ा से जूझ रहे दंपति के लिए भी ये तिथि किसी सौगात से कम नहीं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर किए गए महाप्रयोग आपके आंगन में किलकारी ला सकते हैं। साथ ही माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अगर की जाए तो जीवन से सभी संकटों का समाधान हो सकता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को पूर्णत्व की तिथि माना जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। चलिए पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको है संतान की कामना तो कैसे ज्येष्ठ की पूर्णिमा आपके जीवन की इस अपूर्णता को पूर्ण कर सकती है। गौर से देखिए,
1: तुलसी जी गमले में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखकर और बैजंती की माला से एक मंत्र होता है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, 108 बार इस मंत्र का जप करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। एक वर्ष बीतते बीतते आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।
0: दिन में किसी भी समय बरगद के पास दीपक जलाएं, उसकी जड़ में जल डालें, हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति का वरदान मांगें, फिर बरगद की थोड़ी सी जड़ निकाल लें, इस जड़ को पीले धागे में बांधकर गले में पहन लें और संतान प्राप्ति होने तक इस जड़ को पहने ही रखें। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती हैं।
1: सत्यवान के प्राण जब यमराज ने छीन लिए तो सावित्री ने उनका पीछा किया और उनके अपने प्रश्नों में उलझाकर सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए। और चूंकि सावित्री द्वारा यह व्रत आरंभ किया गया है, इसीलिए जो वट सावित्री व्रत हमारे यहाँ 2 महीने के दोनों पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष में दाक्षिणात्य लोग करते हैं और शुक्ल पक्ष में हमारे यहाँ के लोग करते हैं। वट सावित्री के व्रत के दिन महिलाएं 108 परिक्रमा करती हैं और परिक्रमा करके पूजन करके सौभाग्य की वस्तुएं वहाँ दान करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति का सौभाग्य हमारे कारण से, हमारे तपस्या से बना रहे, मैं सौभाग्यवती बनी रहूं।
0: ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए अब आपको एक और महा उपाय बताते हैं जिससे आपके घर की कन्या के न सिर्फ हाथ जल्द ही पीले हो सकते हैं बल्कि विवाह के बाद उसकी जिंदगी में मिठास घुली रह सकती है। तो कीजिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर ये महा उपाय। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद मिठाई और चांदी की कोई वस्तु अर्पित करें। इसके बाद ये तीनों चीजें अपनी पुत्री को दें। आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की महिमा और उससे जुड़े महाप्रयोग बता रहे हैं जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। चलिए अब आपको घर का वास्तु दोष दूर करने का महा उपाय बताते हैं, तो गौर से देखिए।
1: पूर्णिमा के दिन अगर आप वाराह भगवान की का चित्र ले आकर के उसको फ्रेम करा करके अपने घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में अगर आप वाराह भगवान की फोटो लगा करके और नित्य उनका पूजन करते हैं, एक धूपबत्ती दिखाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो आपको बहुत लाभ। ओम वम वाराहाय नमः, वराह भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बहुत जल्दी आपको वास्तु दोष दूर होता है और आपको नए भवन की प्राप्ति भी हो सकती है।
0: आम के 11 पत्ते लें, शुद्ध जल से इसे धो लें, केसर में गंगा जल मिलाकर इन पर श्री लिखें, आम के इन पत्तों और मौली से वंदन वार बनाएं, इस वंदवार को घर के गेट पर बांध दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। हर विपदा और हर परेशानी का अंत करने वाले ये उपाय आपकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखेर सकते हैं। इसलिए सच्चे मन से कीजिए स्नान, दान और ध्यान, फिर देखिएगा पल भर में कैसे आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे भगवान।
2: हम आपको ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का महत्व बता रहे हैं। इस दिन स्नान, ध्यान और दान से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, लेकिन कुछ खास मंत्रों के जाप से आपको ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। तो कौन से हैं वो प्रभावी मंत्र, चलिए आपको बताते हैं।

0: शिवम हरिम।
1: माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर किया गंगा स्नान आपको 100 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही सफेद वस्तुओं के साथ ही जल और अन्न का दान आपके जीवन को समृद्ध से भर देता है।
2: इसमें मिट्टी के पात्र में शीतल जल भर करके या मीठा जल भर के लोगों को दान करना, लोगों को पिलाना, भगवान शिव का जहाँ लिंग हो वहाँ पर मिट्टी के घड़े में जल भर के उनके ऊपर जलधरी गिराना, राहगीरों को जो प्यास से प्यासे हुए हैं उनको शरबत पिलाना, उनको नींबू का जल पिलाना, उनको छाता दान करना या उनको चप्पल देना, ये सब चीज़ें जो होता है इस महीने में बहुत लाभदायक या बड़ा सुंदर ही विषय है।
1: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान और दान की महिमा शास्त्रों से भी बताई गई है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। गंगा का जल तो अमृत माना गया है, लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि इसके पानी को अद्भुत बना देती है। जिस जल में स्नान करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कैसे करें स्नान, ध्यान और मंत्र जाप। स्नान से पहले संकल्प लें, पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें, साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्रों का जाप करें। मंत्र होंगे ओम श्री श्री श्रौं सा चंद्रम से नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। केवल नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें तो उत्तम होगा।
2: जो वस्तुएं इस महीने में उनको विशेष लाभ के लिए जल के लिए काम कर सकती है वो चीजें दान करें। ऐसा करेंगे तो आपको जो पुरुषार्थ की जो परमार्थ पुरुषार्थ दो वस्तुएं होती हैं, तो परमार्थ और पुरुषार्थ अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जितनी आपकी सामर्थ्य हो पुरुषार्थ के हिसाब से आप दान पुण्य करें। लोगों को जल पिलावें, पौसला चलवावें, मीठा जल पिलावें, मीठे सामान बांटें, आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर प्रयोग हो सकता है।
0: जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का।
1: तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप भी पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, जरूरतमंदों को कुछ दान कीजिए और समय मिले तो कुछ वक्त ध्यान भी जरूर कीजिए। फिर देखिए कैसे सवरने लगेगा आपका भाग्य और जीवन में होगा शुभता का आगमन।
3: तो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। फर्स्ट अप वी गॉट हैरिसन रैपिंग हिज डॉक्टर पेपर इन अ टाइनी क्विल्ट सो इट फील्स एट होम। Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
7: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
6: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
8: Tune in to How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जुबान पर हैं, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छुपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर करवाएंगे, साथ ही साथ श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान, जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: सेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए हुआ सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशंस के राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर दी बातचीत, देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। राजस्थान के श्री गंगानगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त, अमरनाथ लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार, नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात, 135वें एपिसोड में जनभागीदारी की ताकत, सामाजिक जागरूकता पर चर्चा, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी बातचीत। दिल्ली में सोमवार को हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट, फिलहाल उमस भरी गर्मी से हाल हुआ बेहाल, तापमान 41 डिग्री के पार।

तो शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार से, जहां पहुंचने के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन बात सिर्फ मई जून की नहीं, पिछले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता रानी के दरबार पहुंचे हैं और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। देश के कोने कोने से रोज हजारों श्रद्धालु कटरा से भवन की यात्रा शुरू करते हैं और दर्शन के बाद जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। असल में ऊंचे पर्वत की ये यात्रा ट्रस्ट के शानदार इंतजाम की वजह से आसान हो जाती है। देखिए माता रानी के धाम से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट है।

0: माँ ने बुलाया तो कदम कटरा की ओर चल पड़े, गांव से, शहर से, ट्रेन या गाड़ी से, घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, बाल बच्चों को लिए माता रानी के भक्त कटरा की राह पर हैं। यूं समझ लीजिए कि पहले कटरा और फिर भवन पहुंचने की होड़ लगी है। छुट्टियों के दिन हैं, इसलिए भी भीड़ ज्यादा है, लेकिन मोटे तौर पर इस साल अभी तक वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों की तादाद बेहिसाब रही है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जनवरी से जून तक यानी 6 महीने में श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख पार कर चुकी है।
1: जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा कर ली है। ये जो आंकड़ा है काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम इसी समय की बात करें यानी कि जून महीने तक, जनवरी से जून 2025 तक की बात करें, तो 39.84 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आए थे, और इस वर्ष अगर हम देखें तो 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है।
0: बेस कैंप यानी कटरा से लेकर भवन तक आस्था का सैलाब है। रोज हजारों की संख्या में यात्री एंट्री वाले रास्ते पर यूं ही जमा होते हैं और अपनी बारी आने पर यहां से सफर शुरू करते हैं। ऊंचा पर्वत, लंबा रास्ता, लेकिन कोई भी बाधा इन भक्तों को रोक नहीं पाती।
1: ये कहाँ से आए हैं?
2: यमुनानगर से।
1: हरियाणा से?
2: हाँ जी।
1: तो आप आते रहते हैं दर्शनों के लिए, पहली बार
2: आते रहते हैं?
1: अभी जो आंकड़े जारी हुए कि इस वर्ष 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं इस बार।
2: अच्छा। बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो भक्तों की श्रद्धा है। बोल सच्चे दरबार की जय।
0: वैष्णो देवी से जुड़ी इसी आस्था ने अब एक नया इतिहास रचा है। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 जून 2025 तक करीब 39,84,000 श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए थे, जबकि इसी साल इसी अवधि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 50,70,000 पहुंच गई है। यानी इस अवधि में 10,86,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी की यात्रा की है, जो पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। बीते सालों में सिर्फ 2011 और 2012 में ऐसा हुआ है जब यात्रियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई, जबकि साल 2023 और 2024 में करीब 95 लाख यात्री वैष्णो देवी पहुंचे। पर इस साल जून तक अगर आंकड़ा 50 लाख पार है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल के आखिर में ये आसानी से 1 करोड़ पार कर जाएगा।
1: आते रहते हैं, पहली बार आए?
2: नहीं, हम सेकंड टाइम आए हैं।
1: सेकंड टाइम आए, मन में कितनी प्रसन्नता?
2: बहुत ज्यादा।
1: भाव है मन में?
2: आप मेरी प्लम्बिंग से समझ ही सकते हो कि मैं कितनी एक्साइटेड।
1: दर्शनों के लिए आए हैं माता जी के?
3: बहुत एक्साइटमेंट थी बचपन से।
1: अच्छा, पहली बार आ रहे हैं?
3: हाँ, पहली बार आ रहे
1: हैं। तो एक बार जयघोष लगा दीजिए माता रानी का।
4: जोर से बोलो जय माता दी।
0: माँ वैष्णो के धाम में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या की बड़ी वजह आस्था है, पर इसके साथ ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से किए गए अच्छे इंतजाम भी यात्रियों को प्रभावित करते हैं। कटरा से लेकर भवन तक यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होती, न रहने या ठहरने की, न खाने पीने की। यहाँ भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर बैटरी कार और रोपवे की सुविधा है। ये इंतजाम ही वैष्णो देवी यात्रा को यादगार बनाते हैं और भक्त हंसते मुस्कुराते वापस आते हैं।
1: लगातार भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, लगातार भक्तों की कतार देख सकते हैं आप। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो यहाँ धर्मनगरी कटरा में हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और इस वर्ष अगर हम देखें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और अभी जून का महीना पूरा भी नहीं हुआ है और 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं, और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ने जा रहा है।
0: देवी माँ के दर्शन का ये जोश उत्तर से लेकर पूरब तक एक जैसा है। जम्बू मित्रकुटा जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। कटरा से सुनील जी भा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भीड़ है, तो वहीं कश्मीर में जल्दी ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पवित्र गुफा के पास सीढ़ियों को छतदार बनाया जा रहा है, तो वहीं पहलगाम के बेस कैंप को दुरुस्त किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हो चुके हैं और इनके साथ ही भंडारा लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो चलिए आपको नुनवान बेस कैंप और पवित्र गुफा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में।

0: अमरनाथ की पवित्र गुफा, गुफा में आकार ले चुके बाबा बर्फानी, ये वो तस्वीर है जो हर शिव भक्त को श्रद्धा और भक्ति से भर देती है। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जोश भर देती है। श्रद्धालु तैयार हैं, भोले की फौज चलने ही वाली है, इसलिए पवित्र गुफा के पास भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। यात्रा शुरू होने से पहले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पवित्र गुफा तक जाने वाली सीढ़ियों को छत से ढका जा रहा है और सीढ़ियों के ऊपर कैनोपी लगाने का काम तेजी से जारी है। ये इंतजाम इसलिए है ताकि श्रद्धालुओं को तेज धूप, बारिश और खराब मौसम से राहत मिले।
1: अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो हैं वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरीफाइड हैं।
0: पवित्र गुफा के पास ही नहीं, पहलगाम के बेस कैंप निनवाल में भी जबरदस्त तैयारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की मौजूदगी, जर्रे जर्रे पर निगाह और रास्तों से लेकर कैंप तक हर जरूरी इंतजाम। अमरनाथ जाने वाला पहलगाम का रास्ता लंबा मगर आसान माना जाता है। आतंकी हमले के बावजूद पिछले साल यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी तस्वीर उसी तरह रहेगी। हालांकि प्रशासन पिछले साल से भी बेहतर इंतजाम में जुटा है।
1: अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी। इस बीच अब की बार सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अमरनाथ यात्रा से जुड़े लोगों के लिए एक विशेष पहचान पत्र यानी पहचान ऐप जारी किया गया है, ताकि अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी लोगों की पहचान श्रद्धालुओं के लिए उनके पास उपलब्ध रहे।
0: पूरे अनंतनाग में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। रास्ते पर जवान अभी से मुस्तैद है। बेस कैंप पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी है। यात्रा के लिए एक ओर प्रशासन दिन रात जुटा है तो दूसरी ओर सेवादार भी पीछे नहीं। श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले ही सेवादार देश के अलग अलग हिस्से से मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँच कर भंडारे की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। पहलगाम वाले रूट पर कई सेवादार हैं, जो बरसों से शिव भक्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं।
2: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है। 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पटरी पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पटरी पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर एलजी साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलों पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है, वही पुण्य महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को भी प्राप्त होता है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहाँ आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा उपलब्ध कराना और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है। 57 दिनों की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक खुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करते हैं पुरी की रथ यात्रा की, जो कि 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है, पर उससे पहले यात्रा की जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। पवित्र लकड़ियों से भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष रथ, बलभद्र के लिए तल ध्वज रथ और सुभद्रा के लिए दर्प दलन रथ बनाया जा रहा है। तो चलिए इस महान धार्मिक यात्रा की तैयारी करीब से देखते और समझते हैं इस रिपोर्ट में।
4: सजे रथ अद्भुत, प्रभु पधारे द्वार, भक्त खड़े निहारने जग के पालनहार। खींचे रथ को प्रेम से जो नर और जो नार, कृपा उनकी पाकर सदा हो भवसागर से पार। कहते हैं जब भक्त अपने आराध्य से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएं, तब ईश्वर भी दूरी नहीं रखते। वो अपने दरबार से निकलते हैं और चल पड़ते हैं अपने चाहने वालों के बीच। पुरी में इन दिनों कुछ ऐसा ही भाव दिखाई दे रहा है। यहां सिर्फ रथ ही नहीं बन रहे, बल्कि विश्वास आकार ले रहा है। यहां लकड़ियों को नहीं जोड़ा जा रहा, यहां सदियों पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत किया जा रहा है।
5: हम विश्वकर्मा के परिवार से हैं, मुख्य विश्वकर्मा के परिवार से हैं, जो ताल ध्वज रथ का मुख्य परिवार है हमारा। अभी तो अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 3 महीने काम होता है रथ का, लेकिन इस साल पुरुषोत्तम महीना 1 महीना ज़्यादा है, तो इसलिए 3 महीना काम हो रहा है। अभी रथ का शेष पर यह काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार द्वार भड़ा जो है, अभी 3 बन चुका है और 1 बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है, पोर्टल बढ़धरा पोर्टल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोर्टल में 12 परस्त पोर्टल और 12 बाड़ी वो सब लगाया जाएगा।
4: किसी के हाथ में हथौड़ा है, किसी के पास छेनी, कोई पहियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो कोई नक्काशी में अपनी कला उकेर रहा है। माथे पर पसीना है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, क्योंकि ये श्रम किसी साधारण कार्य के लिए नहीं है, बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ के स्वागत के लिए है।
5: जो कलश लगाएंगे वो कोठोश्वासी सेवक है, उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
6: तो आप कब से पूरा काम कर रहे हैं, मतलब आप कब से ये रथ देख रहे हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, बचपन से मतलब कब से ये रथ
5: है? देखिए, हमारा तो घर का काम है, हम मुख्य रूप से हम लोगों के निगरानी में ये काम होता है, हम लोगों को लाकर ये काम में लगाते हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ के हेड हैं।
6: आप कितने सालों से यहाँ?
5: लेकिन हमें 1992 से यहाँ से काम कर रहा हूँ, 34 साल हो गया है काम करने में। तो मुझे जब 15-14 साल हुआ था, मैं इस सेवा में नियोजित हुआ हूँ।
4: हर साल जब आषाढ़ का महीना आता है, तब पुरी का वातावरण बदल जाता है। गली गली में उत्साह दिखाई देता है, हर घर में चर्चा होती है, हर मन में प्रतीक्षा होती है और हर आंख उसी पल का इंतजार करती है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे।
6: हर प्रांतों से लोग पुरी में आते हैं, सालों में एक बार ये यात्रा होता है और ये यात्रा के लिए कई दिनों से काम शुरू होता है और ये यात्रा में जुड़ने के लिए लाखों लोग यहाँ रथ यात्रा के दिन जुड़ते हैं। इस साल 2026 जुलाई 16 तारीख को रथ यात्रा मनाया जाएगा और इसके लिए पुरी में पूरी तैयारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, मैं अब जहाँ पर रथ बनाया जाता है भगवान जगन्नाथ का, जो रथ यात्रा होगा, इस रथ यात्रा के लिए जो रथ, तीनों रथ बनाया जाता है, ये तीनों रथ का काम अब शुरू हो चुका है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये काम अभी शुरू हो गया है। काम में अब पूरे जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात पूरा यहाँ काम हो रहा है। कैसे भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है और मात्र कुछ ही दिन बाकी है और इसलिए काम अब तेजी से चल रहा है। कैसे काम तुरंत खत्म होगा और रथ यात्रा से पहले ये काम को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है।
4: ये केवल एक यात्रा नहीं, ये भावनाओं का महासागर है। ये वो अवसर है जब भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। साल भर लोग मंदिरों के द्वार पर पहुंचकर दर्शन करते हैं, लेकिन इस महापर्व में नजारा बदल जाता है। यहां प्रभु अपने भक्तों के साथ होते हैं। इस साल 16 जुलाई से शुरू होने वाली ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी। इससे पहले स्नान पूर्णिमा का आयोजन होता है, जब 108 पवित्र कलशों के जल से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अभिषेक किया जाता है। लोक मान्यता है कि इसके बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं, औषधीय सेवा की जाती है और श्रद्धालु धैर्य के साथ उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब महाप्रभु फिर से दर्शन देंगे। यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इसे महाप्रभु की मौसी का घर माना जाता है। वहां कुछ दिनों तक प्रवास करने के बाद वापसी होती है। रथ यात्रा का दिन आते ही पूरी मानो आस्था के सागर में बदल जाता है। बस जय जगन्नाथ का उद्घोष सुनाई देता है। विशाल रथ आगे बढ़ता है तो हजारों हाथ रस्सियां थाम लेते हैं, लाखों आंखें भक्ति भाव से नम हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, बलभद्र का तल ध्वज और सुभद्रा का दर्पद दलन, ये केवल रथ नहीं, सनातन परंपरा की चलती फिरती पहचान है। हर साल नई लकड़ियों से निर्माण, हर बार नई सजावट, लेकिन भाव वही, विश्वास वही, समर्पण वही। यही भावना रथ के पहियों को गति देती है और यही भक्ति लोगों को प्रभु से जोड़ती है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: चौबीस में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक दिलचस्प

0: हैंडल ट्रूथ सोशल पर ये तस्वीर साझा की, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जिको गोर सड़क के नामकरण से जुड़ी स्मारक पट्टिका का अनावरण करते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कदम की सराहना करते हुए लिखा, भारत के हैदराबाद में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, मैं ऐसा पहला राष्ट्रपति हूं जिसे इस तरह से सम्मानित किया गया है, थैंक यू। अब आपको बता दें कि आखिर वो हैदराबाद की कौन सी सड़क है जिसका नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर हुआ है। हैदराबाद में अमेरिकी काउंसुलेट के पास वाली सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम दिया गया है। ये सड़क माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी प्रमुख अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफ्तर के नजदीक है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक ये नामकरण भारत अमेरिका संबंधों और हैदराबाद की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रतीक है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह पर चल रहे फ्रीडम 250 समारोह के सिलसिले में सड़क का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस सिलसिले में जानकारी दी है, लिहाजा ट्रंप के दौरे से पहले भारत में उनके नाम पर सड़क एक शानदार उपहार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: जाए। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर बातचीत की, देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। राजस्थान के श्रीगंगानगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त, अमरनाथ लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार, नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया।

ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कल होगा भव्य आयोजन। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पिछले एक दशक में भगवान भोले की नगरी काशी का कायाकल्प हो चुका है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी आधुनिकता के रास्ते पर फर्राटा भर रही है। इसी कड़ी में काशी को एक और अनोखी सौगात, वाराणसी के लाल बहादुर एयरपोर्ट पर देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज हो चुका है। यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर राममोहन नायडू ने इस इजी कनेक्ट सर्विस की शुरुआत कर दी है। देखिए, हब एंड स्पोक मॉडल का लाभ जो है काशी के लोगों के साथ ही यहां आने वाले विदेशी सैलानियों को भी मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: जब भी मैं वाराणसी आता हूँ एक अलग शक्ति का महसूस यहाँ पे करने को मिलता है। यहाँ की हवा हो, पानी हो, धरती हो, मिट्टी हो, हर चीज में, हर कंकर में शंकर की शक्ति यहाँ पे नजर आती है। तो हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पहली बार सांसद बनने के बाद से विकास के राजमार्ग पर लगातार फर्राटे भर रही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी ने गुरुवार को कामयाबी की एक और माइलस्टोन इबारत लिखी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने हब एंड स्पोक विमान सेवा का शुभारंभ कर काशी को वैश्विक मानचित्र के महत्वपूर्ण शहरों के बीच स्थापित कर दिया है। रामबाबू नायडू ने 4 यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर सिविल एविएशन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली शानदार सौगात काशीवासियों को दी। आपको बता दें कि हब एंड स्पोक मॉडल देश में पहली बार काशी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुरू हुआ है।
0: हिस्सा है कि हब एंड स्पोक ऑपरेशन जो काफी दिन से भारत इंतजार कर रहा था कि कब शुरू होगा, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आज हमारे भारत में इतिहास रचाने वाली ये वाराणसी धरती से आज शुरू हो रही है। इसके लिए हम सबको आनंद भी है, गौरव भी है।
1: हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होने के पहले दिन 180 यात्री विमान से रवाना हुए, जिसमें से 26 यात्रियों को दिल्ली से 6 अलग अलग देशों की कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गई। इसमें 3 विदेशी यात्री भी शामिल रहे। आपको बता दें कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुरू हुआ देश का पहला हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ से विदेश जाने वाले यात्रियों की हर मुश्किल को आसान कर देगा। हब एंड स्पोक मॉडल का उद्देश्य देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों से बड़े पैमाने पर आसान इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस सेवा के शुरू होने के बाद विदेश जाने वाले यात्रियों का इमिग्रेशन क्लियरेंस वाराणसी एयरपोर्ट पर ही हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक बार लगेज चेकिंग हो जाने के बाद बड़े एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए दोबारा इसकी जरूरत नहीं होगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान में बोर्डिंग होने के बाद 17 इंटरनेशनल शहरों के लिए आसानी से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी। साफ है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत वाराणसी जैसे शहरों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, जहां से यात्री आसानी से एयर इंडिया के बड़े नेटवर्क का एक्सेस पा सकते हैं।
2: अब वाराणसी का यात्री अपने इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत यहीं से करेंगे। चेकिंग, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रिया यहीं पूरी होगी। उसके बाद वह दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट के माध्यम से दुनिया के विशिष्ट गंतव्यों तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेंगे बिना पुनः इमिग्रेशन, कस्टम अथवा बैगेज चेकिंग की औपचारिकताओं के से गुजरे। यह केवल पैसेंजर कन्वीनियंस का विषय नहीं है, यह भारत की एविएशन सॉवरेंटी का भी एक प्रश्न है। दशकों तक भारत के अनेक यात्री विदेशी हब्स पर निर्भर रहे, आज हम उस व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय यात्री विश्व से जुड़ने के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स और भारतीय एयरलाइंस को अपनी पहली पसंद बनाएं।
1: काबिले गौर है कि वाराणसी के बाद इस इजी कनेक्ट सेवा को अमृतसर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। अगले 6 हफ्तों तक हर हफ्ते एक नए शहर में इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके बाद इन शहरों के यात्रियों के लिए विदेश की यात्रा पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगी। काशी को निश्चित रूप से इस उड्डयन क्रांति का अग्रदूत बनने का गौरव हासिल हुआ है। साल 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, सिविल एविएशन के क्षेत्र में हब एंड स्पोक मॉडल उसका एक अहम हिस्सा है।
0: तो इसका जिस गति से हम तेज गति से ये सिविल एविएशन में हमने बढ़ोतरी की, उसको एक दूसरे लेवल पे अभी पहुंचाने की जरूरत थी। और ये आता है हमारे विजन, जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है, उसमें अगर भारत को विश्व में एक ताकत भर का एक देश अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे 10, 15, 20 साल की सोचनी पड़ेगी। उसमें से हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत में एक डोमेस्टिक ट्रैवल को ही ताकत ना दे, इंटरनेशनल ट्रैवल को भी ताकत देना चाहिए। उसी से हमारा एक विजन से आता है ये हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा। और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उसे कनेक्ट किया जाए।
1: जो लोग टियर 2 और टियर 3 शहरों से दुनिया के बड़े बड़े शहरों की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें पता है कि एक यात्रा के लिए दो दो एयरपोर्ट्स पर उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। पहले टियर 2 या टियर 3 शहरों के एयरपोर्ट पर तमाम औपचारिकताओं से गुजरना और उसके बाद हब एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोबारा उन्हीं औपचारिकताओं से गुजरना यात्रा के उत्साह को ठंडा कर देता है। हब एंड स्पोक मॉडल ऐसे यात्रियों के लिए राहत का बड़ा पैगाम लेकर आया है।
0: आज से पहले ऐसा होता था कि वाराणसी से अगर कोई आदमी देश के बाहर कोई भी शहर जाना चाहता हो तो उसको एक हब वाले एयरपोर्ट में जाना पड़ता है। अगर हम माने उदाहरण के लिए दिल्ली, तो वाराणसी से दिल्ली एक डोमेस्टिक फ्लाइट में वो यात्री जाता है और वहां पे टर्मिनल के बाहर आना पड़ता है, लगेज के साथ आना पड़ता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जिस टर्मिनल से उसी शहर में शुरू हो रही है, उस टर्मिनल में वापस उसको पूरे लगेज के साथ उसको जाके फिर वहां पे इमिग्रेशन, वहां पे कस्टम, वहां पे सारे ये जो चीजें हैं वहां पे करके फिर वहां से दिल्ली से लंदन या दिल्ली से अमेरिका या दिल्ली से दुबई उनको जाना पड़ता है।
1: कहने की जरूरत नहीं कि वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 25 जून 2026 का दिन खुशियों का ऐतिहासिक पैगाम लेकर आया है। आने वाले 6 हफ्तों में 6 और टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों के लिए खुशियों की यही सौगात मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ तो हो गया है, जल्द ही काशी के लोगों को देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की भी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में काशी के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, अब वो बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि अगस्त महीने में काशी के लोग गोंडोला राइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। खास बात देखिए इसमें यह है कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के किराए का भी अब खुलासा कर दिया है। वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक के इस 4 किलोमीटर लंबे रोपवे का अधिकतम किराया 50 रुपए और न्यूनतम किराया महज 10 रुपए होने जा रहा है। हालांकि स्मार्ट कार्ड धारकों को इस किराए में थोड़ी रियायत दी जाएगी। साफ सी बात है, काशी के लोगों के साथ ही वहां जाने वाले सैलानियों को काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी।

0: हब एंड स्पोक मॉडल के बाद काशी के लोगों को रोपवे की अनूठी सौगात भी जल्द ही मिलने वाली है। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी VDA ने दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के किराए का ऐलान कर दिया है। VDA ने वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले गोंडोला का अधिकतम किराया 50 रूपए जबकि न्यूनतम किराया 10 रूपए निर्धारित किया है।
1: इसमें आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक 50-50 रुपीस अगर कोई यात्री यहाँ उतरते हैं और वहाँ उतरते हैं तो 50 रुपया का है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग हम जैसे अगर आप विद्यापीठ में उतरेंगे 10 रुपया का है। तो ओवरऑल पूरा होल स्ट्रेस के लिए 50 रुपया है। अगर वहाँ पे स्मार्ट पास लेंगे जैसे आप लोग मेट्रो में देखते हैं स्मार्ट मास्क पार्ट लेते हैं तो हम लोग 20% वहाँ पे डिस्काउंट का प्रोविजन रखे हैं सरकार ने। और इसके लिए और प्रीमियम गंडोला का भी प्रोविजन है। कोई कलेक्टिवली किसी एक गंडोला को ये लेना चाहते हैं तो 2000 रुपया का उसका किराया निर्धारण की गई।
0: आपको बता दें कि वाराणसी रोपवे का शिलान्यास 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 3.25 साल बाद पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट करीब करीब तैयार है। कैंट से गोदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने में इस अनोखे प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर दिया जाएगा। इस रोपवे के शुरू होने के बाद वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक की करीब 4 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी हो सकेगी जबकि आज यही दूरी तय करने में करीब 45 मिनट का समय लगता है।
2: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतर कर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहाँ पहुँचने वाले यात्री तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
0: एशिया के इस पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का लाभ सिर्फ काशी वासियों को ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम हिस्से से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए इन श्रद्धालुओं को अब संकरे रास्तों और ट्रैफिक जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि करीब 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 4 स्टेशन होंगे। वाराणसी कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोडोलिया। रोपवे पर करीब 150 गोंडोला होंगी जिनसे यात्री सफर कर सकेंगे। एक गोंडोला में एक बार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। हर घंटे रोपवे से तकरीबन 3000 यात्री सफर करेंगे। रोजाना करीब 1 लाख यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि अगस्त में रोपवे के संभावित उद्घाटन की खबर से काशी वासियों के साथ ही यहां आने वाले सैलानी भी गदगद है।
3: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे। यहां पर आएंगे तब
4: बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ। और इससे बढ़िया क्या चाहिए?
5: रोपवे के साथ साथ हम लोग को तो बेनिफिट होगा ही। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बीमार लाचार हैं, जो महिला बच्चे हैं, उन लोग को रुपये से आने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से दर्शन करेंगे। उनको किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होगा। हम लोग के साथ सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
6: सफर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इतनी ज्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है। हम लोग आते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। रोपवे से बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और सुविधा ज्यादा हो जाएगी।
0: दरअसल इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, गोंडोला राइड के दौरान स्थानीय लोगों और सैलानियों को काशी का विहंगम नजारा देखने को मिलेगा जो अपने आप में एक शानदार एहसास होगा। साथ ही काफी दूर से ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर का दर्शन भी कर सकेगा। काबिले गौर है कि इस परियोजना के तहत विकसित किए गए स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी वजह से गोंडोला राइड के दौरान यात्रियों को एक अलग ही अनुभव मिलेगा। इसमें संदेह नहीं है कि ये रोपवे लगातार हाईटेक हो रही काशी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एशिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे बाबा विश्वनाथ की नगरी की पहचान और भी मजबूत होगी और ये आधुनिक परिवहन प्रणाली के साथ आगे बढ़ेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

गजब का इत्तेफाक यह है कि ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा बनारस अब आधुनिकता का मॉडल शहर बनता जा रहा है। इसी साल काशी को एक और अनोखी सौगात मिलने जा रही है। काशी में बन रहे पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 90% से ज्यादा काम अब पूरा हो चुका है और बहुत मुमकिन यह है कि अगले साल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का आयोजन भी किया जाएगा। कमाल तो यह है कि आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहे स्टेडियम का कलेवर जो है शिव, गंगा और काशी की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है, यानी दर्शकों के लिए यहां मैच के रोमांच के साथ ही आध्यात्मिकता का स्पर्श भी प्राप्त होगा।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान माने जाने वाली दुनिया की प्राचीनतम काशी नगरी अब आधुनिकता की दौड़ में काफी आगे निकल चुकी है। काशी के निरंतर विकास की अद्भुत कड़ी है गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया था और अब इसका 90-95% काम पूरा हो चुका है। वाराणसी के गंजारी में बनकर तैयार हो रहा यह स्टेडियम कई महीनों में दुनिया का सबसे अनूठा क्रिकेट स्टेडियम है क्योंकि इसे शिवगंगा और काशी की संस्कृति की थीम के साथ तैयार किया गया है।
1: पूर्वांचल का पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग 90% तक बनकर तैयार हो गया है और खास बात यह है कि ये बीसीसीआई का देश का पहला अपना क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है और इस समय हम उसी क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बाहर की ओर खड़े हैं और शिव और गंगा और काशी की थीम पर ये क्रिकेट स्टेडियम लगभग 31 एकड़ में 451 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो जिस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ की त्रिशूल के आकृति के रूप में इसके फ्लडलाइट को रूप दिया जा रहा है तो वहीं इसकी छत अर्धचंद्राकार बनाई गई है। तो ठीक सामने जो लॉन्च दिख रहा है वे डमरू की आकृति का है और जो सीढ़ियां हैं जिसमें ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 30,000 लोग बैठेंगे वे पूरी तरह से गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा उकेरा जा रहा है। तो वहीं एंट्री पॉइंट पे जो प्रवेश द्वार है वो बिल्व पत्र यानी बेलपत्र की आकृति में देखने को मिलेगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही इसकी शुरुआत इसका शिलान्यास अब से लगभग सितंबर 2023 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द 2027 के पहले इसका लोकार्पण भी होगा।
0: शिव गंगा और काशी की थीम पर तैयार हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अनेक अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेडियम को सेंसर बेस्ड तकनीक पर तैयार किया जा रहा है जिसका फायदा ये है कि लगातार 3 घंटे भी मूसलाधार बारिश होगी तो मात्र 20 से 25 मिनट में सेंसर बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम से पानी को निकालकर आधे घंटे में मैच दोबारा शुरू कराया जा सकेगा।
2: ये आईसीसी स्टैंडर्ड पे टोटल डिजाइंड है ग्राउंड और नॉर्मल स्टैंडर्ड 65 मीटर का होता है, 76 मीटर है रेडियस, जिसका ड्रेनेज इस तरह से डिजाइंड है कि अगर एक घंटे भी बारिश तेज हो जाएगी ना तो आधे घंटे के अंदर इसका सारा ड्रेन आउट हो जाएगा पानी। इस तरह से ग्रेविटी सिस्टम और पाइपिंग किया हुआ है जो भी अंडरग्राउंड है सारा। सबसे बड़ा चैलेंज त्रिशूल, त्रिशूल का डिजाइन इंटेंट और एक्चुअल डिजाइन ड्राइंग देख के और उसको फिर मूर्त रूप देना वाकई में किस ढंग से आ रहा है क्या। एक बार दो बार तो हमने डिजाइन फेल किया और उसको मतलब उस टाइप से मैं दिख नहीं रहा था, फाइनली तीसरी बार हमें कंक्लूड हो गया था।
0: सेंसर बेस्ड तकनीक के अलावा प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला ड्रेसिंग रूम बनाया गया है, साथ ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच के आधार पर इसकी पिच को तैयार किया गया है। इस स्टेडियम की पिच में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मिट्टी की जगह रेत और कंकड़ का प्रयोग किया गया है। पिच पर केमिकल के इस्तेमाल से विशेष तरीके से घास को उगाया गया है। जाहिर है इस स्टेडियम का निर्माण देखकर काशी के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
3: बहुत बड़ी सौगात है बनारस के लिए और हम लोगों के लिए भी, हमारे बनारस में लोग अब मैच देखने आ गए, जो बनारस वाले दूसरे जगह देखने जा रहे थे आज लोग बनारस में देखने आएंगे। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे यहाँ स्टेडियम बन गया और हम लोग दूसरे शहर जा रहे थे, दूसरे प्रदेश जा रहे थे, अब दूसरे प्रदेश के क्या विदेश के भी लोग हमारे यहाँ आएंगे। अब बहुत जल्दी आप लोगों को ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें मैच भी होगा बहुत जल्दी।
0: अध्यात्म और अत्याधुनिकता के अनोखे संगम के साथ तैयार हो रहे इस स्टेडियम में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। एसटीपी के माध्यम से यहां प्रयोग होने वाला जो सीवरेज का पानी है उसे ट्रीट करके दूसरे कामों में लाया जाएगा। ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल कार वॉशिंग, प्लांटेशन और सफाई वगैरह कामों में किया जा सकेगा। संभावना है कि करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम में इस वर्ष के अंत तक ट्रायल मैच खेले जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि साल 2027 में बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्रिकेट का पहला मैच खेला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चालू होने के बाद यह स्टेडियम काशी वासियों के लिए नए सिरे से रोजगार का भी सृजन करेगा।
3: बहुत गर्व है और हमारे बनारस में जो स्टेडियम बना है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, इसलिए कि हमारा आप नाम आगे होगा और थोड़ा रोजगार भी मिलेगा और कुछ नाम भी होगा।
0: दरअसल वाराणसी के लोगों को पिछले 12 सालों से एक ऐसा सांसद मिला जो संयोग से देश का प्रधानमंत्री भी है। ये हकीकत है कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कायाकल्प में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसका असर यहाँ के लोग अब शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो काशी से जुड़े इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: और अब खबर अमेरिका से निकलकर आ रही है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए।
4: मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
5: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
4: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
5: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
4: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
7: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
8: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मानित। राजस्थान के श्री गंगानगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त अमरनाथ, लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार, नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कल होगा भव्य आयोजन। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से संवाद। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 ICC खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी ICC ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 ICC टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। ICC टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया ICC टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नेट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: और अब खबर उन खास कुत्तों की जिन पर अमेरिका की पुलिस भी भरोसा करती है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप और आजादी की 250वें साल के जश्न की सुरक्षा के लिए कुत्तों के खास दस्ते को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने पर वर्जीनिया में उन्हें सम्मानित भी किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट।
7: ये कुत्ते कमाल के, ये कुत्ते बड़े काम के हैं। ये विस्फोटकों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम है, हर खतरे को भांप लेने में माहिर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में अब ऐसे 6 कुत्तों की K9 टीम को खास प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, ताकि खास मौकों पर सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें अमेरिका की नेशनल केनाइन एकेडमी की हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को कामकाज के लिए सर्टिफिकेट दिए गए।
8: So today was a graduation for both the canine and myself. We went through a 3-month process, 7 days a week, 24 hours on, and we did a lot of training, and today we graduated.

0: 24 hours on, and we did a lot of training, and today we graduated.
1: इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की ओर से विस्फोटकों और दूसरी खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस सिलसिले में इन्हें खास गंध को पहचानने की तकनीक सिखाई गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया है, ताकि बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित हो सके।
2: I think one of the really important things is these dogs are part of a larger security apparatus. So for these types of events, the dogs are there as kind of that initial detection phase, but they're also partnered up with, like I said, bomb technicians and explosive specialists. So once the dog alerts, that now becomes a bomb technician problem because it's a suspicious package. And so then we're going to have to back the dog out and everybody else out, and then the bomb techs can come in and do that work. But it, to me, it's just important to recognize that this is just one piece of a larger security apparatus that goes to secure these events that we often don't.
1: फिलहाल इन कुत्तों में से पांच को अलग अलग शहरों में फीफा वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जबकि एक को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर माउंट रशमोर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले जांच पड़ताल में मदद के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
6: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
7: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
8: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
7: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
11: सेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मानित हुए। राजस्थान के श्री गंगा नगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त, अमरनाथ लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार, नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कल होगा भव्य आयोजन। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के किया उद्घाटन, एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। दिल्ली NCR के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल

0: खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें बताया गया है कि तेज रफ्तार से दौड़ने वाले खरगोश को बेहद शांति से धीरे धीरे चलने वाले कछुए से करारी हार का सामना करना पड़ा। दंत कथाओं का वो हीरो कछुआ अब भी सबसे आगे निकल चुका है। इस जोनाथन कछुए के रूप में आज वो धरती पर इंसान ही नहीं बल्कि तमाम जीव जंतुओं को पीछे छोड़कर सबसे लंबी उम्र जी रहे प्राणी के रूप में मिसाल बन चुका है। ये जोनाथन है न केवल दुनिया में मौजूद सबसे उम्र दराज कछुआ बल्कि सबसे ज्यादा उम्र वाला जीवित प्राणी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जो कछुआ नजर आ रहा है वो जोनाथन है, 194 साल का कछुआ जिसे धरती पर दुनिया का सबसे लंबी आयु का जीवित प्राणी होने का गौरव हासिल है। जोनाथन एल्ड्रबा प्रजाति का विशालकाय कछुआ है। इस प्रजाति के कछुए मूल रूप से सेशल्स में पाए जाते हैं। ये विशाल कछुए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशाल और सबसे लंबी आयु वाले जीवों में से एक हैं। इनमें से कुछ कछुओं ने 200 साल से भी ज्यादा लंबा जीवन जिया है। कछुओं की ये प्रजाति विशेष रूप से उन द्वीपों में पाई जाती है जहाँ इनके शिकार की संभावना कम होती है। मुख्य रूप से घास, पत्तियाँ और सेब केले जैसे मौसमी फल इसका आहार है। जून को सेशल्स की यात्रा पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के नेशनल बोटानिकल गार्डन में उसी एल्ड्रबा प्रजाति के कछुओं को देखने पहुंचे जिससे जोनाथन का ताल्लुक है। बोटानिकल गार्डन में पीएम मोदी ने बड़े उत्साह से कछुओं को हरी पत्तियों का नाश्ता कराया और वहां मौजूद कर्मचारियों से बड़ी उत्सुकता से इनके बारे में जानकारी लेते दिखे, क्योंकि इसी प्रजाति का कछुआ है जोनाथन, जो आज दुनिया में अपनी उम्र को लेकर चर्चा में है। आपको बता दें, सेशल्स ने इसी एल्डेब्रा जाइंट टॉर्टोइस प्रजाति के दो कछुए 2014 में कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को गिफ्ट में दिए थे। बाद में हैदराबाद चिड़ियाघर को भी सेशल्स ने ऐसे कुछ और कछुए उपहार में दिए। बहरहाल कहानी उस अनोखे कछुए जोनाथन की, जिसे धरती पर सबसे बुजुर्ग ही नहीं बल्कि सबसे विशाल कछुआ भी माना जाता है। तो आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि जोनाथन कहाँ पैदा हुआ और कैसे चर्चित हुआ। बताया जाता है कि जोनाथन की पैदाइश सेशल्स में हुई थी। इसका जन्म 1832 में हुआ था। इसका वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है। जोनाथन समेत तीन कछुओं को सन 1882 में सेंट हेलेना लाया गया था। तब उसकी उम्र 50 साल थी। उसे वहां के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर सर विलियम ग्रे विल्सन को एक उपहार के रूप में भेंट किया गया था। सेंट हेलेना के गवर्नर के निवास पर स्थित प्लांटेशन हाउस में जोनाथन को रखा गया। लगभग 50 साल तक उसे कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था। 1930 के दशक में सेंट हेलेना के गवर्नर सर स्पेंसर डेविस ने इसका नामकरण जोनाथन किया। अब तक ये सेंट हेलेना के 32 गवर्नर्स के साथ वक्त गुजार चुका है। 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया का सबसे उम्रदराज प्राणी बताया। सेंट हेलेना और सेशल्स के निवासी और देखभाल करने वाले स्टाफ जोनाथन को प्यार से जोनो कहकर बुलाते हैं। सबसे उम्रदराज कछुआ होने के कारण जोनाथन सभी के आकर्षण का केंद्र है और खास तौर से उनके लिए शानदार ऐतिहासिक धरोहर भी है। जोनाथन भारी भरकम काया वाला प्राणी है, लिहाजा उसकी जीवन शैली की रफ्तार बेहद मंद है। खास बात ये है कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद जोनाथन की सेहत आम तौर पर बेहतर बताई जा रही है। हालांकि उम्र के साथ कुछ दिक्कतें जोनाथन को शुरू हो गई हैं। वेटरनरी डॉक्टर के अनुसार जोनाथन को अब देखने में परेशानी होती है क्योंकि उसे मोतियाबिंद है। इसके अलावा उसे सूंघने में भी समस्या होती है। जोनाथन को लगातार पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा जा रहा है और निरंतर इसकी देखभाल की जा रही है, क्योंकि धरती के सबसे उम्रदराज प्राणी के रूप में ये लिविंग लेजेंड तो बन ही चुका है। और यही कारण है कि दूर दूर से आने वाले सैलानी जोनाथन का दीदार जरूर करना चाहते हैं। जोनाथन सबसे उम्रदराज कछुआ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसे कछुए नहीं हुए जिन्होंने बेहद लंबी उम्र हासिल नहीं की। रिपोर्ट्स के अनुसार टोंगा में 1966 में तू मालीला नाम के कछुए की मौत 189 साल की उम्र में हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में अल्दाबारा नाम का कछुआ 255 साल जिंदा रहा, लेकिन रिकॉर्ड्स इसकी पुष्टि नहीं करते। हकीकत ये भी है कि कछुए आमतौर पर दूसरे प्राणियों के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। अगर अभी धरती पर मौजूद सबसे उम्रदराज कछुओं की बात करें तो सेशल्स के बर्ट आइलैंड पर मौजूद एस्मेराल्ड की उम्र 170 साल से ज्यादा मानी जा रही है। सेशल्स के मोएन आइलैंड और नेशनल बोटानिकल गार्डन में एल्ड्रबा प्रजाति के कई ऐसे विशाल कछुए मौजूद हैं जिनकी उम्र 150 साल से ज्यादा है। इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप पर भी कुछ कछुए उम्र की सेंचुरी पार कर चुके हैं। वहीं मियामी के चिड़ियाघर में मौजूद गोलियत नाम के कछुए की उम्र 150 साल तक आंकी गई है। प्रकृति में कछुओं के अलावा भी कई ऐसे जीव हैं जो सैकड़ों और यहां तक कि हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। इनमें से कुछ जीव समुद्र की अतल गहराइयों में रहते हैं जहां का माहौल बेहद ठंडा और शांत होता है। इनमें वेल और शार्क की कुछ खास प्रजातियां, इमॉर्टल जेलीफिश और कुछ खास किस्म के घोंघे और सीप शामिल हैं। हालांकि धरती पर पाए जाने वाले ऐसे जीवों में इंसानों के अलावा केवल कछुए ही हैं जो उम्र का शतक पार करने की क्षमता रखते हैं। जानकारों के मुताबिक कछुओं की औसत उम्र उनकी प्रजाति पर निर्भर करती है। कछुओं की उम्र 20 साल से लेकर 150 साल से ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर छोटे कछुओं की जिंदगी छोटी होती है, जबकि विशाल आकार के कछुए इंसानों से भी दोगुनी उम्र जीते हैं। समुद्री कछुए 50 से 100 साल तक जीते हैं और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले बॉक्स कछुओं की उम्र 40 से 100 साल तक हो सकती है, जबकि तालाबों के कछुओं की उम्र 30 से 50 साल तक होती है। अब सवाल ये है कि आखिर कछुओं में ऐसा क्या खास है कि उनकी उम्र लंबी। इसके बारे में हमने रिसर्च किया तो पता चला कि कछुओं में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से धरती पर हो रहे तमाम बदलावों के बावजूद लंबी जिंदगी जीने में कामयाब रहते हैं। आपको बताते हैं आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनसे कछुए लंबा जीवन जी पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कछुओं का बदन मजबूत बाहरी खोल या कवच से लैस होता है। ये कठोर खोल उन्हें शिकारियों और मौसम के बदलावों से प्रभावित होने से बचाता है। प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहने के कारण वो हर खतरे से महफूज रहते हुए अपनी पूरी उम्र जी पाते हैं। विशाल कछुए मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। हरी पत्तियां, घास और फल खाने के कारण उनके शरीर में विषैले तत्व जमा नहीं होते। इसके अलावा कछुओं में मेटाबॉलिज्म बहुत धीमी गति से होता है। इनके बदन की ऊर्जा बहुत धीरे धीरे खर्च होती है। वो बिना भोजन और पानी के भी महीनों तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं जिनका संबंध कछुओं की लंबी उम्र से है। आइए जानते हैं वो कौन से खास कारण हैं जो कछुओं की लंबी उम्र के लिए वरदान के समान है। जानकारों के मुताबिक कछुओं के शरीर की कोशिकाएं खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सक्षम होती हैं। इसके कारण कछुओं में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा ना के बराबर होता है। कछुओं के डीएनए में भी खुद को रिपेयर करने की शानदार क्षमता होती है। कछुए पृथ्वी पर सबसे धीमी गति से जीने वाले जीवों में से हैं। इसके कारण उनकी कोशिकाएं बहुत लंबे समय तक कारगर बनी रहती हैं। कछुओं का दिल बहुत धीमी गति से धड़कता है। कम धड़कने के कारण उनका दिल कभी थकता नहीं और बहुत लंबे समय तक काम करता है। कछुए बेहद शांत जीव हैं, उन्हें कभी तनाव नहीं होता। तनाव नहीं होने से कछुओं के शरीर में हानिकारक हार्मोन्स नहीं बनते। एक तरह से देखा जाए तो कछुओं की लंबी उम्र के ये राज अब दीर्घायु की संजीवनी बूटी खोज रहे इंसानों के लिए भी बड़े मददगार हो सकते हैं। हालांकि कछुओं और इंसानों की शारीरिक बनावट में बहुत फर्क होता है और जीवन शैली भी काफी अलग अलग होती है, लेकिन अगर इंसान कछुओं के जीवन से कुछ सीख ले तो 100 साल जीने की चाह के सपने को साकार करना बेहद आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल
10: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू। श्री गंगानगर सूरतगढ़ से लंगर की सेवा करने वाले पहुंचे बालटाल, 20 कैंप बनकर हुआ तैयार। नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूध दही शहद और पंचामृत से अभिषेक। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। साफ कहा गया है कि बिना पंजीकरण और RFID कार्ड के किसी भी यात्री को आने की अनुमति नहीं। श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सकुशल जारी। बद्रीनाथ में अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी। कल देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार। 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। यात्रा को लेकर रथ निर्माण का काम लगभग पूरा। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में 135वें एपिसोड का प्रसारण। गिनाई स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई उपलब्धियां। बोले समुद्र से लेकर आसमान तक भारत तेजी से बन रहा है सुरक्षित आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की कई खामियाबियों पर भी बात की। एविएशन सेक्टर को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-295 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया है। उत्सवों में पर्यावरण को दिए जा रहे बढ़ावे की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाने की कही बात। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान मिला। वैश्विक नेतृत्व के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का उपाधि। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान देखी भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक। लोगों ने उत्साह के साथ अभिनंदन किया। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना का मार्चिंग दल लेगा हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। भारतीय सेना के असम रेजिमेंट का 32 सदस्यीय दल समारोह में होगा शामिल। कैप्टन आर्यन एच शाह देउलकर करेंगे दल की अगुवाई। 1 जुलाई से बदलेंगे कई वित्तीय कामों के नियम। आम लोगों का मंथली बजट हो सकता है प्रभावित। अब 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करने के लिए नहीं देनी होगी फीस। पहले इसके लिए चुकानी पड़ती थी ₹75 फीस। 1 जुलाई से बिना टिकट सफर करने पर लगेगा डबल जुर्माना। रेलवे ने कुछ नियमों में किए बड़े बदलाव। 90 दिन तक LPG से PNG में शिफ्ट होने की डेडलाइन 30 जून को हो रही है समाप्त। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा और महंगा। नॉर्मल कैटेगरी में पासपोर्ट 2500, तत्काल में 5000। पोरबंदर में 2 महीने बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा पूरी तरीके से शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन ने यात्रियों का स्वागत किया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो से पूरी तरीके से गुलजार। पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षक। वडोदरा के पिता और बेटे ने साइंस सेक्टर में कर दिया कमाल। सूर्य की हानिकारक किरणों से धरती को बचाने के लिए सैटेलाइट का बनाया मॉडल। सर में एक शाम शिव भोलेनाथ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। बैतूल में योग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिस्सा लिया। देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर में बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना। दिल्ली NCR में भी बनी रहेगी गर्मी और उमस। जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून के पहुंचने की संभावना। दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। केरल के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कन्नूर जिले के लिए येलो अलर्ट। मुंबई में बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव, पानी के बीच निकलने को मजबूर हुए लोग। मॉनसून के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव पर खूबसूरत नजारा, सुबह वॉक करते हुए नजर आए सैलानी। सिक्किम में जोरदार बारिश से उफान पर कई नदियां, फिडांग के पास फी खुला ब्रिज ढहा। वैली ब्रिज मूसलाधार बारिश और उफनती नदी के बहाव में पूरी तरीके से बह गया। फिडांग और सांगलांग के बीच पूरी तरीके से संपर्क टूट गया। अरुणाचल प्रदेश के पोसा गांव के पास अचानक आई बाढ़, घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से जुटी। हरिद्वार में दधीची अंगनाथ संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ, हजारों लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांतिकुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरा गायत्री परिवार को बधाई दी। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का होगा आयोजन, भगवान राम और रावण के बीच होगा संवाद। हाथरस में 248 करोड़ रुपए की लागत से 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा परियोजनाओं से विकास को मिलेगी नई गति। पंजाब के अमृतसर में बनाया जाएगा लवकुश और माता जानकी का भव्य मंदिर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। चंडीगढ़ प्रशासन ने रिहायशी मकानों में बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा चलाने की हरी झंडी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, मकान मालिक अपने घर के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए दे सकते हैं किराए पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुलहस्ती बांध से लिस्ट छोड़े जाने के बाद पढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। महिला विश्व कप में भारत की बेटियों के लिए आज बड़ी चुनौती, हरमन ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से ही खुलेगी भारतीय टीम की उम्मीदें। विमेन वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले पर बारिश का भी खतरा। थाईलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में आज शाम 6 बजे से बेलफास्ट में खेला जाएगा मैच। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आज रहेगी सबकी नजर, सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया का जीतना जरूरी। भुवनेश्वर में चल रही है इंटर स्टेट एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में हैंसी सोजन ने रच दिया इतिहास, अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैंसी सोजन ने 6.88 मीटर की लगाई कूद। ऊंची कूद में सर्वेश कुमार ने भी बनाया नया रिकॉर्ड, ऊंची कूद में 2.31 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुशारे ने तेजस्वी शंकर का 2018 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ा। जापानी खिलाड़ियों को हराकर यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंचे किदांबी श्रीकांत। इटली में हीट वेव से बचने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोम में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट ब्रेसलेट।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
12: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
13: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: सेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड. पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए मिला सम्मान. राजस्थान के श्री गंगानगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त. अमरनाथ लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार. नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद. स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया. ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में कल होगा भव्य आयोजन. रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन. एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट में भी आजमाए हाथ. प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद. पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसून की बारिश. पुणे और कोलकाता में सड़कें पानी से लबालब. धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया. दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत. मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश. फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 1 करोड़ महिलाएं रहती हैं दिल्ली में, उस दिल्ली में जो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बदनाम है। दिल्ली के उसी बदनुमा दाग को मिटाने के लिए कई कोशिशें एक साथ की जा रही हैं। उन्हीं में से एक कोशिश है ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, खास महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं का थाना, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक का स्टाफ सब महिला पुलिस होंगी, ताकि महिलाओं की शिकायत को गरिमा में रहते हुए सुने और उसे दूर कर सकें। ये सिर्फ एक पुलिस स्टेशन नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी इमारत अपने अंदर एक इतिहास समेटे है। ये दिल्ली का सब्जी मंडी थाना है, दिल्ली का पहला थाना। 165 साल पहले दिल्ली में इस पहले थाने का जन्म हुआ था। तारीख थी 18 अक्टूबर 1861। 165 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर करवट बदली, एक नया इतिहास लिखने के लिए। और कमाल का इत्तेफाक ये कि इस बार भी ये इतिहास इसी सब्जी मंडी थाने के अहाते में लिखी गई। जानते हैं कैसे। दिल्ली के पहले महिला पुलिस स्टेशन के जन्म के साथ, जी हाँ, ये नई नवेली दुल्हन की तरह सजी, महिलाओं के पसंदीदा गुलाबी रंग में ढली, ये है दिल्ली का पहला महिला पुलिस थाना। एक ऐसा थाना जिसमें सारा का सारा स्टाफ भी महिला और शिकायतें भी सिर्फ महिलाओं की। जानते हैं क्यों? ताकि यहाँ आने वाली हर महिला या लड़की बेखौफ और बिना झिझके खुद के साथ होने वाले अपराधों को बयां कर सके। जब एक महिला बोलती है और एक महिला सुनती है, तो फिर कहानी पूरी सामने आती है। बस दिल्ली की आधी आबादी की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखते हुए इस इतिहास की शुरुआत की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस दिल्ली में 227 से ज्यादा थाने हैं, उनके बीच ये एक थाना अलग कैसे? इस थाने में ऐसा क्या काम होगा जो बाकी थानों में नहीं होता? और क्या ये एक थाना दिल्ली की आधी आबादी में हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए काफी है? तो चलिए इन सवालों के जवाब इसी थाने में घूमकर तलाशते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं महिला पुलिस थाने के बाहर में। ये दिल्ली का पहला महिला पुलिस थाना है। ये थाना कैसा है, कैसे काम करता है, यहाँ पर शिकायतकर्ता जब अपनी शिकायत लेकर आते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे उनकी शिकायतों को दूर किया जाता है, सब कुछ आज देखेंगे, जानेंगे। चलिए मेरे साथ आपको बताती हूँ कि जब आप इस पुलिस स्टेशन में आएंगे तो आपको अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या क्या स्टेप्स आपको आगे फॉलो करना होगा। तो जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे, सबसे पहले देखिए ये राइट साइड में ये पुलिस स्टेशन है, ये है पिंक कलर का। खासकर महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो पिंक कलर आपने सुना होगा, लड़कियों का फेवरेट भी होता है। तो ये पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट, पिंक स्टेशन, ये अक्सर दिखाता है कि ये महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो ये पिंक पुलिस स्टेशन बनाया गया, ये महिलाओं के लिए है। लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वी लिसन वी केयर वी एक्ट, यानी कि हम आपकी सुनेंगे, हम आपकी परवाह करेंगे और हम फिर कार्रवाई भी करेंगे। तो एक बहुत प्यारा से मैसेज के साथ इस पुलिस स्टेशन की शुरुआत होती है, ताकि आप जब यहाँ अपनी परेशानी लेकर आए तो थोड़ा सा उसमें आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके। उसके बाद तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है कि ये आपकी मित्र पुलिस है। यहाँ पर शिकायतकर्ता अपने बच्चे के साथ आई हुई है और यहाँ पर इस पुलिस के SHO यहाँ पर खड़ी हैं। और ये देखिए, ये हाथ बढ़ाया है कि हम आपके साथ हैं, आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे और आपके लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके आगे नारी सुरक्षा समाज की रक्षा, यानी कि आपकी सुरक्षा हमें करनी है और समाज की रक्षा भी हमें करनी है, और दोनों ही दायित्वों को, दोनों ही जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाएंगे। तो ये जो दीवार है, इस पर कुछ मैसेजेस और कुछ चित्र बनाए गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपके समस्या का भी समाधान होगा और साथ ही आपको ये यकीन दिलाया जाएगा, ये भरोसा दिलाया जाएगा कि हम आपके साथ हैं। ये देखिए, जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो कुछ कंप्लेनेंट्स हैं जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं और अब वो वापस जा रहे हैं, शायद इनकी शिकायत दूर हो गई हो या फिर इनका काम यहाँ पूरा हो गया। जब हम अंदर दाखिल होंगे तो अंदर इस थाने में क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आप इस थाने में आते हैं अपनी शिकायत लेकर, तो कैसे उन शिकायतों को दूर किया जाएगा, आपकी परेशानियों का हल निकाला जाएगा। अब हम इस पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये महिला पुलिस थाना आने के बाद आपको क्या तस्वीर दिखाई देगी, सबसे पहले आपको दिखेगा ये रिसेप्शन। रिसेप्शन पर हम बात करेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। मैम प्लीज बैठिए, आपका नाम क्या?
1: अनु, डब्ल्यू कॉन्स्टेबल अनु।
0: मैम यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या करते हैं
1: यहाँ पर? जो भी कोई भी शिकायतकर्ता आएगी उसकी एंट्री होगी और उसको आराम, मतलब उसकी समस्या सुनी जाएगी और उसको आराम से बिठाया जाएगा, कंफर्टेबल किया जाएगा और फिर आगे की प्रोसीडिंग होगी।
0: पहले आपकी पोस्टिंग किस थाने में थी इससे पहले?
1: महिला सेल में थी, वुमेन सेल में।
0: जी, यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है कि एक ऐसा थाना जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक का हर स्टाफ सिर्फ महिला ही होंगी, तो क्या वो सशक्त महसूस करते हैं, कैसा फील होता है?
1: बहुत अच्छा फील हो रहा है, सभी महिलाएं हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और हमें बहुत प्राउड होता है कि जो भी शिकायत लेके आती है महिलाएं उनकी हम हेल्प कर पाते हैं, अपनी जो भी परेशानी लेकर आती है।
0: अच्छा, यहाँ पर जब आप उनका नाम नंबर शिकायत लिख लेते हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसके बाद उन्हें कहाँ जाना है?
1: जो शिकायत लेके आती है उनको मतलब देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, अगर वो मुझे डीओ में भेजेंगे वहाँ से फिर आईओ के पास भेजा जाता है उनको जो भी उनकी शिकायत होती है।
0: तो जब से ये थाना खुला है आप यहाँ पर हैं, तो जो लोग शिकायत लेकर आते हैं आपको उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा दिखता है जब आप लोग उनसे बात करते हैं, तो क्या वो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा संतुष्ट दिखती हैं कि महिलाएं हैं तो शायद वो हमारी बात ज़्यादा अच्छी?
1: वो काफ़ी अच्छे से हमें बता भी पाती हैं, खुल के अपनी सारी बात, जो भी दिक्कत होती है वो बता पाती हैं।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पर रिसेप्शन पर आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपकी जो भी परेशानी है वो बताएंगे और इसके बाद आपको कहाँ जाना है ये आपको बताएंगे, किस ऑफिसर के पास जाना है, कहाँ जाना है इस शिकायत के लिए, आगे क्या आप कर सकते हैं आपको इस चीज़ के लिए बताया जाएगा। इसके बाद आप आएंगे डी ओ एन सी सी टी एन रूम, यहाँ पर कैसे काम होता है, क्या काम होता है वो भी जानेंगे इसके अंदर आ करके। इसके अंदर जब हम दाखिल होंगे तो यहाँ पर भी देखिए, खास ये है कि सारी महिला पुलिसकर्मी हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे।
2: मैम आपका नाम क्या है? एएसआई मीनूबाला।
0: अच्छा, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या है?
2: मैडम मैं एज ए ड्यूटी ऑफिसर काम करती हूँ और मेरा काम है कि जो भी कंप्लेंट्स आती है सबसे पहले शिकायत यहीं दर्ज होती है, उसके बाद आगे हम आईओस को, अपने सीनियर अफसरांस को, उनको रिपोर्ट करते हैं।
0: जब कोई भी महिला शिकायत लेकर आती है, खासकर तब जब यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए थाना खुला है, तो क्या उनके मन में आपको एक विश्वास या आँखों में एक वो चमक दिखती है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब ये चीज़ें हमारी ज़्यादा बेहतर से सुनी जाएंगी या वो कम्फर्टेबल?
2: जी जी मैम, जो भी लेडी आती है उसको उम्मीद रहती है कि अब महिला थाने में जा रहे हैं तो हमारी सुनवाई, हमारी कार्रवाई जल्दी होगी, तो हमें भी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जैसे पहले जहाँ भी आपकी पोस्टिंग, कहाँ थी आपकी पोस्टिंग?
2: कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में।
0: वहाँ पर तो मेल पुलिस ऑफिसर्स भी थे, फीमेल भी थी, यहाँ तो ऑल स्टाफ फीमेल का है, तो वो कैसी फीलिंग होती है?
2: अच्छी फीलिंग है मैडम, लगता है कुछ जज्बा काम करने का लेडीज के होने के नाते कि भाई हम लेडीज की प्रॉब्लम को सोल्व करें।
0: अभी तो बहुत नया यही थाना खुला है, तो अभी कैसा रिस्पांस है, लोग यहाँ पर अपनी परेशानी?
2: अच्छा रिस्पांस है मैम, अच्छा रिस्पांस है, महिलाएं आ रही हैं, अपनी कंप्लेंट्स भी दे रही हैं और हमारे सीनियर अफसर के नोटिस में है सारा जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं उनको।
0: चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे कि किस तरह की शिकायतें लेकर लोग यहाँ पर आते हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है। मैम आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम कौशल मीता है।
0: आप पहले किस थाने में थे?
3: मैं पहले गुलाबबाग थाने में थी, उससे पहले मोहिनीनगर थाने में रह चुकी हूँ।
0: अच्छा, इससे पहले आपने अलग अलग थानों में काम किया है और अब ये सिर्फ महिला थाना है, तो वहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस और यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस क्या अंतर है?
3: यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ऐसा लगा जैसे हम भी मतलब वहाँ पे करूँ काम, तो थोड़ा जेंट्सों में होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल अलग से एम्पावर फील होता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: ऐसा लगता है आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसको निभाना है, तो वो अब एक आपके लिए चैलेंज भी बन गया है, एक चुनौती भी है कि जो बड़ी जिम्मेदारी मिली उसको निभाना?
3: हाँ जी बिल्कुल, चुनौती तो है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। जो भी कंप्लेनेंट आते हैं वो भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस होता है उनका भी काफ़ी अच्छा, और हमें भी अच्छा लगता है, उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम लेडीज हैं तो हमारी प्रॉब्लम अच्छे से समझेंगी वो, उनकी शिकायत का निपटारा होता भी है।
0: अच्छा, ये पहला महिला पुलिस थाना खुला है और इसका जो आप बता रहे हैं रिस्पॉन्स जैसा है शिकायतकर्ताओं के अंदर भी और खुद फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के अंदर भी, लगता है कि बाकी दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी खुलना चाहिए?
3: हाँ जी बिल्कुल खुलना चाहिए। जैसे ही खुला ऐसा नहीं था कि हाँ भाई कंप्लेनेंट नहीं आएंगे, लेडीज कंप्लेनेंट काफ़ी सारी आए, उनका निपटान भी हुआ, उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, उनका पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा, तो उससे देखते हुए तो लगता है कि हाँ बिल्कुल खुलना चाहिए।
0: देखिए जो महिला फीमेल ऑफिसर्स जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके अंदर भी ये उत्साह है कि अगर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अगर सारा स्टाफ फीमेल है तो इस जिम्मेदारी को कैसे और निभाएं, जो चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है उससे कैसे पार पाना है उसको लेकर बहुत उत्साहित भी हैं और पूरी कोशिश यह है कि जो बड़ी जिम्मेदारी इस पुलिस स्टेशन के जरिए उन्हें मिली है उसको पूरा किया जाएगा और ये उत्साह उनके चेहरे पर आपने साफ साफ देखा। तो कैसे पूरा स्टाफ काम करता है और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम
4: क्या? मैं हेड कॉन्स्टेबल शालू।
0: इससे पहले मैम आप कौन से थाने में पोस्टेड?
4: एक्चुअली मैं विमेन सेल में सीएडब्ल्यू सेल जो यहाँ पर मर्ज हो चुका है मैं वहीं पर तैनात थी।
0: यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या?
4: अभी मैं आपको सही बताऊं तो अभी तो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड का भी काम दिया गया है और सीसीटीवी से रिलेटेड भी काम दिया गया है।
0: तो क्या क्या क्या क्या इसमें रिकॉर्ड होता है?
4: एक्चुअली रिकॉर्ड रूम में क्या होता है, जो हमारे पुलिस स्टेशन में रोज़मर्रा का जो काम होता है, जैसे FIR रजिस्ट्रेशन, एक्यूज अरेस्ट होता है, फिर उनको इन्फॉर्मेशन सीट भेजी जाती है, उससे रिलेटेड काम सारा रिकॉर्ड में ही होता है और हमें उसको रूटीन में लिखे रहना पड़ता है, जिसके लिए हमने रजिस्टर भी मेंटेन किए हुए हैं और हमें सिस्टम में भी फीड करना होता है।
0: जो पहले आपने जहाँ वुमेन सेल में भी काम किया या बाकी थानों में भी कभी काम किया हो, वहाँ से यहाँ पर काम करने का क्या अंतर है और वो आपको कैसा अब यहाँ पर आकर फील हो रहा है?
4: एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। पहले ये था कि CAW सेल में हमारा काम सिर्फ काउंसलिंग करना था और काउंसलिंग में क्या होता है कि जब केस रजिस्टर्ड होने होते हैं तो हम पुलिस स्टेशन में भेजते थे। अब यहाँ पर यह है कि काउंसलिंग भी यहीं पर होगी और केस रजिस्टर भी यहीं पर होंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी यहीं के IO करेंगे। सो मैम मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज है और आप भी महसूस कर सकते हो इन चीज़ों को, तो जो मैंने आपको बताया उससे पता चलता है।
0: यानी कि जिम्मेदारियाँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
4: बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले काउंसलिंग थी सिर्फ और अब काउंसलिंग से लेके एक्चुअली कंप्लेनेंट जब कंप्लेन देने आता है तब से लेके और उसको कोर्ट तक पहुँचाने तक, उसके बाद जस्टिस मिलने तक हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो ये बहुत बड़ा
0: बहुत एम्पावर्ड फील होता है आप लोगों के यहाँ पर, मतलब ऊपर से लेकर लास्ट जो स्टाफ होगा वो भी सिर्फ वुमेन ही होंगी, तो वो आपको और शक्ति महसूस करवाते हैं, वो एम्पावर्ड फील कराते हैं?
4: एम्पावर्ड फील कराते हैं ऑब्वियस है, लेकिन मैम बहुत सारी आपको पता है फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा है कि सारी फीमेल अपनी प्रॉब्लम को, जो फैमिली की प्रॉब्लम है, एक साइड रख के यहाँ पर 12-12 घंटे की 14-14 घंटे की ड्यूटी भी कर रही हैं। सो बहुत अच्छा है देख के।
0: जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आप लोगों से खुलकर बात कर पाते हैं?
4: बिल्कुल,
0: उनके अंदर ये होगा कि हम महिलाएं और हमारी परेशानी शायद एक महिला पुलिस ज़्यादा अच्छे से समझेगी, तो वो अच्छे से बात करें।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सी फीमेल ऐसी ऐसी कंप्लेन लेके आती है यहाँ पर कि वो एक मेल के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती, तो उनको यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो भी दिखती हैं कि यहाँ पर फीमेल स्टाफ है और हमसे काउंसलिंग करा रही, तो अपनी सारी चीज़ें वो हमारे साथ शेयर करती हैं जो कि वो मेल के साथ नहीं कर सकती। उनको भी प्रोटेक्टेड फील होता है कि ये विमेन है, मेरी प्रॉब्लम अच्छे से समझेंगी और उस पर एक्शन लेगी, सो वो अपनी सारी बातें हमारे साथ जिसे शेयर करती हैं।
0: तो यहाँ पर आपने देखा जो बाकी महिला पुलिसकर्मी हैं वो कितनी ज्यादा उत्साहित हैं अपने काम को लेकर, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, चुनौती ज्यादा हो गई है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उन पर भरोसा किया गया और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो वापस से रिसेप्शन एरिया आता है, लेकिन एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। आप अगर चार कदम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चिल्ड्रन रूम है। चिल्ड्रन रूम यानी कि जो शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं वो अपनी परेशानी को लेकर जब आते हैं उनके साथ अगर कोई बच्चा होता है तो उनके लिए ये कमरा बनाया गया है ताकि बच्चा भी अपने आप को यहाँ आकर असहज महसूस ना करे, वो कंफर्टेबल रहे। बच्चों के लिए यहाँ झूले लगाए गए हैं, खेलने की चीज़ें हैं, यहाँ बच्चों के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं, कैरम बोर्ड्स हैं, यानी कि जो जो गेम्स बच्चे खेल सकते हैं उनके लिए इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों को भी एक अपनापन यहाँ पर नज़र आए। बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता अगर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आती है कोई भी महिला, तो एक तो उनके शिकायतों का निपटारा किया जाएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया जाएगा, साथ साथ जो बच्चे आते हैं वो परेशान ना हो इसके लिए भी पूरी सुविधा इस थाने में की गई है। और हर उम्र के बच्चे मुझे लगता है यहाँ पर जब आएंगे तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये महिला पुलिस थाना उनके बच्चों के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव एक स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर शिकायतकर्ता के जो बच्चे हैं वो यहाँ रुक सकते हैं और अपने जो भी यहाँ पर टाइम वो अपने केस को सॉल्व कर करने में लगाएंगे, बच्चे इतनी देर में वहाँ पर खेल सकते हैं। इसके आगे जब आप अंदर आएंगे तो ये देखिए, ये पुलिस स्टेशन के अंदर का एरिया है जहाँ पर एक साइड में सारे आईओ रूम्स है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, जो अलग अलग केसेस को देख रहे हैं, अलग अलग केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आईओ के एक केबिन बनाए गए हैं, यहाँ पर वो रहेंगे और केसेस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे ये अलग अलग केबिन से। इसके अलावा यहाँ पर SHO का केबिन है जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर, वहाँ वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा एडिशनल SHO है, रीडर रूम है, CCTV रूम है, तो बहुत सारे केबिन्स यहां पर बनाए गए हैं। सबकी जिम्मेदारी अलग तय की गई है, उन जिम्मेदारियों को जो निभाएगा उनके लिए अलग अलग केबिन्स बनाए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स अलग केबिन में अपने केसेस पर काम करेंगे, काउंसलिंग करेंगे लोगों की। दूसरी तरफ SHO हैं, एडिशनल SHO हैं, CCTV रूम है जहां पर तमाम डाटा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। बाहर रिसेप्शन एरिया है और इसके अलावा बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो दी गई है ताकि बच्चे भी अपने आप को सहज महसूस करें। तो ये दिल्ली का पहला महिला पुलिस थाना और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आपने देखी। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं को ये जानकारी मिल रही है कि उनके लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ बेहतर सोचा है, महिलाएं अगर अपनी शिकायत को बताने में पुरुषों को, मेल ऑफिसर्स को अगर थोड़ी भी असहज होती हैं तो वो यहाँ पर जब आएँ तो अपने आप को कम्फर्टेबल फील करें। वहाँ सारी फीमेल ऑफिसर्स मिलेंगी तो अपनी शिकायतों को अच्छे से बता पाएंगी, और ये महिला पुलिस अफसर भी बता रही है कि उनकी शिकायतों को सुनने के बाद पूरी कोशिश होती है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वो उस केस पर काम करेंगी। और ये जोश, इसी जज्बे के साथ इस महिला पुलिस स्टेशन की सारी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर काम कर रही हैं। तो दिल्ली के पहले ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की झलकियाँ तो आपने देख ली, अब उनसे मिलना भी जरूरी है जिन्हें इस ऐतिहासिक थाने की कमान सौंपी गई है, यानी इस महिला थाने की इंचार्ज यानी SHO। जाहिर है ये भी एक महिला पुलिस अफसर है। अब दिल्ली में बहुत सारी महिला पुलिस अफसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर इन्हें इस इतिहास का हिस्सा बनने का मौका मिला है तो जाहिर है इनकी भी कुछ खूबियां रही होंगी।
5: सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बधाई कि इस बड़ी जिम्मेदारी को सबसे पहले आपको सौंपा गया है, दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन और उसकी इंचार्ज आप हैं, आपको कैसा लग रहा है?
6: थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अनुभव मुझे हो रहा है इससे, और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, मैं और हमारा महिला पुलिस थाने की सारी टीम, कि हम इसे बखूबी निभाएं।
5: अच्छा, इस स्टेशन में कितने टोटल स्टाफ है और कैसे कैसे आपने जिम्मेदारी सबको बांटी हुई है, और क्या कोई ब्रीफ किया है कि कैसे हमें स्टेशन को चलाना है और कैसे सबसे अलग बनाना है?
6: हाँ, हमारे पास टोटल 57 का स्टाफ है जिसमें 60-40 का रेशियो है, 60% आर वेमेन और 40% हमारे पास मेल मेंबर्स हैं, और हमने इसमें ये एक फुल फ्लेजेड पुलिस स्टेशन है, स्पेशली महिला के जो ऑफेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन ये है प्रॉपर एक पुलिस स्टेशन ही। इसमें जितने भी जो एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन में जो भी फंक्शनिंग्स होती है, हमारे यहाँ रिकॉर्ड होता है मालखाने में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी होता है, रीडर होते हैं, IOs होते हैं, CCTNS है, DO है, महिला हेल्प डेस्क है, जो भी एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन में होता है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी हैं। अलग अलग जगहों पे सारे रिस्पेक्टिव डेस्क पे स्टाफ को लगाया गया है और उनको प्रॉपरली उनके काम के बारे में ब्रीफ किया गया है। ये तो सारे थानों में ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो होती रहती है। हमने अपने स्टाफ को स्पेशली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने अपने स्टाफ को ये समझाया है कि हमारे यहाँ पे जो मेन जो तबका आएगा वो महिलाओं व बच्चों का आएगा, तो हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना है, उनको सबसे पहले यहाँ पे सहानुभूति के साथ उनकी बात को सुनना है, और हमारे पास बच्चों के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम भी बनाया है ताकि बच्चे आएँ यहाँ पर, क्योंकि थाने में बच्चे आएँ यही कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब वो आएँ तो कम से कम दे फील कम्फर्टेबल कि यहाँ भी एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैम वुमेन फ्रेंडली और विक्टिम सेंट्रिक हमारा अप्रोच रहेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन है अगर शिकायत आती है और उसके ऊपर केस दर्ज होता है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन त्वरित होगी, उसमें हम स्पेशलाइज्ड जो हमारे लॉज हैं, स्पेशलाइज्ड हमारे स्किल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी चार्जशीट करके कन्विक्शन को एंश्योर करने की प्रयास करेंगे।
5: अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है स्टेशन को खुले हुए, जब से ये इनॉग्रेट हुआ है तब से अब तक कितने केसेज आए हैं और किस तरह के केसेज ज़्यादा आए हैं जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं?
6: अभी हमारे यहाँ पे 2 FIR दर्ज हुई है जो रेप और पोक्सो से रिलेटेड हैं, तो उसमें हमने अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट करें हम। उसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस और इसका हमारे पास 11 केसेस कंप्लेंट्स आई हैं जिस पे हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। और क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है CAW सेल हमारे ही महिला पुलिस थाने में सबस्यूम हो गया है, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स थी उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको एक सही गंतव्य स्थान पर पहुँचाएँ।
5: ये क्योंकि दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है और ये जिस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं के लिए है? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा बनाया गया है, तो अगर कोई महिला ही सोचे कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी शिकायत इसी स्टेशन में दर्ज कराने में है लेकिन वो इस क्षेत्र में आते नहीं है, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये है?
6: उन लोगों के लिए बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज BNSS में एक 0 FIR का प्रावधान है। तो कोई भी महिला कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में, ऑल ओवर इंडिया, वैसे तो पूरे भारत में वो जा सकती है, तो वो हमारे पुलिस स्टेशन में भी आ सकती है फॉर 0 FIR। हम 0 FIR रजिस्टर करके जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से बाहर है या दिल्ली से बाहर है, हम वहाँ पर रजिस्टर करके कंसर्न पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में भेज देंगे।
5: अच्छा, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट्स आए हैं अब तक, क्या उनके चेहरे पर वो भाव आपको दिखाया कि जब वो ये देखेंगे कि ऊपर से लेकर जो लास्ट स्टाफ है वो भी वुमेन ही हैं, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होंगे अपनी शिकायत बताने में, परेशानी बताने में, एक ना सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर समझकर बल्कि एक महिला समझकर, एक दोस्त समझकर भी आपसे वो बात करते हैं और आप लोग भी उनको डील?
6: बिल्कुल, ये स्टार्टिंग ही इसका यही, मैंने शुरू में भी यही बताया, महिला हेल्प डेस्क है हमारा, जो सबसे पहला जो रूबरू होंगे महिलाएं, कंप्लेनेंट्स आएंगी वो महिला हेल्प डेस्क पे ही आएंगी। वहाँ हमने एक ट्रेंड स्टाफ बैठा रखा है, वो सबसे पहले महिला को उसकी कंप्लेंट सुनने से पहले सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करेगी, उसको पानी देगी, उसको ये महसूस कराएगी कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हो। पहले हम यही, हमारा जो मेन फोकस है वो यही है, और उसके बाद जो है, जो उनकी कंप्लेंट है वो हम प्रॉपरली सुनेंगे और जो भी उसका निदान एज पर लॉ हो सकेगा उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारा यही मोटो है।
5: इससे पहले मैम आपकी पोस्टिंग कौन कौन से थाने में रही?
6: मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रही हूँ और मैं एंटी करप्शन ब्रांच में रही हूँ, मैं स्पेशल सेल में भी रही हूँ, मैं PCR में रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने ज़्यादा काटा है।
5: आपने ये सारी चीज़ें बता दी, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, वहाँ पर जाहिर है मेल ऑफिसर्स भी होंगे और उनके साथ ही आपका एक्सपीरियंस होगा। ये आपके लिए भी एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपको ही सबको स्टाफ को साथ में लेकर भी चलना है, तो वहाँ काम करने और यहाँ काम करने में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है?
6: देखिए, काम तो हर जगह करना है, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि एक जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही है। और क्योंकि ये महिला पुलिस स्टेशन एक कॉज के साथ बना है, एक नोबल कॉज के साथ बना है, तो हम ज़्यादा इसमें जो है संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, और ज़्यादा हम और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में काम करेंगे ताकि संवेदनशीलता और जो कम्फर्ट है कंप्लेनेंट्स का वो तो हम बना के ही रखें, साथ में जो हमारा जो कोर है विच इज़ इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हम पूरी तरीके से क्या नाम है जस्टिफाई करें। तो ये दोनों सामंजस्य बिठाने के लिए ये एक डिफरेंस मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, अदरवाइज जो जहाँ है अच्छा काम करता है।
5: अच्छा, CP सर आए थे इनॉग्रेशन जब हुआ था, तो उनसे बातचीत हुई आपकी, उन्होंने बताया आपको कि क्या टारगेट लेकर चलना है या कैसे और बेहतर काम?
6: जी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें प्रॉपरली डायरेक्ट किया हुआ है इस बारे में, और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एज पर जो हमें डायरेक्शंस दी गई हैं उसको हम फॉलो करें।
5: जो महिलाएं जिनको इस बारे में पता है वो तो यहाँ तक आ ही रही है, अगर उनके पास कोई शिकायत है और वो बाकी किसी स्टेशन में जाने से थोड़ा भी असहज होती हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? दिल्ली की महिलाओं के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे?
6: दिल्ली के महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं, अपने आप में मजबूत बनिए और कोशिश करिए कि हमारे आप अवेयर रहें, आप अपने जो भी राइट्स हैं उनके बारे में जानें, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी जानें, और दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ थी, सदैव आपके साथ है। महिला पुलिस थाना एक इसी दिशा में एक पहल की गई है और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी अब भविष्य में इसको खोलने की वो बनाया गया है, और आप लोग कभी भी महिला पुलिस थाने में आइए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी शिकायत होगी, उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा।
5: जो स्टाफ यहाँ पर है, बाकी फीमेल ऑफिसर्स, उनसे आपकी बात होती है तो उनका एक्सपीरियंस क्या है वो आप से शेयर करते हैं, या फिर यहाँ पर बाकी ऑफिसर्स का क्या रिएक्शन है यहाँ पर काम करने को लेकर?
6: सब बहुत पॉजिटिव हैं, सबको एक ये महसूस हो रहा है कि हमको एक अलग से एक जिम्मेदारी दी गई है जो कि एक बहुत ही नोबल कॉज है। हम देखिए, ड्यूटी तो सब कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन महिला पुलिस थाना पहला दिल्ली का पुलिस थाना है जो डेडिकेटेड स्पेशली फॉर वेमेन है, तो उसमें हम वी ऑल आर मोटिवेटेड एंड वी ऑल आर फॉलोइंग दिस कि हमें अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना है।
0: ये तो शुरुआत है, पर शुरुआत अच्छी है। आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस का इरादा दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही एक महिला पुलिस स्टेशन खोलने का है। उम्मीद है कि जब महिला पुलिस वाली महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी तो न सिर्फ केस का अंजाम अच्छा होगा बल्कि केस का निपटारा भी जल्दी हुआ करेगा। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के बाहर रहते हैं तो एक बार कभी वक्त मिले तो दिल्ली के इस ऐतिहासिक थाने का दौरा जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के महिला पुलिस थाने से आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like

0: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
1: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
0: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
2: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
10: सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मानित। राजस्थान के श्री गंगानगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त अमरनाथ, लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार, नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कल होगा भव्य आयोजन। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट में भी आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद।

0: पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां। लगभग पूरी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू। श्री गंगानगर सूरतगढ़ से लंगर की सेवा करने पहुंचे बालटाल बेस कैंप बनकर तैयार। नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्ध दही शहद और पंचामृत से अभिषेक। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। साफ कहा गया है कि बिना पंजीकरण और RFID कार्ड के बगैर किसी यात्री को आने की अनुमति नहीं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा सकुशल जारी। बद्रीनाथ में अब तक 13 लाख से ज्यादा और श्री हेमकुंड साहिब में 1.5 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां तेज। कल देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार। 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। यात्रियों को लेकर रथ निर्माण का काम लगभग पूरा हुआ। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। गिनाई स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई उपलब्धियां। बोले समुद्र से लेकर आसमान तक भारत तेजी से बन रहा है सुरक्षित आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की खामियाबियों पर बात की। कहा हर भारतवासी को गर्व। एविएशन सेक्टर को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-295 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया। उत्सवों में पर्यावरण को दिए जा रहे हैं बढ़ावे की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता के रिश्तों की मजबूती पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान। वैश्विक नेतृत्व के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान दिखी भारतीय संस्कृति की शानदार झलक। लोगों ने उत्साह के साथ अभिनंदन किया। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना का मार्चिंग दल लेगा हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। भारतीय सेना के असम रेजिमेंट का 32 सदस्यीय दल समारोह में होगा शामिल। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। नॉन एसी लोकल ट्रेनों को एसी लोकल सेवाओं में बदला जाएगा। कल से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल बनेंगी एसी ट्रेन। एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी 120। मेन लाइन पर एसी लोकल सेवाएं 80 से बढ़कर हो जाएंगी 92। हार्बर लाइन पर 28 एसी लोकल ट्रेनों का संचालन रहेगा जारी। गुटवाला कल्याण ठाणे घाटकोपर कुरला CSMT रूट को मिलेगा लाभ। सुबह शाम पीक आवर्स में भी कई नई एसी सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। लोकल यात्रियों को मिलेगी और अधिक सुगम आरामदायक यात्रा। एक जुलाई से बदलेंगे कई वित्तीय कामों के नियम, आम लोगों को मंथली बजट हो सकता है प्रभावित। अब एक जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करने के लिए नहीं देना होगा कोई फी, पहले इसके लिए चुकानी होती थी ₹75 की फी। एक जुलाई से बना टिकट सफर करने पर लगेगा डबल जुर्माना, रेलवे ने कुछ नियमों को लेकर सख्त नियम जारी किए। नब्बे दिन तक एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने के लिए डेडलाइन 30 जून तक समाप्त। एक जुलाई से पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा महंगा, नॉर्मल कैटेगरी में पासपोर्ट 2,500, तत्काल में 5,000। पोरबंदर में 2 महीने बाद मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट सेवा पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन ने यात्रियों को स्वागत किया। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो से पूरी तरीके से गुलजार, पंक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र। वडोदरा के पिता और बेटे ने साइंस सेक्टर में कर दिया कमाल, सूर्य ज्ञान कार्यक्रमों से धरती को बचाने के लिए सैटेलाइट का मॉडल बनाया। अमृतसर में एक शाम शिव भोलेनाथ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। बैतूल में योग शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी बनी रहेगी गर्मी और उमस, जुलाई के पहले हफ्ते तक मॉनसून की पहुंचने की उम्मीद। दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। केरल के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, कन्नूर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव, पानी के बीच निकलने को मजबूर हुए लोग। मॉनसून के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव पर खूबसूरत नजारा, सुबह वॉक करते हुए नजर आए लोग। सिक्किम में जोरदार बारिश से उफान पर कई नदियां, फिडांग के पास फी खोला ब्रिज ढहा। पहली ब्रिज मूसलाधार बारिश और उफनती नदी के बहाव में पूरी तरीके से तबाह हुआ, फिडांग और सांकलांग के बीच पूरी तरीके से संपर्क टूट गया। अरुणाचल प्रदेश के पोसा गांव में पास अचानक आई बाढ़, घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से पहुंची। पुणे में बदल के मौसम के साथ झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेक सिटी उदयपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट। असम के धेमाजी में भारी बारिश से कैमी नदी में बहा 300 मीटर लंबा लोहे का पुल, जोनाई सदर से टूट गया संपर्क। महाराष्ट्र के अकोला में बाढ़ और बारिश से घरों में घुस गया पानी, नदी नाले उफान पर, बाढ़ में बह गई कार। रामबन में धुलस्ती बांध पर गाद हटाने के बाद बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर, एहतियात के तौर पर पगलीहार बांध के खोले गए कपाट। हरिद्वार में दधीची अंगदान संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ, हजारों लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरे गायत्री परिवार को बधाई का पात्र। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का होगा आयोजन, भगवान राम और रावण के बीच होगा संवाद। हाथरस में 548 करोड़ रुपए की लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी ने कहा परियोजनाओं से विकास को मिलेगी नई गति। पंजाब के अमृतसर में बनाया जाएगा लव कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। चंडीगढ़ प्रशासन ने रिहायशी मकानों में बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा चलाने की हरी झंडी दिखाई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, मकान मालिक अपने घर के कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए दे सकते हैं किराए पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुलहस्ती बांध से सिल्ट छोड़े जाने के बाद से बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। इटली में हीटवेव से बचने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोम में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट ब्रेसलेट। हीटवेव के बीच 700 बुजुर्गों को डिजिटल निगरानी की जा रही है, ब्रेसलेट से हार्ट रेट और नींद पर नजर। पचासी वर्षीय डीना गजेला को मिला सुरक्षा कवच, अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए नई पहल। गर्मी में हेल्थ रिस्क कम करने की कोशिश, रोम में टेक्नोलॉजी बनी बुजुर्गों का सहारा। व्हीलचेयर से गिरने पर भी तुरंत अलर्ट मिलता है, सोशल वर्कर से दूर रखते हैं निगरानी। बीजिंग को मिला सबसे ऊंचा फेरिस व्हील, 99 मीटर ऊंचा फेरिस व्हील शुरू। निन्यानवे मीटर की ऊंचाई से दिखेगा पूरा बीजिंग का फेरिस व्हील, में 40 आधुनिक केबिन लगाए गए हैं। एक साथ 460 लोग कर सकते हैं सवारी, एक राइड की अवधि 22 मिनट तक रहती है, रात में रोशनी से जगमगाएगा बीजिंग बिग आई। चीन में एआई लाइट शो से ग्रेजुएट्स का शानदार विदाई समारोह किया गया। ब्राइटेस्ट स्टार शो बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, एआई प्रोजेक्ट से कैंपस हुआ जगमग, इमारतों को बनाया गया डिजिटल कैनवस। ह्यूस्टन में तेजी से बढ़ रहा है क्रिकेट का क्रेज, अमेरिका में क्रिकेट बना नया पसंदीदा खेल। टेक्सास में क्रिकेट प्लेयर्स की बढ़ी संख्या, प्रोफेशनल कोचिंग से निकल रही है नई प्रतिभाएं। 7 साल की उम्र से शुरू हो जा रही है ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्रिकेट बना करियर का नया विकल्प, युवा खिलाड़ियों का सपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना। ह्यूस्टन के 5 खिलाड़ियों का अंडर 19 टीम में चयन हो गया, अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। ह्यूस्टन बन रहा है अमेरिका का क्रिकेट हब, यूथ क्रिकेट सिस्टम से उभर रहे हैं नए सितारे। इटली में सिसली के माउंट एटना में फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अलर्ट लेवल ग्रीन से बढ़ाकर येलो। 3000 मीटर ऊंचाई पर लावा बहना हो गया शुरू, ड्रोन फुटेज में दिखा ताजा विस्फोट। अधिकारियों ने निगरानी और तेज की, सिविल प्रोटेक्शन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ लावा का बहाव, एटना में रुक रुक कर जारी है ज्वालामुखी की गतिविधि। लावा निकलने से बढ़ी सुरक्षा चिंता, ज्वालामुखी क्षेत्र में हाई अलर्ट, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंतजाम बढ़ाए। रोम में वेस्पा के 80 साल का जश्न शुरू हुआ, 4 दिनों तक प्रदर्शनी और रैली के होंगे आयोजन। ১৯৪০ में लॉन्च हुई वेस्पा बनी इटली की पहचान। फिल्म रोमन हॉलिडे से वेस्पा को मिली दुनिया भर में पहचान, पेक और हेपबर्न की सवारी ने इसे बनाया था आइकॉन। 80 साल में बिक चुकी है वेस्पा की करीब 2 करोड़ स्कूटर, 10 साल में दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी। करीब 100 देशों में बेची जाती है वेस्पा, भारत इटली और वियतनाम के प्लांट्स भी किए जाते हैं निर्माण। यूरोप में भीषण गर्मी लगातार जारी, बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। बर्लिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, गर्मी से बचने के लिए लोग पानी की फुहारों का लुत्फ उठा रहे हैं। कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी की चपेट में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, कई जगह तापमान 40 डिग्री के पार। जर्मनी में 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। भीषण गर्मी के कारण पूरे यूरोप में लोगों की मुश्किलें बढ़ी, प्रशासन ने लोगों से धूप में नहीं निकलने की अपील की। अमेरिका में अगले महीने आयोजित होगी विशाल ऑक्शन, नीलामी में हॉलीवुड और म्यूजिक से जुड़ी कई खास चीजें शामिल हैं। ऑक्शन में कई यूनिक चीजें जिसमें विकेट विच और टोपी और जॉन लेनन के हाथ से लिखे गए गाने भी शामिल। सबसे खास चीजों में एक है एक्टर मार्क हैमिल का स्टार वॉर्स एपिसोड 5 में इस्तेमाल किया गया ड्यूक। द विजार्ड ऑफ ओज फिल्म में मार्गरेट हैमिल्टन द्वारा पहनी गई विकेट विच ऑफ द वेस्ट की टोपी भी शुरुआती बोली करीब 95 लाख। हेरिटेज ऑक्शन न्यूयॉर्क में दिखाई बॉलीवुड हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट सिग्नेचर ऑक्शन की खास चीजों की झलक, 13-17 जुलाई के बीच होगी ये नीलामी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैवान 11 सितंबर को होने जा रही है रिलीज, प्रियदर्शन ने फिल्म का ऐलान किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने फिल्म हैवान के राइट्स भी खरीदे। श्रद्धा कपूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर उन्होंने किया अपने पेट पैट डॉग्स के साथ खेलती हुई नजर आई। एक्टर सलमान खान जल्द अपने नए घर में हो सकते हैं शिफ्ट, खबरों के मुताबिक सलमान प्लॉट लेकर बांद्रा में बनवा रहे हैं घर। फेमस एक्टर और बिग बॉस फेम गौरव खन्ना और उनकी वाइफ एक्ट्रेस आकांक्षा चमोली के तलाक की खबरों पर नया अपडेट, आकांक्षा ने तलाक की खबरों को कंफर्म किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आप आपको दिखाते हैं। खबर हैदराबाद से है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, आखिर क्यों, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
2: निजाम का शहर, चार मीनार का शहर, जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये हैदराबाद है। करीब 500 साल पुराना वो शहर जो इतिहास और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलता है, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसको अब शानदार ऐतिहासिक विरासत और आईटी हब होने के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक खास कनेक्शन को लेकर भी याद किया जाएगा। असल में हैदराबाद में अब एक सड़क का नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किसी सड़क का नाम रखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप को जब इसकी जानकारी मिली तो वो गदगद हो गए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर ये तस्वीर साझा की जिसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जिको गोर सड़क के नामकरण से जुड़ी स्मारक पट्टिका का अनावरण करते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कदम की सराहना करते हुए लिखा, भारत के हैदराबाद में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, मैं ऐसा पहला राष्ट्रपति हूँ जिसे इस तरह से सम्मानित किया गया है, थैंक यू। अब आपको बता दें कि आखिर वो हैदराबाद की कौन सी सड़क है जिसका नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर हुआ है। हैदराबाद में अमेरिकी काउंसुलेट के पास वाली सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम दिया गया है। ये सड़क माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी प्रमुख अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफ्तर के नजदीक है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक ये नामकरण भारत अमेरिका संबंधों और हैदराबाद की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रतीक है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह पर चल रहे फ्रीडम 250 समारोह के सिलसिले में सड़क का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस सिलसिले में जानकारी दी है। लिहाजा ट्रंप के दौरे से पहले भारत में उनके नाम पर सड़क एक शानदार उपहार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अब खबर उन खास कुत्तों की जिन पर अमेरिका की पुलिस भी भरोसा करती है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप और आजादी के 250वें साल के जश्न की सुरक्षा के लिए कुत्तों के खास दस्ते को ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार किया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने पर वर्जीनिया में उन्हें सम्मानित भी किया गया। रिपोर्ट देखिए।
3: ये कुत्ते कमाल के, ये कुत्ते बड़े काम के हैं। ये विस्फोटकों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं। हर खतरे को भांप लेने में माहिर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में अब ऐसे 6 कुत्तों की K9 टीम को खास प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, ताकि खास मौकों पर सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें अमेरिका की नेशनल K9 अकेडमी की हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को कामकाज के लिए सर्टिफिकेट दिए गए।
4: So today was a graduation for both the K9 and myself. We went through a 3-month process, 7 days a week, 24 hours on, and we did a lot of training. And today we graduated.
3: इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की ओर से विस्फोटकों और दूसरी खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस सिलसिले में इन्हें खास गंध को पहचानने की तकनीक सिखाई गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया है, ताकि बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित हो सके।
5: I think one of the really important things is these dogs are part of a larger security apparatus. So for these types of events, the dogs are there as kind of that initial detection phase, but they're also partnered up with, like I said, bomb technicians and explosive specialists. So once the dog alerts, that now becomes a bomb technician problem because it's a suspicious package. And so then we're going to have to back the dog out and everybody else out, and then the bomb techs can come in and do that work. But To me, it's just important to recognize that this is just one piece of a larger security apparatus that goes to secure these events that we often don't.
3: फिलहाल इन कुत्तों में से 5 को अलग-अलग शहरों में फीफा वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जबकि 1 को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर माउंट रशमोर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले जांच पड़ताल में मदद के लिए भेजा गया है। Your report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
8: Jack, come home. It's supper time.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Hey Jack, could you play that one song with the words?
7: Jack FM, playing what we want.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: सेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड। पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मानित। राजस्थान के श्री गंगानगर से लंगर सेवा देने बालटाल पहुंचे बाबा भोले के भक्त अमरनाथ। लंगर बेस कैंप बनकर हुआ तैयार। नदी तट पर महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कल होगा भव्य आयोजन। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाया हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कें में भर गया पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल कैमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मथुरा की गलियों से लेकर काशी के घाटों तक, अयोध्या की भव्यता से लेकर चारधाम की दुर्गम चोटियों तक, अमरनाथ की बर्फीली गुफा से लेकर मानसरोवर की दिव्य शांति तक, भारत के इन पवित्र धामों में एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर उस युवा भारत की है जो सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि अनुभव की तलाश में निकला है। कभी तीर्थ यात्राएं बुजुर्गों की आस्था का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन आज इन यात्राओं में सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं का दिखाई दे रहा है। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। काशी, अयोध्या, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसी तीर्थ स्थलों पर युवाओं की बढ़ती मौजूदगी एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो युवाओं को इन कठिन रास्तों, ऊंचे पहाड़ों और लंबी यात्राओं की ओर खींच रहा है? क्या ये रोमांच का आकर्षण है? क्या ये अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ने की चाह है, या फिर भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में शांति, सुकून और आत्मिक ऊर्जा की तलाश? असल में ये यात्राएं सिर्फ धार्मिक पर्यटन की कहानी नहीं है, ये उस पीढ़ी की कहानी है जो एडवेंचर में आध्यात्म और आध्यात्म में जीवन का अर्थ खोज रही है, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में साहस तलाश रही है, मंदिरों की घंटियों में सुकून सुन रही है और तीर्थ यात्राओं के माध्यम से स्वयं को जानने की कोशिश कर रही है। बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया ने इन यात्राओं को पहले से अधिक सुलभ बना दिया है, लेकिन असली ताकत कहीं और है। वो ताकत है विश्वास की, आत्मिक जुड़ाव की, अपनी सभ्यता को करीब से जानने की और जीवन को एक नए नजरिए से देखने की। और यही वजह है कि मथुरा, काशी, अयोध्या, चारधाम, अमरनाथ और मानसरोवर जैसे तीर्थ आज सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं रहे बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा, ऊर्जा, साहस और आत्मखोज के सबसे बड़े पड़ाव बनते जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि इन पवित्र यात्राओं में हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि युवा सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा, वो स्वयं की तलाश में निकल पड़ा है। लिहाजा हर साल आस्था के तमाम धाम श्रद्धा भक्ति का नया कीर्तिमान रच रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शांति और सुकून की तलाश में इन धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा का भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक करीब 39 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा का आध्यात्मिक लाभ उठा चुके हैं। मौसम के दुश्वारियों के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त बद्री विशाल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। तो महीने भर पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब 12,52,000 श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन कर चुके हैं। इन दिनों भी रोजाना तकरीबन 15,000 से 20,000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। माता वैष्णो देवी की अगर बात करें तो इस धाम में अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि इन तीर्थयात्रियों में बड़ी संख्या युवाओं की है। जानकारों का कहना है कि धार्मिक पर्यटन में करीब 53% भागीदारी युवाओं की है। इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल वेकेशन के इस नए ट्रेंड पर चर्चा करें, पूर्वोत्तर में आस्था भक्ति के उल्लास की एक और तस्वीर देख लीजिए। गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में इन दिनों अंबुबाची मेला लगा हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। इनमें साधु संतों के अलावा बड़ी तादाद में युवा श्रद्धालु भी मां का आशीष ले रहे हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या के पवित्र धाम में कोई दिल्ली से आया है तो कोई मुंबई से, कोई हरिद्वार से तो कोई गुजरात से। देश के कोने कोने से आए युवा श्रद्धालु मां की आराधना में लीन है। कोई नाम जप कर रहा है तो कोई ध्यान में मगन है। तनाव और भागदौड़ की जिंदगी से दूर आदिशक्ति के धाम में ये भक्त साधना कर रहे हैं, नई ऊर्जा हासिल कर रहे हैं।
1: माँ तो मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपरा है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल,
2: बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसेज में आपको मिलती है।
3: अभी तो पीक एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की, सो फॉर साधना साधक के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे होना। फॉर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी।
0: और चलिए, लगातार जिस तरह से ये आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, सच्चाई इसके पीछे की क्या है ये जानने की हम कोशिश करते हैं आज की अपनी चर्चा में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें उनसे। महंत सीताराम दास जी, प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि आरजे प्रतीक भरद्वाज, जो कि रेडियो जॉकी हैं और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है। और पवन कोठियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि को फाउंडर हैं, ट्रैवल चिली और टूरिज्म एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन महंत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जो हम देख रहे हैं, इसको हम ट्रेंड कहें या जो कहें, आज की भाषा में हम इसे ट्रेंड कह सकते हैं, लेकिन मैं तो बस आपसे इतना कहूंगी कि जो मेरी आंखों देखी है, क्योंकि प्रभु की कृपा से पिछले 3 बार से मैं यात्रा पर जा रही हूं। जब भी बाबा के कपाट खुलते हैं केदारनाथ, वहां मैं रहती हूं, खुद बद्री विशाल के दर्शन मैंने किए हैं, और मैं खुद जो अनुभूति कर चुकी हूं वो ये है कि वहां पर एक बड़ी तादाद में जो भक्त, पहले हम कहते थे ना कि ये जितने तीर्थ होते हैं बुजुर्गों के होते हैं, लेकिन वहां मुझे बड़ी तादाद में कम उम्र के लोग मिल रहे हैं, परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, ये एक भ्रांति है कि बुजुर्गों को ही तीर्थयात्रा में जाना चाहिए या बुजुर्गों को ही भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे बीच में एक व्यवस्था गढ़ी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा है, प्रहलाद जी महाराज अपने मित्र बालकों से कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। कौमार आचरित माने कुमार अवस्था से, कुमार अवस्था माने लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था से ही भगवान के भजन में, आराधना में, साधना में, तीर्थयात्रा में लग जाना चाहिए। क्योंकि जब हम बचपन से लगेंगे तभी हमारा दीर्घकालीन जो अभ्यास होगा, जो कहते हैं अंत भला तो सब भला, भागवत में कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। तो जब तक हम बचपन से भगवान की आराधना में नहीं लगेंगे, युवावस्था से भगवान की आराधना में नहीं लगेंगे, तब तक वृद्धावस्था में बहाना भले ही बना लो भजन करने का, या तीर्थ यात्रा में जाते थे पुराने जमाने जो बुजुर्ग जाते भी थे तो लोग बाग रोग आकर के भेजते थे कि पता नहीं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे।
0: मैंने तो यहां तक सुना है कि गांव में भोज हो जाया करता था, हाँ, एक तरीके से कि पता नहीं ये वापस अगर नहीं आए तो ये आखिरी भोज हुआ उनकी तरफ से।
4: उसका कारण ये था कि उस समय व्यवस्थाएं भी नहीं थी कहीं ना कहीं। अब सरकारों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, विकास हुआ है, आने जाने की सुगमता हुई है, वो भी एक कारण है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा भारत देश आस्था प्रधान देश है, श्रद्धा प्रधान देश है, आराधना प्रधान देश है। हमारा देश संपूर्ण विश्व को बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, हमारा मार्ग क्या है। तो वही हमारे युवा वर्तमान में पूरे विश्व को बता रहे हैं कि युवाओं को ही भगवान की आराधना करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आरजे प्रतीक भरद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी कुछ समय पहले तक हम बात कर रहे थे कि हमारा जो युवा है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जेन जी जो है उसे आध्यात्म से या फिर पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एकदम से आज अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि हम कुछ समय से देख रहे हैं कि भजन क्लबिंग हो रही है, बड़ी तादाद में जो युवा है भजन क्लबिंग में जा रहे हैं, पूजा पाठ करने, जो मैंने आपको बताया कि 39 लाख का जो आंकड़ा है चार धाम में, वो बुजुर्गों का आंकड़ा नहीं है, उसमें 51% लगभग 50-51% जो है उसमें युवा भागीदारी अपनी निभा रहे हैं।
5: डेफिनेटली, बिल्कुल श्वेता जी, राधे राधे आपको, महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और ये आप, सबसे पहले तो मैं गुड न्यूज टुडे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इन विषयों पर चर्चा कर रहा है। और डेफिनेटली जैसे आपने बोला भजन जैमिंग, भजन क्लबिंग, तो हम खुद भी भजन जैमिंग क्लबिंग इसका एक हिस्सा है। और एक भजन की जो लाइन है जो कहती है कि श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो वृंदावन को, काशी को, मथुरा को कहीं ना कहीं लोगों ने जोड़ दिया है, या हमारे आसपास की जो बोलचाल में आ जाता है कि अरे तुम्हें अभी क्यों जा रहे हो, बुढ़ापे में जाना। लेकिन जैसे कि महाराज जी ने कहा कि ध्रुव जी ने भी बाल्यकाल से प्रभु को भजना शुरू किया, सेम वैसे प्रहलाद जी ने भी बाल्यकाल से करना शुरू करा, हमारे स्वयं आराध्य ठाकुर जी ने भी अपनी सारी लीलाएं बाल्यकाल से ही दिखाई हैं। और कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखेंगे तो जब माता पिता अपने बच्चों को, क्योंकि जून जुलाई का सीजन चल रहा है, जब जून में वेकेशन की बात होती है, और जब माता पिता अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं ऐसी जगहों पे, मथुरा, वृंदावन, काशी, या यात्राओं पे जाते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इनरूट होती है सारी चीजें। और आज का जो सोशल मीडिया, इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यमों से हम लोग चाहे कथावाचक हो, चाहे आचार्य संत हो, रसिक संत हो, हम उनकी जीवन शैली को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितनी फालतू की चीजों में इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, कितने अलग अलग तरीकों के नशों में या अलग अलग बातों में, अलग अलग शौकों में अपने आप को हम ढूंढ रहे थे, पूरी दुनिया में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन ये वही हो गया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना भाई। तो मुझे लगता है श्वेता जी, सोशल मीडिया को भी इसका इम्पैक्ट जाता है, और कहीं ना कहीं आप जैसे अच्छी आचरण वाले लोग, अच्छा कॉन्टेंट को प्रचार और प्रसारित करने वाली मीडिया, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा योगदान जाता है। मैं थोड़े दिनों पहले किसी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बोला कि क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों को सबको अपनी विशलिस्ट को टिक करना होता है, इसलिए लोग भक्ति भाव में जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं अच्छी बात है, अगर विशलिस्ट को टिक करने के लिए भी अगर हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा जा रहे हैं, हम ठाकुर बिहारी जी राधा रमन लाल को पा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या ही हमें लगता है सोशल मीडिया का आज के समय में बेनिफिट होगा।
0: बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा है। ऐसे ही कई अनुभूति, कई एक्सपीरियंसेस मुझे भी हुए हैं इस तरह के, जितने भी स्पिरिचुअल टूरिज्म कह लीजिए, कि हम तो अपने काम से गए थे लेकिन जो लोग हमें मिले हैं उनकी भी इसी तरह की भावना रही है। महन जी, यहाँ पर आपसे ही समझते हुए, बद्रीनाथ धाम इस बार ही जब कपाट वहां पर खुले थे और मेरा वहां जाना हुआ सौभाग्य से, तो वहां एक परिवार मुझे मिला और उस परिवार में बहुत लोग थे। परिवार में जितने लोग होते हैं, माता पिता, खुद पति पत्नी अपने, उनके बच्चे, तमाम लोग थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि ये आप पहली बार आए हैं, तो उनका कहना था कि हम हर बार कोशिश करते हैं यहां पर आने की, और आप ये समझ लीजिए कि घर में वेकेशन यानी छुट्टी की अगर बात होती है कि हम छुट्टी होने वाली है, ये छुट्टी हम ले रहे हैं तो कहां जाएंगे, तो किसी ना किसी जो हमारे तीर्थ स्थल है वहां का नाम लिया जाता है और हम सपरिवार वहां जाते हैं। ये सुनकर मैं तो अचंभित रह गई।
4: देखिए क्या है, हमारा देश, हमारे देश की जनता धर्म प्राण जनता है, निश्चय ही ये सब लोग धर्म की तरफ पहले से ही आकर्षित रहे हैं। लेकिन जो बीच में एक माहौल बनाया गया था, जो वामपंथियों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, जो उस समय का माहौल था, उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी जो माहौल सरकारों के द्वारा भी बनाया गया है, शासन के द्वारा भी बनाया गया है, और जो मूल रूप से जो कथावाचक अभी जो कथाएँ हो रही हैं, मैं कहूंगा कि इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो जगह जगह जाकर के हम लोग कथा कहते हैं, और चाहे धाम की, वृंदावन की महिमा हो, राधा रमण जी की महिमा हो, राधा वल्लभ जी की महिमा हो, वृंदावन की महिमा हो, या अयोध्या श्री राम की महिमा हो, सरयू जी की महिमा हो, यमुना जी की महिमा हो, ये जो हम लोग जगह जगह जाकर के जनता को बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं आस्था जगती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमारे देश की जनता पहले से ही धर्म प्राण है, उनको भटकाया गया था, अब सही मार्ग में जनता आ रही है, और इसके लिए निश्चय ही भारत की जनता और भारत के युवा वंदनीय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर दर्शन करने तो लोग जाते हैं, लेकिन दर्शन करने में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो बहुत आवश्यक है। हम गुटखा खा करके और वृंदावन जा रहे हैं, जिस ब्रज रज की इतनी महिमा है कि जा रज को शिव ब्रह्मादिक ललचत, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, व्यास जी कहते हैं। ऐसे ब्रजरज में कोई गुटका खा करके जा करके थूक है, तो उसको दर्शन करने से कितना पुण्य मिलेगा, तीर्थ यात्रा से कितना पुण्य मिलेगा, ये समझने की बात है। कोई बीड़ी पी करके पीछे कोई श्रद्धालु भक्त, भगवान का परम भक्त संत जो है अपना नाम जप करते हुए आ रहा है, और कोई आगे आगे कोई व्यक्ति बीड़ी पी करके धुआं उड़ा दे, हम भुक्त भोगी इस मामले के, इसलिए कह रहा हूं मैं, तो वो समय जो पीड़ा होती है वो असह्य नहीं होती। तो जो तीर्थ यात्रा जाए तो वहां किसी तीर्थ यात्री को या तीर्थवासी को कहीं किसी को ठेस ना पहुंचे, उसे समस्या ना हो, उसका अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, तीर्थ की भूमि का तिरस्कार ना हो, वहां के पर्यावरण का नुकसान ना हो, इन चीजों पर विशेष युवाओं को, मैं
0: बिल्कुल
4: बुजुर्गों की तो ठीक है, बेचारे जैसे जा रहे हैं जा ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी युवाओं की है, युवाओं को ये बातें समझना चाहिए, कम से कम जब तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहां इन चीजों से बचे।
0: बिल्कुल, और तीर्थ यात्रा तो विशेष करके, लेकिन हमारे देश में भी इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, साफ सफाई का विशेष करके, क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं तो आप उतने ही कल्चर्ड हो जाते हैं, और वो देखा भी गया है, और कई बार ये बात भी सामने आई है। प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, चूंकि कई लोगों से आपका इंटरेक्शन इंटरेक्शन होता होगा, आपकी बातचीत होती होगी, उसमें युवा वर्ग विशेष करके, चूंकि आज हम जिक्र ही उन्हीं का कर रहे हैं, जेन जी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें, आपको क्या लगता है कि ये जो एकाएक शिफ्ट हम देख रहे हैं या फिर ये जो हम बदलाव देख रहे हैं, इस बदलाव के पीछे की वजह आपको क्या लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इंसान इतना परेशान है कि वो सुकून की तलाश में धर्म की ओर लौट रहा है? अगर ये कहूं तो गलत होगा?
5: ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जेंजीज को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बिस्कोट किया गया है, बट बिकॉज आई एम अ मिलेनियल, बट मैं जिनके सामने परफॉर्म करता हूँ या मैं जहां पर भी जो मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट को या हम ठाकुर जी की भक्ति से रिलेटेड जो भी बातें बताते हैं, गीता जी से रिलेटेड जो भी चीजें बताते हैं, मेजरली उसको जेंजी कनेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं जेंजी की एक फितरत जो हमने देखी है कि वो दे आर वेरी क्लियर, अगर उनको चाहे वो एक नौकरी हो, चाहे वो पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी एक जगह हो, पहले तो उनको बांधना बहुत मुश्किल है, वो विचरण करने में बहुत ज्यादा अपना बिलीव रखते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक बार किसी चीज पे ट्रस्ट हो गया, जैसे राधारमन लाल का मंदिर हमारे वृंदावन में, या बिहारी जी हैं या राधा वल्लभ लाल जी हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितना युवा ऐसा है रात में संतों का मतलब दर्शन करने के लिए या फिर राधारमन जी में कीर्तन संकीर्तन करने के लिए, वो आगे से आगे बढ़कर के ना सिर्फ हिस्सा ले रहा है बल्कि नाम जप कर रहा है। वो आप देखेंगे, आप वृंदावन के अंदर जैसे ही आप पैर रखते हैं या आप काशी जाते हैं या फिर आप अयोध्या जी जाते हैं, आप बस चरण रखते हैं और वहां पे देखते हैं चारों तरफ युवा आ रहा है, और युवा अपने दिल की सोच रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव लाने की सोच रहा है। और महाराज जी ने भी जैसे बताई जो बात कही कि सावधानियां बरतने वाली बात है, एक तरफ हम कहते हैं कि पबिंग का कल्चर, क्लबिंग का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तादाद में ऐसे युवा हैं जिन्होंने प्याज लहसुन भी खाना छोड़ दिया है। ये बदलाव नहीं तो ये क्या है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्याज लहसुन छोड़ने के पीछे का जो साइंस है, जो लॉजिक बिहाइंड तमस है, वो भी उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तो वो इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। और एक चीज हम आपको और बताएं,
0: अच्छा मुझे ऐसा लगता है, प्रतीक आपको बीच में रोकना चाहूंगी, चूंकि आपने जेंजी की बात की और आप उन्हीं को खास करके आप उनके बीच परफॉर्म भी करते हैं जो आपने कहा, आप ये बताइए कि अपनी परफॉर्मेंस में खास करके आपके जो भजन होते हैं वो किस तरह के भजन होते हैं कि आज की युवा जो है उसको बहुत पसंद करती है, अगर आप हमें कुछ दो चार पंक्तियां को सुना पाए।
5: देखिए मैं बिल्कुल सुना पाऊंगा आपको, और हमारे जो भजन होते हैं ज्यादातर तो कवित्व शैली पे होते हैं, और खास तौर से युवाओं के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है या फिर हॉर्न बॉक्स है, ड्रम्स हैं, हम उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। और एक कवित्व है जो मैंने राधारमन जी पे लिखा था, जो वो काफी वायरल भी सोशल मीडिया पे हुआ, तो आपने मुझे मंच दिया है और बोलने का मौका दिया है, तो मैं चाहूंगा कि राधारमन लाल की हाजिरी यहाँ पर भी लगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: चंचल छपल नैने राधा के रमण के हैं, चंचल छपल नैने राधा के रमण के हैं, ठाड़ा बाकी अदा से दुनिया घुमाता है। राधा रमन लाल छोटे से ठाकुर जो शालीग्राम से स्वयंभू प्रकट हुए, ठाड़ा बाकी अदा से दुनिया घुमाता है। दतुइया दिखाए कभी मुंह को फुलाए कभी, दतुइया दिखाए कभी मुंह को फुलाए कभी, कुलिया का प्रेमी भैया भरे भरे खाता है। और छोटो सोए ठाकुर है नयन के मारे तीर, छोटो सोए ठाकुर है नयन के मारे तीर, लंगोटी लपेटे कभी सिंगारी धराता है। गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, छोटो सो ये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है, छोटो सो ये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है। बोले राधा रमन लाल की
0: जय। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित तौर पर जब आप अपने पूरे बैंड के साथ इसको परफॉर्म करते होंगे तो एक अलग ही समा वहां पर बंद जाता होगा, वो भी कभी आपसे हम सुनना चाहेंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें इस चर्चा में हम शामिल करते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, ये चर्चा हमारी जो शुरू हुई है, आज हम बात कर रहे हैं विशेष करके जेन जी का झुकाव, जो युवा हमारी है वो किस तरह से धर्म की तरफ जो है वो झुकती हुई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये हम लगाव या झुकाव देख रहे हैं, और आरजे प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी उन्होंने जैसा बताया, आपको नहीं लगता है कि आज की जो युवा है वो बहुत ही लॉजिकल है? उनको अगर आप तर्क देंगे तो वो समझेंगे, और समझते हैं तो फिर वो पूरी श्रद्धा से विश्वास भी करते हैं उस पर, और यही बड़ी वजह है कि आजकल के जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आप उन्हें कह लीजिए या आप उनको टीचर कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, कि वो बताते अपनी बात इस तरह से है युवाओं को कि एकदम उन्हें समझ में आता है और वो पूरी तरह से श्रद्धा से उसको फॉलो करते हैं।
6: देखिए श्वेता, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने जो कार्यक्रम किया है ये इस संबंध डायरेक्ट कर्मों से है, क्योंकि संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और संस्कार हमें कहां से हैं, संस्कार हमें समाज से हैं, पिता से मिलता है और संस्कार हमें और शरीर का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हर मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों के निर्माण कार्य में सहयोग करते हैं और जिन मंदिरों की स्थिति खराब है, जैसे राम मंदिर की बात करें या काशी विश्वनाथ की बात करें, तो जो देश का
0: बिल्कुल महन जी आप इस पर क्या कहेंगे?
4: निश्चय जो पंडित जी कह रहे हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। यथा राजा तथा प्रजा,
0: बिल्कुल
4: ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। जो राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा के ऊपर निश्चय उसका प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से मठ मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ जी में जाकर समाधि लगाना हो, चाहे राम जन्मभूमि में जाकर के ध्वजारोहण करना हो या प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना हो, चाहे मथुरा आदि जाना हो, चाहे दक्षिण के साउथ के सभी मंदिरों में जा जा करके पूजा करना हो, और वो स्वयं नित्य प्रति जिस प्रकार से अपनी आराधना साधना में संलग्न रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पूरी प्रजा में जरूर जा रहा है। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीर्थ है,
0: बिल्कुल
4: तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो महात्मा हैं, साधु हैं, तो निश्चय ही उसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे भारत पर पड़ता है, पूरी जनता पर पड़ता है और उससे जनता दौड़ दौड़ करके धार्मिक स्थलों पर जाती है और उसमें कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी जैसे महापुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान है, श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोई हमसे एक बार कहीं सोशल मीडिया में कह रहा था, ऐसे चर्चा हो रही थी कि ये बाबा लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैंने कहा भाई तुमने क्या किया बाबा लोगों के जैसा, ये बाबा लोग जो प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे महापुरुषों ने लाखों लोगों की मदिरा छुड़वा दी, लाखों लोगों की, और युवाओं की, वृद्धों की नहीं, लाखों युवा जो भटक रहे थे उनको ऐसे मोड़ा कि उन्होंने शराब छोड़ दिया, अभी भैया कह रहे थे प्याज लहसुन तक छोड़ दिया। ऐसे कितने लोग मेरे संपर्क में है जो मुझसे कहते हैं आकर के, ऐसे लोग जो समझाए नहीं जा सकते थे, जो आकंड माने प्रातः काल होते ही कहो कुल्ला वो जो शराब सी करते थे, ऐसे लोग बागेश्वर सरकार की बात सुन करके वो नशा छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सुन करके प्रवचनों को लोग नाम जप में लग गए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि एक बात है अभी जो भैया कह रहे थे हमारे यहाँ प्रत्येक चीज साइंटिफिक है, अभी आप कह रही थी कि उनको लॉजिकली समझाना चाहिए, तो जब लॉजिकली समझाने की बात यह है कि हमारा कोई भी सनातन धर्म का कार बिना लॉजिक के कोई है ही नहीं है, बिना
0: सभी साइंटिफिक है, सभी लॉजिकल
4: है, कार साइंटिफिक है। जैसे अब आजकल योग को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा, अभी योग दिवस में पूरे विश्व माने यहाँ तक कि जो कहते थे कि ये काफिरों का काम है, ये सब आपके चैनल के हिसाब से नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं स्वीकार करते थे वो लोग भी अभी कौन मौलाना जो है बरेली के कहाँ के, वो भी योग करते हुए नजर आए,
0: पूरा विश्व कर रहा है,
4: तो क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो साइंटिफिक है, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए यदि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारे फेफड़े सही रहेंगे, लीवर सही रहेगा, किडनी सही रहेंगी, हमारे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, सारी चीजें ठीक रहेंगी, तो लोग योग को स्वीकार कर रहे हैं। और योग में जो सबसे पहला कार्य है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें सबसे पहले खान पान पर जोर दिया जाता है, तो खान पान के प्रति भी पवित्र अपने आप होते चले गए लोग, और जब खान पान पवित्र हो गया तो चित्त वृत्ति शुद्ध हो गई। आपने सुना होगा लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, आपने सुना होगा, तो लोगों का खान पान पवित्र होने पर चित्त वृत्ति पवित्र हो गई और चित्त वृत्ति पवित्र होते ही तीर्थों में धामों में महाराज भजन पूजन में लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी आपने बहुत सही बात कही। अब प्रतीक आप ये बताइए कि अभी जो महन जी कह रहे हैं, जो उनसे चर्चा चल रही है कि भाई जैसा आप खाते हैं वैसा ही आपकी आपका चित्त होता है, आपका मन होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक बीच में दौर आया था जब कुछ ज्यादा ही लोग रिबेलियस हो गए थे, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। आप धर्म की बात कर रहे थे, अब सनातन की बात अगर करने गए तो सनातन कल परसों का तो है नहीं, सनातन तो आदि है, प्राचीन है, अनंत है, उसका तो कहां से शुरुआत उसकी हुई है वो कह पाना मुश्किल है। ऐसे में अचानक से जो आप ये अब देख रहे हैं, अभी भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं पर जाकर बोलते होंगे कि मेरे मुझसे भजन सुन लीजिए या मेरा भजन सुन लीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए। अपने आप ये झुंड आ रहा है, ये हुजूम आ रहा है और ईश्वर की साधना में लीन होना चाहता है, मगन होना चाहता है और हर तरह की चिंता परेशानी उस समय के लिए वो भूल जाना चाहता है युवा।
5: बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए युवाओं के लिए अगर बात करें तो खास तौर से युवा वर्ग और जिस जेन ज़ी या हम मिलेनियल जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे युवा जो 16-17 साल की उम्र से लेकर के 27-28 साल की उम्र, इनके लिए क्या होता है, ये युवा ज्यादातर आश्रित होता है अगर आप देखेंगे तो अपनी पॉकेट मनी पे, या फिर अगर थोड़ा बहुत वो कमा लेते हैं पिताजी से ले लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल वेकेशन जो है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली भी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉस्ट फ्रेंडली होना भी युवाओं के लिए बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। अगर आप वृंदावन धाम की बात करें तो मुझे नहीं लगता है वृंदावन धाम में, अगर आप यदि किसी आश्रम में रुकते हैं तो बहुत सारे आश्रम तो निःशुल्क चल रहे हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे आश्रम भी हैं जहां पे आपको धर्मशालों में 100-150 रुपए में एक अच्छा कमरा मिल जाता है, आप बिलीव करिए इस बात पे। उसके साथ में वृंदावन में जब आप जाते हैं तो आपको हर जगह प्रसादी मिल रही है, जिस प्रसादी को आप पा रहे हैं, संतों द्वारा बनाई गई प्रसादी आप पा रहे हैं, आपका मन, आपका जो कहीं ना कहीं आपका तन, ये सब कुछ, मनोसुखा तनोसुखा सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट फ्रेंडली भी, और लोगों को ये लग रहा है कि भाई वर्ल्ड टूर नहीं करना है। अब मैं ऐसे ऐसे युवाओं से जुड़ा हुआ हूं जो कहते हैं कि मुझे पूरे विश्व के जितने शिव मंदिर हैं उनके दर्शन करने, कितने ऐसे युवा हैं जो कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने, कितने ऐसे युवा हैं जिन्होंने वृंदावन की सेवा प्रणाली को अपने घर में ला करके अपना घर ही वृंदावन बना लिया। अब ऐसे में बहुत सारे हमारे ऐसे महाराज जी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी का मान जी ने जिक्र किया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मलुकपीठ वाले महाराज जी का जिक्र करूं, तो जिस तरीके से वो गौ पालन को उन्होंने जीवन की शैली से जोड़ दिया है, कहीं ना कहीं आज युवा चाहते हैं कि भाई हमारे घरों में इतनी व्यवस्था हो जाए कि हम गौ पालन कर पाए। या फिर दशांश निकालना, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी अच्छी जो हैबिट हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचाना। और देखिए मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं तो मुझे मालूम है ये बात तो सही है, मुख्यमंत्री जी का संत होना और संत का मुख्यमंत्री होना इसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं युवाओं को अंदर से ये लग रहा है कि हाँ हम कहीं पर भी चले जाएं और कहीं पर भी

0: पीछे की वजह क्या है, आपसे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आस्था ट्रैकिंग और जिस तरह से युवाओं का बढ़ता जोश और बढ़ता हुजूम हम देख रहे हैं धार्मिक यात्राओं को लेकर, उसको हम जानने की और समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारे साथ महंत जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितने तमाम हमारे मेहमान हैं उनको हम बता दें कि आरजे प्रतीक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रेडियो जॉकी भी है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी है, और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ महंत सीताराम दास जी भी बने हुए हैं। शैलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। शैलेश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि ये जो अचानक से हमने देखा है, क्योंकि बीच में उस दौर की भी हमने बात की कि आप जितना भी युवाओं को, किसी को भी, उस एक खास युवा वर्ग को जब आप कहते थे, समझाते थे धर्म को लेकर के, कोई सुनने को तैयार नहीं था। एकदम से रिबेलियस उनका वो रूप, वो अवतार हमें देखने को मिला था। लेकिन ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में, अभी भी चारधाम की यात्रा का हमने जिक्र किया था, लगभग 51% युवाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी है। दुर्गम रास्ते, दुर्गम परिस्थितियां, लेकिन उसके बावजूद जोश में कोई कमी नहीं और बहुत कम उम्र के लोग वहां जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं?
4: धन्यवाद। जय श्री राम। श्वेता जी, सबसे सुखद बात यह है कि आज का युवा वर्ग जो है वह सनातन की ओर पूरी तरह से जुड़ चुका है। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि जब से हमारे भारत में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों की उन्होंने यात्रा की, यात्रा करने के बाद कहीं ना कहीं एक आइकॉन के रूप में देश का प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद 2017 से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने। इन दो देश के राजनेताओं ने जिस प्रकार से सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम किया, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या राम मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, और इन सबको मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया, इन सबको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया। और साथ ही साथ श्वेता जी, आपने देखा कि जब कोरोना काल आया 2020 से कोरोना शुरू हुआ, तो कोरोना काल में लोगों के पास घर से बाहर निकलने का कोई समय नहीं हुआ, सब लोग घर में रहे, और घर में रहने के बाद लोगों को मृत्यु भय बार बार दिखता था, पूरे लोग परिवार एक साथ रहते थे, और उस समय रामायण,

0: भारत और अलग अलग तरह के जो सनातन धर्म के धारावाहिक वगैरह दिखाए गए, धर्म से जुड़ा हुआ, उससे युवा लोग आकर्षित हुआ, उस पर समय दिया। और इसके बाद धीरे धीरे आपने देखा सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा वर्ग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया। और लोगों को यह भी लगता है, कुछ युवा वर्ग इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ युवा वर्ग अपने मंदिर के बाहर जाकर के सेल्फी कवर कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, उससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, और कुछ लोग आस्था। तो इस प्रकार से आस्था, धर्म, सोशल मीडिया, सोर्स ऑफ
1: ये
0: इनकम, इन
1: तमाम
0: सब
1: चीजें मिला
0: चीजें
1: करके बिल्कुल
0: मिल करके पूरी
1: बिल्कुल
0: तरह
1: कंट्रीब्यूट कर रही है इस
0: से
1: चीज को।
0: हमारे
1: आपने
0: युवा
1: बिल्कुल सही कहा। मान जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब आप किसी इस तरह के धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जिसको स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, जब आप इस तरह की किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो आप सिर्फ जाकर, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं कहूंगी कि मुझे ऐसा व्यतीत होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब आप जाते हैं तो सिर्फ जाकर प्रभु के दर्शन करना, साक्षात उनके दर्शन करना, सिर्फ इतना मात्र ही नहीं रहता है आपका मतलब। कहीं ना कहीं आपकी खुद की खोज होती है जब आप जाते हैं, तो वो आत्म खोज होती है, खुद को जानने की कोशिश होती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपके इर्द गिर्द आसपास और कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और ईश्वर वो तत्व होता है।
2: निश्चय ही ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो अपने आत्मसंतुष्टि के लिए जाते हैं, और आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे और अपने को जानेंगे, हम कौन हैं और हमारा कौन है, अहमता और ममता जिसको कहते हैं कि मैं कौन हूँ, अहम और मेरा कौन है। तो ठाकुर जी के चरणों में जाकर के ये ज्ञान होता है कि मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं और मैं श्री कृष्ण का ही हूं। ये सारा संसार जो आपाधापी में भगे डोल रहे थे, ये सब संसार केवल बस
1: ये
2: कुछ दिनों के
1: मिथ्या
2: लिए
1: है,
2: है,
1: ये
2: कुछ
1: मिथ्या
2: दिनों के लिए है,
1: है।
2: और होटल में ठहरते हैं जैसे ऐसे है, बाकी एक दिन तो जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे, ठाकुर जी के पास ही जाना है, उनकी सेवा में ही जाना है। तो निश्चय जैसे अच्छा जैसे बिहारी जी जाते हैं, चूंकि बिहारी जी आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, हमारे वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं वो ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, ये विशेष बात बताएं, बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने उन्हें भजन के द्वारा, अपने साधन के द्वारा उनको प्रकट किया, अपने आप प्रकट हुए निधिवन राज में। ऐसे राधा वल्लभ लाल जी स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं, राधा रमण जी शालिग्राम शिला से स्वतः प्रकट हुए हैं, ऐसे गोविंद देव जी, श्याम सुंदर जी, मदन मोहन जी, ये जो ठाकुर अभी कुछ ठाकुर जो बाहर चले गए, जैसे गोविंद देव जी जयपुर चले गए, श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा चले गए, श्री जुगल किशोर जी पन्ना चले गए, लेकिन ये सब ठाकुर जो है हमारे वृंदावन के, ये प्रत्यक्ष हैं। तो जब प्रत्यक्ष भगवान के सामने विचार करिए, पूरा संसार एक ही बात चाहता है कि हमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, और वृंदावन जाकर के बिहारी जी के सामने खड़े हुए और प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो जाए, तो वहां सामने जाने के बाद में फिर निश्चय ही जीव अपने आप को भी पहचान जाता है और भगवान को भी पहचान जाता है। तो निश्चय ही

0: मन मानी। क्या बोले? यमुना यमदूतन तारती है भवतारत है श्री राधिकरानी। निश्चय ही ठाकुर जी के सामने जाकर के अपना उद्धार पक्का है, अपने आप को पहचानना और भगवान को जानना पक्का है, यही जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य यही है।
1: बिल्कुल प्रतीक, मुझे लग रहा है कि देखिए आप भी एक अलग ढंग से, लेकिन आप भी भजन करते हैं, गाते हैं, और महंत जी ने भी जो अभी स्टूडियो में सुनाया, मुझे लगता है कि ये माहौल इतना पवित्र, इतना भक्तिमय हो गया कि इसके बाद कुछ कहना, मुझे लगता है कि शब्द जो है वो कम पड़ेंगे कुछ कहने के। लेकिन वाकई इस तरह के भजन को सुन करके, इस तरह के जगहों में जा करके जहां पर सनातन की खूबसूरती को हम देखते हैं इस तरीके से, आपको नहीं लगता है कि हमारा चित्त एकदम से वहां पर शांत हो जाता है और उसके बाद जितनी भी तरह की लालसा है वो सब खत्म हो जाती है, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए?
2: डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि जो बात आपने बोली है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा एक तथ्य है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे इस तरीके की सभाओं में जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिस चीज का कहीं आनंद आता है वो ये आता है कि हम स्वयं स्वयं से मुलाकात कर पाते हैं। महाराज जी ने इतनी प्यारी बात बोली वृंदावन की, और गीता जी में भी छठे अध्याय का जो 16वां श्लोक है कि कौन कौन लोग जो हैं वो ठाकुर जी को भजते हैं, या व्यक्ति किस स्थिति में ईश्वर की तरफ जाता है। तो अगर हम जैनसीज या जो भी हैं हमारे, हम उनकी तरफ थोड़ा सा भी अगर रुख करें तो गीता जी में जो चैट जीपीटी नहीं बताता है वो हमको, जो चैट जीपीटी ने नहीं बताया वो हमको गीता जी ने बताया हुआ है कि चार स्थितियों में हम ईश्वर के प्रति अपना रुख करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि ठाकुर जी ने बोला है कि चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। पहला दुखी, यदि आप दुख में होते हैं तो आप भगवान की तरफ अपना रुख करते हैं। दूसरा जिज्ञासु, यदि मन में आपको कुछ जानना है कि ईश्वर कौन है, जो महक आ रही है कस्तूरी की ये कहां से आ रही है। और तीसरा अर्थ की इच्छा रखने वाले, अर्थ जीवन का भी अर्थ हो सकता है और अर्थ जिसको हम रुपया दौलत कहते हैं वो भी हो सकता है। और अंत में कहा जाता है ज्ञानी, जिसको ज्ञान चाहिए होता है, जिसको गुरु की शरण में जाना होता है। तो ये चार तरह के लोग जो है वो ठाकुर जी को पूछते हैं। और अगले ही श्लोक में ठाकुर जी ने भी बोला है कि जो ज्ञानी भक्त होता है या जो ज्ञान की इच्छा लेकर के मेरे पास में आता है, ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर अलोकित करना चाहता है, वो मेरा परम प्रिय है। तो मुझे लगता है श्वेता जी आज की जो चर्चा है ना वो यही है कि ज्ञान जिसे चाहिए, जिसको जिज्ञासा है, वो ठाकुर जी को लभ जाता है।
1: और मैं ये भी कहना चाहूंगी, आजकल जिस तरह से दुनिया समाज में बदलाव हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होने लगी है, पढ़ाई में भी देखिए एक्सपीरियंस बेस्ड पढ़ाई होने लगी है। अब किताब से रट्टा मारकर पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल्स अलग अलग खुल रहे हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड आपको पढ़ाते हैं। जो हमारी युवा है पीढ़ी, उनके लिए अलग अलग ऐसे एडवेंचर के प्रोग्राम्स बन रहे हैं जहां वो एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, जाकर नेचर को खुद से जाकर महसूस करते हैं करीब से। ये वो युवा है जो महसूस करना चाहता है, खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता है। और जब यही युवा इन धार्मिक स्थलों पर जाता है, महसूस करता है, उस चमत्कार को खुद में देखता है अपने आसपास होते हुए, तो उसका मन भी मानता है, उसका चित्त भी शांत होता है। और यही सबसे बड़ी वजह हमें लगती है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज का युवा धार्मिक पर्यटन करने को निकला है, उसके पीछे केवल और केवल यही वजह है, यही सनातन है, यही सत्य है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Aww. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
8: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
12: अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। देखिए कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जुबान पर हैं, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही साथ श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर के इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर जगह है, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया है, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिल रही है।
6: सुहावने मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
7: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
6: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
7: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
6: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
11: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के बलदेव जी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कल होगा भव्य आयोजन। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाया हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश, पुणे और कोलकाता में सड़कें पानी से लबालब, धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ आ सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड। पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मान।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
11: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, जिसके शुभारंभ की तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए सेवेदारों ने मोर्चा संभाल लिया है। विशेष भंडारों का तमाम सामान जो है बालटाल बेस कैंप तक पहुंच चुका है। पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल बेस कैंप से एक बहुत अलौकिक और पवित्र तस्वीर निकलकर सामने आई। नदी के तट पर गूंजते बम बम भोले के जयकारे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का भव्य शंखनाद हो चुका है। पूरा माहौल शिवमय है।

0: हिमालय की शांत बर्फीली वादियाँ, कल कल बहती नदी का किनारा और हर हर महादेव का जयकारा। अमरनाथ यात्रा महज एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस आस्था के उल्लास के बीच बालटाल बेस कैंप पर महारुद्राभिषेक के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो गया। श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ और श्री बर्फानी बाबा जोगनिया माता भंडार समिति अमृतसर ने संयुक्त रूप से नदी किनारे महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान को दूध, दही, शहद और पंचामृत के साथ महाभिषेक किया गया। इसके बाद महामृत्युंजय जाप और महाआरती से पूरा बेस कैंप गूंज उठा।
1: हर हर महादेव।
0: एक तरफ पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में है तो दूसरी तरफ भोले के भक्तों के लिए विशेष भंडारों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ भले ही 3 जुलाई से हो रहा है लेकिन यात्रियों की सेवा के लिए भंडारे 2 जुलाई से ही शुरू कर दिए जाएंगे जो यात्रा के आखिरी दिन तक लगातार चलेंगे। इन भंडारों के लिए तमाम साजो सामान बालटाल पहुँच चुका है और सेवादार दिन रात तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
2: मौका मिला है इस अमरावती नदी के तट पर महारुद्राभिषेक करने का। धन्यवाद देता हूं पवन जी साबू को। मैं अमृतसर से हैं, जोगनिया माता के नाम से इनका पवित्र गुफा पर भंडारा लगाते हैं। वह पूरे शास्त्री बंधुओं की टीम्स के साथ महारुद्राभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखे।
0: कहते हैं कि जो पुण्य और आनंद 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही पुण्य महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए हर साल तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले ही सेवा भाव में लीन ये सेवादार पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पीना और विश्राम की व्यवस्था करते हैं।
3: श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ राजस्थान का भंडारा पवित्र स्थान बालटाल पर पहुंच चुका है और सभी सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं भवन जहां पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं वो यहां पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में वहां पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं। साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे। और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग है भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है।
0: आस्था के इस महापर्व में सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस बार गृह मंत्रालय बेहद सख्त है और सुरक्षा के मद्देनजर साफ कर दिए गए हैं कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। बिना अनिवार्य पंजीकरण और RFID कार्ड के किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी।
4: 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है, गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं। मैं 11 साल से इस भंडारे से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर साल दर्शन को आता हूँ और यही रुकता हूँ।
0: 57 दिनों की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। कुल 57 दिनों की इस यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है जिनकी सुरक्षा के साथ साथ मुकम्मल सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशिष्ट पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान पूर्णिमा केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर के भगवान जगन्नाथ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये उत्सव भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पूरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही पूरी का माहौल जगन्नाथमय हो चुका है। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर पूरी भव्यता के साथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल धार्मिक परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इसी कारण उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को वनबरस कहा जाता है। इन दिनों मंदिर में भगवान के रोजाना दर्शन नहीं होते, उनकी विशेष सेवा की जाती है। अनवरस काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। लेकिन उससे पहले भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ तीनों रथ बनाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इंतजार उस समय का है जब महाप्रभु अपने भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धार्मिक मान्यताओं में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की होती है तो इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पवित्र नदियों में स्नान और दान का दिन नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का महापर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के पुण्य फल को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है।

ईश्वर की आराधना का कोई एक रूप नहीं होता, लेकिन जब भक्ति का जुड़ाव प्रकृति से हो जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि हमेशा से चंद्रमा की पूर्णता और मन की शांति का प्रतीक रही है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर जल का महत्व सबसे अधिक होता है। भीषण गर्मी के इस महीने में जब भक्त पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समस्पदक होते हैं। चंद्रमा इस तिथि में स्वामी है, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। लेकिन इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामुहूर्त है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को लंबे अरसे से था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर सिद्धि योग, साध्य योग और त्रिघरी योग जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोग के बीच किया गया कोई भी दान, चाहे जल से भरे कलश, सत्तु, अन्य या वस्तु हो, उसका पुण्य काफी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: बात करेंगे मौसम के मिजाज की। जून का महीना समाप्त होने वाला है लेकिन मानसून की रफ्तार कुछ सुस्त लग रही है। दिल्ली एनसीआर में भले ही मानसून की एंट्री नहीं हुई है लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मानसूनी बारिश लोगों को गर्मी से राहत लगातार दे रही है। आप चार तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे हम। कोलकाता में मानसून की बारिश लोगों को राहत पहुंचा रही लगातार, तो पुणे और उदयपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लेकिन दिल्ली में फिलहाल मौसम की आंख में चोली का जो सिलसिला है वो जारी है। दिन में जहां तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है वहीं अचानक मौसम बदलने से लोगों को कुछ राहत मिल जाती है। हालांकि अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली वालों को मानसून के लिए अब बहुत लंबा इंतजार करना नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो मानसून की एंट्री जुलाई से पहले सप्ताह में ही हो जाएगी और इस बीच प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं लोगों को गर्मी से राहत दे रही हैं। अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे धीरे नीचे आएगा और 1 जुलाई तक दिल्ली का माहौल जो है मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ आपको नजर आएगा। हिंदुस्तान में आम का मौसम चल रहा है तो अमेरिका में भी इसे पसंद करने वालों की कमी नहीं है। इसका पता इसी बात से चलता है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मैंगो फेस्टिवल हुआ तो उसमें लोगों की भीड़ देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए।
1: आम का स्वाद लेने की ललक इन लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। अमेरिका की सरजमी पर हिंदुस्तान के रसीले आमों का मजा लेने का ये मौका कोई नहीं चूकना चाहता। लोग बड़े शौक से यहाँ पर आम और आम से बनी तमाम सामग्रियों को टेस्ट कर रहे हैं और उनके अलौकिक स्वाद को महसूस कर रहे हैं और फलों के राजा आम के मुरीद होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी में हुए मैंगो फेस्टिवल की हैं। यहाँ पर भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित टेस्ट द ट्रॉपिकल मैजिक इवेंट में हजारों लोग पहुंचे और आम खाने का आनंद लेते नजर आए। न केवल प्रवासी भारतीय बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों के लोग भी बड़ी तादाद में यहां पहुंचे।
2: कि आज लगभग यहां जो मेरा अनुमान है लगभग 10,000 के आसपास लोग यहां पे होंगे। ये फलों का जो राजा है आम जिसको हम कहते हैं, ये आज का जो प्रमोशन था वो आम से रिलेटेड था लेकिन भारतीय चावल, भारतीय चाय, भारतीय कॉफी सबका स्वाद जो है आज अमेरिकन जनता चख रही है। हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा दिन है हम सब के लिए, हमारे कल्चर के इस छोटे से भाग के लिए जिसको हम सब अपने घरों में देखते हैं। घरों से बाहर आके समाज का, अमेरिकन समाज का उसका हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत ही सुखदायक।
1: अमेरिका में आम और दूसरी भारतीय सामग्रियों के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब साल में कई बार ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर विचार किया जा रहा है ताकि भारतीय खान पान को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को इनकी खूबियों से परिचित होने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करेंगे क्रिकेट की। टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच जारी मैच में डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव ने अपने पहले ही T20 मैच में कमाल करके दिखाया। प्रिंस यादव ने इस मैच में 3 विकेट झटके और शानदार डेब्यू किया। देखिए बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में भारत और आयरलैंड के बीच जारी मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग 11 से बाहर रहे। हालांकि वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ा। वैभव के डेब्यू का इंतजार और अब लंबा हो चुका है। और आइए बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए ग्रुप जे के आखिरी मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। लगातार तीसरी जीत के साथ अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज का समापन जो है शानदार अंदाज के साथ किया। देखिए डलास स्टेडियम में हुए इस मैच में स्टार फुटबॉलर यानी लियोनेल मेसी ने भी एक गोल दागकर सुर्खियां खूब बटोरी। मैच के 60वें मिनट में सब्सिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे मेसी ने 80वें मिनट में गोल दागकर अर्जेंटीना की जीत पर मोहर लगा दी। ये वर्ल्ड कप इतिहास में मेसी का 19वां गोल था। लियोनेल मेसी लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं, जबकि इस वर्ल्ड कप में मेसी अब तक 6 गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में वो सबसे आगे चल रहे हैं। राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना का सामना जो है 4 जुलाई को केप वर्डे से होने जा रहा है। ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा बनारस अब आधुनिकता का मॉडल शहर भी बनता जा रहा है। जी हाँ, इसी साल काशी को एक और अनोखी स्वागत मिलने जा रही है। काशी में बन रहे पूर्वांचल के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि अगले साल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का आयोजन भी किया जाएगा। कमाल देखिए ये भी है कि आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहे स्टेडियम का जो कलेवर है वो शिव, गंगा और काशी की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है, यानी दर्शकों के लिए यहां मैच के रोमांच के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी स्पर्श प्राप्त होगा।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान माने जाने वाली दुनिया की प्राचीनतम काशी नगरी अब आधुनिकता की दौड़ में काफी आगे निकल चुकी है। काशी के निरंतर विकास की अद्भुत कड़ी है गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया था और अब इसका 90-95% काम पूरा हो चुका है। वाराणसी के गंजारी में बनकर तैयार हो रहा यह स्टेडियम कई महीनों में दुनिया का सबसे अनूठा क्रिकेट स्टेडियम है क्योंकि इसे शिवगंगा और काशी की संस्कृति की थीम के साथ तैयार किया गया है।
1: पूर्वांचल का पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग 90% तक बनकर तैयार हो गया है और खास बात यह है कि ये बीसीसीआई का देश का पहला अपना क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है और इस समय हम उसी क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बाहर की ओर खड़े हैं और शिव और गंगा और काशी की थीम पर ये क्रिकेट स्टेडियम लगभग 31 एकड़ में 451 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो जिस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ की त्रिशूल के आकृति के रूप में इसके फ्लडलाइट को रूप दिया जा रहा है तो वहीं इसकी छत अर्धचंद्राकार बनाई गई है। तो ठीक सामने जो लॉन्च दिख रहा है वे डमरू की आकृति का है और जो सीढ़ियां हैं जिसमें ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 30,000 लोग बैठेंगे वे पूरी तरह से गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा उकेरा जा रहा है। तो वहीं एंट्री पॉइंट पे जो प्रवेश द्वार है वो बिल्वपत्र यानी बेलपत्र की आकृति में देखने को मिलेगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही इसकी शुरुआत इसका शिलान्यास अब से लगभग सितंबर 2023 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द 2027 के पहले इसका लोकार्पण भी होगा।
0: शिव गंगा और काशी की थीम पर तैयार हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अनेक अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेडियम को सेंसर बेस्ड तकनीक पर तैयार किया जा रहा है जिसका फायदा ये है कि लगातार 3 घंटे भी मूसलाधार बारिश होगी तो मात्र 20 से 25 मिनट में सेंसर बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम से पानी को निकालकर आधे घंटे में मैच दोबारा शुरू कराया जा सकेगा।
2: ये ICC स्टैंडर्ड पे टोटल डिजाइंड है ग्राउंड और नॉर्मल स्टैंडर्ड 65 मीटर का होता है, 76 मीटर है रेडियस जिसका ड्रेनेज इस तरह से डिजाइंड है कि अगर 1 घंटे भी बारिश तेज हो जाएगी ना तो आधे घंटे के अंदर इसका सारा ड्रेन आउट हो जाएगा पानी। इस तरह से ग्रेविटी सिस्टम और पाइपिंग किया हुआ है जो भी अंडरग्राउंड है सारा। सबसे बड़ा चैलेंज त्रिशूल का डिजाइन इंटेंट और एक्चुअल डिजाइन ड्राइंग देख के और उसको फिर मूर्त रूप देना वाकई में किस ढंग से आ रहा है क्या। एक बार दो बार तो हमने डिजाइन फेल किया और उसको मतलब उस टाइप से मैं दिख नहीं रहा था, फाइनली तीसरी बार हमें कंक्लूड हो गया था।
0: सेंसर बेस्ड तकनीक के अलावा प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला ड्रेसिंग रूम बनाया गया, साथ ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच के आधार पर इसकी पिच को तैयार किया गया है। इस स्टेडियम की पिच में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मिट्टी की जगह रेत और कंकड़ का प्रयोग किया गया है। पिच पर केमिकल के इस्तेमाल से विशेष तरीके से घास को उगाया गया है। जाहिर है इस स्टेडियम का निर्माण देखकर काशी के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
3: बहुत बड़ी सौगात है बनारस के लिए और हम लोगों के लिए भी, हमारे बनारस में लोग अब मैच देखने आगे जो बनारस वाले दूसरे जगह देखने जा रहे थे आज लोग बनारस में देखने आएंगे। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे यहाँ स्टेडियम बन गया और हम लोग दूसरे शहर जा रहे थे, दूसरे प्रदेश जा रहे थे, अब दूसरे प्रदेश के क्या विदेश के भी लोग हमारे यहाँ आएंगे। अब बहुत जल्दी आप लोगों को ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें मैच भी होगा बहुत जल्दी।
0: अध्यात्म और अत्याधुनिकता के अनोखे संगम के साथ तैयार हो रहे इस स्टेडियम में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। STP के माध्यम से यहां प्रयोग होने वाला जो सीवरेज का पानी है उसे ट्रीट करके दूसरे कामों में लाया जाएगा। ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल कार वॉशिंग, प्लांटेशन और सफाई वगैरह कामों में किया जा सकेगा। संभावना है कि करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम में इस वर्ष के अंत तक ट्रायल मैच खेले जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि साल 2027 में बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्रिकेट का पहला मैच खेला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चालू होने के बाद यह स्टेडियम काशी वासियों के लिए नए सिरे से रोजगार का भी सृजन करेगा।
3: बहुत गर्व है और हमारे बनारस में जो स्टेडियम बना है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि हमारा आप नाम आगे होगा और थोड़ा रोजगार भी मिलेगा और कुछ नाम भी होगा।
0: दरअसल वाराणसी के लोगों को पिछले 12 सालों से एक ऐसा सांसद मिला जो संयोग से देश का प्रधानमंत्री भी है। ये हकीकत है कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कायाकल्प में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसका असर यहाँ के लोग अब शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: कब व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है, कब बेवजह व्यक्ति की बदनामी होती है और अपयश मिल जाता है, कौन से ग्रह देते हैं अपयश और कौन से ग्रह दिला देते हैं यश, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की

0: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यश और अपयश की, यश और अपयश के प्रभावों की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपने

0: बारे में, तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक क्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है ऐसा मानते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी आप जीवन में नाम और यश पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है और हस्तरेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं में ये बात सूर्य से देखी जाती है। यानी इनको देख करके आप किसी भी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान सकते हैं। मेष राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए, नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो, या सूर्य रेखा कटी फटी हो, या वहां पर तिल हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है, तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं मिलता। यानी अगर शुक्र चंद्रमा खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, तो आपको अपयश मिलेगा। अगर शुक्र चंद्रमा और हाथ में सूर्य कमजोर होगा, तो आप बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश जीवन में प्राप्त नहीं होगा। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है, तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु विद्या यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय एक दो दिन के लिए टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो, आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आप बदनाम हो रहे हो अपने ऑफिस पे, अपने घर में, समाज में, बिना वजह के बदनामी मिल रही हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, सूर्य का प्रकाश हर मामले में आदमी को बचाता है, तो सूर्य देव की उपासना करना शुरू करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करिए कि आपको अपयश से मुक्ति मिले। अगर अपयश बहुत ज्यादा बड़ा है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिएगा लगातार एक सप्ताह तक, और लगातार एक सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और जितने दिनों बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करेंगे उतने दिन तक मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करना शुरू करें, कितनी भी बड़ी बदनामी रही हो, कितना भी बड़ा अपयश रहा हो, आप उससे मुक्त होंगे और मुक्त होकर अपयश से बाहर निकल आएंगे। देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं पहली बार, तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। और अगर नई जमीन पर नींव पूजा कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, तो भूमि पूजन हमेशा मध्याह्न के समय, दोपहर के समय करना उत्तम होगा। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत सारे काम करने जा रहे हैं या करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय देखिए कि किस तरफ की सांस चल रही है, बाईं वाली या दाहिनी वाली। एक तरफ की सांस ज्यादा तेज चल रही होगी। जिस तरफ की सांस तेज चल रही हो वही पैर बाहर निकालकर घर से निकलिएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
2: La Que Buena.
1: ESPN Radio.
3: We know LeBron has to be the best player on the planet to
1: get The Daily.
4: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर कल पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान पूजा, अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, एक्सरसाइज कर मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश, पुणे और कोलकाता में सड़कें पानी से लबालब, धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल कीमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सम्मानित हुए।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
14: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब इरादे बड़े हों तो उम्र छोटी नहीं पड़ती और जब प्रतिभा असाधारण हो तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। आज बात करेंगे उन नन्हे सितारों की जिन्होंने कम उम्र में ऐसे कारनामे किए कि दुनिया उनकी ओर देखने को मजबूर हो गई। देखिए, क्रिकेट के मैदान पर अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसे सितारे जन्म लेते हैं जो उम्र से नहीं बल्कि अपने हुनर से पहचाने जाते हैं, जो रिकॉर्ड नहीं बनाते बल्कि रिकॉर्ड्स की परिभाषा ही बदल देते हैं। महज 15 साल की उम्र, लेकिन बल्लेबाजी ऐसी कि दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी हैरान रह जाएं। हाथों में बल्ला आता है तो चौकों छक्कों की जैसे आंधी आ जाती है, विरोधी टीम के कप्तान की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। बिहार की धरती से निकला एक नन्हा सा सपना आज भारतीय क्रिकेट के आसमान का सबसे चमकता हुआ सितारा बन चुका है, नाम है वैभव सूर्यवंशी।

0: क्रिकेट की दुनिया में ये खिलाड़ी आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैदान पर जब इस 15 साल के लड़के का बल्ला बोलता है तो विरोधी टीम के हौसले पस्त हो जाते हैं, कप्तान हक्के बक्के रह जाते हैं और उनकी हार 100% पक्की हो जाती है। वैभव के बल्ले से जब रनों का तूफान उठता है तो दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी लाइन लेंथ भूल जाता है। चौके और छक्कों की ऐसी बरसात होती है कि मैदान की बाउंड्री छोटी पड़ने लगती है। महज 15 साल की छोटी उम्र में वैभव ने वो अविश्वसनीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं जिन्हें छूने का सपना देखते देखते कई दिग्गजों का पूरा करियर बीत जाता है।
1: IIM इंदौर में हम हमेशा ऐसे समकालीन उदाहरणों को अध्ययन और शिक्षण का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं जो समाज, व्यवसाय, नेतृत्व और मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रबंधन पाठ प्रस्तुत करते हों। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये केवल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि मानव क्षमता, प्रतिभा विकास, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक दीर्घकालिक उत्कृष्टता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है।
0: वैभव सूर्यवंशी का ये सफर सिर्फ एक दिन की कहानी भर नहीं है। घरेलू क्रिकेट में महज 12 से 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी जैसे बड़े मंचों पर सीनियर खिलाड़ियों के सामने रन बनाकर वैभव ने सनसनी मचा दी थी। इसके बाद जब भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक जड़ा तो दुनिया समझ गई कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। और फिर आया क्रिकेट का सबसे बड़ा महामंच IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग। जब IPL के ऑक्शन में इस 15 साल के वंडर किड पर फ्रेंचाइजी ने करोड़ों की बोली लगाई तो पूरा क्रिकेट जगत ही हैरान था। लेकिन जब वैभव मैदान पर उतरे तो उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर का कीमत से क्या मुकाबला। IPL के दबाव भरे माहौल में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की गेंदों पर जब वैभव ने बगैर किसी डर के बाउंड्री पार भेजा तो आलोचकों के मुंह पर ताले लग गए। मैच दर मैच वैभव की बल्लेबाजी में निखार आता गया। वैभव ने दिखा दिया कि उनके पास सिर्फ शॉट्स ही नहीं बल्कि विकेट पर टिककर पारी को बुनने की गजब की समझ भी है।
2: यार मैच ना बहुत क्रेजी था ब्रो, जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में सूर्यवंशी ने बैटिंग की ना यार, और ऑलमोस्ट जो फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था वो ब्रेक करने वाला था, बट आई होप नेक्स्ट टाइम हम उसको और बहुत सारे अमेजिंग रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखेंगे।
3: स्पेशल आज का मैच देखने आया क्योंकि मेरे चाइल्ड ने बहुत कह रखा था कि मुझे वैभव सुशांत को देखना है, उसी के लिए स्पेशल ये मैच देखने आया था।
0: घरेलू और IPL के इसी तजुर्बे का नतीजा हाल ही में श्रीलंका की धरती पर दिखाई दिया। इंडिया ए, श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के बीच खेली गई ट्राई सीरीज के हाई वोल्टेज फाइनल में भारत ने श्रीलंका ए को 66 रनों से करारी मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। भारत ने दांबुला में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 377 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रनों पर सिमट गई। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने श्रीलंका की गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि इतिहास के पन्ने छोटे पड़ गए। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की ऐसी आतिशी और अविश्वसनीय पारी खेली जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। अपनी इस पारी में वैभव ने 10 चौके और 8 छक्के जड़े। इसी दौरान वैभव ने महज 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 50 ओवर के क्रिकेट के इतिहास में दुनिया की सबसे तेज 50 का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस बेमिसाल प्रदर्शन के बाद अब वो ऐतिहासिक घड़ी बेहद करीब आ गई है जब वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द टीम इंडिया के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते नजर आ सकते हैं। उन्हें आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर खेलने का मौका मिलता है तो वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़े डेब्यू से ठीक पहले 15 साल के वैभव को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है। उन्हें टीम इंडिया की ऑफिशियल नीली जर्सी मिल गई है। इस जर्सी को देख वैभव की आंखें खुशी के साथ चमक उठी और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये जर्सी उनके बरसों के त्याग का इनाम जो है।
4: मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ। और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं। और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते। सेम रिएक्शन मेरा भी था।
0: वैभव की बल्लेबाजी को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है उनका फियरलेस एटीट्यूड और गजब की टाइमिंग। सामने किसी भी स्तर का गेंदबाज हो, बिना किसी डर के वो अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा करते हैं। उनकी फुटवर्क शानदार है, हाथों की गति तेज है और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। वैभव स्पिनर्स के खिलाफ जितने पैर निकाल कर खेलते हैं, पेसर्स की शॉर्ट पिच गेंदों पर उतने ही लाजवाब पुल और हुक शॉट लगाते हैं। लगातार सीखने की ललक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। महज 15 साल की उम्र में जहां बच्चे दबाव में बिखर जाते हैं, वहां वैभव मैच के हालात को समझकर गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। मैच दर मैच उनकी यही मैच्योरिटी उन्हें एक महान खिलाड़ी की श्रेणी में खड़ा करती है। इस सफलता के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि संघर्ष और त्याग की एक लंबी कहानी भी है। बिहार के एक साधारण से परिवार से आने वाले वैभव के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। उनके परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया। पिता ने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई बार लंबी यात्राएं, कठिन परिस्थितियां और सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने कभी उनके हौसले को टूटने नहीं दिया। वैभव ने भी अपने माता पिता और कोच के विश्वास को अपनी मेहनत से मजबूत किया। घंटों अभ्यास, फिटनेस पर फोकस और अपने खेल को लगातार सुधारने की जिद ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
5: काफी खुशी है माहौल, इतना खुशी है कि हम कह नहीं पाएंगे आपको जी। इतना खुशी है। ये सब मेरा लड़का का देन है,
2: संजीव जी का।
5: पहले मेरा बेटा को बड़ा शौक था, नहीं होने दिए, वो अपना बेटा में वैभव में पूरा कर दिया, इसलिए हमको काफी खुशी है।
6: सर जो बेटा नहीं कर पाया इनका,
5: वो मेरा पोता कर दिया।
7: कि हम ताजपुर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए मेरा वैभव अपना परचम लहराए और बहुत गर्व होता है हमको बोलते हुए कि हम वैभव के गांव से हैं, हम वैभव के गांव से हैं, हम बिहार से हैं, हमारा बिहारी एक बिहारी सब पे भारी। वैभव वैभव वैभव वैभव।
0: वैभव अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माता पिता, अपने कोच और उन शुरुआती दिनों के गुरुओं को देते हैं जिन्होंने उनके टैलेंट पर तब भरोसा किया जब दुनिया उन्हें सिर्फ एक छोटा बच्चा समझती थी। वैभव का कहना है कि अगर उनके माता पिता का त्याग और कोच का मार्गदर्शन नहीं होता तो आज वो इस मुकाम पर कभी पहुँच नहीं पाते।
1: हम यदि देखें तो मात्र 15 वर्ष की आयु में जिस आत्मविश्वास और कौशल के साथ वैभव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, वह दर्शाता है कि असाधारण प्रतिभा को यदि वातावरण, मार्गदर्शन और अवसर प्राप्त हो तो वह असाधारण परिणाम दे सकती है। उनकी यात्रा हमें यह भी बताती है कि बड़ी उपलब्धियों के पीछे केवल व्यक्तिगत क्षमता नहीं होती बल्कि परिवार, प्रशिक्षकों, संस्थागत सहयोग और निरंतर परिश्रम की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं और छोटे शहरों के उन बच्चों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुके हैं जो अपनी आंखों में बड़े सपने पालते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उम्र महज एक नंबर होती है। अगर आपके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों और आपकी मेहनत में सच्चाई हो तो किस्मत को भी आपके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अब पूरा देश पलकें बिछाए उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वैभव सूर्यवंशी नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे और अपने बल्ले की धमक से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नए सुनहरे युग की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: देखिए, कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र, किसी भूगोल या किसी खास संसाधन की मोहताज नहीं होती। जब हौसलों में उड़ान हो और इरादे फौलादी हो तो उम्र महज एक संख्या बनकर रह जाती है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत और ताकतवर तस्वीर वो बच्चे पेश कर रहे हैं जिनकी उम्र भले ही छोटी है लेकिन उनके कारनामे दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहे हैं।
9: भारत की मिट्टी में कुछ ऐसा जादू है जो समय समय पर दुनिया को चौंकाने वाले प्रतिभाओं को जन्म देता है। यहाँ ऐसे नन्हे सितारे उभरे हैं जिन्होंने अपनी विलक्षण क्षमता, अथक मेहनत और अडिग आत्मविश्वास के दम पर कम उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जहाँ पहुँचने का सपना लोग पूरी जिंदगी देखते हैं। इन बच्चों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा का कोई पैमाना नहीं होता और सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सफर की शुरुआत करते हैं 64 खानों के उस खेल से जहां दिमाग की जरा सी चूक मात दे देती है, लेकिन इस खेल में भारत के एक 21 साल के लड़के ने दुनिया के सबसे बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए। नाम है रमेश बाबू प्रगानंद। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले प्रगानंद ने बेहद कम उम्र में शतरंज की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खिताब यानी ग्रैंड मास्टर बनकर सनसनी मचा दी थी। तेज दिमाग और बेमिसाल चालों की बदौलत प्रगानंद ने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन तक को कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजियों में धूल चटाई है। शतरंज की विसात पर जब प्रगानंद का दिमाग चलता है तो दुनिया के दिग्गज भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो आज देश के लाखों उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। शतरंज की दुनिया से आगे बढ़े तो सुरो और ताल की एक ऐसी दुनिया है जहां एक बच्चा अपनी उंगलियों के जादू से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है। चेन्नई के रहने वाले युवा संगीतकार और पियानो वादक लीडियन नाथ स्वरम ने महज 2 साल की नन्ही उम्र में ड्रम बजाना शुरू कर दिया था। लीडियन की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे आंखें बंद करके या एक साथ 2 अलग-अलग पियानो पर अलग अलग धुनें बजा सकते हैं। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CBC के प्रतिष्ठित ग्लोबल टैलेंट शो द वर्ल्ड बेस्ट का खिताब जीतकर लीडियन ने साबित कर दिया कि भारतीय संगीत और प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।
10: I want to go to the moon along with my piano and play the Beethoven's Moonlight Sonata.
11: मेरा नाम कौटिल्य पंडित है और शायद आप मेरे गूगल बॉय के नाम से जानते होंगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ, मैं अभी 17 साल का हूँ एंड आई हैव जस्ट कंप्लीट माय 12th और अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई, आगे की रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के अंदर करने जा रहा हूँ।
9: अब मिलिए एक ऐसे बच्चे से जिसके दिमाग को दुनिया ह्यूमन कंप्यूटर मानती है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले कौटिल्य पंडित को पूरा देश गूगल बॉय के नाम से जानता है। कौटिल्य की उम्र जब खेलने कूदने की थी तब वे भूगोल, खगोल, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और देश दुनिया के जटिल से जटिल आंकड़ों को अपनी उंगलियों पर याद रखते थे। जिस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बड़ों को इंटरनेट छानना पड़ता है उसका जवाब कौटिल्य पलक झपकते ही दे देते हैं।
11: सीखने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भविष्य का तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं फिजिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI या इन सारे फील्ड्स के अंदर अपने आगे का जीवन लगाना चाहता हूँ।
9: ज्ञान और संगीत के बाद अब रुख करते हैं खेल के मैदान का, जहाँ राजस्थान के जोधपुर की एक नन्ही एथलीट ने कड़े अनुशासन की नई इबारत लिख दी है। नाम है पूजा बिश्नोई। महज छोटी सी उम्र में सिक्स पैक एब्स बनाकर दुनिया को हैरान करने वाली पूजा को आज आयरन गर्ल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 3 किलोमीटर की दौड़ को बेहद कम समय में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पूजा का अनुशासन और कड़ी मेहनत किसी मंझे हुए अंतर्राष्ट्रीय एथलीट जैसी है। उनका एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना।
12: मैं 10 किलोमीटर 48 मिनट में कंप्लीट की थी और मैं सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ, फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो मेरे को देख देख के सीखते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को देखे पूरी दुनिया तैयार हो और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके।
9: चलिए मिलाते हैं तेलंगाना के रहने वाले युवा इनोवेटर हेमेश चाडलवाड़ा से। हेमेश ने अपनी प्रतिभा को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। अपनी दादी को अल्जाइमर से पीड़ित देख हेमेश का दिल पसीज गया। हेमेश ने एक ऐसा स्मार्ट ब्रेसलेट और मोबाइल ऐप बनाया जो बुजुर्गों और दिव्यांगों की हर हलचल पर नजर रखता है। उनके गिरने या रास्ता भूलने पर तुरंत तीमारदारों को अलर्ट भेजता है। हेमेश का यह आविष्कार दिखाता है कि भारत के युवा सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, कोई शतरंज की विसात पर चमक रहा है, कोई संगीत की दुनिया में सुर बिखेर रहा है, कोई ज्ञान से दुनिया को चौंका रहा है, तो कोई खेल के मैदान में रिकॉर्ड बना रहा है और कोई तकनीक से समाज बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी बच्चे एक ही संदेश देते हैं, अगर इरादे मजबूत हो, सीखने की लगन हो और मेहनत ईमानदार हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: हिंदुस्तान के नन्हे सितारों का हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं। जब ये छोटे छोटे हाथ कैनवास पर रंग बिखेरते हैं तब दुनिया हैरान रह जाती है। जब ये पानी की गहराइयों में उतरते हैं तो देश के लिए सोना निकाल लाते हैं और जब मासूम आवास पर्यावरण को बचाने के लिए उठती हैं तो दुनिया के बड़े बड़े राजनेता भी सुनने को मजबूर हो जाते हैं। मिलिए ऐसे असाधारण बच्चों से जिन्होंने अपनी विलक्षण मेधा और हौसलों से विश्व मंच पर तिरंगे का गौरव बढ़ाया है।
13: भारत की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत नन्हे सितारों को जन्म दिया है जिन्होंने कम उम्र में ही ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिनकी कल्पना बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। ये बच्चे सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव हैं। आइए मिलते हैं भारत के कुछ विलक्षण बाल प्रतिभाओं से जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले बात उस नन्ही आवाज की जिसने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। मणिपुर की रहने वाली लिसिप्रिया ने बेहद कम उम्र में पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया। जब उनकी उम्र के बच्चे स्कूल और खेलकूद में व्यस्त थे तब लिसिप्रिया जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रख रही थी। उन्होंने दुनिया के नेताओं से पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की और लगातार जागरूकता अभियानों में हिस्सा लिया। लिसिप्रिया आज इस बात की मिसाल है कि बदलाव की शुरुआत उम्र नहीं सोच करती है।
14: मेरा नाम लिसिप्रिया कंगुचम है। मैं 11 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ जिससे हमारी धरती और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है जो सेफ हो जाए।
13: अब बात उस बेटी की जिसने पानी की गहराइयों में उतरकर भारत का नाम ऊंचा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली पलक शर्मा देश की उभरती हुई गोताखोरों में गिनी जाती हैं। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर उन्होंने कम उम्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। पलक ने 10वीं एशियाई आयु वर्ग चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीती है। पलक की सफलता देश की उन लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। अब मिलिए रंगों और कल्पनाओं की दुनिया के एक ऐसे कलाकार से जिसकी उम्र भले ही कम हो लेकिन सोच बेहद विशाल है। पुणे के अद्वैत कोलारकर को बाल चित्रकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। उनकी बनाई गई कलाकृतियों ने कला जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अद्वैत के चित्रों में रंगों का अद्भुत संतुलन, कल्पना की उड़ान और भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। उनके पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लग चुकी है। भारत की पहचान उसकी समृद्ध संगीत परंपरा भी है और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं मुंबई के युवा तबला वादक तृप्त राज पंड्या। बहुत कम उम्र से ही तबले की थाप के साथ उनका रिश्ता जुड़ गया। जिस उम्र में बच्चे बोलना और खेलना सीखते हैं, उस उम्र में तृप्त राज लय और ताल की जटिल बारीकियों को समझने लगे थे। उनके प्रस्तुति ने संगीत प्रेमियों और विशेषज्ञों को समान रूप से प्रभावित किया है। मंच पर उनकी उंगलियों की रफ्तार और ताल पर पकड़ देख दर्शक दंग रह जाते हैं। अब मिलिए तकनीक की दुनिया के एक ऐसे बाल प्रतिभा से जिसने कम उम्र में ही अपनी क्षमता से सबको हैरान कर दिया। ओडिशा के रहने वाले वेंकट रमन ने मात्र 7 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। वेंकट रमन उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो डिजिटल युग में नॉलेज और इनोवेशन की नई सीमाएं तय कर रहे हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, कहीं पर्यावरण को बचाने की मुहिम है, कहीं खेलों में देश का गौरव बढ़ाने का जज्बा, कहीं रंगों के जरिए कल्पनाओं को आकार देने की कला, कहीं संगीत की साधना तो कहीं तकनीक के माध्यम से भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास। इन सभी प्रतिभाओं की सबसे बड़ी ताकत है उनका जुनून, उनकी मेहनत और अपने सपनों पर अटूट विश्वास। ये बच्चे हमें याद दिलाते हैं कि सफलता उम्र देखकर नहीं आती, वह उन लोगों के पास जाती है जो सीखना नहीं छोड़ते, मेहनत से पीछे नहीं हटते और बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
2: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
1: More top sports.
3: And he's gonna go! There's the tying goal!
1: And everything in between.
3: This game is over!
1: Upgrade now for the premium listening experience.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
13: कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर कल पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से संवाद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर, खेलों से जोड़ने का मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसून की बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली NCR के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार

0: 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहां पर हमें वो विक्ट्री

0: उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
1: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 ICC टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। ICC टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया ICC टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और पांचों में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
2: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
1: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
3: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
4: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
1: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
5: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
1: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
3: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
1: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
2: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर टी20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh yeah, you make my dreams come. Steely Dan, back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: धार्मिक मान्यताओं में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की होती है तो इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पवित्र नदियों में स्नान और दान का दिन नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का महापर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के पुण्य फल को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है।

ईश्वर की आराधना का कोई एक रूप नहीं होता, लेकिन जब भक्ति का जुड़ाव प्रकृति से हो जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि हमेशा से चंद्रमा की पूर्णता और मन की शांति का प्रतीक रही है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर जल का महत्व सबसे अधिक होता है। भीषण गर्मी के इस महीने में जब भक्त पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समस्पदक होते हैं। चंद्रमा इस तिथि में स्वामी है, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। लेकिन इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामुहूर्त है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को लंबे अरसे से था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर सिद्धि योग, साध्य योग और त्रिघरी योग जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोग के बीच किया गया कोई भी दान, चाहे जल से भरे कलश, सत्तु अन्य या वस्तु हो, उसका पुण्य काफी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
0: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर कल पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान, पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, एक्सरसाइज भी की। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन, युवाओं को नशे की लत से दूर, खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंदबाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश, पुणे और कोलकाता में सड़कें पानी से लबालब, धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली NCR के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा। जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही एडिटी 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है। आखिरी
1: युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया। और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है, और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा मारमन है, रिएक्टिव आर्मन है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबाइलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धंसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है, और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धंसते नहीं।
3: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन पे चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं, और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है, ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है। टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है, टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है। टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है, उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा, उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
3: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की। इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो, अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
5: जाए। Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
6: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
5: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
6: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get.
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack. It's
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर कल पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक। 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज करके मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर भी आजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से संवाद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर, खेलों से जोड़ने का मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसून की बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली NCR के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार होने वाला है खत्म। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले कल प्रथम पूजा का होगा आयोजन। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा शुभारंभ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ होगा समापन। इस बार अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख मार्गों पहलगाम और पालटाल से होते हुए गुजरेगी। रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा परमिट, RFID कार्ड अनिवार्य। पालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक की, यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी। कल देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार। 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। यात्रा को लेकर रथ निर्माण का कार्य लगभग पूरा। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ निर्माण। पुरी में स्नान यात्रा से पहले उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं श्री जगन्नाथ। आस्था और भक्ति में सराबोर प्रभु जगन्नाथ के भक्त। लगाए गए भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जयकारे। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रही भक्तों की लंबी कतारें। गर्मी के बावजूद भक्तों में जबरदस्त उत्साह। स्नान पूर्णिमा से पहले केंद्रपाड़ा के भगवान बलदेव शिव मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सासाराम में आद्रा नक्ष

पत्र में तारा चंडी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, नवविवाहित जोड़े विशेष पूजा करने के लिए पहुंचे। आद्रा नक्षत्र के साथ वर्षा ऋतु की मानी जाती है शुरुआत, किसानों के लिए बहुत खास। भगवान शिव के रुद्र रूप में की जाती है विशेष पूजा, नव दंपत्ति सुखी दंपत्य जीवन की कर रहे हैं कामना। माता तारा चंडी के दरबार में गूंजे जयकारे, पूरी हलवा का लगाया गया विशेष भोग। माता के आशीर्वाद के लिए लंबी लंबी कतारें, आद्रा नक्षत्र में भक्ति भाव से सराबोर हुआ तारा चंडी मंदिर। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई, नॉन एसी लोकल ट्रेनों को एसी लोकल सेवाओं में तब्दील किया जाएगा। कल से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल बनेंगी एसी ट्रेन, एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी अब 120। मेन लाइन पर एसी लोकल सेवाएं 80 से बढ़कर हो जाएंगी 92। हार्बर लाइन पर 28 एसी लोकल ट्रेनों का संचालन रहेगा जारी। टिटवाला कल्याण ठाणे घाटकोपर कुर्ला सीएम एसटी रूट पर मिलेगा सभी को लाभ। सुबह शाम पीट आवर्स में कई नई एसी सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड का प्रसारण किया गया, गिनाई गई स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले समुद्र से लेकर आसमान तक भारत तेजी से बन रहा है सुरक्षित और आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कई कामयाबियों पर बातचीत की, कहा हर भारतवासी को उपलब्धियों पर गर्व। एविएशन सेक्टर को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, C-295 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया। उत्सवों में पर्यावरण को दिए जा रहे हैं बढ़ावे की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को मजबूती पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान, वैश्विक नेतृत्व के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपलब्धि। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए भारतीय संस्कृति की जबरदस्त झलक। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना का मार्चिंग दल भी लेगा हिस्सा। भारतीय सेना के असम रेजिमेंट का 32 सदस्यीय दल समारोह में होगा शामिल, कैप्टन आर्यन एच शाह देओलकर करेंगे दल की अगुवाई। 1 जुलाई से बदलेंगे कई वित्तीय कामों के नियम, आम लोगों का मंथली बजट हो सकता है प्रभावित। अब 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करने के लिए नहीं देनी होगी कोई एक्स्ट्रा फीस। 1 जुलाई से बिना टिकट सफर करने पर लगेगा डबल जुर्माना, रेलवे में कुछ नियमों में किए सख्त बदलाव। 90 दिन तक एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने की डेडलाइन अब 30 जून तक को हो रही है समाप्त। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा और महंगा, नॉर्मल कैटेगरी में पासपोर्ट 2500 और तत्काल में 5000 रुपए। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का लेह में भव्य स्वागत किया गया, खाता यानी सफेद स्कार्फ भेंट करके सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक माहौल में हुआ भव्य अभिनंदन, दलाई लामा का लद्दाख में 2 महीने का प्रवास। गांधीनगर में बस में सफर करने वालों को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तोहफा, पीएम ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने बच्चों को हेल्थ की सौगात दी, बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के गुना में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया निरीक्षण। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा फिर से शुरू, जलपाईगुड़ी के होटल मालिकों ने फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की समीक्षा की, विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

25 दिन के इंतजार के बाद कोला में मॉनसून की मदद दमदार एंट्री हुई। पहली अच्छी बारिश के साथ खरीफ की फसलों की बुआई शुरू। महिलाएं हाथों से खेतों में बो रही हैं बीज, बैलों के साथ किसान खेतों में जुटे। हाथरस में 548 करोड़ रुपए की लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परियोजनाओं से विकास को मिलेगी नई गति। पंजाब के अमृतसर में बनाया जाएगा लवकुश और माता जानकी का भव्य मंदिर। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। चंडीगढ़ प्रशासन ने रिहायशी मकानों में बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा चलाने को मंजूरी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। मकान मालिक अपने घर के कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए दे सकते हैं किराए पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुलहस्ती बांध से सिल्ट छोड़े जाने के बाद बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। पुणे में बदल गया मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। लेक सिटी उदयपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट। असम के धेमाची में भारी बारिश से केमी नदी में बह गया 300 मीटर लंबा लोहे का पुल। महाराष्ट्र के कोला में बाढ़ और बारिश, घरों में घुस गया पानी, नदी नाले उफान पर। रामबन में दुलस्ती बांध पर गाद हटाने के बाद बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में लैंडस्लाइड से सिजी नदी का बहाव पूरी तरीके से रुक गया। अरुणाचल के कई पेन्योर में लगातार बारिश की वजह से भीषण भूस्खलन, पोर्टिन पोसा रोड पर आवाजाही बाधित। कोलकाता में मौसम ने ली करवट, तेज बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। पश्चिम बंगाल में बाढ़ बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, जयगांव में कई घर जलमग्न। रियासी में भारी बारिश के कारण सलाल डैम में भर गया पानी, पानी का बहाव बढ़ने से सलाल बांध के कई गेट खोले गए। इटली में हीट वेव से बचने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोम में बुजुर्गों की सुरक्षा करने के लिए स्मार्ट ब्रेसलेट। हीट वेव के बीच 700 बुजुर्गों की डिजिटल निगरानी की जा रही है ब्रेसलेट से, हार्ट रेट और नींद पर नजर। 85 वर्षीय डीना गजेला को मिला सुरक्षा कवच। गर्मी में हेल्थ रिस्क कम करने की कोशिश, रोम में टेक्नोलॉजी बनी बुजुर्गों की नई ढाल। व्हीलचेयर से गिरने पर भी तुरंत अलर्ट, सोशल वर्कर दूर से रखते हैं निगरानी। बीजिंग को मिला सबसे ऊंचा फेरिस व्हील, 99 मीटर ऊंचा फेरिस व्हील शुरू। द यानजिंग बना शहर का नया लैंडमार्क। 99 मीटर की ऊंचाई से देखेगा पूरा बीजिंग। फेरिस व्हील में 48 आधुनिक केबिन लगाए गए। एक साथ 460 लोग कर सकेंगे सवारी। एक राइड की अवधि 22 मिनट। चीन में एआई लाइट शो से ग्रेजुएट्स का शानदार विदाई समारोह किया गया। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में अनोखा ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन। ब्राइटेस्ट स्टार शो बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, एआई प्रोजेक्शन से कैंपस हुआ जगमग। ह्यूस्टन में तेजी से बढ़ रहा है क्रिकेट का क्रेज, अमेरिका में क्रिकेट बन रहा है नया पसंदीदा खेल। टेक्सास में क्रिकेट प्लेयर्स की बढ़ी संख्या, प्रोफेशनल्स कोचिंग से निकल रही है गेम। 7 साल की उम्र से शुरू हो रही है ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्रिकेट बना करियर का नया विकल्प। ह्यूस्टन के 5 खिलाड़ियों का अंडर 19 टीम में हो गया चयन, अलग अलग देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। ह्यूस्टन बन रहा है अमेरिका का क्रिकेट हब, यूथ क्रिकेट सिस्टम से उभर रहे हैं नए सितारे। इटली में सिसली के माउंट एटना में फिर ज्वालामुखी विस्फोट, अलर्ट लेवल ग्रीन से बढ़ाकर येलो। 3000 मीटर ऊंचाई पर लावा बहना हो गया शुरू, ड्रोन फुटेज निकलकर सामने आई।
अधिकारियों ने निगरानी और 30 की सिविल प्रोटेक्शन ने लोगों को

0: सतर्क रहने की सलाह दी। ड्रोन कैमरों में कैद हुआ लावा का बहाव, एटना में रुक रुक कर हो रही है ज्वालामुखी की गतिविधियां। लावा निकलने से बढ़ी सुरक्षा चिंता, ज्वालामुखी क्षेत्र हाई अलर्ट पर। रोम में वेस्पा के 80 साल का जश्न हो गया शुरू, 4 दिनों तक प्रदर्शनी और रैली के होंगे आयोजन। 1940 में लॉन्च हुई वेस्पा बनी इटली की पहचान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस स्कूटर ने लोगों को जिंदगी बदल दी। फिल्म रोमन हॉलिडे से वेस्पा को मिली दुनिया भर में पहचान। 80 साल में बिक चुकी है वेस्पा की करीब 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स। करीब 100 देशों में बेची जाती है वेस्पा, भारत इटली और वियतनाम के प्लांट्स में किया जाता है निर्माण। यूरोप में भीषण गर्मी जारी, बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने सड़कों पर पानी की बौछार करने वाले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बर्लिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, गर्मी से बचने के लिए लोग पानी की फुहारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी की चपेट में, कई जगह तापमान 40 डिग्री के पार। जर्मनी में 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, यह देश का सबसे गर्म इलाका। भीषण गर्मी के कारण पूरे यूरोप में लोगों की मुश्किलें बढ़ी, प्रशासन ने मुस्तैद की। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैवान 11 सितंबर को होने जा रही है रिलीज, प्रियदर्शन ने फिल्म का किया है निर्देशन। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने फिल्म हैवान के राइट्स भी खरीदे। श्रद्धा कपूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से उन्होंने वीडियो शेयर किया, अपने पैट डॉग्स के साथ खेलती हुई नजर आई। एक्टर सलमान खान जल्द अपने घर में हो सकते हैं शिफ्ट, खबरों के मुताबिक सलमान नया घर ले रहे हैं। फेमस एक्टर और बिग बॉस फेम गौरव खन्ना और उनकी वाइफ एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला की तलाक की खबरों पर नया अपडेट, आकांक्षा ने तलाक की खबरों को कंफर्म किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: 48, 49, 50.
3: What you doing?
2: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
3: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
2: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
3: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
4: Learn more at APGE.com.
5: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: खबरें तो गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं।

0: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: धार्मिक मान्यताओं में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की होती है तो इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पवित्र नदियों में स्नान और दान का दिन नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का महापर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के पुण्य फल को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है।

ईश्वर की आराधना का कोई एक रूप नहीं होता, लेकिन जब भक्ति का जुड़ाव प्रकृति से हो जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि हमेशा से चंद्रमा की पूर्णता और मन की शांति का प्रतीक रही है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर जल का महत्व सबसे अधिक होता है। भीषण गर्मी के इस महीने में जब भक्त पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समस्पदक होते हैं। चंद्रमा इस तिथि में स्वामी है, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। लेकिन इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामुहूर्त है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को लंबे अरसे से था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर सिद्धि योग, साध्य योग और त्रिघरी योग जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोग के बीच किया गया कोई भी दान, चाहे जल से भरे कलश, सत्तू, अन्य या वस्तु हो, उसका पुण्य काफी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कौन से ग्रह जीवन में नाम और यश देते हैं? कौन से ग्रह आपको बदनामी का शिकार बना देते हैं? कौन से उपायों से बढ़ेगा यश और कैसे मिलेगी अपयश से सुरक्षा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर कल पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान, पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, एक्सरसाइज भी की। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर आजमाए हाथ, प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन, युवाओं को नशे के लत से दूर खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंदबाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश, पुणे और कोलकाता में सड़कें पानी से लबालब, धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक कल तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। हम पंडित जी से जानने वाले हैं यश और अपयश के बारे में। ज्योतिषी नजरिए के हिसाब से यश किन ग्रहों की वजह से आपको मिलता है और किन ग्रहों की वजह से अपयश की प्राप्ति आपको जीवन में होती है, और अगर किसी कारणवश अपयश की प्राप्ति आपको हो रही है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, इनका किस्मत कनेक्शन क्या है, ये विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे, सारी जानकारी देंगे, आपके सवाल भी हम लेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं पहली बार, तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। और अगर नई जमीन पर नींव पूजा कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, तो भूमि पूजन हमेशा मध्याह्न के समय, दोपहर के समय करना उत्तम होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 29 जून 2026 सोमवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने आपको जानकारी दी कि यश और अपयश के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहला प्रश्न जो पंडित जी से बनता है वो यही है कि ज्योतिष में यश और कीर्ति के योग क्या हैं, ग्रहों की इसमें खास भूमिका पंडित जी क्या होती है, किस वजह से यश की प्राप्ति होती है।
1: जी, हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपयश के योगों के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक क्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है, ऐसा मानते हैं, सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी आप जीवन में नाम और यश पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है और हस्तरेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं में ये बात सूर्य से देखी जाती है। यानी इनको देख करके आप किसी भी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान सकते हैं।
0: चलिए, यश और अपयश के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से हम जानेंगे, पंडित जी आपको जानकारी भी देंगे। आप आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है पहली तीन राशियों की, मेष, वृष और मिथुन।
1: मेष राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए, नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, यश के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया कि किन ग्रहों की वजह से यश की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं, अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं कि कब व्यक्ति को अपयश मिलता है या किए गए कार्यों का यश नहीं मिलता।
1: अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो, या सूर्य रेखा कटी फटी हो, या वहां पर तिल हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है, तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं मिलता। यानी अगर शुक्र चंद्रमा खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, तो आपको अपयश मिलेगा। अगर शुक्र चंद्रमा और हाथ में सूर्य कमजोर होगा तो आप बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश जीवन में प्राप्त नहीं होगा।
0: चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से पूछने हैं, आपके सवाल भी आगे जाकर लेंगे, लेकिन वापस आते हैं राशिफल पर और बारी है कर्क सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं कि आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है, उसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप अपने सवाल इस शो में बेझिझक भेज सकते हैं। आपके तमाम सवालों के लिए हमने एक ईमेल आईडी बनाई है, इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं इस शो में। तो पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किस दर्शक का है आपके पास पहला सवाल।
0: जी, आज का पहला प्रश्न सलोनी जी ने हमें लिखा है और सलोनी जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1992, शाम के 5:30, जन्म स्थान है वाराणसी। सलोनी कह रही हैं कि अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सलोनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में होने की संभावना बनती है, अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच वाले समय में। आपका विवाह किसी जाने पहचाने बालक से स्वयं की इच्छा से होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। जब भी विवाह करें, अगर कुंडली मिला करके विवाह करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक पीला पुखराज, लगभग 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी ही आपको बताएंगे कि आज का दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न हमें जया जी ने लिखा है और जया जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 20 नवंबर 2004, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3:50, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, क्या मेरा बेटा आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जया जी, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से अगर वो मैनेजमेंट के, अकाउंट्स के, फाइनेंस के, इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाएं तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी और इनका आने वाला समय करियर के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैनेजमेंट करना इनके लिए कुल मिला जुला के बेहतर होगा। दो उपाय करवाइए, एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
1: चलिए सवाल जवाब लगातार हम पंडित जी से कर ही रहे हैं। एक और सवाल है पंडित जी आपसे, वो ये कि कौन से ऐसे हालात होते हैं या कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को अपार नाम यश और कीर्ति मिलती है।
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे।
1: चलिए अब वापस आते हैं राशिफल पर और बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी आपसे एक और सवाल है, वो ये है कि अगर कुंडली में आप यश के योग बन रहे हो तो क्या करना चाहिए, बचने के उपाय क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से यश और कीर्ति आप हासिल कर सकते हैं?
0: अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु विद्या यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी।
1: चलिए अंतिम तीन राशियों की बारी भी आ गई है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी से जान लेते हैं।
0: मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय एक दो दिन के लिए टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

सुधार होगा, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौट रहे हैं और आपका अगला प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है सवाल। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आपकी आती हैं। आप कोई भी सवाल इस शो में भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के माध्यम से इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, अगला सवाल कौन सा है?
0: जी, अगला प्रश्न धीरज ने हमें लिखा है और धीरज जी हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 19 जनवरी 1982 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 8:30। जन्म स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। धीरज जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना बेहतर होगा और भविष्य कैसा रहेगा? धीरज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार वाली है। और मैं कहूंगा कि साल 2026 के अंत से आप व्यापार की तरफ जा सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा और एक साथ बहुत सारा पैसा व्यापार में मत लगाइएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर अकेले व्यापार करें, आप उसमें सफल होंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है दर्शकों का अंतिम प्रश्न इस शो में लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है और कौन से दर्शक का है पंडित जी अंतिम सवाल।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी शर्मा ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मेल लिखती हैं नोएडा से। इनकी

0: के लिए बहुत गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें, रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुनें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। यश और अपयश के बारे में लगातार जानकारी आपको पंडित जी दे ही रहे हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि किसी कारणवश अगर किसी शख्स के जीवन में अपयश मिल गया है, अपयश उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे वो बचाव चाहता है, तो कैसे कर सकता है ये उपाय?
0: जी देखिए, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो, आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आप बदनाम हो रहे हो, अपने ऑफिस पे, अपने घर में, समाज में बिना वजह के बदनामी मिल रही हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, सूर्य का प्रकाश हर मामले में आदमी को बचाता है, तो सूर्य देव की उपासना करना शुरू करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करिए कि आपको अपयश से मुक्ति मिले। अगर अपयश बहुत ज्यादा बड़ा है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिएगा, लगातार एक सप्ताह तक, और लगातार एक सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और जितने दिनों बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करेंगे, उतने दिन तक मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करना शुरू करें, कितनी भी बड़ी बदनामी रही हो, कितना भी बड़ा अपयश रहा हो, आप उससे मुक्त होंगे और मुक्त होकर अपयश से बाहर निकल आएंगे।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 जून को उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 29 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में समस्या हो सकती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर रहेगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य देव की उपासना शाम के समय संध्या काल में की जा सकती है? देखिए, सूर्य देव की उपासना तीनों वेला सुबह, दोपहर और शाम को की जाती है। शाम के समय सूर्य देव की उपासना आप तभी कर सकते हैं जब प्रातः काल भी उपासना कर रहे हों। केवल संध्या काल में सूर्य देव की उपासना ना करें, और अगर संध्या काल में करना चाहते हैं तो पहले प्रातः काल में सूर्य देव की उपासना करना आरंभ करिए।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 29 जून सोमवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 29 जून दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में 100

0: करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 जून सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में किस चीज से समस्या होती है, किससे बचना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनको हमेशा जिद से और क्रोध से बचना चाहिए और बेवजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं।
1: चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने इस शो से जुड़े हुए आप तक पहुंचा दी है। बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है। पंडित
0: जी, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत सारे काम करने जा रहे हैं या करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय देखिए कि किस तरफ की सांस चल रही है, बाईं वाली या दाहिनी वाली। एक तरफ की सांस ज्यादा तेज चल रही होगी। जिस तरफ की सांस तेज चल रही हो वही पैर बाहर निकालकर घर से निकलिएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, जिसके शुभारंभ की तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए सेवादारों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। देखिए, विशेष भंडारों के लिए तमाम जो सामान है वो बालटाल बेस कैंप पर पहुंच चुका है। पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल बेस कैंप से एक बहुत अलौकिक और पवित्र तस्वीर निकलकर सामने आई। नदी के तट पर गूंजते बम बम भोले के जयकारे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महारुद्राभिषेक के साथ यात्रा की तैयारियों का भव्य शंखनाद हो चुका है। पूरा माहौल शिवमय है।

0: हिमालय की शांत बर्फीली वादियाँ, कल कल बहती नदी का किनारा और हर हर महादेव का जयकारा। अमरनाथ यात्रा महज एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस आस्था के उल्लास के बीच बालटाल बेस कैंप पर महारुद्राभिषेक के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो गया। श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ और श्री बर्फानी बाबा जोगनिया माता भंडार समिति अमृतसर ने संयुक्त रूप से नदी किनारे महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान को दूध, दही, शहद और पंचामृत के साथ महाभिषेक किया गया। इसके बाद महामृत्युंजय जाप और महाआरती से पूरा बेस कैंप गूंज उठा।
1: हर हर महादेव।
0: एक तरफ पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में है तो दूसरी तरफ भोले के भक्तों के लिए विशेष भंडारों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ भले ही 3 जुलाई से हो रहा है लेकिन यात्रियों की सेवा के लिए भंडारे 2 जुलाई से ही शुरू कर दिए जाएंगे जो यात्रा के आखिरी दिन तक लगातार चलेंगे। इन भंडारों के लिए तमाम साजो सामान बालटाल पहुँच चुका है और सेवादार दिन रात तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
2: मौका मिला है इस अमरावती नदी के तट पर महारुद्र अभिषेक करने का। धन्यवाद देता हूँ पवन जी साबू को। मैं अमृतसर से हैं, जोगनिया माता के नाम से इनका पवित्र गुफा पर भंडारा लगाते हैं। वह पूरे शास्त्री बंधुओं की टीम्स के साथ महारुद्र अभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखे।
0: कहते हैं कि जो पुण्य और आनंद 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही पुण्य महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए हर साल तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले ही सेवा भाव में लीन ये सेवादार पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पीना और विश्राम की व्यवस्था करते हैं।
3: श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ राजस्थान का भंडारा पवित्र स्थान बालटाल पर पहुंच चुका है और सभी सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं भवन जहां पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं वो यहां पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में वहां पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं। साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे। और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग है भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है।
0: आस्था के इस महापर्व में सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस बार गृह मंत्रालय बेहद सख्त है और सुरक्षा के मद्देनजर साफ कर दिए गए हैं कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। बिना अनिवार्य पंजीकरण और RFID कार्ड के किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी।
4: 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है। गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे पावर पानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं। मैं 11 साल से इस भंडारे से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर साल दर्शन को आता हूँ और यही रुकता हूँ।
0: 57 दिनों की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। कुल 57 दिनों की इस यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है जिनकी सुरक्षा के साथ साथ मुकम्मल सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशिष्ट पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान पूर्णिमा केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर के भगवान जगन्नाथ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये उत्सव भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पूरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही पूरी का माहौल जगन्नाथमय हो चुका है। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर पूरी भव्यता के साथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल धार्मिक परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इसी कारण उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को वनवरस कहा जाता है। इन दिनों मंदिर में भगवान के रोजाना दर्शन नहीं होते, उनकी विशेष सेवा की जाती है। अनवरस काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। लेकिन उससे पहले भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ तीनों रथ बनाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इंतजार उस समय का है जब महाप्रभु अपने भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धार्मिक मान्यताओं में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की होती है तो इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पवित्र नदियों में स्नान और दान का दिन नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का महापर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के पुण्य फल को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है।

ईश्वर की आराधना का कोई एक रूप नहीं होता, लेकिन जब भक्ति का जुड़ाव प्रकृति से हो जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि हमेशा से चंद्रमा की पूर्णता और मन की शांति का प्रतीक रही है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर जल का महत्व सबसे अधिक होता है। भीषण गर्मी के इस महीने में जब भक्त पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समस्पदक होते हैं। चंद्रमा इस तिथि में स्वामी है, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। लेकिन इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामुहूर्त है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को लंबे अरसे से था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर सिद्धि योग, साध्य योग और त्रिघरी योग जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोग के बीच किया गया कोई भी दान, चाहे जल से भरे कलश, सत्तु, अन्य या वस्तु हो, उसका पुण्य काफी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर।
2: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: कौन से ग्रह जीवन में नाम और यश देते हैं? कौन से ग्रह आपको बदनामी का शिकार बना देते हैं? कौन से उपायों से बढ़ेगा यश और कैसे मिलेगी अपयश से सुरक्षा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
6: La Que Buena.
5: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet to
5: get The Daily.
8: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: कौन से ग्रह जीवन में नाम और यश देते हैं? कौन से ग्रह आपको बदनामी का शिकार बना देते हैं? कौन से उपायों से बढ़ेगा यश और कैसे मिलेगी अपयश से सुरक्षा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
10: After multiple assassination attempts, they can't even get...
11: They're reliable.
12: Always when I need them.
9: To live sports action.
13: One hand jammed by LeBron on the break.
14: That's another three, Steph Curry.
9: And your favorite music.
15: Well, the dawn begins to crack.
9: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
18: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

है अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकेंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था। इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी यानी डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं, तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान पूर्णिमा केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर के भगवान जगन्नाथ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। यह उत्सव भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पूरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही पूरी का माहौल जगन्नाथमय हो चुका है। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर पूरी भव्यता के साथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल धार्मिक परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इसी कारण उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को वनबरस कहा जाता है। इन दिनों मंदिर में भगवान के रोजाना दर्शन नहीं होते, उनकी विशेष सेवा की जाती है। अनवरस काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। लेकिन उससे पहले भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ तीनों रथ बनाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इंतजार उस समय का है जब महाप्रभु अपने भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा। जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर

0: P-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है।
2: सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा, टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा।
0: एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये

0: सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं ताकि
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APF-SDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल, ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है। आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैंस लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया, और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया, इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले, तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना, जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
3: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन पे चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
1: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
3: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
6: Jack, you're killing me.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: और अब खबर अमेरिका से निकलकर आ रही है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिली, रिपोर्ट देखिए।
8: सुहावनी मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
9: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
8: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
9: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
8: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस भूख को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और टी20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी है। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि टी20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और टी20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कौन से ग्रह जीवन में नाम और यश देते हैं? कौन से ग्रह आपको बदनामी का शिकार बना देते हैं? कौन से उपायों से बढ़ेगा यश और कैसे मिलेगी अपयश से सुरक्षा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tune-ins how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं, तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान पूर्णिमा केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर के भगवान जगन्नाथ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। यह उत्सव भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पूरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही पूरी का माहौल जगन्नाथमय हो चुका है। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर पूरी भव्यता के साथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल धार्मिक परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इसी कारण उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को वनवरस कहा जाता है। इन दिनों मंदिर में भगवान के रोजाना दर्शन नहीं होते, उनकी विशेष सेवा की जाती है। अनवरस काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। लेकिन उससे पहले भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ तीनों रथ बनाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इंतजार उस समय का है जब महाप्रभु अपने भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर

एस और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक

0: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है, सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
1: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा, टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लिवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
0: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
1: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके।

0: भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें एआई की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और एआई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या वीआर हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल, ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है, AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया, जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
1: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
1: आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैंस लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले, तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़, टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धंसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धंसते नहीं।
3: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीले इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
1: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
3: द रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: और अब खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिली, रिपोर्ट देखिए।
6: मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है, और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
7: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
6: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
7: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
6: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और डायरी में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा है। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 ICC खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी ICC ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था, और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 ICC टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। ICC टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया ICC टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और पांचों में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी यानी डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं, तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान पूर्णिमा केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर के भगवान जगन्नाथ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये उत्सव भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पूरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही पुरी का माहौल जगन्नाथमय हो चुका है। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर पूरी भव्यता के साथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल धार्मिक परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इसी कारण उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को वन बरस कहा जाता है। इन दिनों मंदिर में भगवान के रोजाना दर्शन नहीं होते, उनकी विशेष सेवा की जाती है। अनवरस काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। लेकिन उससे पहले भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ तीनों रथ बनाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इंतजार उस समय का है जब महाप्रभु अपने भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे

कि T72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है।

0: गियर बॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है, सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
1: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा, टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
0: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
1: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक

0: और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5-10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APF-SDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक इंटरक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
1: भारतीय वायुसेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
3: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
1: आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
3: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैंस लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया। और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
3: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
3: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं। उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
4: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा मारमन है, रिएक्टिव आर्मन है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
3: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़, टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धंसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धंसते नहीं।
4: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीले इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
3: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
1: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
3: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
4: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: और अब खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिली, रिपोर्ट देखिए।
7: सुहावने मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
8: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
7: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
8: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
7: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंदबाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 टी20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को टी20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: टी20 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे मेरे दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं, तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशिष्ट पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने

0: and servo motors, tank ke manual steering, clutch, brake aur gear lever par shaktishali electronic actuator fit kiye jate hain. Ye theek waise hi kaam karte hain jaise manav chalak ke haath aur pair karte hain. Dusra hai remote gun control system. 125 mm gun ko modne, nishana sadhne aur gola dagne ke liye electronic motors lagai jati hain jinhe meero dur se control kiya ja sakta hai. Teesra hai digital interface. टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ईसीयू यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है.
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर. लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा. इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा. यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा.
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा. टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा. ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं. इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है. टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं. AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके. भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी. भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके.
2: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5-10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है. ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो.
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है. ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APF-SDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल. ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है. सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है. AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती.
1: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे ही जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे. व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर

0: करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
1: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
0: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया, जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
1: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
2: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
2: आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
1: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
2: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया। और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
1: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
2: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
1: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको ये भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले, तो इसका मतलब चुबा मार्मन है, रिएक्टिव आर्मन है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
1: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना, जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धंसते नहीं।
3: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है, ना कि व्हील।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
2: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
1: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
3: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की। इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
2: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: और अब खबर अमेरिका से निकलकर आ रही है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए।
6: सुहावनी मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
7: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
6: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
7: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
6: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहां अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नेट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
7: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर मैंने कभी उसको ऐसे डरते हो कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़ बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी है। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं, तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले भक्तों का उत्साह जबरदस्त चरम पर देखने को मिल रहा है। पुरी में स्नान पूर्णिमा महोत्सव से पहले भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस बार स्नान यात्रा 29 जून को मनाई जाएगी। ये उत्सव केवल एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

0: भक्ति, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का है, जहां इस समय जय जगन्नाथ का उद्घोष हर ओर से सुनाई दे रहा है। महाप्रभु की महिमा ही ऐसी है कि उनके दरबार में खींचे चले आने से कोई खुद को रोक नहीं पाता। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा का आयोजन होता है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि रथ यात्रा के महा आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में अपने आराध्य के इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुँच चुके हैं। स्नान यात्रा के इस पावन मौके पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान देवी पर लाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीनों देवों को 108 कलशों के पवित्र और सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल स्नान पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। भगवान के इस दिव्य स्नान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। स्नान पूर्णिमा केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर के भगवान जगन्नाथ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये उत्सव भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पूरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही पूरी का माहौल जगन्नाथमय हो चुका है। मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर पूरी भव्यता के साथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल धार्मिक परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इसी कारण उन्हें लगभग 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को वनवरस कहा जाता है। इन दिनों मंदिर में भगवान के रोजाना दर्शन नहीं होते, उनकी विशेष सेवा की जाती है। अनवरस काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा। लेकिन उससे पहले भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ तीनों रथ बनाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इंतजार उस समय का है जब महाप्रभु अपने भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की होगी प्रथम पूजा। 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधि और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। पूजा अर्चना के लिए जुटे लाखों भक्त। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। एक्सरसाइज भी की मुख्यमंत्री ने। बैडमिंटन कोर्ट पर हाजमाए हाथ। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से किया संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश भर में 500 ग्रामीण जिम का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर करके खेलों से जोड़ना है मकसद। फरीदकोट के चंद बाजा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में जमकर हो रही है मानसूनी बारिश। पुणे और कोलकाता में सड़कों पर जमा हुआ है पानी। धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल केमी नदी में समाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। फिलहाल तापमान 41 डिग्री के पार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स